0: है ना।
1: दोनों महिलाओं को एक ही बताकर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी पर विश्वास जताने वाली महिला चुनाव के बाद खुद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद बीजेपी को कोस रही है। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये अंधभक्त दीदी कह रही थी कि दीदी पर भरोसा नहीं है, बीजेपी पर है। बीजेपी पश्चिम बंगाल जीती फिर बुलडोजर चला दिया तो इस अंधभक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है कि बीजेपी को नहीं जिताना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किए जा रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक महिला बीजेपी की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में एक महिला रोती हुई भी दिख रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की तारीफ करने वाली इस महिला के घर पर जब चुनाव के बाद बुलडोजर चला तो वो बीजेपी को कोसने लगी। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान एक बात तो साफ हो गई कि दो अलग अलग क्लिप्स को जोड़कर वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रही दोनों महिलाओं की पहचान अलग अलग है। हाँ, काफी हद तक फेस जरूर मिलता है लेकिन वीडियो में एक महिला की बोलचाल में हिंदी बांग्ला का मिश्रण देखने को मिल रहा है। वहीं वीडियो में जो दूसरी महिला है वो हिंदी बोल रही है, इसमें कहीं भी बांग्ला का मिश्रण नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये कि दो अलग अलग घटना से संबंधित मामले को एक नया एंगल देकर वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की तो पहली क्लिप में महिला जिस माइक पर बोल रही है उस पर प्यारा हिंदुस्तान लिखा हुआ नजर आता है। हमें इस नाम का YouTube चैनल मिल गया और यहाँ इस वीडियो को 19 अप्रैल को अपलोड किया गया था। यहाँ वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताया गया है।
3: उठ गया
4: तो किससे भरोसा है?
3: मोदी जी का भरोसा है।
1: बीजेपी की आलोचना करती रोती हुई महिला का वीडियो एक न्यूज आउटलेट के यूट्यूब चैनल पर 4 मार्च को अपलोड किया गया था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वीडियो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले का है क्योंकि बंगाल में चुनाव दो चरणों 23 और 29 अप्रैल को हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित राम कैंप की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से बातचीत का ये वीडियो उस वक्त खूब वायरल हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार ने 6 मार्च से पहले भाई राम कैंप खाली करने को लेकर यहाँ रहने वाले लोगों को एक नोटिस जारी किया था और तभी से वो लोग काफी डरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री निवास के ठीक बगल में स्थित DID कैंप, भाई राम कैंप और मस्जिद कैंप की झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO विभाग ने नोटिस जारी कर 6 मार्च 2026 तक जमीन खाली करने को कहा था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। पहली क्लिप पश्चिम बंगाल की तो दूसरी दिल्ली की है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: 16 मई 2026 से सोशल मीडिया पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़कर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोगों को सरकारी वाहनों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: देश भर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर 18 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है, कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई वीआईपी नहीं, अब सब बराबर हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
2: सोशल मीडिया

0: कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। अब इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की शुरुआत की, जिसमें 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से व्यंग करना शुरू हुआ था। हालांकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वीडियो कहां का है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर यूपी नंबर प्लेट देखने को मिल रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो यूपी का हो सकता है। इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और यूपी के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक की टीम वायरल हो रही इस वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो कई सोशल मीडिया अकाउंट से 22 और 23 मार्च को अपलोड किया गया मिला। इन वीडियोस के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में एक बाबा की मौत के बाद पुलिस की गाड़ी पर उपद्रवियों के पथराव किए जाने का बताया गया था। इसके अलावा वायरल क्लिप वाले दृश्य 21 मार्च 2026 को एक न्यूज चैनल के एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में भी मिले। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद पुलिस पर हुए पथराव का बताया गया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा के कोसी कला में फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर सिंह की 21 मार्च को ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस जब भीड़ को शांत कराने पहुंची, तो पुलिस पर ही पथराव शुरू हो गया। इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। मथुरा पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए थे। पहली एफआईआर में पुलिस ने 23 नामजद सहित 300 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वहीं दूसरी एफआईआर में हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी सहित दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल हो रही ये वीडियो असल में सीजेपी बनने से 2 महीने पहले मथुरा में हुई एक घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब आ रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं और ये खूब वायरल है।
4: इंटरनेट पर ये प्यारा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसकी अनोखी समझ देखने को मिलती है, जिसे देखकर लोग हंसने के साथ साथ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल बच्चे की टीचर ने उसे स्कूल से A to Z लिखने का होमवर्क दिया था। आमतौर पर बच्चे कॉपी में अंग्रेजी के अक्षरों को एक एक करके लिखते हैं, लेकिन इस नन्हे बच्चे ने टीचर की बात को बिल्कुल अलग तरीके से समझ लिया। उसने अपनी कॉपी में A to Z को जैसा देखा ठीक वैसा ही कॉपी कर दिया। बच्चे ने हर पेज पर A to Z ही लिख डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब घर वालों ने बच्चे की कॉपी को

0: देखा तो वो भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन बाद में उसकी मासूम सोच को देखकर सबकी हंसी छूट गई। बच्चे ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ वही काम किया जो उसे सही लगा। यही बात लोगों का दिल जीत रही है। लोगों को ये छोटा सा दिल छू लेने वाला पल बेहद पसंद आ रहा है। दरअसल वीडियो में एक बाइक सवार सड़क से गुजर रहा होता है। रास्ते से उसे सेना के जवानों से भरी एक ट्रक दिखाई देती है। जवानों को देखकर वो सम्मान में उन्हें सल्यूट करता है। खास बात ये रहती है कि ट्रक में बैठे जवान भी उसी सम्मान के साथ उसे जवाब देते हुए सल्यूट करते हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर बाइक सवार को सेना की एक जीप दिखाई देती है और वहाँ मौजूद जवान भी उसके अभिवादन का जवाब सलामी देकर देते हैं। ये छोटा सा पल उस युवक को बेहद खास महसूस होता है।
1: We do not speak Punjabi, but we have been asked to perform this song at a wedding. So what do? We step up.
0: आजकल सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो खूब तहलका मचा रहा है। इस वीडियो में वो एक मशहूर पंजाबी गाना इतने गजब के उच्चारण के साथ गा रही है कि सुनने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं।

दरअसल वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला यूके की मशहूर सिंगर तानिया वेल्स है। तानिया सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन आवाज और हिंदी उर्दू के एकदम सटीक और साफ उच्चारण के लिए पहले से ही काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में उनके साथ ब्राजील के उस्ताद गिटार वादक पाउलो विंसियास भी हैं, जो अपने क्लासिकल गिटार ट्यून से इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल ने चलते चलते पूरी लोकल ट्रेन को ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में बदल दिया। शख्स के सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर मिलाने लगे। इस देसी कॉन्सर्ट से इंटरनेट पर धूम मची हुई है।

0: भीषण गर्मी के बीच गुरुग्राम का एक एसी वाला ऑटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में लगी एयर कंडीशनिंग सुविधा को देखकर हर कोई हैरान है और इसे गर्मियों के लिए शानदार जुगाड़ बता रहा है। वीडियो में नीले रंग का एक ऑटो रिक्शा नजर आता है, जिसमें पीछे की तरफ एसी यूनिट लगी हुई दिखाई देती है। वीडियो में दिखाई दे रही एक और खास बात ने लोगों का ध्यान खींचा। ऑटो पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है। यानी ये ऑटो न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसी सुविधा वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को लोग एक स्मार्ट और उपयोगी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने की बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात ये थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वो कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को ये पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अक्सर गाड़ियों के नीचे या गाड़ियों के अंदर ही घुसकर छिप जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया, जिससे एक छोटी सी बिल्ली की जान बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी सी बिल्ली कार के निचले हिस्से में जाकर कैसे छिप गई थी। वो एकदम पहिए के पास ही बैठी हुई थी, जिससे उसकी जान को खतरा था। अगर गाड़ी वाला नहीं जानता और उसे बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर चल देता तो उसकी भी जान जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। महिला की नजर बिल्ली पर पड़ गई, जिसके बाद उसने उसे बाहर निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई। उसने बिल्ली को खाने का लालच दिया, जिससे बिल्ली बाहर निकल कर आ गई। फिर महिला ने उसे खिलाया और उसके बाद उसे अपने घर लेकर चली गई। महिला की यही इंसानियत लोगों के दिलों को भा गई है।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे, रिमोट दे दे, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती। अगर एसी बंद हो जाए तो वो ना सिर्फ नखरे दिखाती है, बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वो सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह से लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वो नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नजारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वो थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह को देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
4: Jack, you're killing me.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
7: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कथित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार

आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं, ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार, तीन कारण हैं दुख के, वैसे तो अनेक हैं पर मुख्य तीन हैं। कितने हैं, जोर से बोलो, कौन कौन बताओ, बताओ। ले तुमने बत्ती से दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते हैं। हां जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, ये भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। अब तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहो मेरे पागलो, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहो। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ, तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए दुखी हो जाओ। और शिव कुमार बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है, अपना गार्डन कम हरा भरा रखता है पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है, ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या, दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे, हां जी या ना जी, ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है। किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो दो बैंड बाजा बजाने वाले गए, एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ, अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस, तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था, एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है, लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे, दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, दो घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह, पर एक ने आशा रखी, एक ने आशा
नहीं रखी। एक एक यजमान के घर दो पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर दो पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप हंस रहे हो आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला आपको कम? नहीं नहीं नहीं सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे 5000 देगा पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले हमें पहले ही पता था हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है, आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है, तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे, और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या, एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो, तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। तुम्हें सुखी रहना है तो ये बात तुम अपनी जिंदगी की डायरी में मन के स्तंभ पर नोट कर लो कि तुम्हें जिंदगी से धोखा ही मिलेगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो बाद में भले ही धोखा ना मिले तो समझ जाना बोनस पॉइंट है, फिर दुख नहीं होगा। मिल भी जाए ना भी मिले दुख नहीं होगा। तो दुख से बचने का पहला कारण यही है, संसार पर आशा मत करो, संसार के लोगों पर आशा मत करो, ये पहला कारण। दुख का दूसरा कारण, दुख का दूसरा जो कारण है वो है, देखो एक बात और, दुख से बचने का एक उपाय और है। शुक्मान यही पश्चिम बिहार में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई थोड़ा दिल्ली की चांदनी चौक की पढ़ी लिखी थी, बड़ी खतरनाक औरत, हमारे विचारे सीधे साधे जलेबी जैसे सीधे चंगीलाल को रोज पीटती, रोज डांटती, चूंकि मुन्नी बाई चांदनी चौक की थी, रोज डांटती रोज पीटती और रोज धमकी देती कि मैं भाग जाऊंगी मैं कल ही चली जाऊंगी। एक दिन तो उसने ऐसी धमकी दे, चंगीलाल सीधा साधा, क्योंकि पश्चिम बिहार के लोग सीधे साधे होते ही, चंगीलाल बेचारा सीधा साधा, उसे लगा कि ये गई तो समाज में इज्जत गई, लोग क्या कहेंगे कि चली गई। एक घरवाली ना संभली और कल के दिन चंगीलाल को नेता भी बनना था, तो उसने सोचा कि अब तो आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा, लोग कहेंगे जब तुमसे घरवाली संभली नहीं है विधानसभा क्या खाक संभलेगी। भाई जिससे लुगाई ना संभले तो बात सही है, अब वो विधानसभा क्या खाक संभालेगा तो और परेशान चंगीलाल। तो चंगीलाल ने हमारे पास आके अर्जी लगाई कि आप कोई उपाय बताओ, घरवाली बड़ी खतरनाक है और उसे जाना तो है, ये तो मैं उसके लक्षण से समझ चुका हूं, पर ऐसा कोई उपाय बताओ कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो टिक जाए। हमने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। बोले बोलो। हमका कुछ नहीं, उसने धमकी क्या दी? अरे बोले धमकी ये कह रही कि मैं कल भाग जाऊंगी। हमने कहा कान इधर ला, हमने उसको कान में एक गुरु मंत्र दिया, वो पास हो गया, वो तुरंत घर गया, रात को ही
पश्चिम बिहार की ऊपर की बिल्डिंग में खड़ा होके बोला, दिल्ली वालों सुनो, कल के दिन कोई हमें दोष मत देना, हम आज से ही अपनी घरवाली का परित्याग कर रहे हैं। अब वो सुबह, अब वो पत्नी टेंशन में बोली, हमने कब कहा ये, आप परित्याग क्यों कर रहे हैं? चंगीलाल बोला, सुबह जाना है उसके पहले हमसे ही इस्तीफा ले ले, कम से कम कल के दिन समाज में ये इज्जत तो रहेगी कि पत्नी नहीं भगी, भगाई है, संतुष्टि तो रहेगी। शिव कुमार, भगवान करे तुम्हें ऐसा ना करना पड़े, पर शिव कुमार दुखों से बचने का ये सॉल्यूशन है, ये सूत्र है। क्या दुखी तुम कब होगे? जब तुम कोई बात कमिटमेंट दुनिया के सामने कर दोगे कि हम ऐसा करेंगे और वो ना होगा तो बेइज्जती होगी, तो तुम दुखी रहोगे, दिमाग तुम्हारा ईगो डाउन होगा, ईगो हर्ट होगा, दिमाग में तुम्हारे टेंशन आएगी और तुम जल्दी पेंशन लेने के पहले ही निपट जाओगे। तो शिव कुमार उपाय क्या है? तुम पहले ही दिन दुनिया के सामने अपने आप को निकम्मा घोषित कर दो, अपने आप को विचित्र आदमी घोषित कर दो, अपने आप को जीरो घोषित कर दो, फिर भले ही एक नंबर मिल जाए, दस नंबर मिल जाए, ये बोनस होगा, और नहीं भी मिलेंगे तो तुम कह तो सकते हो कि हमने तो पहले ही कही थी, हमने तो पहले दिन ही कहा कि हम ऐसे हैं। ये दुख से बचने का उपाय। पर तुमने पूछा कि दुख क्या है, तो दूसरा कारण सुनो, दुख कुछ नहीं, अज्ञानता है। तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो, तुम्हें पता ना हो, तो तुम क्या करोगे? खिसको, ऊपर पैर मत रखो, चलो चलो। लेकिन तब तक कोई कान में कहे, कमिश्नर साहब जी, पीएम है, अरे रख लो रख लो रख लो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, रख लो, आ जाओ आ जाओ, नजदीक आ जाओ आ जाओ। बताइए, ये तुम अभी अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? अज्ञानता, पता नहीं था इसलिए ऐसी हरकत कर रहे थे। अब पता चल गया तो खुद की सीट छोड़ने को तैयार, ये ज्ञान है। ये अज्ञानता भी दुख का कारण है। किसी दरिया के किनारे शिव कुमार, समझो दुख क्या है। दूसरा कारण, किसी नदी के किनारे एक आदमी गया, रात का समय था, मछलियां पकड़ने गया, पुराना जमाना, लाइट तो थी नहीं, वो रात को ही चला गया। उसने सोचा सुबह हो, बाकी मछुआरे आवे, उसके पहले मैं पहुंच जाऊं और सुबह की पहली सूर्योदय की किरण के पहले मैं जाल को बिछा दूं ताकि ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। अब रात को बैठ गया, किस्मत से उसके बगल में एक थैला डला था, उसने सोचा होगा कोई कचरे का बैग, होगा कोई ऐसे ही कार्टून, उसमें कुछ पत्थर जैसे थे चमकदार, चिकने चिकने, वो एक एक पत्थर उठावे और दरिया में नदी में फेंकता जावे। और पूरी रात उसने उस कार्टून में भरे हुए पत्थरों को फेंका, लेकिन जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, थोड़ी रोशनी आई, उजाला छाया, पक्षी चहचहाने लगे, तब उसे होश आया कि अब तो सुबह हो गई है, चलो जाल उठाओ, मछलियां पकड़नी है। लेकिन जैसे ही कार्टून जिस थैले में रात भर पत्थर समझ करके वो पानी में फेंकता रहा, हाथ में बचा हुआ एक पत्थर उसने गौर में देखा, गौर से देखा तो वो कोई पत्थर नहीं था, हीरों का थैला था, डायमंड का थैला था। अब सिर धुन धुन कर पछताने लगा, एक ही बचा, पूरी रात हीरे फेंक फेंक करके दरिया में फेंक दिए, यही जिंदगी है। अगर तुम अज्ञानी रहोगे तो जिंदगी के प्रत्येक हीरे के पल को, सदगुरु को तुम इस तरफ फेंकते जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा और तुम्हें दुख हो जाएगा। ये अज्ञानता दूसरा कारण है दुख का। अब तुमने पूछा है कि इसका उपाय क्या है, इसका उपाय भी है इस दुख से बचने का, जो ज्ञानी है उसकी शरण पकड़ो। वो ज्ञानी कौन है?

पूछा कि इस अज्ञानता से दुख से बचने का उपाय क्या? ज्ञानी की शरण पकड़ो। और याद रखना, ज्ञानी वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, अंग्रेजी बोले, उर्दू भी बोले, पारसी भी बोले, तमिल भी बोले, मलयालम भी बोले, गुजराती भी बोले, और जर्मनी भी बोले, फ्रेंच भी बोले, फ्रेंच भी बोले, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कौन? जो अपने एक अक्षर से तुम्हारे हृदय को झंझोर देवे, बंद दरवाजे को खोल दे, वो ज्ञानी है। तीसरा कारण, शिव कुमार तुमने पूछा दुख क्या है, तो जल्दी जल्दी में तुम तीसरा भी समझ लो। तीसरा कारण है वर्तमान को स्वीकार ना करना। तीन कारणों में तीसरा कारण, तुम अभी जहां हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे। आदमी, पूरी दुनिया का आदमी, जो मनोविज्ञानकों ने रिसर्च किया है वो ये रिसर्च किया है, पूरी दुनिया का ज्यादातर आदमी या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है। जो भूतकाल में जीता है वो चिंता में रहता, जो भविष्य में जीता है वो थोड़ा सा परेशान रहता, बेचैन रहता, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जिसका जीवन भूतकाल में जी रहा वो टेंशन में जी रहा कि हमसे ऐसा क्यों हो गया, और मेरे पागलो, इस दुख से बचने का भी उपाय है। पूछो क्या? शिव कुमार, इस दुख से बचने का उपाय सीधा साधा सा है, ना तुम भूत में जियो ना तुम भविष्य में जियो, जीने का मजा लेना है तो तुम वर्तमान में जियो। अभी जहां हो वहीं मस्त रहो। अगर तुम कथा में बैठे हो तो सिर्फ कथा में बैठो, तुम ये मत देखो कि पड़ोसी आया कि नहीं आया, तुम्हारी फोटो बढ़िया आ रही कि नहीं। हमने कई जजमान ऐसे देखे कि फोटो बढ़िया आ जाए तो संभल के बैठ जाते, कैमरा कर दो अभी, जरा कैमरा करो पब्लिक पे, तुरंत हाथ हलाएंगे। संभाल के बैठेंगे, फोटो बढ़िया आए। मेरे पागलो, जब तुम दुनिया को रिझाने के लिए चित्र ठीक कर सकते हो तो परमात्मा को रिझाने के लिए चरित्र को भी ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम चरित्र को ठीक कर लेंगे, वर्तमान को स्वीकार कर लेंगे, दुख नहीं रहेगा। और अगर फिर भी दुख आवे ना, एक उपाय है, पूछो क्या? पूछो, अरे जोर से तो पूछो।

0: बदल रही है देवगुरु बृहस्पति की चाल, कुछ राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें और कुछ राशि के लोग होंगे मालामाल। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या है पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: देश की हवाई सुरक्षा और मजबूत करने की तैयारी, वायुसेना को मिलेंगे नए राफेल विमान, भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल विमानों का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से बने गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी ताकत। छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू हो गए गोंडोला राइड, तकनीकी खराबी के चलते रोकी गई थी सेवा। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए जज लेंगे शपथ, जजों की नियुक्ति की सिफारिश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 5 जजों की शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 37 होगी। जल्द फाइनल हो सकती है भारत अमेरिका ट्रेड डील, दिल्ली में आज से 4 जून तक डील को अंतिम रूप देंगे दोनों देशों के वार्ताकार, पीयूष गोयल बोले 99% बातचीत हुई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमान की ताकत, सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला, देश के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े लड़ाकू विमान समझौते की तैयारी। फ्रांस से लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में होगी 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद, समझौते के तहत भारत में ही बनेंगे 90 लड़ाकू विमान। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए जज लेंगे शपथ, राष्ट्रपति ने कल ही 5 जजों की नियुक्ति को दी थी मंजूरी, 5 जजों की शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या होगी 37। छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए अब गुड न्यूज, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू हो गई गोंडोला राइड, तकनीकी खराबी के चलते रोक दी गई। मौसम के मोर्चे पर रात भरी खबर, IMD के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक ऐसा ही रहेगा तापमान, सामान्य के आसपास रहेगा मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय है पश्चिमी विक्षोभ, सभी मैदान राज्यों में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी। जून के पहले हफ्ते में दिल्ली पर मेहरबान रहेगा मौसम, 6 जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान। मॉनसून के लिए अभी कुछ दिनों और करना होगा इंतजार, 2 से 3 दिन में मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान। मध्य प्रदेश को जन्म तेज हवा के साथ आई बारिश से गिर गया तापमान, लोगों को गर्मी से राहत। राजस्थान के नागौर में भी बदल गया मौसम का मिजाज, बारिश के साथ ओले भी पड़े। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई झमाझम बारिश, लोगों को 45 डिग्री की तपिश से राहत मिली। तेज हवा और गरज के साथ एक घंटे तक हुई जबरदस्त बारिश, लोग बारिश में भीगते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के जालना में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान जताया। गुजरात के अहमदाबाद में भी अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। राजस्थान के जैसलमेर में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली, पश्चिमी विक्षोभ के चलते तेज हवाएं। पर्यटकों को लुभा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, अनंतनाग जिले का डेडबल कापरान में कुदरती सुंदरता के बीच मिलता छुट्टियां मनाने का मौका। अपनी पहाड़ियों और मनमोहक नजारों के लिए मशहूर है वेरीनाग से करीब 20 किलोमीटर दूर यह जगह। तेलंगाना के करीब बेघर और भूमिहीन परिवारों के लिए गुड न्यूज, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसी साल 17 सितंबर को 1,00,000 परिवारों को घर देने का किया ऐलान। महादेव की नगरी काशी में शुभ समाचार, विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। 4 साल में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, काशी में 60,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से वाराणसी की अर्थव्यवस्था बेहतर, मंदिर प्रशासन के मुताबिक चढ़ावे में भी इजाफा। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां, मंत्री सुदित सोनू ने देवघर और दुकमा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की चर्चा। चारधाम यात्रा के साथ साथ चमोली के ब्रह्म कपाल में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पूर्वजों की मुक्ति और पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है मुक्ति धाम बद्रीनाथ में मौजूद ब्रह्म कपाल। पवित्र अधिक मास में पूर्वजों की पिंड तर्पण के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में ब्रह्म कपाल पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अलकनंदा नदी के तट पर मौजूद तीर्थस्थल ब्रह्म कपाल में पूर्वजों की मुक्ति के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं श्रद्धालु। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति ब्रह्म कमाल से ही मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे सहारनपुर, शाकंभरी देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, माता शास्त्र मान लिया। मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रक्सौल से तिरुपति के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू। तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीधी ट्रेन सेवा, नई ट्रेन रक्सौल से हर गुरुवार और तिरुपति से हर सोमवार को चलेगी। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन के मौका। लखनऊ से चलने वाली स्पेशल ट्रेन से नासिक, शिरडी और छत्रपति संभाजीनगर का भ्रमण करेंगे श्रद्धालु। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पलायन की मार झेल चुके मंदारा गांव में लौटी रौनक, धार्मिक आयोजनों से गांव हुआ गुलजार। आज से दांडिया धाम में 7 दिवसीय श्री मध्व भागवत का कथा का शुभारंभ। दांडिया धाम के घंटाकर्ण, गुणेश्वर और भैरव देवता मंदिर में श्रीमद भगवत कथा पुराण का शुभारंभ। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गांव में नई ऊर्जा का संचार। 10 जून से त्रिदेवों का धार्मिक अनुष्ठान और ग्रामोत्सव का आयोजन, देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे गांव के लोग होंगे शामिल। सेना की रोमियो फोर्स ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनाया हिल काका डे, सेना ने ऑपरेशन सप विनाश के शहीदों और नागरिकों के बलिदान को नमन किया। गिर पंजाल इलाके में दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित हिल काका क्षेत्र में आतंकियों के खात्मे के उपलक्ष्य में मनाया गया कार्यक्रम। इस मौके पर इलाके में आतंकियों के हमलों और फिर सेना की कार्रवाई का किया गया मंचन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी शामिल हुए, छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत भी गाए। हिलकाका इलाके में आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना ने साल 2003 में चलाया था ऑपरेशन सर्प विनाश। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। मुंबई में शुरू की गई पिंक ई रिक्शा सहायता पहल, इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस मौजूद रहीं। मथुरा स्टेशन पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने मचाई यात्री की जान, मुसाफिर चलती ट्रेन में चढ़ने की कर रहा था कोशिश। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, समस्तीपुर में 7 दिवसीय ब्यूटिशियन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम। दिव्यास्त्र MK1 को मोबाइल प्लेटफॉर्म से किया गया लॉन्च। बिहार का जरदालू आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, मनेर में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने आम के पैकेजिंग को लेकर निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों, पूर्व सैनिकों, पट्टेदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र बांटे गए। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों के नशा मुक्ति अभियान के तहत एलजी मनोज सिन्हा ने कुलगाम में पदयात्रा करके नेतृत्व किया। आईटीजीई एडवांस्ड परीक्षा में कोटा के 2 दोस्तों ने देश में हासिल की पहली और दूसरी रैंक। जे एडवांस परीक्षा में चेन्नई के स्नेहल रॉय चौधरी ने हासिल किया देश में 41वां स्थान। सूरत के उन्नति जैन ने आईटीजेई एडवांस परीक्षा में गुजरात में बनी वो सेकंड टॉपर, 299 अंक लाकर पूरे देश में पाया 43वां स्थान। जयपुर के प्रखर शर्मा ने जेई एडवांस परीक्षा में देश की में हासिल किया 69वां रैंक। जयपुर के रुचित अग्रवाल बने जयपुर सिटी के सेकंड टॉपर, हासिल की ऑल इंडिया 99वें रैंक। जेई एडवांस्ड परीक्षा में बिहार के गया की पटवा टोली का जलवा, पटवा टोली के वृक्ष संस्थान में पढ़ाई करने के बाद 10 छात्रों को जेई एडवांस में सफलता मिली। अपने सभी छात्रों को आईटी और जेई परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और तैयारी करवाते हैं वृक्ष संस्थान। राजस्थान के एक गांव के बेटे ने पूरे देश में रोशन किया नाम, देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेई एडवांस 2026 में हासिल किया देश में 3रा पायदान। झुंझुनू जिले के गोठा गांव के जतिन चाहर ने 360 में से 319 अंक हासिल किए। जतिन की उपलब्धि से सीकर में खुशी की लहर, सीकर में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जतिन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुंबई में मेट्रो से यात्रा की, सिद्धिविनायक में T2 एयरपोर्ट तक मुंबई मेट्रो में सफर किया। चमोली में चल रहे नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन में अनुराग रावत ने पेश की मिसाल, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होने के बावजूद 1 घंटे 45 मिनट 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। पंजाब के संगरूर में मजदूर महिला सन्नो बनी नगर परिषद सदस्य। बंगाल के पूर्व बर्धमान में मेड के रूप में काम करने वाली कलिता मांझी मंत्री बनने के बाद अपने इलाके में विकास में जुटी। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। जल्द फाइनल हो सकती है भारत अमेरिका ट्रेड डील, दिल्ली में आज से 4 जून तक डील को अंतिम रूप देंगे दोनों देशों के वार्ताकार। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में गूंजा वंदे मातरम, सरकार के निर्देश के बाद प्रार्थना सभा में शुरू हुआ राष्ट्रीय गीत। कोलकाता के लेक टाउन से अर्जेंटीना के फुटबॉलर स्टार लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची मूर्ति हटाई गई। सुरक्षा का हवाला देते हुए पीडब्ल्यूडी ने क्रेन की मदद से मूर्ति को हटाया, दिसंबर 2024 में जब मेसी कोलकाता आए थे तब लगाई गई थी मूर्ति। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के ट्रायल को दी मंजूरी, अगर खराब रोशनी से खेल रुकता है तो कप्तानों की सहमति से लाल गेंद की जगह पिंक गेंद से होगा मैच। फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना ऊंचा लंबा कद हुआ रिलीज। देओल परिवार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं दो नए स्टार। बॉबी देओल ने किया खुलासा। बॉबी देओल ने बताया कि एक्टर बनना चाहते हैं मेरे बेटे आर्यमन और धर्म। फिर बदली आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की स्पाइडर फिल्म अल्फा की रिलीज डेट। फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट से बहस की खबर पर बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी। बोले, खबर देखकर मैं भी हैरान। इस हफ्ते रिलीज होने वाली ये पांच फिल्में साउथ सुपरस्टार रामचरण की पैडी और बॉबी देओल की बंदर, वरुण धवन नाम मृणाल ठाकुर की है जवानी तो इश्क का होना है भी रिलीज होगी। इस हफ्ते ओटीटी पर भी होगा एंटरटेनमेंट का धमाल। एक्शन क्राइम और फैमिली ड्रामा का मिलेगा फुल डोज। रिलीज होगी गुल्लक, धुरंधर और माँ बहन। तमिल सिनेमा के अभिनेता सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी कारुप्पु। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है यह फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है मोहनलाल की दृश्यम 3। रिलीज के 12 दिन बाद कमाई 100 करोड़ के पार। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज राग का ट्रेलर हुआ रिलीज। वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली बेंद्री और अभिनेता अली फजल की मुख्य भूमिका। खतरों के खिलाड़ी 15 का पहला BTS प्रोमो हुआ जारी। धमाकेदार एक्शन में दिखे रोहित शेट्टी। टेलीविजन पर जल्द लौटने वाला है स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी 15। चीन के आसमान में दिखा रेत का समंदर, दिन में ही छाया राज जैसा अंधेरा।

0: listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। चंद्रमा के मुख्य शुभ योग कौन से हैं और इनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 10:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। तो चंद्रमा से मुख्यतः 3 तरीके के योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। पहले जानते हैं अनफा योग क्या होता है। देखिए, जब चंद्रमा से पिछले भाव में कोई ग्रह हो, जिस खाने में चंद्रमा बैठे हैं उसके पिछले खाने में कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बनता है। लेकिन चंद्रमा से पिछले भाव में सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए, नहीं तो अनफा योग नहीं बनेगा, अनफा योग भंग हो जाएगा। अगर कुंडली में अनफा योग है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है। व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और अत्यंत व्यवहार कुशल होता है, लोगों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। अनफा योग अगर कुंडली में है तो ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति राजनीति में सफलता पा जाता है। अगर कुंडली में अनफा योग है तो आपको अपने भरसक लोगों की सहायता करनी चाहिए और अपने व्यवहार को मीठा और मधुर बनाए रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में यशस्वी होंगे और अनफा योग का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। तो चंद्रमा के पहले शुभ योग अनफा के बारे में जान लिया। दूसरा शुभ योग है सुनफा।
सुनफा योग क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं, जब उसके दूसरे खाने में उसके बाद वाले भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग होता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के दूसरे भाव में अगर सूर्य, राहु, केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर कुंडली में सुनफा योग बने, चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को शिक्षा में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोग जीवन में अत्यंत धनवान बनते हैं और अपनी वाणी से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों के मामले में देखा गया है कि छोटी जगह पर, साधारण जगह पर भी अगर जन्म लें तो जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। चंद्रमा के तीसरे राजयोग दुर्धरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो अनफा और सुनफा योग के बारे में आपने जान लिया, अब जान लेते हैं दुर्धरा योग के बारे में। कैसे बनता है? चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके दूसरे भाव में या उससे पिछले द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो दुर्धरा योग बनता है। लेकिन जो आगे बैठे हैं उसमें भी और जो पीछे बैठे हैं उसमें भी सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह चंद्रमा के दूसरे या बारहवें दोनों भाव में बैठा हो तो दुर्धरा योग बनता है। दुर्धरा योग होने पर व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है। सामान्यतः जिनकी कुंडलियों में दुर्धरा योग होता है, ऐसे लोगों को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है और व्यक्ति धर्मात्मा होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारा नाम और बहुत सारा यश पाते हैं। अगर राजनीति में जाएं या अगर धर्म कार्यों में जाएं तो दुनिया को दिशा दिखाते हैं। इनके बताए गए मार्ग पर लोग चलते हैं। देखिए, चंद्रमा से अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के मुख्य योग तो बनते हैं, लेकिन इसके अलावा चंद्रमा से और भी राजयोग बनते हैं। जैसे चंद्रमा बृहस्पति का गज केसरी योग, चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग, चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या कुंडली में लग्न से दशम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो अमला नामक राजयोग बनता है। तो बहुत सारे और भी राजयोग कुंडली में चंद्रमा से बनते हैं
और अगर चंद्र बृहस्पति का गजकेसरी योग है आपको जीवन में जबरदस्त उन्नति देगा। अगर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है जीवन में पर्याप्त धन देगा। अगर चंद्रमा का अमला योग है तो जीवन में नाम यश और कीर्ति आप प्राप्त करेंगे। तो आज हमने आपको बताया चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं रहती हों तो हर सोमवार को शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: देश के वायु सुरक्षा और मजबूत करने की तैयारी, वायुसेना को मिलेंगे नए राफेल विमान। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल विमानों का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से बने गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी ताकत। छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू हो गई गोंडोला राइड, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रोक दी गई थी सेवा। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन करने का फुल इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए जज लेंगे शपथ। जजों की नियुक्ति की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 5 जजों की शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या होगी 37। जल्द फाइनल हो सकती है भारत अमेरिका ट्रेड डील, दिल्ली में आज से 4 जून तक डील को अंतिम रूप देंगे दोनों देशों के वार्ताकार। पीयूष गोयल बोले 99% बातचीत पूरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए तो आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का विषय रहने वाला है बृहस्पति का राशि परिवर्तन। इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर किस तरह का असर होगा, क्या प्रभाव हम सबको देखने को मिलेंगे, उन प्रभावों की वजह से जीवन में कैसी हलचल होगी उसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे, उपायों के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। ये सब कुछ पंडित जी से जानेंगे, सवाल जवाब भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
5: अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाने के पहले थोड़ा सा धन 11 रुपए 21 रुपए 100 रुपए पूजा स्थान पर रख दें और जब यात्रा से सकुशल वापस लौट आएं तो उस धन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। अगर आप ऐसा हर यात्रा के पहले करें तो यात्रा में समस्याएं नहीं होंगी, यात्रा सुखद होगी और बेहतर होगी।
4: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 2 जून 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
5: दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र रात के 10:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय 3:00 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको शुरुआत में हमने जानकारी दी, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो बृहस्पति के इस परिवर्तन का ये पूरा मामला क्या है, क्या रीजंस है पंडित जी इसके?
5: जी देखिए, बृहस्पति का बदलाव या शनि का बदलाव दुनिया भर में सबसे बड़े बदलाव का, परिवर्तन का कारण बनता है। और आज हम बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा है, इसकी स्थिति क्या है? बृहस्पति देव अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे, अभी तक मिथुन राशि में मौजूद थे। अब बृहस्पति देव 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में बृहस्पति सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए बृहस्पति का ये परिवर्तन उनकी सबसे मजबूत स्थिति है। कर्क राशि में बृहस्पति 2 जून से लेकर के लगभग 31 अक्टूबर तक रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का फाइनेंशियल मार्केट पर और प्रकृति पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रकृति में आपदाएं आना, आग लगने जैसी घटना होना, भूकंप की स्थिति, इस तरह की तमाम प्राकृतिक घटनाएं होंगी। बाजार में उतार चढ़ाव शुरू हो जाएगा और बाजार की स्थितियां अलग तरीके से दिखाई देंगी, इसीलिए इस समय इन्वेस्टर्स को सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी।
4: और चलिए इस चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। राशिफल पर आते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
5: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं बृहस्पति का राशि परिवर्तन, तो इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर किस तरह का असर होगा, क्या प्रभाव ये डालेगा, वो जानते हैं पंडित जी से।
5: देखिए, बृहस्पति और शनि का परिवर्तन राशियों पर तो असर डालेगा ही, लेकिन इसका असर देश दुनिया पर भी बहुत जबरदस्त पड़ेगा। बृहस्पति की चाल 2 जून से बदल रही है। अब बृहस्पति अभी भी अतिचारी स्थिति में है, यानी बहुत तेज गति से अभी भी चल रहे हैं। दुनिया भर में अशांति के हालात और उपद्रव की स्थिति बनेगी, दुनिया भर में अशांति होगी और उपद्रव होगा। जलवायु के मामले में, क्लाइमेट के मामले में और मौसम के मामले में बड़े परिवर्तन होंगे। और चूंकि बृहस्पति वित्त का, कोष का, धन का अधिपति है, इसीलिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव भी होंगे। जो फाइनेंशियल मार्केट है, आर्थिक बाजार है, वहां पर बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, वहां पर बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है। महंगाई एकदम से काफी ज्यादा बढ़ सकती है और लोगों के जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। बृहस्पति धर्म के स्वामी हैं, इसीलिए धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे और इनको लेकर के बेवजह का विवाद होगा, बेवजह की समस्या होगी, झगड़े झंझट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, बाजार में उतार चढ़ाव होंगे और धर्म के मामलों को लेकर के बेवजह के विवाद और बेवजह के उपद्रव बढ़ सकते हैं।
4: और चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
5: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
4: और चलिए उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आपको इंतजार रहता है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी दिक्कत है, उसका आप समाधान चाहते हैं तो इस शो में अपने तमाम सवाल आप ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
5: जी, आज का पहला प्रश्न दीपिका शर्मा ने हमें लिखा है और दीपिका हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1994। जन्म का समय रात में 10:40। जन्म का स्थान है फर्रुखाबाद। मेल लिखती हैं आगरा से। दीपिका कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने की संभावना साल 2027 के आरंभिक समय में बनती है। साल 2027 के शुरुआत में विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विवाह का निर्णय जब भी लिया जाए, कुंडली एक बार मिला ली जाए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6-8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिएगा। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का और पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन सा है दूसरा प्रश्न और कौन से दर्शक ने अपनी समस्या पंडित जी तक पहुंचाई है।
5: जी, अगला प्रश्न अरुण श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और अरुण हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1982। शाम के 6:45। जन्म स्थान है भोपाल। अरुण कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। अरुण, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल व्यापार में जा सकते हैं फरवरी 2027 के बाद। अगर आप व्यापार की तरफ जाएं तो आपको सफलता मिलने की संभावना बेहतर है, लेकिन व्यापार अकेले करिएगा, पार्टनरशिप में व्यापार में मत जाइएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं और वो ये है पंडित जी कि बृहस्पति किस राशि पर कैसा असर डालेंगे, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए।
5: तो देव गुरु बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे और बड़ी मजबूत स्थिति में विद्यमान रहेंगे। तो अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, अगर मेष राशि की बात करें तो बेवजह की सेहत की समस्या हो सकती है, बेवजह का अपयश आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य की समस्या और अपयश से आपको बचाव करना चाहिए। हालांकि इस समय आपको प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा, स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी और करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य और करियर दोनों में परिवर्तन होगा, लेकिन इस समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। मिथुन राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है, पारिवारिक सुख दिखाई दे रहा है और मान सम्मान यश की ख्याति की प्राप्ति होगी आपको, आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि, आर्थिक स्थिरता रहेगी, करियर में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर अपने ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। सिंह राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, पारिवारिक मामले बिगड़ सकते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है और इस समय संपत्ति का फायदा हो सकता है आपको। हालांकि फैमिली लाइफ को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। कन्या राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से इस समय संतान की उन्नति और आर्थिक सुधार होंगे, धन का लाभ होगा, आपके तमाम रुके हुए काम अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
4: और चलिए राशिफल के ऊपर वापस आते हैं और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की, जानते हैं पंडित जी से इनके भाग्य फल में आज का लिखा है।
5: तुला राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि पहली 6 राशियों के लिए बृहस्पति का असर किस तरह का रहेगा, अब बाकी बची 6 राशियों पर बृहस्पति किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे वो जान लेते हैं।
5: तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। अब जो बाकी 6 राशियां हैं, तुला राशि से लेकर मीन राशि तक, इनके ऊपर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है, धन का लाभ होता दिख रहा है,

0: राशि वालों को हो सकता है। वृश्चिक राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपके पारिवारिक मामले लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। धनु राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन की वजह से आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा, करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और इस समय परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। परिवार से दूर जाना ही पड़ेगा, उसको स्वीकार कर लेना ठीक है। मकर राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी हल होती चली जाएंगी, ऑफिस की मुश्किलें भी आपकी अब दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, सेहत को लेकर के 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखना होगा। पेट की, लिवर की, गैस्ट्रिक समस्याएं आपको परेशान ना करें। मीन राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके करियर में बड़ा परिवर्तन करा सकता है। जो परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा और इस समय आपका धार्मिक झुकाव भी बढ़ सकता है।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अंतिम 3 राशियों का वक्त भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों के। जानते हैं पंडित जी से इनके भाग्यफल में क्या लिखा है।
0: मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए दिख रही है, करियर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और शलिए से के साथ वक्त आ गया है आपका अगला प्रश्न लेने का। पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का अगला सवाल पंडित जी तक आया है।
0: जी अगला प्रश्न सारिका ने हमें लिखा है और सारिका हमें जयपुर से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 जनवरी 2008, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म स्थान है जयपुर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसको किस तरह के करियर में जाना चाहिए और आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए सारिका जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, टेक्निकल फील्ड में जाएं, तो उसमें सफलता पाने की संभावना ज्यादा है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे किसी क्षेत्र में अगर जाएं तो सफलता इनको ज्यादा मिलेगी। आपके बेटे की कुंडली में थोड़ा भटकाव भी दिखाई दे रहा है, जिससे आपके बेटे की रक्षा करनी चाहिए। आप ऐसा करें, एक मोती बनवा लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपने बेटे के गले में पहना दें और अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का वक्त हो चला है। और इससे पहले कि आपका अंतिम प्रश्न मैं पंडित जी से जानूं, एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, तो आप ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करते हैं, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी। आज का अंतिम प्रश्न अंकिता ने हमें लिखा है और अंकिता हमें मेल लिखती हैं पटना बिहार से। अंकिता की जन्म की तारीख है 20 जून 1994, जन्म का समय सुबह के 10:45, जन्म का स्थान है बाढ़, पटना बिहार। ये कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के लिए लगी हुई हूं, क्या मुझे एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी। अंकिता, आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की संभावना कमजोर है, लेकिन आप शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी पा सकती हैं और उसकी संभावना अगले 6 महीने में बन रही है, तो शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी का प्रयत्न करें। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। आपका करियर बेहतर हो, जीवन में सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके धारण करें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह के समय 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी सवाल ये तो आपने बता दिया कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या असर होगा, लेकिन हमारे लिए अगर हमें सावधानी बरतनी है तो किन बातों का हमें इस वक्त में ख्याल रखना होगा और कितने वक्त के लिए रखना होगा?
0: जी देखिए, बृहस्पति देव जो हैं वो सात्विकता के, शुभता के, पवित्रता के प्लेनेट माने जाते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति अपनी सबसे मजबूत स्थिति में रहेंगे, महत्वपूर्ण रूप से ताकतवर रहेंगे, पवित्रता पैदा करेंगे। तो सामान्यतः मैं लोगों से कहूंगा कि एक तो इस समय में आजकल अब नॉनवेज यानी मांसाहार और अल्कोहल, मदिरा और मांस का प्रयोग बंद रखें तो अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर आपको इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर्टी में, मार्केट में, तो बड़ी सावधानी से, बड़े सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि इस समय में बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। जरा सा भी मामला गड़बड़ हुआ तो पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही या जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, ऐसे लोगों के लिए ये 2 जून से 31 अक्टूबर का समय बड़ा ही शुभ फलदायी है। इस समय में अगर संतान के लिए प्रयास किया जाए या इस समय में अगर विवाह के लिए प्रयास किया जाए तो इसके परिणाम बहुत शुभ रहेंगे।
1: और चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 2 जून को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 2 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन के मामले उत्तम बने रहेंगे, करियर में स्थिरता आती जाएगी, लेकिन अभी विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: लोगों का ऐसा कहना और मानना है कि मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसी बात है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि मंगलवार को अगर आप कर्ज लें

0: और चलिए शो के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो पंडित जी आपको बताएंगे आज की गुड लक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन में बेहतरी लाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है धनु। जीवन की बेहतरी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सूर्य देव की उपासना करें और रोज सवेरे सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अंत की तरफ बढ़ते हुए जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम बात करते हैं महा उपाय के बारे में। तो आज का खास उपाय क्या है वो भी पंडित जी से ही जान लेते हैं।
1: जी, हमने आज बात की है बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अगर बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल 31 अक्टूबर तक सूर्य देव को अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। नियमित रूप से किसी धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करें, मंदिर जाएं जब समय मिले और वहां जाकर के प्रार्थना करें और सात्विकता और पवित्रता बनाए रखें।
0: तो पंडित जी, इस महा उपाय को बताने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दे जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: चंद्रमा का कौन सा राजयोग बहुत सारी यात्राएं करवाता है? चंद्रमा का कौन सा राजयोग व्यवहार कुशल बना देता है? और चंद्रमा का कौन सा राजयोग जीवन के संघर्ष कम कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के विशेष शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
0: तो आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की, तो गुड न्यूज टुडे भी तभी से आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत हामटा वैली का दीदार कराते हैं, जहां के सीनिक ब्यूटी, ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियां आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हामटा वैली के ही एक दर्शक ने हमें भेजा है।

0: नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ हमटा का लोकल निवासी हूँ। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा हो यहाँ पे। तो ये जो हमटा वैली है, ये मात्र 40 मिनट का रास्ता है मनाली से, और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट प्लेसेस में ये आता है। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, बहुत सुंदर मीडोज हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है, और छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ये सेतन विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, होम स्टेज हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, रूम्स हैं, डबल शेयरिंग रूम्स, और बंक बेड्स भी हैं यहाँ पे। ये विलेज कम्युनिटी हॉल है, और एक छोटा सा मॉनेस्ट्री भी है इस गांव में, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, क्योंकि ये पूरा गांव एक बुद्धिस्ट जो पहले फार्मिंग करते थे, और अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो कुछ लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं और साथ में ये टूरिज्म वाला काम भी देख रहे हैं। ये विलेज सेतन है, एक छोटा सा गांव है जो हमटा वैली का लास्ट गांव है। इसके बाद आपका हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे, और यहाँ पे लोग अपना खेतों में देखे यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई हैं। यहाँ पे गोभी, धनिया, ब्रोकली, बहुत सारे एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे जो सब्जी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है वो हमेशा। और ये हमटा वैली में जब आप लोग विंटर टाइम में आएंगे तो आप लोगों को पूरा एरिया ये बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे आपको इग्लू स्टे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इग्लूज है वो इसी वैली में ही बनते हैं, और फर्स्ट टाइम इग्लू स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हमटा वैली में लाया गया था। और ये वाला एरिया है जो इग्लू के लिए यूज होता है विंटर में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी, ग्रीन पैच, जो मीडो है, ओपन मीडो, ये टॉप का, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, और जो भृगु लेक है वो उसके टॉप पे है। और ये पूरा वैली जो ऐसे राइट साइड को गया, ये हमटा वैली है जो बहुत ही फेमस ट्रेकिंग रूट है, और हमटा पास क्रॉस करने के बाद आप दूसरी तरफ स्पीति की तरफ को जाते हैं। तो अभी मई जून से लेकर आपका सेप्टेम्बर मिड अक्टूबर तक यहाँ पे जो हमटा पास ट्रैक है वो चलता है, और आप कैंपिंग भी कर सकते हो फॉरेस्ट में, बहुत अच्छे रिवर साइड में या मीडोज में कहीं भी आप टेंट लगा दो, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग हैं पांडुरोपा में, ये सेतन से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव लोग एग्जाइल में थे वो लोग हिमालय में छुपे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पे, तो अपने उस एग्जाइल के टाइम में कुछ टाइम उन्होंने यहाँ भी बिताया है। तो इस जगह में ऐसा माना जाता है कि वो धान की रोपाई करते थे, जो सीड से पौधा तैयार करते हैं वो यहाँ पे तैयार करते थे, और उसकी जो बिजाई है खेत में वो भृगु लेक के पास में वहाँ भी एक पांडुरोपा करके जगह है, वो वहाँ पे उसके रोपाई करते थे। तो अभी हम लोग हैं हमटा के एक मशहूर ढाबा कालजंग ढाबा में, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अखरोट के सिड्डू बनते हैं। यस, तो ये है सिड्डू, और ये यहीं पे बना हुआ, और इसके अंदर अखरोट का पेस्ट डाला हुआ, और ये चटनी टमाटर, पुदीना, मिर्च, पूरी तरह से ये नेचुरली ब्लेस्ड एक एरिया है।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, आप कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की होड़ में जुटी हुई हैं जो आने वाले समय में घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ काम करते हुए नजर आ सकती हैं। यानी वो भविष्य जिसकी कल्पना अब तक फिल्मों में होती थी अब धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रही है।

0: जरा सोचिए, अगर आपके घर में एक ऐसा रोबोट हो जो सुबह की चाय बनाने से लेकर घर की सफाई, सामान लाने और आपकी रोजमर्रा के कामों तक सब कुछ संभाल ले। ये सुनने में भले साइंस फिक्शन जैसा लग रहा हो, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां पर्सनल रोबोट्स को हकीकत बनाने की दौड़ में जुट गई है। पर्सनल रोबोट्स की रेस में फिलहाल तो ओपन एआई आगे निकलती दिख रही है। कंपनी ने अपने रोबोटिक्स डिवीजन का विस्तार करने का ऐलान किया है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि कंपनी ऐसे इंजीनियर्स की तलाश कर रही है जो इंसानों की मदद करने वाले रोबोट विकसित कर सके। ऑल्टमैन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि एआई को वास्तविक दुनिया में भी अब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऑल्टमैन का इशारा साफ है कि भविष्य में एआई सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके आसपास चलती फिरती मशीनों के रूप में भी नजर आने वाला है। फिलहाल एआई पर्सनल रोबोट्स की दुनिया आबाद होने जा रही है। ओपन एआई की इस नई पहल की जिम्मेदारी भारतीय मूल के इंजीनियर आदित्य रमेश को दी गई है। आदित्य पहले ओपन एआई के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं और अब उनकी टीम ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम कर रही है जो रोबोट्स को इंसान की तरह दुनिया को समझने और उसमें काम करने में सक्षम बनाए। सैम ऑल्टमैन ने रोबोटिक्स को लेकर कंपनी के दो बड़े टारगेट सेट किए हैं। पहला, ऐसे रोबोट तैयार करना जो फैक्ट्री में मदद कर सके और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा रोल निभा सके। वहीं ऑल्टमैन का दूसरा रोड मैप जरा लंबा है, जिसमें वो ऐसे रोबोट्स बनाने जा रहे हैं जो लोगों के निजी काम कर सके, उनका ख्याल रख सके और जरूरत पड़ने पर हर काम को संभाल भी सके। हालांकि ओपन एआई इस दौड़ में अकेली नहीं है। एलन मस्क की टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट लगातार चर्चा में है। मस्क पहले भी कह चुके हैं कि भविष्य में रोबोट ज्यादातर नौकरियां संभाल सकते हैं। वहीं चीन की कई कंपनियां भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यूनिट्री जैसे रोबोट्स दौड़ लगाने से लेकर फैशन शो में रैंप वॉक तक कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: चंद्रमा का कौन सा राजयोग बहुत सारी यात्राएं करवाता है? चंद्रमा का कौन सा राजयोग व्यवहार कुशल बना देता है? और चंद्रमा का कौन सा राजयोग जीवन के संघर्ष कम कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के विशेष शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: यू शुडन्ट हैव टू चूज बिटवीन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। विद स्पेक्ट्रम फाइबर पावर्ड इंटरनेट यू गेट ऑल थ्री फॉर जस्ट $40 अ मंथ। नो कॉन्ट्रैक्ट्स, नो कमिटमेंट, जस्ट फास्ट एंड रिलायबल फाइबर पावर्ड इंटरनेट यू कैन काउंट ऑन। Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
5: भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: ज्येष्ठ माह का आज पांचवा बड़ा मंगल, सुबह से मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें, अयोध्या में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सुख शांति समृद्धि की मांगी कामना।
3: देश के वायु सुरक्षा और मजबूत करने की तैयारी, वायुसेना को मिलेंगे नए राफेल विमान, भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल विमानों का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट।
2: सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से बने गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी ताकत।
3: छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू की गई गंडोला राइड, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रोकी गई थी ये सेवा।
2: सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए जज लेंगे शपथ, जजों की नियुक्ति की सिफारिश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 5 जजों की शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या हो जाएगी 37।
3: जल्द फाइनल हो सकती है भारत अमेरिका ट्रेड डील, दिल्ली में आज से 4 जून तक डील को अंतिम रूप देंगे दोनों देशों के वार्ताकार, पीयूष गोयल बोले 99% बातचीत पूरी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
3: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: तो शुभ समाचार की शुरुआत बड़ा मंगल के साथ करेंगे। देखिए आज मंगलवार यानी महावीर का वार है, आज पांचवा बड़ा मंगल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी के अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। कैसी है रौनक आगे आपको दिखाएंगे।
3: तो अधिक मास में पूजा पाठ और दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है, खासकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, क्योंकि अधिक मास को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। ऐसे में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां भी आपको हम लिए चलेंगे।
2: बिल्कुल गीतिका, देखिए साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सत्यनारायण और हनुमत कथा का समापन हो गया है। कथा के आखिरी दिन उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, लेकिन बद्रीनाथ के बाद अब बाबा कहां पहुंचे बताएंगे आपको आगे।
3: तो मौसम के बदले मिजाज से देश में चिलचिलाती गर्मी से राहत है, इस बीच मॉनसून भी आने वाला है। वैसे राहत की बात यह भी है कि 2 दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुशनुमा बना रहेगा। मौसम से जुड़ी और भी जानकारी आगे आपको देंगे।
2: जी हां, देखिए बता दें कि वैभव सूर्यवंशी की भी आज हम बात करेंगे, जिन पर आईपीएल में स्टडी होगी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी को केस स्टडी में शामिल करने जा रहा है, क्या है पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। और अब सबसे पहले देख लेते हैं 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
3: भारत ने भारतीय वायुसेना की खातिर 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील के लिए फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया है। ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय की एग्जीबिशन विंग द्वारा इस डील के लिए फ्रांसीसी सरकारी अधिकारियों को जारी किया गया था। इस डील के तहत 94 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही फ्रांसीसी निर्माता दसाल एविएशन द्वारा भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में किया जाएगा।
2: भारतीय सेना ने बालू फोर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले का ऑर्डर दे दिया है। कर्नाटक के बेलगाम में रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित किया जाएगा इसको। भारतीय थल सेना ने बालू फोर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30,000 यूनिट 152 mm आर्टिलरी गोलों की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आदेश दिया।
3: भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, होवरेट कंपनी ने राजस्थान के जोधपुर में अपनी स्वदेशी टेक्निकल लाइटिंग म्यूनिशन दिवास्त्र MK1 का सफल ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस प्रदर्शन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रोन को वाहन माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह सफलता भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीकी मजबूती को दिखाती है।
2: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम में पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंचने वालों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 10.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए।
3: बाबा विश्वनाथ का दरबार अब भव्य नए कॉरिडोर के रूप में तैयार हुआ तो वाराणसी में देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ। यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिर लगाई और काशी का भ्रमण किया। बीते 4 साल में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिर लगाई, जिसने काशी को 6,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार दिया। बड़ी बात यह है कि दरबार में आने वाले भक्तों में 40% युवाओं की संख्या है।
2: श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन के लिए रेलवे ने शानदार पहल की। IRCTC ने 6 दिनों का टूर पैकेज लॉन्च किया। श्रद्धालु 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन कर सकेंगे। लखनऊ से चलने वाली स्पेशल ट्रेन श्रद्धालु नासिक, शिरडी और छत्रपति संभाजीनगर का भ्रमण भी कर सकेंगे, साथ ही साथ शनि शिकनापुर में भी दर्शन कर सकेंगे।
3: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पलायन की मार झेल चुके मांदरा गांव में रौनक लौटी है, जहां पूरे इलाके में धार्मिक आयोजनों से गांव गुलजार हो गया है। जून माह में आयोजित होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। वर्षों पहले रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में गांव छोड़ चुके लोग अपने पैतृक गांव की ओर लौट रहे हैं, जिससे लंबे समय बाद बिछड़े परिजनों और ग्रामीणों का मिलन हो रहा है।
2: ICC ने टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के ट्रायल को अब अपनी मंजूरी दे दी है। अहमदाबाद में बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक टेस्ट मैच में अगर खराब रोशनी से खेल रुकता है तो दोनों ही कप्तानों की सहमति से लाल की जगह पिंक गेंद का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुलाबी गेंद फ्लड लाइट्स में देखी जा सकती है, जबकि लाल गेंद से फ्लड लाइट्स में खेल नहीं हो पाता।
3: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना उनका ऊंचा लंबा कद रिलीज कर दिया गया है, जहां गाने में अक्षय कुमार के साथ दिशा पाटनी नजर आ रही है। नए वर्जन वाले गाने में अक्षय और दिशा शानदार डांस मूव करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये फिल्म अब 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मंगल ही मंगल के साथ करेंगे। देखिए आज मंगलवार यानी महावीर का वार है। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में मंगल बहुत शुभ और अद्भुत माना जाता है। और इस साल तो पुरुषोत्तम मास है, ऐसे में अगर आप बता दें आपको बड़ा मंगल और फलदायी ज्यादा हो जाता है। आज पांचवा बड़ा मंगल है। मान्यता यह है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी की अपने दूत यानी हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज बड़े मंगल पर मंदिर बार मंगलवार को अगर हम देखें तो श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी तरीके से अगर हम देखें दिल्ली से लेकर लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां गूंज रही हैं। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।

0: आज है ज्येष्ठ महीने का पांचवा कल्याणकारी बड़ा मंगल। बड़ा मंगल के स्वामी हैं वीर हनुमान। बुढ़वा मंगल पर बनेंगे सारे बिगड़े काम। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार विशेष हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी और इसी दिन बजरंगबली को अमरता का आशीर्वाद भी मिला था। ऐसे में इस दिन बजरंगबली की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन संकटमोचन हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस बार पांचवें बड़े मंगल पर भक्तों के लिए पूजा के पांच शुभ मुहूर्त बने हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:43 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:51 से 12:44 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:11 से 7:32 तक। अमृतकाल शाम 7:46 से रात 9:18 तक। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा, व्रत और सुंदर कांड का पाठ करने से भय, रोग और सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा के अलग अलग विधान हैं, लेकिन अगर आप घर पर बड़ा मंगल मनाना चाहते हैं तो ये सरल विधि अपना सकते हैं। स्नान करके पूजा स्थान साफ करें, भगवान हनुमान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, परंपरानुसार सिंदूर, फूल, प्रसाद या फल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शक्ति, संरक्षण, साहस और सही कर्म की प्रार्थना करें, किसी व्यक्ति को भोजन, पानी और सहायता देकर सेवा करें। पांचवा बड़ा मंगल पुरुषोत्तम मास में पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम यानी ज्येष्ठ मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए पांचवें बड़े मंगल को बहुत ही शुभ और दुर्लभ बताया जा रहा है। वैसे तो पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इसमें हनुमान जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी राम भक्त हैं, जो श्रीहरि का अवतार हैं। इसलिए इस मास में उनकी आराधना से श्रीहरि और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन की बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो अयोध्या का हनुमान घड़ी वो धाम है जहां हनुमान जी स्वयं विराजमान है। बड़ा मंगल पर भक्तों की भीड़ यहां उमड़ी हुई है। आज के दिन कई भक्तों की योजना होती है कि राम भक्त हनुमान के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किए जाएं। ऐसे में हनुमान घड़ी में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ पहुंची हुई है। आप देखिए सुबह सुबह भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच चुके हैं। अयोध्या में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, और ये तस्वीर है अयोध्या के हनुमान घड़ी मंदिर की, जहां आज ज्येष्ठ मास के पांचवें मंगलवार के दिन मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
2: आज ज्येष्ठ मास के पंचम मंगलवार को, बड़े मंगलवार को, आज लाखों की भीड़ यहां पर उपस्थित है हनुमान गढ़ी पर। लोग यहां पर दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं हनुमान जी का।
3: आज बड़े पांचवा बड़ा मंगलवार है और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है, और हम जो है सभी साथियों, मित्रों, शुभचिंतकों के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ, मस्त, प्रसन्न रखें।
4: देखिए बजरंग बली की श्री राम के प्रति भक्ति अतुलनीय है। शक्ति, ज्ञान, पराक्रम और विनम्रता के अद्भुत संगम में हनुमान जी ने कभी अपने यश की कामना नहीं की। उनका एकमात्र उद्देश्य श्री राम की प्रसन्नता और सेवा रही, इसलिए वे भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के सर्वोच्च आदर्श माने जाते हैं। बड़े मंगल के पवित्र और पावन दिन पर राम मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया गया। तस्वीरें देखिए, रामलला के साथ साथ राम दरबार में भी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भव्य आरती संपन्न की गई। जयकारों और भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय उठा। श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की, आपको किस प्रकार से विशेष श्रृंगार भी उनका किया गया।
1: तो ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल जो है वो चल रहा है और आज पांचवा बड़ा मंगलवार है। तमाम भक्त और श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही मंदिर का रुख कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मयंक हमसे जुड़ रहे हैं अयोध्या से और हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं पंकज। तो सबसे पहले अयोध्या का रुख करना चाहेंगे, मयंक शुक्ला के पास चलते हैं। आज ज्येष्ठ मास का पांचवा बड़ा मंगल, सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में देखी जा रही है, किस तरह का नजारा है जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए मयंक।
5: देखिए आज अद्भुत नजारा है क्योंकि आज इतनी ज्यादा भीड़ है और इतनी ज्यादा गर्मी है। तो आप देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी का फ्रंट पे है और यहाँ से जो भीड़ है वो आपको दिख भी रही होगी, कितनी ऊपर तक जो भीड़ है और पूरी पीछे तक अगर हम आपको दिखाएंगे तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर की लाइन है। क्योंकि जैसे जैसे मंगलवार ज्येष्ठ माह का आज पांचवा मंगल है तो पहले दिन भी ऐसी भीड़ थी पर दूसरे, लेकिन आज जो आज का मंगल आज मैंने देखा कि आज पूरी अयोध्या जो है पूरी भरी हुई है। क्योंकि राम मंदिर हो हनुमानगढ़ी हो तो सड़कों पर आप देख रहे हो राम पथ से भक्ति पथ से लेकर हर एक पथ पर जो है सिर्फ दर्शनार्थी नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लेकिन आज विकराल गर्मी लोगों ने देखा है, लेकिन गर्मी आज पीछे हो चुकी है और आस्था आज आगे हो चुकी है। तो जिस प्रकार से लोग यहाँ पे खड़े हैं काफी देर तक इंतजार कर रहे हैं तो जो भीड़ है वो आपको दिख रही है, पूरा भक्ति पथ जो है पूरा ये पूरा हनुमानगढ़ी की जो लाइन है वो पूरी भरी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज विशेष दिन भी है और इस दिन को जो है हनुमान जी और राम जी का मिलन भी हुआ था तो उसको लेकर काफी ज्यादा जो भीड़ है वो नजर आ रही है। सुबह से ही भक्त जो है सुबह 4 बजे से मंगला आरती हुई है, आज हनुमान जी का भोग लगा है विशेष, तो उसके बाद से जो भक्त है वो यहाँ पे लगातार नजर आ रहे हैं। तो भीड़ों का जो सैलाब है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए आज कितनी भीड़ है कितनी गर्मी है फिर भी लोग रुके हैं इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन जो लाइन है वो भी खड़ी है। लेकिन जो भक्तों के अंदर जो आस्था का सैलाब वो देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा गर्मियों के कारण भी लोग यहाँ पे खड़े और डटे नजर आ रहे हैं। तो जो सैलाब है वो पूरी अयोध्या जो है भरी हुई नजर आ रही, जैसे एक मेला सा लग गया हो, एक काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं दर्शन समाज कर रहे हैं। तो जो आज अद्भुत संगम है
4: बिल्कुल मयंक और शेड भी हमको नजर आ रहे हैं श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार प्रयागराज से। पंकज पहले आप तस्वीरें दिखा दीजिए किस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं क्योंकि हनुमान जी तो जीवंत हैं, कहते हैं कि अपरंपार होती है उनकी महिमा।
6: प्रयागराज हनुमान मंदिर में सुबह से हुई है और सुबह मंगला आरती के बाद से भक्तों का जो ताता है वो रुका नहीं है। आज ज्येष्ठ माह का पांचवा बड़ा मंगल है और पांचवे बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं। बजरंग बली यहाँ पर लेटी हुई अवस्था में श्रद्धालु को दर्शन देते हैं और कहा जाता है कि बजरंग बली पीड़ाहारी है दुखहरता है और यहाँ पर बजरंग बली के जब दर्शन हो जाते हैं तो यहाँ जो श्रद्धालु है पान चढ़ा रहे हैं और आम चढ़ा रहे हैं क्योंकि गर्मी में आम यहाँ पर बजरंग बली को चढ़ाया जाता है और यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आप पीछे हमारे देख सकते हैं। तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है और मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों के लिए स्टैंड लगाए हुए हैं, पंखे लगाए हुए हैं, हालांकि गर्मी यहाँ बहुत है तो उसको लेकर के भी श्रद्धालुओं की व्यवस्था भी यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने की है। लगातार भंडारे चलाए जा रहे हैं, मीठा जल पिलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो और उनकी पूरी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की गई है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप आए हैं और किस तरह से यहाँ पर बजरंगबली दर्शन देते हैं?
7: सर्वप्रथम तो जय श्री राम और बड़े हनुमान जी का जगड़ छोड़कर स्पष्ट प्रणाम और प्रभु जी का यहाँ पे बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। यहाँ लगभग हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दर्शन होता है और आज तो पांचवा बड़ा मंगल है और रोज ही बड़ा मंगल होता है यहाँ पे और क्या बोलते हैं बाकी प्रभु यहाँ पे स्वयं विराजमान है, अलौकिक सत्य और भीड़ तो अपार भीड़ है बाहर तक बिल्कुल। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि मंदिर रोजगार नहीं देता है, इस बात में मैं जरूर बोलना चाहूंगा।
6: अच्छा ये बताइए कोई श्लोक बजरंगबली के ऊपर आप सुनाइए।
7: सर्वप्रथम तो गजाननम भूतग्राही सेप्तम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद बंदनम। सर्वप्रथम गणेश जी को याद करते हुए प्रभु के लिए श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुर चुरार वरण रघुबर विमल जय जो जाए फलचारो।
6: बिल्कुल यहाँ पर जो भक्त हैं सुबह से यहाँ आ रहे हैं और बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि बजरंगबली यहाँ पर सबकी पीड़ा हरते हैं और लेटी हुई अवस्था में यहाँ पर बजरंगबली दर्शन देते हैं। तो एक जो प्रतिमा है वो अलग का स्वरूप यहाँ पर दिखता है और सुबह से ही जो है यहाँ पर आरती की गई, पूजन किया गया और भव्य श्रृंगार यहाँ पर बजरंगबली का किया गया है। तो यहाँ पर जो मंदिर के बड़े महंत हैं बलिहू गिरी, वो यहाँ आकर के उन्होंने दूध से अभिषेक किया है और तमाम तरीके से यहाँ पर श्रृंगार करके बजरंगबली की प्रतिमा को सजाया गया है। तो सुबह से ही जो भक्त है यहाँ दर्शनों के लिए आ रहे हैं और पीछे की तरफ लंबी लाइन है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास ये पीछे की तरफ लाइन है।
1: जी पंकज, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां भक्त सुबह से ही बजरंगबली के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और एक बार फिर से अयोध्या आपको लेकर चलते हैं। मयंक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैसा कि मयंक ने बताया, भीषण गर्मी है और पारा जो है वो बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम कहेंगे कि गर्मी पर आस्था कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और भक्तों का हुजूम आप देख ही रहे हैं। किस तरह से भक्त जो है वो सुबह से ही मंदिर पहुंचे हैं बजरंगबली के दर्शन के लिए और देखिए कितनी ज्यादा संख्या में भक्त जो है वो अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे हैं बजरंगबली के दर्शन के लिए। तो मयंक, जरा आप ही बताइए कि बड़ा मंगल पे ना जगह जगह भंडारे का भी नियोजन किया जाता है ताकि कोई भी भूखा या प्यासा न रहे, और क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है तो मीठा पानी पिलाया जाता है। आप इस वक्त मंदिर में है लेकिन क्या आसपास भी भंडारे के आयोजन किए गए हैं ताकि भक्तों को जो है वो प्रसाद मिल सके? जी मयंक
5: जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है ऊपर आप जो है टेंट जी बिल्कुल वॉइस आपके आ रहा हूँ। यहाँ पे जो है जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया है, साथ में पानी की व्यवस्था की गई, लेकिन जो ऊपर आप देख रहे हैं जो धूप से बचाव के जो कार्य हैं वो यहाँ नगर निगम द्वारा किए गए हैं और पूरी रो पे जो है जहाँ पे भीड़ है आप दिखेंगे वहां पर जो है छत्र छाया दी गई है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा होती है। हर मंगलवार दूर दराज से लोग आते हैं तो गर्मी में ज्यादा, उसको लेकर सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे की गई है प्रशासन द्वारा। तो भीड़ इतनी ज्यादा आज तो नहीं सकते, क्योंकि जितनी रो है अलग अलग बाट रखी गई है रो, तो 3 से 4 रो अगर हम देखेंगे 3 से 4 रो जो है पूरी श्रद्धालुओं से भरी हुई है। और हम कुछ श्रद्धालु से अगर बात करें, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से, काशी से, अयोध्या? काफी देर से आप खड़े हैं।
4: बिल्कुल, देखिए मयंक हमें तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, कहते हैं कि देखिए द्वापर युग में हनुमान जी और प्रभु श्री राम की मुलाकात हुई थी, किस प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं श्रद्धालु तमाम?
6: बिल्कुल, भगवान श्री राम के प्रिय हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, तो यहाँ पर बजरंग बली की जो प्रतिमा है वो लेटी अवस्था में है और यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं तो बजरंगबली से अपनी पूरी पीड़ा कहते हैं और बजरंगबली इनकी पीड़ा भी हरते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं और लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। अब यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ है वो किया जा रहा है, तमाम श्रद्धालु आकर अपनी जो पीड़ा है व्यथा है यहाँ है बजरंगबली को पान चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, क्योंकि तुलसी बजरंगबली को बेहद प्रिय है। तो यहाँ पर तुलसी का भी भोग लगाया जाता है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर बजरंगबली का दर्शन कर रहे हैं, अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना।
1: बिल्कुल पंकज, तस्वीरें हम देख ही रहे हैं और किस तरह से भक्त जो हैं वो हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि भगवान को बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। और धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो आज ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, आज का दिन 5वां बड़ा मंगल है। अयोध्या में सुबह से रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी हुई हैं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं।
8: श्री राम की जन्मभूमि का दर्शन करने आया हूँ। सबसे पहले यहाँ के रक्षक जो हनुमान जी है हनुमानगढ़ी, वहाँ पर हनुमान जी को मत्था टेका, प्रणाम किया। उसके बाद राम द्वारे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पैसारे, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबसे पहले हनुमान जी से मिलिए, फिर जो है राम जी से मिलिए। तुम्हारे भजन राम को पावे, हनुमान जी का भजन करोगे तो राम जी से मिला देंगे। अब राम जी के पास हम आए हैं, उनसे सबसे पहले हमें जीवन में धैर्य धारण करने का संबल प्राप्त होता है। माने कोई भी समस्या हो धैर्य पूर्वक उसका निदान ढूंढो। वेद स्मृत सदाचार स्वस्थ परमात्मन इत चतुष्टयम नित्यम साक्षात धर्म स्निणे। मैं यहाँ भगवान श्री राम के जन्मभूमि का श्री विग्रह का जो दर्शन करने आया हूँ,
9: उसका लक्ष्य यही है भगवान हमें शक्ति सामर्थ्य दें, साधना में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनको निराकरण करने का हमें सामर्थ्य।
4: और आपको बता दें अधिक मास में पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, खासकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का, क्योंकि देखिए अधिक मास को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम समय माना गया है। ऐसे में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
0: वृंदावन में उमड़ा है आस्था का सैलाब, कान्हा के भक्तों से गलियां गुलजार हैं। हर किसी को कान्हा के दर तक पहुंचने की जल्दबाजी है। मुरली मनोहर की एक झलक पाने की बेसब्री है, मानो अधिक मास में बांके बिहारी के दर्शन की आस कहीं अधूरी ना रह जाए। तस्वीरें वृंदावन की है, देखिए क्या नजारा है। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग नजर आते हैं। श्रद्धालुओं की तादाद इतनी बढ़ गई है कि गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। श्रद्धालुओं की इस भीड़ की वजह है अधिक मास, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। असल में पुरुषोत्तम मास में श्रीहरि की पूजा का विशेष महत्व है। अधिक मास को भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में श्रीहरि की पूजा करने, व्रत रखने और दान पुण्य करने से सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। इस माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए शुभ कर्म और दान कई गुना फल प्रदान करते हैं तथा जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान की कृपा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वृंदावन की गलियों में उमड़ी ये भीड़ जहां एक ओर कान्हा में उनकी अटूट आस्था की झलक पेश कर रही है, वहीं प्रशासन के लिए चुनौती थी। आराध्य से मिलन के आस लिए वृंदावन आए श्रद्धालुओं को बांके बिहारी की एक झलक मिल जाए, इस व्यवस्था में प्रशासन भी जुटा है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात मानसून की करेंगे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: चंद्रमा का कौन सा राजयोग बहुत सारी यात्राएं करवाता है? चंद्रमा का कौन सा राजयोग व्यवहार कुशल बना देता है? और चंद्रमा का कौन सा राजयोग जीवन के संघर्ष कम कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के विशेष शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: News Pack. Raah Sachchai Ki, Raat 9 Baje.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: ज्येष्ठ माह का आज पांचवा बड़ा मंगल, सुबह से मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें, अयोध्या में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सुख शांति समृद्धि की मांगी कामना।
11: देश की वायु सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी, वायुसेना को मिलेंगे नए राफेल विमान, भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल विमानों का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट।
10: सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से बने गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी ताकत।
11: छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू हो गई है गंडोला राइड, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रोकी गई थी सेवा।
10: सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए जज लेंगे शपथ, जजों की नियुक्ति की सिफारिश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 5 जजों की शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या अब 37।
11: जल्द फाइनल हो सकती है भारत अमेरिका ट्रेड डील, दिल्ली में आज से 4 जून तक डील को अंतिम रूप देंगे दोनों देशों के वार्ताकार, पीयूष गोयल बोले 99% बातचीत पूरी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

ब्रेक बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौसम के बदले मिजाज से देश में चिलचिलाती गर्मी से राहत है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत में प्री मॉनसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राहत की बात देखिए यह है कि दो दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुशनुमा बना रहेगा। और सबके बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि देश में मानसून

0: एक जून की तारीख बीत चुकी हो और देश से मॉनसून नदारद हो, ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मॉनसून कब दस्तक देगा। पिछले दिनों मौसम के मिजाज में हुए बदलाव से बेशक देश में हीट वेव का असर फिलहाल खत्म हो गया हो, चलचलाती गर्मी से राहत मिली है, कई राज्यों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। सोमवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई। राजस्थान के अजमेर, नागौर और चित्तौड़गढ़ में ओले गिरे। मध्य प्रदेश के चार जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी है। वहीं दिल्ली NCR में ये हफ्ता राहत भरा रह सकता है।
1: की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर्स हैं वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है, कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं इनसे दिल्ली में हो ही सकता है।
0: देश में आमतौर पर मॉनसून 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है। इस बार तो मौसम विभाग ने 26 मई को ही मॉनसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई और अब तक मॉनसून केरलम नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल फिर वही है कि मॉनसून कब दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक अरब सागर, लक्षद्वीप, केरलम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल है। बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मॉनसून आगे बढ़ सकता है।
1: हमने बताया था, लेकिन कंडीशंस इतना फेवरेबल नहीं बना और अब हमारा अनुमान है आने वाले 2 से 3 दिन में कंडीशंस फेवरेबल हो सकता है, कि कुछ ये लक्षद्वीप के जो कुछ हिस्से कवर कर सकता है, केरला का कुछ हिस्से कवर, मानसून कवर कर सकता है, साउथ तमिलनाडु के हिस्से कवर कर सकता है और हमारा बे ऑफ बंगाल का काफ़ी हिस्सा बचा हुआ है, वो हिस्सा आने वाले 2 से 3 दिन मानसून कवर कर सकता है।
0: आमतौर पर दिल्ली में मॉनसून 27 जून तक दस्तक देता है, लेकिन अब जबकि मॉनसून केरलम ही देरी से पहुंच रहा है, ऐसे में दिल्ली में इसके पहुंचने की संभावना 27 जून से 1 जुलाई तक है। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली NCR ही नहीं पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में फिलहाल मौसम सुहाना बना रहेगा। प्री मॉनसून बारिश राहत की फुहारे बरसाती रहेगी।
1: बीवी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, उसका प्रभाव थोड़ा जहां NCR में भी रह सकता है। उसके अलावा एक राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है, जिसका प्रभाव रहने का अनुमान है। इसके बाद 2 दिन के बाद फिर एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी और ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर्स हैं थोड़े तो राइज होंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सामान्य से कम है, लेकिन फिर भी एज सच कोई हीट वेव सिनेरियो आने वाले एक वीक में नहीं है।
0: कुल मिलाकर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में फिलहाल मौसम कूल बना रहेगा और हीट वेव की आशंका ना के बराबर है।

0: कूल रहने वाला है।
1: मैदानी इलाकों में गर्मी है और मौसम छुट्टियों का भी है, ऐसे में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिस वजह से पहाड़ों की रौनक बढ़ी हुई है। लेकिन बोझ भी बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग हिल स्टेशन की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर लंबा जैम लगा हुआ है। लेकिन अगर थोड़ी प्लानिंग और कुछ नियमों का पालन किया जाए तो इस जैम से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या है वो नियम जिनका पालन करने से आपकी यात्रा होगी मंगलमय? देखिए रिपोर्ट।

0: चिलचिलाती धूप और उमस से दूर पहाड़ों की ये ठंडी हवाएं और खूबसूरत नजारे इस समय हर किसी का दिल जीत रहे हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार है तो दूसरी तरफ समर वेकेशन भी चल रही है। ऐसे में देश के खूबसूरत हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हैं। श्रीनगर से लेकर शिमला तक, मंडी से लेकर मसूरी तक सैलानियों की रौनक देखते ही बन रही है। लेकिन पर्यटकों के इस बहार के साथ ट्रैफिक जाम की दुश्वारी सफर का ये मजा फीका कर रही है। हालत यह है कि ज्यादातर हिल स्टेशन पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और सुकून की तलाश में निकले लोगों के लिए पहाड़ों का सफर आफत जैसा बन गया है। यह हाल देश के किसी एक हिल स्टेशन का नहीं बल्कि श्रीनगर से लेकर शिमला और मंडी से लेकर मसूरी तक का है। लेकिन इन हालात से बचा भी जा सकता है। जरूरत है जो सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखने की और कुछ नियमों का सही तरीके से पालन करने की। ट्रैफिक से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही दिन का चुनाव। आप वीकेंड्स पर हिल स्टेशन का रुख बिल्कुल ना करें क्योंकि इन दिनों फुटफॉल सबसे ज्यादा होता है। शुक्रवार शाम या शनिवार सुबह निकलने के बजाय कोशिश करें कि आप सोमवार या मंगलवार को यात्रा करें। दूसरी सबसे अहम है सही समय का चुनाव। आप पहाड़ों के लिए सुबह तड़के के समय यात्रा शुरू करें क्योंकि इस समय में स्थानीय ट्रैफिक भी कम होता है। यात्रा के दौरान मैप्स पर रास्ते का हाल चेक करते रहें। इसके अलावा राज्य पुलिस और स्थानीय पर्यटन विभाग की एडवाइजरी देखना ना भूलें। जाम से बचना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद जरूरी है, खासतौर से पहाड़ों पर ओवर स्पीडिंग और ओवरटेक करने से बचें।
1: यात्रा को आप दो तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि जब चारों धाम करते हैं पर हिंदू मैथोलॉजी तो गंगोत्री यमुनोत्री केदार बद्री होता है, रूट सेम फॉलो करते हैं, एक तो वो है। दूसरा क्या है कि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट किया जाए, जैसे कि जो नैनीताल वाला यहाँ से जैसे नैनीताल है, नैनीताल से आप चौखटिया जाते हैं, वहां से आप रानीखेत जाते हैं, फिर आपको जो राजधानी है गैरसैंण, वहां से फिर आप ग्वालदम से होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचते हैं, तो इस रूट को भी डेवलप किया जाए। ये सरकार ने इसे बहुत इग्नोर किया है, एक तो ये है। दूसरा जो रूट है जो बहुत अच्छा बन सकता है, सहारनपुर से होते हुए आप नजियाबाद और यहाँ से होते हुए पौड़ी और पौड़ी से होते हुए श्रीनगर, और एक रूट अल्टरनेट रूट ये भी निकाला जा सकता है। तो इससे होगा क्या कि लोगों थोड़ा अपना ट्रांसपोर्ट और जो डिविजन्स हैं जो वहाँ के लोकल्स जो लाइवलीहुड है जो होटलियर्स हैं स्टेक होल्डर उन्हें भी रोजगार मिलेगा।
0: पहाड़ों का मौसम इन दिनों बेहद सुहाना है। वादियों की ताजा हवा और दिलकश नजारे आपके वेकेशन को और भी शानदार बना रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जरा सी लापरवाही परेशानी का सबब बन जाए। ऐसे में जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखें। छुट्टियों पर जाने से पहले उस इलाके के मौसम की जानकारी जरूर जुटा लें। खराब मौसम में सफर करने से परहेज करें। घर से निकलने से पहले ही होटल बुक कर लें क्योंकि इन दिनों होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही जितना कम सामान हो उतना बेहतर होगा। जरूरी दवाएं अपने साथ लेकर ही चलें। पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा ना फेंकें, किसी तरह की गंदगी करने से बचें।
1: जो सीमेंट में गेट सिस्टम है, ऑब्वियसली ये गेट सिस्टम पहले भी लगता था लेकिन रोड चौड़ी होने की वजह से लोगों ने गेट सिस्टम को ब्रेक कर दिया था। बीइंग अ नेटिव ऑफ बद्रीनाथ, मैं वहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ और चीज को समझता हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि वहाँ एक सिस्टम होता है 6 बजे मॉर्निंग में, फिर 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, पहले भी था लेकिन बीच में कुछ व्यवस्था ऐसी बनी कि वो लोगों ने फिर उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली उसी पे पहुंचे हैं। तो वो जाम नहीं है, वो एक प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो जाने वाली जब कार वहां से स्पेस खाली होगा तभी तो जो दोबारा आने वाले उस जगह पर रिफिल करेंगे, तो वो रिफिल सिस्टम है, तो वो जाम नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जो माइंड सेट है लोगों का, और वहां पर अगर 6-7 किलोमीटर तक लग रहा है ऑब्वियसली ज्यादा लोग जा रहे हैं। इसका जो दूसरा जो मेरा है कि कैरिंग कैपेसिटी के साथ में लेसर नोन डेस्टिनेशन को डेवलप करना। पंच बद्री है, पंच केदार है, भविष्य बद्री है, आदि बद्री है, और जो हमारे वृद्ध बद्री है उनको भी डेवलप किया जाए जिससे लोग वहां पे जाएं, और हम ऐसा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बनाएं कि जो अगर बद्री केदार जा रहा है तो एक वो लेसर नोन डेस्टिनेशन कवर करेगा, उससे क्या होगा कि चीजें बढ़ जाएंगी।
0: बेशक गर्मियों के इस मौसम में पहाड़ बुला तो रहे हैं लेकिन वहाँ की कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियाँ पहुँच रही हैं।

0: ऐसे में आपकी थोड़ी सी प्लानिंग और समझदारी आपके सफर को आफत बनने से बचा सकती है। तो फिर देर किस बात की, थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अपना सफर तय कीजिए और अपनी छुट्टियों को हमेशा के लिए यादगार बना लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक तरफ हिमाचल कश्मीर के पहाड़ों से आई जाम की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ है मिजोरम, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था किसी मिसाल से कम नहीं है। हर साल मौसम में मिजोरम की ढेरों फोटोज निकलकर सामने आती हैं, जिसमें लोग ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए नजर आते हैं। क्या इसकी वजह भारी जुर्माना है या फिर सख्त ट्रैफिक नियम? देखिए,
2: गर्मियां आते ही मैदानी इलाकों के लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर बढ़ रहे इस बोझ का नतीजा है घंटों लंबा ट्रैफिक जाम। शिमला, मंडी, श्रीनगर और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर कुछ ऐसा ही नजारा है। लेकिन एक और तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। ये तस्वीर है मिजोरम की राजधानी आइजोल की, जहाँ सड़कें सकरी है लेकिन गाड़ियाँ बिल्कुल एक सीधी लाइन में खड़ी है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा। एक तरफ उत्तर भारत के पहाड़ों में रेंगती गाड़ियां, तो दूसरी तरफ मिजोरम की ये शांत और अनुशासित सड़कें। हालांकि इसकी वजह कोई सख्त ट्रैफिक नियम नहीं, ये कानून से ज्यादा वहां की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। यहां हॉर्न बजाना अशिष्टता माना जाता है, लोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही हॉर्न देते हैं। सड़कों पर कोई परमानेंट डिवाइडर नहीं होता, फिर भी टू व्हीलर बाई तरफ और फोर व्हीलर दाई तरफ एक कतार में चलते हैं। मिजो समाज में एक शब्द बहुत मशहूर है, तलावम घाइना, जिसका अर्थ होता है दूसरों के प्रति दयालु होना, निःस्वार्थ होना और समाज के लिए खुद को अनुशासित रखना। यही सोच उनकी ड्राइविंग में भी दिखती है। वहाँ लोग मानते हैं कि सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाना या किसी से आगे निकलने की कोशिश करना सामने वाले का अपमान करने जैसा है। अक्सर मिजोरम की इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है, जिसमें ट्रैफिक के दौरान अनुशासन साफ दिखता है। पहाड़ों पर घूमना सबका हक है, लेकिन पहाड़ों की शांति को बनाए रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में जाहिर है कि मिजोरम के साइलेंट ट्रैफिक मॉडल से हम सबको सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की, तो गुड न्यूज टुडे भी तभी से आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत हामटा वैली का दीदार करवाते हैं।

0: नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ हमटा का लोकल निवासी हूँ। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा हो यहाँ पे। तो ये जो हमटा वैली है, ये मात्र 40 मिनट का रास्ता है मनाली से, और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट प्लेसेस में ये आता है। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, बहुत सुंदर मीडोज हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है, और छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ये सेतन विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, होम स्टेज हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, रूम्स हैं, डबल शेयरिंग रूम्स, और बंक बेड्स भी हैं यहाँ पे। ये विलेज कम्युनिटी हॉल है, और एक छोटा सा मॉनेस्ट्री भी है इस गांव में यहाँ पे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। क्योंकि ये पूरा गांव एक बुद्धिस्ट जो पहले फार्मिंग करते थे, और अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो कुछ लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, और साथ में ये टूरिज्म वाला काम भी देख रहे हैं। ये विलेज सेतन है, एक छोटा सा गांव है जो हमटा वैली का लास्ट गांव है। इसके बाद आपका हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे, और यहाँ पे लोग अपना खेतों में देखिए यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई है। यहाँ पे गोभी, धनिया, ब्रोकली, बहुत सारे एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे जो सब्जी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है वो हमेशा। और ये हमटा वैली में जब आप लोग विंटर टाइम में आएंगे तो आप लोगों को पूरा एरिया ये बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे आपको इग्लू स्टे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इग्लूज है वो इसी वैली में ही बनते हैं, और फर्स्ट टाइम इग्लू स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हमटा वैली में लाया गया था। और ये वाला एरिया है जो इग्लू के लिए यूज होता है विंटर में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी, ग्रीन पैच, जो मीडो है, ओपन मीडो, ये टॉप का, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, और जो भृगु लेक है वो उसके टॉप पे है। और ये पूरा वैली जो ऐसे राइट साइड को गया, ये हमटा वैली है जो बहुत ही फेमस ट्रेकिंग रूट है। और हमटा पास क्रॉस करने के बाद आप दूसरी तरफ स्पीति की तरफ को जाते हैं। तो अभी मई जून से लेकर आपका सितंबर मिड अक्टूबर तक यहाँ पे जो हमटा पास ट्रैक है वो चलता है, और आप कैंपिंग भी कर सकते हो फॉरेस्ट में, बहुत अच्छे रिवर साइड में या मीडोज में कहीं भी आप टेंट लगा दो, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग हैं पांडुरोपा में, ये सेतन से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव लोग एग्जाइल में थे वो लोग हिमालय में छुपे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पे, तो अपने उस एग्जाइल के टाइम में कुछ टाइम उन्होंने यहाँ भी बिताया है। तो इस जगह में ऐसा माना जाता है कि वो धान की रोपाई करते थे, जो सीड से पौधा तैयार करते हैं वो यहाँ पे तैयार करते थे, और उसकी जो बिजाई है खेत में वो भृगु लेक के पास में, वहाँ भी एक पांडुरोपा करके जगह है, वो वहाँ पे उसकी रोपाई करते थे। तो अभी हम लोग हैं हमटा के एक मशहूर ढाबा कालजंग ढाबा में, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अखरोट के सिड्डू बनते हैं। यस, तो ये है सिड्डू, और ये यही पे बना हुआ, और इसके अंदर अखरोट का पेस्ट डाला हुआ, और ये चटनी टमाटर, पुदीना, मिर्च, पूरी तरह से ये नेचुरली ब्लेस्ड एक एरिया है।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदारी निभाइए। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या फिर आपके शहर में कोई आने की खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: और अब बात वैभव सूर्यवंशी की कर लेते हैं, जो आजकल हर जगह छाए हुए हैं। आईपीएल के बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल खबर है कि वैभव सूर्यवंशी पर आईआईएम में स्टडी होगी। आईआईएम इंदौर ने ये अहम फैसला लिया है, यानी छोटी उम्र में बड़ी सफलता के फॉर्मूले पर स्टडी होगी। इसमें वैभव की उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाएगा। पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पर स्टडी होगी। वैभव के परिवार के त्याग, मेंटोर के योगदान का भी विश्लेषण आईएम में होने वाला है। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में बड़ी सफलता पाई है। वैभव ने इस साल आईपीएल में रिकॉर्ड की झड़ी लगाई है। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा 776 रन बनाए। ऐसे में उन्होंने इस साल ऑरेंज कैप जीती। इस बार वैभव ने आईपीएल में 1 शतक, 5 अर्धशतक चढ़े। इनमें 3 पारियां 90 से ऊपर की रही, जो शतक पूरा नहीं कर सकी, लेकिन चर्चा जरूर बटोरी। साथ ही वैभव ने आईपीएल में कुछ 5 अवार्ड्स अपने नाम किए। और इंस्टा स्टोरी में बाप को उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए रितेश देशमुख की फनी इंस्टा स्टोरी।
3: तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी।
4: बेबी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है।
2: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
1: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insider's game day. We're breaking
6: and
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
10: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
1: देश माह का आज पांचवा बड़ मंगल, सुबह से मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें, अयोध्या में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सुख शांति समृद्धि की कामना। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित 10% अतिरिक्त बिजली टैरिफ वसूली पर लगा दी रोक, टैरिफ आदेश को नियमों के खिलाफ बताया। सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से बने गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी ताकत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। चंद्रमा के मुख्य शुभ योग कौन से हैं और इनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 10:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। तो चंद्रमा से मुख्यतः 3 तरीके के योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। पहले जानते हैं अनफा योग क्या होता है। देखिए, जब चंद्रमा से पिछले भाव में कोई ग्रह हो, जिस खाने में चंद्रमा बैठे हैं उसके पिछले खाने में कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बनता है। लेकिन चंद्रमा से पिछले भाव में सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए, नहीं तो अनफा योग नहीं बनेगा, अनफा योग भंग हो जाएगा। अगर कुंडली में अनफा योग है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है। व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और अत्यंत व्यवहार कुशल होता है, लोगों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। अनफा योग अगर कुंडली में है तो ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति राजनीति में सफलता पा जाता है। अगर कुंडली में अनफा योग है तो आपको अपने भरसक लोगों की सहायता करनी चाहिए और अपने व्यवहार को मीठा और मधुर बनाए रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में यशस्वी होंगे और अनफा योग का पूरा लाभ आपको
मिल पाएगा। चंद्रमा के दूसरे शुभ योग सुनफा की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो चंद्रमा के पहले शुभ योग अनफा के बारे में जान लिया। दूसरा शुभ योग है सुनफा। सुनफा योग क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है? चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं, जब उसके दूसरे खाने में, उसके बाद वाले भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग होता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के दूसरे भाव में अगर सूर्य, राहु, केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर कुंडली में सुनफा योग बने, चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को शिक्षा में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोग जीवन में अत्यंत धनवान बनते हैं और अपनी वाणी से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों के मामले में देखा गया है कि छोटी जगह पर, साधारण जगह पर भी अगर जन्म लें तो जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। चंद्रमा के तीसरे राजयोग दुर्धरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, काफी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अनफा और सुनफा योग के बारे में आपने जान लिया, अब जान लेते हैं दुर्धरा योग के बारे में। कैसे बनता है? चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके दूसरे भाव में या उससे पिछले द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो दुर्धरा योग बनता है, लेकिन जो आगे बैठे हैं उसमें भी और जो पीछे बैठे हैं उसमें भी सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह चंद्रमा के दूसरे या बारहवें दोनों भाव में बैठा हो तो दुर्धरा योग बनता है। दुर्धरा योग होने पर व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है। सामान्यतः जिनकी कुंडलियों में दुर्धरा योग होता है ऐसे लोगों को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है और व्यक्ति धर्मात्मा होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारा नाम और बहुत सारा यश पाते हैं। अगर राजनीति में जाएं या अगर धर्म कार्यों में जाएं तो दुनिया को दिशा दिखाते हैं, इनके बताए गए मार्ग पर लोग चलते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा।

प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए चंद्रमा से अनफा सुनफा दुर्धरा नाम के मुख्य योग तो बनते हैं, लेकिन इसके अलावा चंद्रमा से और भी राजयोग बनते हैं। जैसे चंद्रमा बृहस्पति का गज केसरी योग, चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग, चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या कुंडली में लग्न से दशम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो अमला नामक राजयोग बनता है। तो बहुत सारे और भी राजयोग कुंडली में चंद्रमा से बनते हैं, और अगर चंद्र बृहस्पति का गज केसरी योग है आपको जीवन में जबरदस्त उन्नति देगा। अगर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है जीवन में पर्याप्त धन देगा। अगर चंद्रमा का अमला योग है तो जीवन में नाम यश और कीर्ति आप प्राप्त करेंगे। तो आज हमने आपको बताया चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं रहती हों तो हर सोमवार को शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं, ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार, तीन कारण हैं दुख के, वैसे तो अनेक हैं पर मुख्य तीन हैं। कितने हैं, जोर से बोलो, कौन कौन बताओ, बताओ। लो तुमने बत्तीसों दिखा दिया। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, ये भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। अब तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहोगे मेरे पागलो, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहो। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा रखता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हां शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है, ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या, दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे, हां जी या ना जी, ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है। किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो दो बैंड बाजा बजाने वाले गए, एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ, अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस, तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था, एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है, लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे, दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, दो घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह, पर एक ने आशा रखी, एक ने आशा
नहीं रखी। एक एक यजमान के घर दो पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर दो पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा आप हंस रहे हो आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला आपको कम? नहीं नहीं नहीं सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे 5000 देगा पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले हमें पहले ही पता था हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है पर ये भी पता था कंजूस है 50 देगा पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है, आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है, तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे। और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या? एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो, तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। तुम्हें सुखी रहना है तो ये बात तुम अपनी जिंदगी की डायरी में मन के स्तंभ पर नोट कर लो कि तुम्हें जिंदगी से धोखा ही मिलेगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो बाद में भले ही धोखा ना मिले तो समझ जाना बोनस पॉइंट है, फिर दुख नहीं होगा। मिल भी जाए ना भी मिले दुख नहीं होगा। तो दुख से बचने का पहला कारण यही है, संसार पर आशा मत करो, संसार के लोगों पर आशा मत करो। ये पहला कारण दुख का। दूसरा कारण दुख का, दूसरा जो कारण है वो है, देखो एक बात और, दुख से बचने का एक उपाय और है शिवकुमार। यहीं पश्चिम बिहार में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नीबाई। मुन्नीबाई थोड़ा दिल्ली की चांदनी चौक की पढ़ी लिखी थी, बड़ी खतरनाक औरत, हमारे विचारे सीधे साधे जलेबी जैसे सीधे चंगीलाल को रोज पीटती, रोज डांटती। चूंकि मुन्नीबाई चांदनी चौक की थी, रोज डांटती रोज पीटती और रोज धमकी देती कि मैं भाग जाऊंगी, मैं कल ही चली जाऊंगी। एक दिन तो उसने ऐसी धमकी दे, चंगीलाल सीधा साधा, क्योंकि पश्चिम बिहार के लोग सीधे साधे होते ही, चंगीलाल बेचारा सीधा साधा, उसे लगा कि ये गई तो समाज में इज्जत गई, लोग क्या कहेंगे कि चली गई। एक घरवाली ना संभली, और कल के दिन चंगीलाल को नेता भी बनना था, तो उसने सोचा कि अब तो आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा, लोग कहेंगे जब तुमसे घरवाली संभली नहीं है विधानसभा क्या खाक संभलेगी। भाई जिससे लुगाई ना संभले तो बात सही है, अब वो विधानसभा क्या खाक संभालेगा। और परेशान चंगीलाल, तो चंगीलाल ने हमारे पास आके अर्जी लगाई कि आप कोई उपाय बताओ, घरवाली बड़ी खतरनाक है और उसे जाना तो है, ये तो मैं उसके लक्षण से समझ चुका हूं, पर ऐसा कोई उपाय बताओ कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो टिक जाए। हमने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। बोले बोलो। हमका कुछ नहीं, उसने धमकी क्या दी? अरे बोले धमकी ये कह रही कि मैं कल भाग जाऊंगी। हमने कहा कान इधर ला, हमने उसको कान में एक गुरु मंत्र दिया, वो पास हो गया, वो तुरंत घर गया। रात को ही
पश्चिम बिहार की ऊपर की बिल्डिंग में खड़ा होके बोला, दिल्ली वालों सुनो, कल के दिन कोई हमें दोष मत देना, हम आज से ही अपनी घरवाली का परित्याग कर रहे हैं। अब वो सुबह, अब वो पत्नी टेंशन में बोली, हमने कब कहा ये, आप परित्याग क्यों कर रहे? चंगीलाल बोला, सुबह जाना है उसके पहले हमसे ही इस्तीफा ले ले, कम से कम कल के दिन समाज में ये इज्जत तो रहेगी कि पत्नी नहीं भगी, भगाई है, संतुष्टि तो रहेगी। शिव कुमार, भगवान करे तुम्हें ऐसा ना करना पड़े, पर शिव कुमार दुखों से बचने का ये सॉल्यूशन है, ये सूत्र है। क्या दुखी तुम कब होगे? जब तुम कोई बात कमिटमेंट दुनिया के सामने कर दोगे कि हम ऐसा करेंगे, और वो ना होगा तो बेइज्जती होगी, तो तुम दुखी रहोगे, दिमाग तुम्हारा ईगो डाउन होगा, ईगो हर्ट होगा, दिमाग में तुम्हारे टेंशन आएगी, और तुम जल्दी पेंशन लेने के पहले ही निपट जाओगे। तो शिव कुमार उपाय क्या है? तुम पहले ही दिन दुनिया के सामने अपने आप को निकम्मा घोषित कर दो, अपने आप को विचित्र आदमी घोषित कर दो, अपने आप को जीरो घोषित कर दो, फिर भले ही एक नंबर मिल जाए, दस नंबर मिल जाए, ये बोनस होगा, और नहीं भी मिलेंगे तो तुम कह तो सकते हो कि हमने तो पहले ही कही थी, हमने तो पहले दिन ही कहा कि हम ऐसे हैं। ये दुख से बचने का उपाय। पर तुमने पूछा कि दुख क्या है, तो दूसरा कारण सुनो, दुख कुछ नहीं, अज्ञानता है। तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो, तुम्हें पता ना हो, तो तुम क्या करोगे? खिसको, ऊपर पैर मत रखो, चलो चलो। लेकिन तब तक कोई कान में कहे, कमिश्नर साहब, पीएम है, अरे रख लो रख लो रख लो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, रख लो, आ जाओ आ जाओ, नजदीक आ जाओ आ जाओ। बताइए, ये तुम अभी अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? अज्ञानता, पता नहीं था इसलिए ऐसी हरकत कर रहे थे। अब पता चल गया तो खुद की सीट छोड़ने को तैयार, ये ज्ञान है। ये अज्ञानता भी दुख का कारण है। किसी दरिया के किनारे, शिव कुमार समझो दुख क्या है। दूसरा कारण, किसी नदी के किनारे एक आदमी गया, रात का समय था, मछलियां पकड़ने गया, पुराना जमाना, लाइट तो थी नहीं, वो रात को ही चला गया। उसने सोचा सुबह हो, बाकी मछुआरे आवे, उसके पहले मैं पहुंच जाऊं, और सुबह की पहली सूर्योदय की किरण के पहले मैं जाल को बिछा दूं ताकि ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। अब रात को बैठ गया, किस्मत से उसके बगल में एक थैला डला था, उसने सोचा होगा कोई कचड़े का बैग, होगा कोई ऐसे ही कार्टून, उसमें कुछ पत्थर जैसे थे चमकदार, चिकने चिकने, वो एक एक पत्थर उठावे और दरिया में नदी में फेंकता जावे। और पूरी रात उसने उस कार्टून में भरे हुए पत्थरों को फेंका, लेकिन जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, थोड़ी रोशनी आई, उजाला छाया, पक्षी चहचहाने लगे, तब उसे होश आया कि अब तो सुबह हो गई है, चलो जाल उठाओ, मछलियां पकड़नी है। लेकिन जैसे ही कार्टून जिस थैले में रात भर पत्थर समझ करके वो पानी में फेंकता रहा, हाथ में बचा हुआ एक पत्थर उसने गौर में देखा, गौर से देखा तो वो कोई पत्थर नहीं था, हीरों का थैला था, डायमंड का थैला था। अब सिर धुन धुन कर पछताने लगा, एक ही बचा, पूरी रात हीरे फेंक फेंक करके दरिया में फेंक दिए, यही जिंदगी है। अगर तुम अज्ञानी रहोगे तो जिंदगी के प्रत्येक हीरे के पल को, सदगुरु को तुम इस तरफ उस तरफ फेंकते जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा और तुम्हें दुख हो जाएगा। ये अज्ञानता दूसरा कारण है दुख का। अब तुमने पूछा है कि इसका उपाय क्या है, इसका उपाय भी है इस दुख से बचने का, जो ज्ञानी है उसकी शरण पकड़ो। वो ज्ञानी कौन है?

पूछा कि इस अज्ञानता से दुख से बचने का उपाय क्या, ज्ञानी की शरण पकड़ो। और याद रखना, ज्ञानी वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, अंग्रेजी बोले, उर्दू भी बोले, पारसी भी बोले, तमिल भी बोले, मलयालम भी बोले, गुजराती भी बोले, और जर्मनी भी बोले, फ्रेंच भी बोले, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कौन? जो अपने एक अक्षर से तुम्हारे हृदय को झंझोर दे, बंद दरवाजे को खोल दे, वो ज्ञानी। तीसरा कारण, शिव कुमार तुमने पूछा दुख क्या है, तो जल्दी जल्दी में तुम तीसरा भी समझ लो। तीसरा कारण है वर्तमान को स्वीकार ना करना। तीन कारणों में तीसरा कारण, तुम अभी जहां हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे। आदमी, पूरी दुनिया का आदमी, जो मनोविज्ञानिकों ने रिसर्च किया है वो ये रिसर्च किया है, पूरी दुनिया का ज्यादातर आदमी या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है। जो भूतकाल में जीता है वो चिंता में रहता, जो भविष्य में जीता है वो थोड़ा सा परेशान रहता, बेचैन रहता, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जिसका जीवन भूतकाल में जी रहा वो टेंशन में जी रहा कि हमसे ऐसा क्यों हो गया। और मेरे पागलों, इस दुख से बचने का भी उपाय है, पूछो क्या। शिव कुमार, इस दुख से बचने का उपाय सीधा साधा सा है, ना तुम भूत में जियो ना तुम भविष्य में जियो, जीने का मजा लेना है तो तुम वर्तमान में जियो। अभी जहां हो वहीं मस्त रहो। अगर तुम कथा में बैठे हो तो सिर्फ कथा में बैठो, तुम ये मत देखो कि पड़ोसी आया कि नहीं आया, तुम्हारी फोटो बढ़िया आ रही कि नहीं। हमने कई जजमान ऐसे देखे कि फोटो बढ़िया आ जाए तो संभल के बैठ जाते, कैमरा कर दो अभी, जरा कैमरा करो पब्लिक पे, तुरंत हाथ हलाएंगे। संभल के बैठेंगे, फोटो बढ़िया आए। मेरे पागलो, जब तुम दुनिया को रिझाने के लिए चित्र ठीक कर सकते हो तो परमात्मा को रिझाने के लिए चरित्र को भी ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम चरित्र को ठीक कर लेंगे, वर्तमान को स्वीकार कर लेंगे, दुख नहीं रहेगा। और अगर फिर भी दुख आवे ना, एक उपाय, पूछो क्या, पूछो। अरे जोर से तो

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right fields, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
8: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है. यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है. एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है.
9: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है. फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है.
10: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है. अब घुटने में भी दर्द नहीं है,

0: कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
1: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
3: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
4: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
5: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
6: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
7: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
7: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ। जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
9: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
3: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
10: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
11: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
12: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है, और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
13: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
6: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
14: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
0: मैं तो 12 महीने केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
15: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
16: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
1: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
17: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
18: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
19: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
20: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
26: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
27: ज्येष्ठ माह का आज पांचवा बड़ा मंगल, सुबह से मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। अयोध्या में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सुख शांति समृद्धि की मांगी कामना। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित 10% अतिरिक्त बिजली टैरिफ वसूली पर लगाई रोक, टैरिफ आदेश को नियमों के खिलाफ बताया। सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक तकनीक से बने गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी ताकत। जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज आई सामने, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू की गई गोंडोला राइड, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रोकी गई थी सेवा। जल्द फाइनल हो सकती है भारत अमेरिका ट्रेड डील, दिल्ली में आज से 4 जून तक डील को अंतिम रूप देंगे दोनों देशों के वार्ताकार, पीयूष गोयल बोले 99% बातचीत पूरी।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर
27: आज ज्येष्ठ महीने का पांचवा बड़ा मंगल, देश भर के हनुमान मंदिरों में बजरंग बली के भक्तों की लगी भीड़। बड़े मंगल पर लाल मसूर, लाल वस्त्र या लाल फलों का दान की है विशेष मान्यता। सुबह से मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है उनकी पूजा अर्चना। बड़े मंगल के दिन दान करने का है विशेष महत्व। पूजा अर्चना करने के बाद मंदिरों या गरीब लोगों में अन्न धन का दान करने का है विशेष महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान राम और हनुमान जी की पहली बार हुई थी भेंट। इस दिन बजरंग बली के दर्शन और भंडारे आयोजित करने से दूर होते हैं सभी कष्ट। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का जनसैलाब। दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालु की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू किए अर्पित। पांचवें बड़े मंगल पर बजरंग बली की मूर्ति का हुआ भव्य श्रृंगार। भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं और आभूषण किए जाते हैं। पांचवें बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। अयोध्या में पांचवें बड़े मंगल पर प्रभु राम की उतारी गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल।

0: तमिलनाडु के मयिलादुथुरई के परिमाला रंगनाथर मंदिर में वसंत उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में भक्त उसमें शामिल। वसंत उत्सव के दौरान देवता को सुगंधित द्रव्यों से कराया गया स्नान, विशेष पूजा अर्चना के साथ दिव्य आभूषणों और फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया। भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत, सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला, देश के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े लड़ाकू विमान समझौते की तैयारी। फ्रांस से लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में होगी 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद, समझौते के तहत भारत में ही बनेंगे 90 राफेल लड़ाकू विमान। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए जज लेंगे शपथ, राष्ट्रपति ने कल ही 5 जजों की नियुक्ति को दी थी मंजूरी, 5 जजों की शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या होगी 37। छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज आई सामने, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू की गई गोंडोला राइड, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रोकी गई थी सेवाएं। सेना की रोमियो फोर्स ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनाया हिल काका डे, सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश के शहीदों और नागरिकों के बलिदान को किया नमन। पीर पंजाल इलाके की दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित हिल काका क्षेत्र से आतंकियों के खात्मे के उपलक्ष्य में मनाया गया यह कार्यक्रम। इस मौके पर इलाके में आतंकियों के हमलों और फिर सेना की कार्रवाई का किया गया मंचन, बड़ी संख्या में सेना के जवानों अफसरों के साथ स्थानीय लोग हुए इसमें शामिल। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी हुए शामिल, छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत भी गाए, इस मौके पे सेना की ओर से छात्र छात्राओं को उपहार भी दिए गए। हिलकाका इलाके में आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने साल 2003 में चलाया था ऑपरेशन सर्प विनाश, स्थानीय लोगों ने सेना का किया था पूरा सहयोग। रामबन में सीआरपीएफ ने 84वीं बटालियन के स्थापना दिवस शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ ने स्थापना दिवस पर शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, अधिकारियों ने लगाए पौधे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर मेले का भी किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए लोग। देहरादून में सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले 4.5 सालों में 33,000 युवाओं को मिली नौकरी। जलगांव में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस का किया उद्घाटन, कहा स्वास्थ्य पर सरकार दे रही है विशेष ध्यान। गांधीनगर में फेबेक्सा एडिशन 11 फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो का शुभारंभ, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी उसमें शामिल। देश भर के 1,000 से अधिक कारोबारियों ने एक्सपो में लिया हिस्सा, 4 दिनों तक चलेगा एक्सपो। एक्सपो में कॉटन, डेम, हॉजरी और विभिन्न प्रिंट किस्मों का हुआ प्रदर्शन, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने प्रदर्शनी का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ग्राम चौपाल का हुआ आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों की सुनी फरियाद। भुवनेश्वर में कुलपतियों के सम्मेलन का हुआ आयोजन, ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू तम्मपति ने लिया हिस्सा। प्रवासी पक्षियों से एक बार फिर से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी, बड़ी संख्या में ओरिएंटल डाटर और लिटिल कॉर्मोरेंट का झुंड पहुंचा। प्रवासी पक्षियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, पक्षियों को देखने के लिए लग रही है भीड़। श्रीनगर में पोखरीवल झील बोट बना युवाओं की पहली पसंद, कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग का ले रहे आना। मलप्पुरम में मंत्री एपी अनिल कुमार ने सरकार विद्यालय का किया उद्घाटन, कहा शिक्षा पर सरकार का रहेगा जोर। कोटा में 15 साल बाद मिला बिछड़ा परिवार, मां से लिपटकर फूट फूट कर रोया बेटा। जेईई एडवांस परीक्षा में बिहार के गया की पटवा टोली का जलवा, पटवा टोली के वृक्ष संस्थान में पढ़ाई करने के बाद 10 छात्रों को जेईई एडवांस में सफलता हासिल हुई। अपने सभी छात्रों को आईआईटी और जेईई परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और तैयारी करवाता है वृक्ष संस्थान। पास हुए छात्र कमाई का कुछ हिस्सा संस्थान को देते हैं दान। राजस्थान के एक गांव के बेटे ने पूरे देश का नाम किया रोशन। देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस 2026 में हासिल किया देश में तीसरा स्थान। झुंझुनू जिले के गोट गांव के जतिन चाहर ने 360 में हासिल किए 319 अंक। तैयारी के दौरान दो बार पीलिया और एक बार टाइफाइड हुआ, फिर भी नहीं मारी हार। जतिन की उपलब्धि से सीकर में खुशी का माहौल। सीकर में रह के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जतिन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूँ और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है, बवासीर क्या है। हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ CBSE री इवैल्यूएशन पोर्टल, OSM केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, CJI सूर्यकांत ने दिलाई शपथ। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या हुई 37। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल के लिए रिक्वेस्ट लेटर। मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे। 3.25 लाख करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी डील। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित 10% अतिरिक्त बिजली टैरिफ वसूली पर लगाई रोक। टैरिफ आदेश को नियमों के खिलाफ बताया। ज्येष्ठ माह का आज 5वां बड़ा मंगल। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। अयोध्या में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सुख शांति समृद्धि की मांगी कामना।
6: हमरा फोन चेक कर लो, अगर बाप पर विश्वास नहीं है।
7: विश्वास का बात तो तुम रहने ही दो मम्मी।
6: काकी है हम।
8: काकी हो? भाई वैसे पूरा कांड हुआ काकी है।
9: I love the character, क्योंकि ये बहुत ही अलग है। जैसे माँ को पेडेस्टल पे रखते हैं हमेशा, कि हमेशा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग और हमेशा खुद बहुत, मतलब बुखार होगा फिर भी खाना पकाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बहुत अलग है इसकी। That's what attracted me to this character.
6: अगर हम जेल गए तो तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बहुत स्वागत है आप सभी का, और हमारे साथ है माँ बहन की टीम। और मैं अभी शुरुआत से पहले हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि फास्ट न्यूज में पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक खबर आ गई कि नेटफ्लिक्स पर माँ बहन आ रही। और जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने लिटरली ऐसे पढ़ा, और बहुत ही जल्द आप नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं माँ बहन। और मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि आप ये क्या लिखते रहे, तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये एक्चुअली फिल्म का नाम है, तो फिल्म का नाम यही है। स्टारकास्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, माधुरी जी, तृप्ति जी, हमारे साथ है रेखा, जया, सुषमा, राइट, 3, और हमारे साथ धारणा भी मौजूद है, और सुरेश त्रिवेणी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं उसी पे आऊंगी जिसपे मैं फंस गई थी पढ़ते पढ़ते। ये नाम कहाँ से आया?
11: नाम कहानी से आया है, क्योंकि कहानी एक माँ है जिनका नाम रेखा है। हाँ। और उनकी दो पुत्रियां हैं, एक जय और एक सुषमा। तो आप सोच सकते हैं कि, और फिर एक कांड हो जाता है।
10: अच्छा।
11: घर के अंदर। तो इससे एप टाइटल जो कहानी के बारे में भी, मूड के बारे में भी पता है, और प्रोटैगनिस्ट कौन है मेरे, माँ और बहन, तो आके बैठ गया पूरा अच्छी तरह से।
10: हाँ।
11: और हमने अब फिल्म देखेंगे समझ में आएगा कि हाँ। क्यों है टाइटल माँ बहन।
10: नहीं, ट्रेलर्स में तो हमने देखा है, बहुत ही अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटमेंट हमारी बढ़ी हुई है। तो माधुरी जी, माँ बहन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों चीजें इसमें है। हम देख, वही है कि देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। तो इस टाइटल को लेकर, ये जब टाइटल आपके सामने आया तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आए?
9: बिल्कुल आए, क्योंकि मुझे पहले जब इन्होंने कहा टाइटल, मैंने कहा टाइटल क्या है, बोले माँ बहन, तो एक मिनट के लिए मैं मजाक कर रहे हैं, ऐसे हुआ ये तो टाइटल नहीं हो सकता. लेकिन जब मैंने कहानी सुनी तो फिर मुझे ऐसे लगा नहीं, दिस इज अ वेरी एप्ट टाइटल, यही चाहिए था टाइटल.
10: मतलब मेरा, मेरे प्रोड्यूसर और राइटर ने जो लिखा था, हमारी एंकर लिंक लिखा था, उसमें मेरा चौंकना गलत नहीं था.
9: नहीं गलत,
10: बिल्कुल गलत नहीं.
9: जैसे हम लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मैं कहती हूँ कि मेरी नई फिल्म आ रही है, देखना जरूर. क्या टाइटल क्या है? माँ बहन. ऐसे लोग हो जाता है. तो मैंने कहा नहीं नहीं, रियली टाइटल इज माँ बहन, लेकिन कहानी ऐसी है. सो दे आर लाइक, बट दे आर ऑल वेरी थ्रिल्ड एंड दे आर लुकिंग फॉर टू इट.
10: एक बहुत अच्छा आपका डायलॉग, बार बार मैंने तो उसी में ट्रेलर और प्रोमोज वगैरह में देखा है कि मम्मी तुम फिर स्लीवलेस ब्लाउज पहन के. मम्मी स्लीवलेस ब्लाउज क्यों नहीं पहन सकती?
9: एग्जैक्टली, बिल्कुल पहन सकती हैं, पहनना चाहिए.
10: अच्छा, ये स्लीवलेस ब्लाउज के पीछे वाली कहानी क्या है, क्योंकि ये बहुत हिट हो रही है लाइन पूरी.
11: ये कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, और इसका क्रेडिट जाता है इसकी राइटर पूजा तुलानी को, क्योंकि हम जब जैम कर रहे थे तो उनके तरफ से आया था और वहीं से शुरू हुआ. बिकॉज आई थिंक माई सोसाइटी में अननेसेसरी टैबूज है फॉर सम रीजन, कुछ कुछ किसी एक रीजन के लिए, और इनको तो गर्मी लगता है.
9: गर्मी लगता है हमको.
10: लेकिन जिस तरीके से इस पूरी फिल्म में हमने देखा, जिस तरीके से एक मदर है, एक डॉटर है, दोनों यंग लड़कियां, बट आज की डेट में मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में आपने कहा कि एक टैबू, लेकिन आजकल ये सब चीजें चेंज हो गई हैं. मदर डॉटर दोनों सिस्टर्स ही लगती हैं आजकल.
9: हाँ, बिकॉज सब अपनी देखभाल करते हैं, द मदर्स आल्सो एज एक्टिव, और यू नो इट्स कहते हैं ना, दे ऑल लुकिंग आफ्टर द हेल्थ, दे ऑल लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स, एंड they all want to do so many things in life. And the kids keep them young. बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को यंग रखते हैं हमेशा.
10: अच्छा, इसमें एक डायलॉग आता है जब आप इन दोनों को बोल रहे हैं कि अगर मैं जेल गई ना तो तुम दोनों को साथ लेके मम्मी तो ऐसी नहीं होती. मम्मी थोड़ा सैक्रिफाइस करती
9: हैं. You know, that's why I love the character. क्योंकि ये बहुत ही अलग है. जैसे माँ को पेडेस्टल पे रखते हैं हमेशा, कि हमेशा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, और हमेशा खुद बहुत, मतलब बुखार होगा फिर भी खाना पकाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. माँ बहुत अलग है इसकी, और दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टू दिस कैरेक्टर.
11: एक सीन होना चाहिए था सिलाई कढ़ाई वाला.
10: नहीं नहीं, उसमें इस बीच में ही डायलॉग भी बोलती तो है कि मुझे ये सब चीजें नहीं आती हैं. हाँ, ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो एक सीन है, वो इमेजिन करती है. तृप्ति, कितना क्लोज लगता है, क्योंकि फिल्म में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है
12: जी,
10: और आप लोग उस मैसेज को दे भी रहे हैं फिल्म में, कितना आज की डेट में कितना स्ट्रॉन्ग लगता है वो कैरेक्टर अगर आप रियल लाइफ में कहीं देखते हैं तो?
12: काफ़ी स्ट्रांग लगता है, क्योंकि जैसा कि मैम ने अभी कहा, हम माओ को हमने एक पेडेस्टल पे रख दिया है, हम उनको किसी और रोल में देखना भी नहीं चाहते. यू नो, अब आई एम ग्लैड दैट थिंग्स आर चेंजिंग, दैट किड्स हैव यू नो व्हेन दे've ग्रोन अप, दे आर लुकिंग आफ्टर देयर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो यू नो टेकिंग चार्ज ऑफ देयर लाइफ. बिकॉज ये नहीं होना चाहिए ना कि आपकी लाइफ इज ओनली रिवॉल्विंग अराउंड अदर्स. यू नो, पहले आप हो, फिर if you're not well, then how will you look after others? And I think I'm glad that women today are taking that you know, stand. They are making sure that they are well, they work out, they eat well, they look after their kids. And women can do all of it. You know, they can work at home, they can work multiple jobs. They are doing. I've seen my sister, I've seen my mother, they can do it all. So, you know, I'm so, so glad that I got an opportunity to do a film like Maa Behen, because the messaging is so strong in this, and I hope that whoever watches the film learns something from it. I'm dying for my family to watch the film. They'll be so proud of it. I'm so proud of it. I think all of us are very, very proud of this, and thank you.
10: Nana, आप content creator से अब actor बनी हैं. मैं उस सवाल पे नहीं आऊँगी कि कैसा लग रहा है, दोनों में से कौन सा अच्छा है. लेकिन उस जो आप content create करती थी, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जहाँ पर आप मम्मी का रोल करते हैं. कितना सिमिलर लग रहा है, और क्या, क्योंकि उसमें भी एक मैसेज होता है और यहाँ भी एक मैसेज है.
13: हाँ, मैंने भी कभी कभी ऐसी मम्मी दिखाई है जो नहीं कर रही है सैक्रीफाइस, पर मेरी मोस्टली इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से ही होती है, उन कैरेक्टर्स के पीछे जैसे वो रिएक्ट करती हैं सिचुएशंस में, कि बहुत ही ओवर ड्रामेटिक होके यहाँ पे. पर तो वो फिर भी उसमें थोड़ा सैक्रिफाइस चलता है, बट ये एकदम ही अलग है. जहाँ पे जेल जा रही है तो लेके जा रही है. मैं इमेजिन नहीं कर सकती
12: मेरी मम्मी
13: कि मैं वहां पे ये बोलूं कि, क्योंकि मैं तो वहां से रिलेटेबिलिटी ले रही हूँ जो मेरी मम्मी मुझे बोलती है. बट ये बहुत ही अलग है, ये मैंने भी नहीं इमेजिन किया कि ऐसी ऐसे माँ बोल सकती है.
10: एक सिंगल मदर के लिए आपको लगता है वाकई बहुत टफ होता है दो डॉटर्स को रेज करना, फिर खुद भी स्ट्रगल कर रही हैं और बच्चियों के साथ भी, और फिर उस बीच ऐसा कुछ अनवांटेड सीन?
9: डिफिकल्ट, क्योंकि एक सोसाइटी की भी नजर होती है एंड दे लुक एट हर डिफरेंटली. जजमेंट होती है उनकी कि यू नो शी डजंट हैव अ मेल, लाइक अ डोमिनेटिंग मेल कैरेक्टर इन हर लाइफ. बट अमेजिंगली आई हैव सीन सो मेनी सिंगल मदर्स डू सच अ ग्रेट जॉब. मतलब वो बच्चों को मतलब उनकी परवरिश करते हैं, सब कुछ, शी वर्क्स और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन.

0: फुल फैमिली जो करती है वो खुद अपने बलबूते पे करती है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट.
1: सर, आपने एक एक बहुत संजीदा मुद्दे को जो सोसाइटी का है उसको बहुत अच्छे से बड़ा फाइनली आपने इस फिल्म के जरिए दिखाया है. तो एग्जैक्ट जब आप बना रहे थे तो क्या पीछे की सोच थी, क्या मैसेज आप देना चाह रहे थे?
2: नहीं, मैं क्या कहता हूँ, मुझे मैसेजिंग ना हर कहानी में, क्योंकि आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, आपकी जो कंडीशनिंग होती है, तो मैसेजिंग तो हर कहानी में होती है, बट मेरा पहला फोकस रहता है कहानी पे. आप कहानी ढंग से कह दो, एंटरटेनिंग करो, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा है. और उसमें हम दो तीन चीजें ऐसे कह के चले जाते हैं, उससे बेटर कुछ होता नहीं. क्योंकि स्कूल में भी जब हमको बहुत सीख सिखाई जाती है, हमको किसी को प्रीची चीजें अच्छी नहीं लगती. तो फोकस है कहानी कहने में, और उसके साथ आफ्टर टेस्ट में आप कुछ लेके जाओ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे दो मिनट के लिए से. लेकिन वो फिर एक हर कहानी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बहन के साथ है.
1: तो मम्मी के कैरेक्टर से क्या क्या लेके जाओगे, सीखते जाओगे?
0: कि बिंदास रहने का.
2: बिंदास रहने का.
0: लिव फॉर योरसेल्फ, लिव फॉर योरसेल्फ.
1: और हमारी आज की मदर्स के लिए भी तो कोई मैसेज होना चाहिए,
0: यही कि यू नो दे शुड लुक आफ्टर देमसेल्फ्स. और दैट दैट खाली एक वो माँ है बट एक इंसान भी है, एंड दे नीड टू ऑल्सो रियलाइज दैट, एंड वी एज किड्स ऑल्सो नीड टू सी द ह्यूमन साइड ऑफ देम, एंड नॉट जस्ट कि यार ये मम्मी है तो दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो, यू ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, मतलब बड़े हो गए हो, अब नहीं भी हुए तो मदर्स शुड ऑल्सो टीच देयर किड्स, आई फील, फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि बहुत जरूरी होता है आई थिंक इंडिपेंडेंट होना.
1: माधुरी जी, आपके तो दो बेटे हैं
0: जी,
1: तो कभी ऐसा फील हुआ कि मम्मी मम्मी वाले रोल में आना है मुझे?
0: हाँ, होता है ना, अलग अलग रोल होते हैं मम्मी के. कभी मम्मी वाला रोल होता है, कभी डॉक्टर वाला रोल होता है, कभी रेफरी वाला रोल होता है. जैसे झगड़ा करने लगे तो यू आर द रेफरी इन द मैच. सो जैसे मॉम्स कहते हैं ना, वी वेयर अ लॉट ऑफ हैट्स, तो अलग अलग रोल होता है, एवरी डे इज डिफरेंट.
1: उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं आपसे?
0: नो, आई थिंक माई किड्स आर वेरी स्वीट, मतलब और हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है. दो बच्चे हों उनकी भी पर्सनैलिटी अलग, तीन हो तो और भी अलग. तो आई थिंक दे बेसिकली सपोर्ट मी अलॉट, और दे लव मी. दे अगर कुछ अच्छा देखते हैं तो दे विल प्रेज मी. दे लव द फैक्ट दैट आई वर्क. और जब भी मैं सेट से वापस जाती हूँ, डिड यू हैव फन टुडे, ऐसे पूछते हैं. डिड यू हैव फन टुडे, डिड यू हैव अ ग्रेट टाइम. उन्होंने ट्रेलर देखा, बहुत पसंद आया दोनों को, तो दे ऑल्सो लुकिंग फॉर टू वॉचिंग माँ बहन. तो पहले जब मैंने टाइटल उनको भी बताया तो हंसने लग गए थे. आफ्टर ऑल देन दे सेड, ओ दिस, आफ्टर द ट्रेलर दे सेड, मॉम एप्ट टाइटल इज वेरी गुड. सो दे हैव, दे कुक, यू नो, खुद बनाते हैं अपना खाना वाना, सब देखना नहीं पड़ता उनको.
1: एक्सपेक्टेशंस जब हम करते हैं आज की तारीख में, ठीक है, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम हो गई या चेंज हो गई है बच्चों की प्रायोरिटीज, क्योंकि आधा टाइम तो बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो इसलिए मम्मी अगर नहीं भी दिखे तो चलेगा. तो ये ट्रेंड क्या चेंज हुआ है आज की डेट में आपको लगता है, या हम पहले टाइम में ज्यादा मम्मी पास रहे तो बेटर है, और आज की डेट में अगर नहीं भी रह रही है तो ठीक है चलेगा?
3: मेरा तो ऑनेस्टली मिक्स चलता है, मुझे चाहिए भी मम्मी, पर जब मम्मी बिजी है तो ठीक है मम्मी आप अपना काम भी कर लो. तो मैं इतना मम्मी को बॉदर नहीं करती हूँ, मैं एक अच्छी बच्ची हूँ. मेरी मम्मी भी एक वर्किंग मदर है, तो वो अपना हैंडल करती हैं सब कुछ, बिजनेस ऑनर होन, तो मुझे पता है कि उनके पे ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो फिर भी ट्राई करती हैं कि उसमें से जितना भी टाइम मिले जो उनको नहीं करना चाहिए वो अपने से ज़्यादा हम पे ही हमारा ध्यान रख दें. आज मैं तेरी पैकिंग करा दूँ, ये करा दूँ, वो करा दूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ जितना कम से कम उनको परेशान करूँ. पर मेरे अंदर का वो एक है छोटी धारणा अभी भी, जिसको हमेशा मम्मी अपने पास चाहिए. बट जब तक मैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही, मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ खुद कर लूँ, और उन्हें सिर्फ तब अपने साथ रखूँ जब वो भी इंजॉय कर रही है. जैसे मैं उन्हें सबसे पहले जब मुंबई लेकर आई और मरीन ड्राइव पे बैठ के इंजॉय कर रही थी, तो मुझे बड़ा मजा आया वो देख के कि वो आज सिर्फ बीच पे बैठी हैं और मजे कर रही हैं, कुछ टेंशन नहीं. तो वो बहुत इंजॉय करती हैं जब मैं उन्हें यहाँ लेके आती हूँ. तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जब भी हो तो मैं लेके आऊँ. बाकी आप दूसरा क्वेश्चन.
1: ओके, सो माधुरी जी, वन लास्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन.

0: तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बस आप ही से है, तो हम आगे अब आपको कहाँ कैसे देख पाएंगे, और डिमांड अब बहुत ज्यादा आ गई, सर ने सूबेदार भी आई गेस बनाई है अनिल जी के साथ, तो वी वॉन्ट अनिल जी एंड माधुरी जी टूगेदर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है?
1: बस इन पे है सर,
0: इन पे है सर,
1: अभी सर
2: कॉमेडी कॉमेडी
1: कॉमेडी इन पे है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, दो सवालों के लिए बोला गया था, दूसरा बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी, बहुत बहुत
2: शुक्रिया।
0: अभी के लिए इतना ही,
3: हमारा फोन चेक कर लो, अगर बाप पर विश्वास नहीं है।
4: विश्वास का बात तो तुम रहने ही दो मम्मी,
3: काकी है हम,
5: काकी हो भाई, वैसे पूरा कांड हुआ काकी है, है?
1: I love the character, क्योंकि ये बहुत ही अलग है, जैसे माँ को पेडेस्टल पे रखते हैं हमेशा, कि हमेशा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग और हमेशा खुद बहुत, मतलब बुखार होगा फिर भी खाना पकाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, माँ बहुत अलग है इसकी। That's what attracted me to this character.
3: अगर हम जेल गए तो तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे।
6: मैदानी इलाकों में गर्मी है और मौसम छुट्टियों का भी है, ऐसे में लोग पहाड़ों का लगातार रुख कर रहे हैं, जिस वजह से पहाड़ों की रौनक तो देखिए बढ़ी है लेकिन बोझ भी बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग हिल स्टेशन की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी प्लानिंग और कुछ नियमों का पालन किया जाए तो इस जाम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो क्या है वो नियम जिनका पालन करने से आपकी यात्रा होगी मंगलमय, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।

0: चिलचिलाती धूप और उमस से दूर पहाड़ों की ये ठंडी हवाएं और खूबसूरत नजारे इस समय हर किसी का दिल जीत रहे हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार है तो दूसरी तरफ समर वेकेशन भी चल रही है। ऐसे में देश के खूबसूरत हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हैं। श्रीनगर से लेकर शिमला तक, मंडी से लेकर मसूरी तक सैलानियों की रौनक देखते ही बन रही है। लेकिन पर्यटकों के इस बहार के साथ ट्रैफिक जाम की दुश्वारी सफर का ये मजा फीका कर रही है। हालत यह है कि ज्यादातर हिल स्टेशन पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और सुकून की तलाश में निकले लोगों के लिए पहाड़ों का सफर आफत जैसा बन गया है। यह हाल देश के किसी एक हिल स्टेशन का नहीं बल्कि श्रीनगर से लेकर शिमला और मंडी से लेकर मसूरी तक का है। लेकिन इन हालात से बचा भी जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखने की और कुछ नियमों का सही तरीके से पालन करने की। ट्रैफिक से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही दिन का चुनाव। आप वीकेंड्स पर हिल स्टेशन का रुख बिल्कुल ना करें क्योंकि इन दिनों फुटफॉल सबसे ज्यादा होता है। शुक्रवार शाम या शनिवार सुबह निकलने के बजाय कोशिश करें कि आप सोमवार या मंगलवार को यात्रा करें। दूसरी सबसे अहम है सही समय का चुनाव। आप पहाड़ों के लिए सुबह तड़के के समय यात्रा शुरू करें क्योंकि इस समय में स्थानीय ट्रैफिक भी कम होता है। यात्रा के दौरान मैप्स पर रास्ते का हाल चेक करते रहें। इसके अलावा राज्य पुलिस और स्थानीय पर्यटन विभाग की एडवाइजरी देखना ना भूलें। जाम से बचना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद जरूरी है, खासतौर से पहाड़ों पर ओवर स्पीडिंग और ओवरटेक करने से बचें।
1: यात्रा को आप दो तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि जब चारों धाम करते हैं इस पर हिंदू मैथोलॉजी तो गंगोत्री यमुनोत्री केदार बद्री होता है, रूट सेम फॉलो करते हैं, एक तो वो है। दूसरा क्या है कि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट किया जाए, जैसे कि जो नैनीताल वाला, यहाँ से जैसे नैनीताल है, नैनीताल से आप चौखटिया जाते हैं, वहां से आप रानीखेत जाते हैं, फिर आपको जो राजधानी है गैरसैंण, वहां से फिर आप ग्वालदम से होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचते हैं, तो इस रूट को भी डेवलप किया जाए। ये सरकार ने इसे बहुत इग्नोर किया है, एक तो ये है। दूसरा जो रूट है जो बहुत अच्छा बन सकता है, सहारनपुर से होते हुए आप नजियाबाद और यहाँ से होते हुए पौड़ी और पौड़ी से होते हुए श्रीनगर, और एक रूट अल्टरनेट रूट ये भी निकाला जा सकता है। तो इससे होगा क्या कि लोगों थोड़ा अपना ट्रांसपोर्ट और जो डिविजन्स हैं, जो वहाँ के लोकल्स जो लाइवलीहुड है, जो होटलियर्स हैं, स्टेक होल्डर, उन्हें भी रोजगार मिलेगा।
0: पहाड़ों का मौसम इन दिनों बेहद सुहाना है। वादियों की ताजा हवा और दिलकश नजारे आपके वेकेशन को और भी शानदार बना रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जरा सी लापरवाही परेशानी का सबब बन जाए। ऐसे में जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखें। छुट्टियों पर जाने से पहले उस इलाके के मौसम की जानकारी जरूर जुटा लें। खराब मौसम में सफर करने से परहेज करें। घर से निकलने से पहले ही होटल बुक कर लें क्योंकि इन दिनों होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही जितना कम सामान हो उतना बेहतर होगा। जरूरी दवाएं अपने साथ लेकर ही चलें। पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा ना फेंकें, किसी तरह की गंदगी करने से बचें।
1: जो सीमेंट में गेट सिस्टम है, ऑब्वियसली ये गेट सिस्टम पहले भी लगता था लेकिन रोड चौड़ी होने की वजह से लोगों ने गेट सिस्टम को ब्रेक कर दिया था। बीइंग अ नेटिव ऑफ बद्रीनाथ, मैं वहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ और चीज को समझता हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि वहाँ एक सिस्टम होता है 6 बजे मॉर्निंग में, फिर 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, पहले भी था लेकिन बीच में कुछ व्यवस्था ऐसी बनी कि वो लोगों ने फिर उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली उसी पे पहुंचे हैं। तो वो जाम नहीं है, वो एक प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो जाने वाली जब कार वहां से स्पेस खाली होगा तभी तो जो दोबारा आने वाले उस जगह पर रिफिल करेंगे, तो वो रिफिल सिस्टम है, तो वो जाम नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जो माइंड सेट है लोगों का, और वहां पर अगर 6-7 किलोमीटर तक लग रहा है ऑब्वियसली ज्यादा लोग जा रहे हैं। इसका जो दूसरा जो मेरा है कि कैरिंग कैपेसिटी के साथ में लेसर नोन डेस्टिनेशन को डेवलप करना। पंच बद्री है, पंच केदार है, भविष्य बद्री है, आदि बद्री है, और जो हमारे वृद्ध बद्री है उनको भी डेवलप किया जाए जिससे लोग वहां पे जाएं, और हम ऐसा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बनाएं कि जो अगर बद्री केदार जा रहा है तो एक वो लेसर नोन डेस्टिनेशन कवर करेगा, उससे क्या होगा कि चीजें बढ़ जाएंगी।
0: बेशक गर्मियों के इस मौसम में पहाड़ बुला तो रहे हैं लेकिन वहाँ की कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। ऐसे में आपकी थोड़ी सी प्लानिंग और समझदारी आपके सफर को आफत बनने से बचा सकती है। तो फिर देर किस बात की, थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अपना सफर तय कीजिए और अपनी छुट्टियों को हमेशा के लिए यादगार बना लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तो GNT भी तभी से आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे। तो चलिए आज आपका हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत हामक्लला वैली का दीदार कराते हैं।

0: नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ हमटा का लोकल निवासी हूँ। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा हुआ यहाँ पे। तो ये जो हमटा वैली है, ये मात्र 40 मिनट का रास्ता है मनाली से, और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट प्लेसेस में ये आता है। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, बहुत सुंदर मीडोज हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है, और छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ये सेतन विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, होम स्टेज हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, रूम्स हैं, डबल शेयरिंग रूम्स, और बंक बेड्स भी हैं यहाँ पे। ये विलेज कम्युनिटी हॉल है, और एक छोटा सा मॉनेस्ट्री भी है इस गांव में यहाँ पे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। क्योंकि ये पूरा गांव एक बुद्धिस्ट जो पहले फार्मिंग करते थे, और अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो कुछ लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, और साथ में ये टूरिज्म वाला काम भी देख रहे हैं। ये विलेज सेतन है, एक छोटा सा गांव है जो हमटा वैली का लास्ट गांव है। इसके बाद आपका हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे, और यहाँ पे लोग अपना खेतों में देखे यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई है। यहाँ पे गोभी, धनिया, ब्रोकली, बहुत सारे एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे जो सब्जी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है वो हमेशा। और ये हमटा वैली में जब आप लोग विंटर टाइम में आएंगे तो आप लोगों को पूरा एरिया ये बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे आपको इग्लू स्टे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इग्लूज है वो इसी वैली में ही बनते हैं, और फर्स्ट टाइम इग्लू स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हमटा वैली में लाया गया था। और ये बोला एरिया है जो इग्लू के लिए यूज होता है विंटर में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी, ग्रीन पैच जो मीडो है, ओपन मीडो, ये टॉप का, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, और जो ब्रिगु लेक है वो उसके टॉप पे है। और ये पूरा वैली जो ऐसे राइट साइड को गया, ये हमटा वैली है जो बहुत ही फेमस ट्रेकिंग रूट है, और हमटा पास क्रॉस करने के बाद आप दूसरी तरफ स्पीती की तरफ को जाते हैं। तो अभी मई जून से लेकर आपका सेप्टेम्बर मिड अक्टूबर तक यहाँ पे जो हमटा पास ट्रैक है वो चलता है, और आप कैंपिंग भी कर सकते हो फॉरेस्ट में, बहुत अच्छे रिवर साइड में या मीडोज में कहीं भी आप टेंट लगा दो, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग हैं पांडुरोपा में, ये सेतन से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव लोग एग्जाइल में थे वो लोग हिमालय में छुपे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पे, तो अपने उस एग्जाइल के टाइम में कुछ टाइम उन्होंने यहाँ भी बिताया है। तो इस जगह में ऐसा माना जाता है कि वो धान की रोपाई करते थे, जो सीड से पौधा तैयार करते हैं वो यहाँ पे तैयार करते थे, और उसकी जो बिजाई है खेत में वो ब्रिगु लेक के पास में, वहाँ भी एक पांडुरोपा करके जगह है, वो वहाँ पे उसके रोपाई करते थे। तो अभी हम लोग हैं हमटा के एक मशहूर ढाबा कालजंग ढाबा में, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अखरोट के सिड्डू बनते हैं। यस, तो ये है सिड्डू, और ये यहीं पे बना हुआ, और इसके अंदर अखरोट का पेस्ट डाला हुआ, और ये चटनी टमाटर, पुदीना, मिर्च, पूरी तरह से ये नेचुरली ब्लेस्ड एक एरिया है।
1: आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भी भागीदार बनिए। देखिए, आपको बस करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है, या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, कोई खास कारण है, तो उठाइए अपना कैमरा और बना दीजिए ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप करें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
4: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
3: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
5: मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, CJI सूर्यकांत ने दिलाई शपथ, अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या हुई 37। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल के लिए रिक्वेस्ट लेटर, मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे, 3.25 लाख करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी डील। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ CBSE री इवैल्यूएशन पोर्टल, OSM केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त, 40 दिनों में करीब 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज। मनोकामना पूरी होने पर चंडीगढ़ के एक भक्त ने उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर को चढ़ाया चांदी का मुकुट और आकर्षक कुंडल, मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ भेंट को किया स्वीकार। ज्येष्ठ महीने का आज 5वां बड़ा मंगल, सुबह से मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, अयोध्या में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सुख शांति समृद्धि की मांगी कामना।
9: NECC संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाराश। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: आज ज्येष्ठ महीने का 5वां बड़ा मंगल, देशभर के हनुमान मंदिरों में बजरंगबली के भक्तों की भीड़ लगी। बड़ा मंगल पर लाल मसूर, लाल वस्त्र या लाल फलों का दान की विशेष मान्यता है। सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पांचवें बड़ा मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार किया गया। भगवान को अर्पित फूल की मालाएं और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। अयोध्या में पांचवें बड़ा मंगल पर प्रभु राम की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची राजस्थान की मंत्री मंजू बाघमार, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। तमिलनाडु के मियालथुदराई के परिमाला रंगनाथर मंदिर में वसंतोत्सव की धूम देखी गई, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत, सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। छुट्टी मनाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू हो गई है गोंडोला राइड, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रोकी गई थी सेवा। रामबन में सीआरपीएफ ने 84वीं बटालियन की स्थापना दिवस मनाया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गांधीनगर में फैबेक्सा एडिशन फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो का शुभारंभ हुआ, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, सीएम विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों की सुनी फरियाद। देहरादून में सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले 4.5 सालों में 33,000 युवाओं को मिली नौकरी। जलगांव में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया, कहा स्वास्थ्य का सरकार विशेष ध्यान दे रही। तेलंगाना के गरीब, बेघर और भूमिहीन परिवारों के लिए गुड न्यूज, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसी साल 17 सितंबर को 1,00,000 परिवारों को घर देने का किया ऐलान। जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बिहार के गया की पटवा टोली का जलवा, पटवा टोली के वृक्ष संस्थान में पढ़ाई करने के बाद 10 छात्रों को जेईई एडवांस्ड में सफलता। गुजरात के अहमदाबाद में भी अचानक से बदला मौसम, आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान के जैसलमेर में भी लोगों को गर्मी से मिली राहत, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, अनंतनाग जिले का डेडबल कापरान में कुदरती सुंदरता के बीच मिलता है छुट्टियां मनाने का मौका। इस हफ्ते ओटीटी पर भी होगा एंटरटेनमेंट का धमाल, एक्शन क्राइम और फैमिली ड्रामा का मिलेगा फुल डोज, रिलीज होगी गुल्लक, धुरंधर और मां बहन। तमिल सिनेमा के अभिनेता सूर्या की करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी करप्पू, अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही मोहनलाल की दृश्यम 3 रिलीज के 12 दिन के बाद कमाई 100 करोड़ के करीब। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज राग का ट्रेलर रिलीज हो गया है, वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे, अभिनेता अली फजल की मुख्य भूमिका है। खतरों के खिलाड़ी 15 का पहला बीटीएस प्रोमो जारी हो गया है, धमाकेदार एक्शन में दिखे रोहित शेट्टी, टीवी पर जल्द लौटने वाला है स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 15।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: अच्छे से अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। ज्येष्ठ महीने के पांचवें बड़ा मंगल पर उमड़ी आस्था, हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार। बद्रीनाथ धाम में हनुमंत कथा संपन्न कर बागेश्वर धाम लौटे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, 21 दिनों के एकांतवास के दौरान हुए अद्भुत अनुभव अपने साझा किए।
12: तो वहीं फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील, भारत ने 3,25,000 करोड़ में 114 राफेल खरीद का रिक्वेस्ट भेजा।
11: जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों के लिए है एक गुड न्यूज, मेंटेनेंस के बाद गुलमर्ग की गोंडोला राइड फिर से शुरू कर दी गई।
12: तो काला हिरण फिल्म का पोस्टर जारी करने पर सलमान की लीगल टीम ने फिल्म मेकर्स को भेजा नोटिस, फिल्म का रिलीज रोकने के साथ पोस्टर हटाने की मांग। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ के पास स्थित नारायण पर्वत की गुफा में 21 दिन के एकांत साधना पूरी कर वापस अपने धाम लौट चुके हैं। साधना के दौरान की गई अनुभूतियों को पहली बार साझा करते हुए उन्होंने एक अत्यंत चौंकाने वाला खुलासा किया। उनकी अद्भुत अनुभूति को सुनकर हर कोई हैरान है। ये बात ऐसी है जिस पर आसानी से यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन वाकई की चर्चा उन्होंने जिस तरीके के साथ की है उसे झुठला देना भी आसान बिल्कुल नहीं। देखिए बाबा बागेश्वर अनोखी अनुभूति पर आधारित ये खास रिपोर्ट।

0: कभी कभी जीवन में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिसे लेकर मन द्वंद्व से घिर जाता है। इस बात पर यकीन करें तो कैसे करें और यकीन ना करें तो कैसे ना करें। ऐसा ही एक दिव्य वाक्या हुआ है विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। सबको पता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते 6 मई को एकांतिक साधना के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर ने बद्रीनाथ धाम से और ऊंचाई पर स्थित नारायण पर्वत की तलहटी में कल कल बहती पतित पावन ऋषि गंगा के पास एक दुर्गम गुफा में पूरे 21 दिन तक नितांत एकांतिक साधना पूरी की। इस साधना के दौरान खुद के साथ हुए एक अजीब वाकये की अनुभूति जब उन्होंने साझा की तो उसे सुनकर लोग विस्मित हो गए। बाबा ने बताया कि साधना के दिनों में एक मध्य रात्रि के दौरान जब वो विश्राम करने जा रहे थे तभी गुफा में बनी खिड़की पर किसी ने जोर से लात मारी। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
1: किसी ने 2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी हो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, एक आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी तो हम सावधान होकर के हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सोई रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए पर थोड़ा मन में तो आया, तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था।
0: 18-19 फीट लंबे इंसान की कल्पना तक आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब अति विशाल काय सफेद वस्त्रधारी कोई महात्मा थे तो फिर खिड़की पर जोर से लात मारने वाला कौन था। बाबा बागेश्वर ने अगली सुबह इस अविश्वसनीय घटना की चर्चा जब अपने पूज्य गुरु से की तो उन्होंने बताया कि हिमालय में यक्ष घूमते हैं और उनका काम ही है साधकों की साधना में खलल डालना। पर असली सवाल तो ये है कि अगर यक्ष साधना भंग करने के लिए घूमते हैं तो फिर श्वेतांबरधारी अति विशालकाय वो महात्मा कौन थे जो मध्य रात्रि को ऋषि गंगा के समीप एक विशाल चट्टान पर खड़े बाबा बागेश्वर की दृष्टि में आए। इसका जवाब आप खुद बाबा बागेश्वर से ही सुन लीजिए।
1: अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा सन्यासी बाबा से कि आज ये लात किसने मारी। बोले यहां पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, अब वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे ये कौन थे। बोले बेटा ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते हैं। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ।
2: तो बाबा बागेश्वर हर साल भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार की यात्रा इस लिहाज से अलग थी कि वो खुद को यहां साधने के लिए पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर ने पहले 21 दिनों की एकांत साधना की और फिर 5 दिनों तक हनुमंत कथा की, जो कि श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया है।

0: भगवान बद्री विशाल की पावन नगरी बद्रीनाथ में 5 दिनों से चल रही श्री सत्यनारायण कथा का समापन श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हो गया। कथा के आखिरी दिन रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पहुँचे और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। 21 दिनों की एकांत साधना और 5 दिनों की कथा के साथ संपन्न हुआ ये आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया। बद्रीनाथ धाम में आयोजित इस कथा ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती दी बल्कि सनातन संस्कृति के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कथा के अंतिम दिन बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं को भक्ति, सनातन और राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया।
1: आप सब तीर्थों की महिमा बनाए रखें, तीर्थों को सजो करके रखें। ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विरासत का संरक्षण संवर्धन करना हमारा दायित्व है। हमारे पूर्वजों ने इसी के लिए जीवन जिया, आओ हम भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।
0: 27 मई से शुरू हुई हनुमंत कथा धूमधाम से 31 मई तक चली। धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति के इस महायज्ञ में हर दिन देश भर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। भजन कीर्तन, वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए। बद्रीनाथ धाम में वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। बाबा बागेश्वर ने सनातन धर्म, भगवान विष्णु और बद्री विशाल की महिमा पर प्रवचन दिया। कथा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर ने भगवान सत्यनारायण की महिमा का वर्णन किया, श्रद्धालुओं को सत्य, सेवा, भक्ति और सदाचार का महत्व बताया। तीसरे दिन कथा का केंद्र सनातन संस्कृति और राष्ट्र चेतना रही। बाबा बागेश्वर ने युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का आह्वान किया। चौथे दिन कथा में गौ सेवा, धर्म रक्षा और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। बाबा बागेश्वर ने समाज में संस्कार, सेवा और एकता को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पांचवें और अंतिम दिन विशेष हवन, पूर्णाहुति और भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ भगवान विष्णु और बद्री विशाल की आरती में भाग लिया। देवभूमि में आयोजित इस धार्मिक आयोजन ने श्रद्धालुओं को पूरे 5 दिनों तक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस कथा में भक्ति, साधना, संस्कृति और राष्ट्र चेतना का अनूठा संगम देखने को मिला। कथा बेशक समाप्त हो चुकी है लेकिन यहाँ से मिला आध्यात्मिक संदेश श्रद्धालुओं के मन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब बात बड़ा मंगल पमड़ी आस्था के जनसैलाब की।

0: देखिए, आज मंगलवार यानी महावीर का वार है। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंग बली की पूजा होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में मंगल बेहद शुभ और अद्भुत माना जाता है। इस साल तो पुरुषोत्तम मास है, ऐसे में बड़ा मंगल और ज्यादा फलदायी हो जाता है।
1: आज पांचवा बड़ा मंगल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी की अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य का लाभ होता है। यही वजह है कि आज बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
0: और देखिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ आपको दिखाई देगी। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन को पहुंचे, जबकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा मंगल के इस खास मौके पर लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई।
1: और इसी तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां भी गूंज रही हैं।

0: आज है ज्येष्ठ महीने का पांचवा कल्याणकारी बड़ा मंगल। बड़ा मंगल के स्वामी हैं वीर हनुमान। बुढ़वा मंगल पर बनेंगे सारे बिगड़े काम। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार विशेष हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी और इसी दिन बजरंगबली को अमरता का आशीर्वाद भी मिला था। ऐसे में इस दिन बजरंगबली की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन संकटमोचन हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस बार पांचवें बड़े मंगल पर भक्तों के लिए पूजा के पांच शुभ मुहूर्त बने हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:51 से 12:44 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:24 तक। गोधुली मुहूर्त शाम 7:11 से 7:32 तक। अमृत काल शाम 7:46 से रात 9:18 तक। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा, व्रत और सुंदर कांड का पाठ करने से भय, रोग और सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा के अलग अलग विधान हैं, लेकिन अगर आप घर पर बड़ा मंगल मनाना चाहते हैं तो ये सरल विधि अपना सकते हैं। स्नान करके पूजा स्थान साफ करें, भगवान हनुमान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, परंपरानुसार सिंदूर, फूल, प्रसाद या फल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शक्ति, संरक्षण, साहस और सही कर्म की प्रार्थना करें, किसी व्यक्ति को भोजन, पानी और सहायता देकर सेवा करें। पांचवा बड़ा मंगल पुरुषोत्तम मास में पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम यानी ज्येष्ठ मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए पांचवें बड़े मंगल को बहुत ही शुभ और दुर्लभ बताया जा रहा है। वैसे तो पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इसमें हनुमान जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी राम भक्त हैं, जो श्री हरि का अवतार हैं। इसलिए इस मास में उनकी आराधना से श्री हरि और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन की बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अयोध्या का हनुमानगढ़ी वो धाम है जहां पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है। बड़ा मंगल पर भक्तों की भीड़ यहां उमड़ी। आज के दिन कई भक्तों की योजना होती है और कि राम भक्त हनुमान के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किए जाएंगे। ऐसे में हनुमानगढ़ी में भक्तों की एक अच्छी खासी भीड़ पहुंची हुई है।
2: ज्येष्ठ मास के पंचम मंगलवार को, बड़े मंगलवार को, आज लाखों की भीड़ यहाँ पर उपस्थित है हनुमानगढ़ी पर। लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं हनुमान जी का।
3: आज बड़े पांचवा बड़ा मंगलवार है और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है और हम जो है सभी साथियों, मित्रों, चिंतकों के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ, मस्त, प्रसन्न रखें।
1: और देखिए, बजरंग बली के श्री राम के प्रति भक्ति अतुलनीय है। शक्ति, ज्ञान, पराक्रम और विनम्रता के अद्भुत संगम हनुमान जी ने कभी अपने यश की कामना नहीं की। उनका एकमात्र उद्देश्य श्री राम की प्रसन्नता और सेवा रही, इसीलिए वो भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के सर्वोच्च आदर्श माने जाते हैं। बड़ा मंगल के पवित्र और पावन दिन पर राम मंदिर में भव्य आरती का आयोजन हुआ। रामलला के साथ साथ राम दरबार में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भव्य आरती संपन्न हुई। जयकारों और भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय उठा और श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद भी लिया। तो आज ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और आज का दिन पांचवा बड़ा मंगल है। अयोध्या में सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें दर्शन के लिए पहुंची हुई है और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
4: Thank you. भगवान श्री राम की जन्मभूमि का दर्शन करने आया हूँ। सबसे पहले यहाँ के रक्षक जो हनुमान जी हैं, हनुमान गढ़ी, वहाँ पर हनुमान जी को मत्था टेका, प्रणाम किया। और उसके बाद राम द्वारे तुम रखवारे हो, तुम आज्ञा बिन पैसारे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबसे पहले हनुमान जी से मिलिए, फिर जो है राम जी से मिलिए। तुम्हारे भजन राम को पावे, हनुमान जी का भजन करोगे तो राम जी से मिला देंगे। अब राम जी के पास हम आए हैं, उनसे सबसे पहले हमें जीवन में धैर्य धारण करने का संबल प्राप्त होता है। माने कोई भी समस्या हो, धैर्य पूर्वक उसका निदान ढूंढो। वेद सदाचार स्वस्थ परमात्मन इत चतुष्ट नितम साक्षात धर्म श्रेणे। मैं यहाँ भगवान श्री राम के जन्मभूमि का श्री विग्रह का जो दर्शन करने आया हूँ, उसका लक्ष्य यही है भगवान हमें शक्ति सामर्थ्य दें, साधना में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनको निराकरण करने का हमें सामर्थ्य प्रदान करें, हमें धैर्य प्रदान करें और हमारी बुद्धि इतनी प्रखर करें, तेज करें, हम सहज रूप से उन बाधाओं का निराकरण करते हुए हम उनके असीम कृपा का पात्र बने, अपने जीवन को धन्य बनाएं।
1: देखिए, अधिक मास में पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है, खासकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का, क्योंकि अधिक मास को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम समय माना गया है। ऐसे में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी आ रहे हैं।
0: वृंदावन में उमड़ा है आस्था का सैलाब, कान्हा के भक्तों से गलियां गुलजार हैं। हर किसी को कान्हा के दर तक पहुंचने की जल्दबाजी है। मुरली मनोहर की एक झलक पाने की बेसब्री है। मानो अधिक मास में बांके बिहारी के दर्शन की आस कहीं अधूरी ना रह जाए। तस्वीरें वृंदावन की है, देखिए क्या नजारा है। जहाँ तक नजर जाती है लोग ही लोग नजर आते हैं। श्रद्धालुओं की तादाद इतनी बढ़ गई है कि गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। श्रद्धालुओं की इस भीड़ की वजह है अधिक मास, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। असल में पुरुषोत्तम मास में श्रीहरि की पूजा का विशेष महत्व है। अधिक मास को भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में श्रीहरि की पूजा करने, व्रत रखने और दान पुण्य करने से सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। इस माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए शुभ कर्म और दान कई गुना फल प्रदान करते हैं तथा जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान की कृपा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वृंदावन की गलियों में उमड़ी ये भीड़ जहां एक ओर कान्हा में उनकी अटूट आस्था की झलक पेश कर रही है, वहीं प्रशासन के लिए चुनौती भी। आराध्य से मिलन की आस लिए वृंदावन आए श्रद्धालुओं को बांके बिहारी की एक झलक मिल जाए, इस व्यवस्था में प्रशासन भी जुटा है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए जीएनटी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
7: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, CJI सूर्यकांत ने दिलाई शपथ। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या हुई 37।
3: भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल के लिए रिक्वेस्ट लेटर। मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे। 3.25 लाख करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी।
2: कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ CBSE री इवेल्युएशन पोर्टल। OSM केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच।
3: बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। 40 दिनों में करीब 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा।
2: मनोकामना पूरी होने पर चंडीगढ़ के एक भक्त ने उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर को चढ़ाया चांदी का मुकुट, आकर्षक कुंडल। मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ भेंट को किया स्वीकार।
3: ज्येष्ठ महीने का आज 5वां बड़ा मंगल। सुबह से मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। अयोध्या में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सुख शांति समृद्धि की मांगी कामना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: सलमान खान पर बेस्ड काला हिरण फिल्म का पोस्टर जारी होते ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सलमान की टीम ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कानूनी नोटिस भेज दिया है और अब इस नोटिस में फिल्म की रिलीज रोकने और पोस्टर को सोशल मीडिया से हटाने की बात कही गई है। क्या है ये विवाद और क्यों ये सुर्खियों में छा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
4: रियल लाइफ जब रील पर उतरती है तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। बॉलीवुड के दबंग सलमान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की तनातनी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इसकी असल वजह 1998 का के बीच की तनातनी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इसकी असल वजह 1998 का काला हिरण शिकार का मामला है, जिस पर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। अब इस हाई प्रोफाइल विवाद को बड़े पर्दे पर उतारने की पूरी तैयारी हो गई है। फिल्ममेकर्स ने फिल्म का नाम ही काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी रखा है। 29 मई को फिल्म के प्रोड्यूसर ने काला हिरण का पोस्टर जारी किया, लेकिन फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सलमान खान की लीगल टीम ने काला हिरण के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को फिल्म को लेकर एक कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के जरिए मेकर्स से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है, साथ ही इस पोस्टर को सोशल मीडिया से जल्द हटाने की बात नोटिस में शामिल है।
5: 1998 में काकानी गांव है जो जोधपुर का, उसमें हिरण शिकार की घटना हुई। सलमान खान, सैफ अली खान सब नामजद हुए, तब्बू से लेके और सोनाली बेंद्रे तक। उसमें सलमान खान को जेल जाना पड़ा, 3 बार जेल गए, 2 बार सजा हुई, 1 बार सजा हुई लोअर कोर्ट से, दोबारा हुई सेशन कोर्ट से। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि साहब मैं तो बरी हो गया हूं और आप मेरे विषय पे फिल्म नहीं बना सकते। यहाँ कितने कोर्टरूम ड्रामे बने हैं जिसमें हमने भट्टा पारसोल से लेके बाकी सब पे जीत की फिल्म के जरिए दिखाई है। या अजमल का साहब के 26/11 फिल्म बनी है, यहाँ पे भगत सिंह की फांसी फिल्म बनती है, जितने रियल इंसिडेंट है। अभी हमने धुरंधर में देखा कि नोटबंदी दिखाई गई है और अतीक अहमद का हमने पूरा काला चिट्ठा उसमें दिखाया है। तो तमाम चीजें जो है फिल्मों में दिखती हैं। तो सलमान खान कोई अछूत थोड़ी है कि हम उनकी जिस घटना में नामजदगी है उस घटना को पर्दे पे नहीं ला सकते हैं। तो ये कोर्टरूम ड्रामा भी है, जो संघर्ष था बिश्नोईयों का, जो लड़े वो पूरे स्टारडम से, पूरे बॉलीवुड से, और वहां पे हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से वकील आते थे। उनके पास प्रिया स्कूटर वाले वकील थे, वो गरीब लोग थे, उनके घर में अभाव था और ये करोड़ों रुपए रिश्वत की पेशकश करते थे इनके लोग। उसके बावजूद भी ना कोई बिश्नोई बिका, ना रुका, ना झुका। तो जो उनकी लेगेसी है, जो उनकी विरासत है कि 363 लोगों ने, बिश्नोईयों ने खेजड़ली गांव में मां अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। जो उनका वन्य जीवों से और हिरणों से प्रेम है, उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है, उसको हमने पर्दे पे उतारने का काम किया है।
4: रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में कोर्टरूम ड्रामे से लेकर सलमान खान की गिरफ्तारी और बिश्नोई समाज की नाराजगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टकराव की पूरी कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा संभल, मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में शूट किया गया है। फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए अमित जानी ने ये भी बताया कि इसी महीने की 20 तारीख को फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब सलमान के कानूनी नोटिस का इस रिलीज पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, बॉलीवुड में अक्षय कुमार तो कामयाबी की गारंटी बन ही चुके हैं। जितनी 100 करोड़ी फिल्में अक्षय ने बॉलीवुड में दी हैं, उतनी किसी और स्टार ने शायद नहीं दी होंगी। अब अक्षय की नई फिल्म भूत बंगला भी बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है। इस फिल्म ने रिलीज के छठे हफ्ते में कमाई का नया रिकॉर्ड भी बना दिया है।
6: बॉक्स ऑफिस पर छा गई भूत बंगला। छठे हफ्ते में अक्षय की फिल्म ने बनाया कमाई का कीर्तिमान। भूत बंगला पिछले 5 साल में अक्षय कुमार की सबसे हिट फिल्म बन गई है। 17 अप्रैल को रिलीज होने के बाद से ही ये फिल्म कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। छठे हफ्ते में फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले अक्षय की फिल्म वेलकम ने छठे हफ्ते में 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 265 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। खास बात यह है कि फिल्म ने बिना किसी फ्रेंचाइजी सपोर्ट या सीक्वल के शोर शराबे के ये बड़ा मुकाम हासिल किया है। रिलीज के करीब 1.5 महीने बाद भी इस फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह बना हुआ है। यही वजह है कि भूत बंगला साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई है। अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म किसी शानदार तोहफे से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय बाद उनकी किसी फिल्म को इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। अचीवमेंट के साथ फिल्म ने खुद को साल की सफल फिल्मों की लिस्ट में मजबूती से दर्ज करा लिया है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की चर्चा लगातार बनी हुई है और ऑडियंस इसकी हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन की तारीफ कर रहे हैं। भूत बंगला की सफलता को और दिलचस्प बनाता है इसका बजट। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। हॉरर कॉमेडी जैसे जॉनर में इतनी बड़ी रकम लगाना अपने आप में एक बड़ा दांव माना जाता है। रिलीज से पहले सवाल यही था कि क्या फिल्म दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच पाएगी, लेकिन फिल्म ने आते ही माहौल बदल दिया और धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। भूत बंगला की सक्सेस के बाद अब फैंस की नजर अक्षय कुमार की अगली बड़ी फिल्म वेलकम 3 पर है। सोशल मीडिया पर भी लगातार ये चर्चा हो रही है कि भूत बंगला के बाद अक्षय कुमार एक और बड़ी एंटरटेनर के साथ दर्शकों के बीच आने वाले हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल

0: तक भी और बेहद रहस्यमय भी। लेकिन सबसे पहले बात फिल्म की रिलीज डेट की। अल्फा की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले मेकर्स इसे साल 2025 में रिलीज करना चाहते थे, इसके बाद फिल्म को अप्रैल 2026 और फिर 10 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन अब ताजा जानकारी बता रही है कि फिल्म 10 जुलाई नहीं बल्कि 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि यशराज फिल्म्स की तरफ से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की धमाल 4 के 17 जुलाई पर शिफ्ट होने के बाद मेकर्स को 3 जुलाई की विंडो ज्यादा बेहतर लगी। ऐसे में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को एक हफ्ता पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। लेकिन रिलीज डेट के साथ साथ जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कथित अनबन की खबरें, जो काफी समय से चर्चा में थी। चर्चा ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों सितारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब खुद बॉबी देओल ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बता दिया है। बॉबी के मुताबिक, मुझे भी किसी दोस्त ने उस खबर का स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं भी हैरान था, लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं। अब बात उस कहानी की जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्फा में आलिया किसी सामान्य रॉ एजेंट या स्पाई के रोल में नजर नहीं आएंगी, बल्कि एक ऐसी खतरनाक असेसिन के किरदार में दिखेंगी जिसका पूरा बचपन ट्रेनिंग, दर्द और हिंसा के बीच गुजरा है। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिर्फ मारना सिखाया गया, जो धीरे धीरे एक घातक हथियार में बदल गई और जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि आलिया ने अपने करियर की सबसे कठिन फिजिकल तैयारी शुरू की। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने करीब 4 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट सीखी, हथियारों को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना सीखा, वायरवर्क और एरियल स्टंट्स की ट्रेनिंग ली और स्पीड और साथ ही फुटवर्क पर हफ्तों तक मेहनत की। बॉबी देओल भी आलिया की तैयारी देख हैरान रह गए थे। बॉबी ने आलिया की कमिटमेंट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की तैयारी उन्होंने की उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया। बॉबी की इन सभी बातों से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में आलिया और बॉबी के बीच कई हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देती है तो क्या ये वाकई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल एक्शन ब्लॉकबस्टर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
5: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Tune in to How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage.

0: Nice, right?
1: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

देखिए, मौसम के बदले हुए मिजाज से देश में चिलचिलाती गर्मी से राहत तो है। बिहार, यूपी समेत पूर्वोत्तर भारत में प्री मॉनसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राहत वाली बात यह है कि दो दिन के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देगा, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुश

0: 1 जून की तारीख बीत चुकी हो और देश से मॉनसून नदारद हो, ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मॉनसून कब दस्तक देगा। पिछले दिनों मौसम के मिजाज में हुए बदलाव से बेशक देश में हीट वेव का असर फिलहाल खत्म हो गया हो, चलचलाती गर्मी से राहत मिली है, कई राज्यों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। सोमवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई। राजस्थान के अजमेर, नागौर और चित्तौड़गढ़ में ओले गिरे। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी है। वहीं दिल्ली NCR में यह हफ्ता राहत भरा रह सकता है।
1: देखिए, बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर्स हैं वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है, कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं इनसे दिल्ली में हो ही सकता है।
0: देश में आमतौर पर मॉनसून 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है। इस बार तो मौसम विभाग ने 26 मई को ही मॉनसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई और अब तक मॉनसून केरलम नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल फिर वही है कि मॉनसून कब दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक अरब सागर, लक्षद्वीप, केरलम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल है। बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मॉनसून आगे बढ़ सकता है।
1: हमने बताया था, लेकिन कंडीशंस इतना फेवरेबल नहीं बना और अब हमारा अनुमान है आने वाले 2-3 दिन में कंडीशंस फेवरेबल हो सकता है कि कुछ ये लक्षद्वीप के जो कुछ हिस्से कवर कर सकता है, केरला का कुछ हिस्से कवर, मानसून कवर कर सकता है, साउथ तमिलनाडु के हिस्से कवर कर सकता है और हमारा बे ऑफ बंगाल का काफ़ी हिस्सा बचा हुआ है, वो हिस्सा आने वाले 2-3 दिन मानसून कवर कर सकता है।
0: आमतौर पर दिल्ली में मॉनसून 27 जून तक दस्तक देता है, लेकिन अब जबकि मॉनसून केरलम ही देरी से पहुंच रहा है, ऐसे में दिल्ली में इसके पहुंचने की संभावना 27 जून से 1 जुलाई तक है। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली NCR ही नहीं पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में फिलहाल मौसम सुहाना बना रहेगा। प्री मॉनसून बारिश राहत की फुहारें बरसाती रहेगी।
1: पीवी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, उसका प्रभाव थोड़ा जहां NCR में भी रह सकता है। उसके अलावा एक राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है जिसका प्रभाव रहने का अनुमान है। इसके बाद 2 दिन के बाद फिर एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी और ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर्स हैं थोड़े तो राइज होंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सामान्य से कम है, लेकिन फिर भी एज सच कोई हीट वेव सिनेरियो आने वाले 1 वीक में नहीं है।
0: कुल मिलाकर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में फिलहाल मौसम कूल बना रहेगा और हीट वेव की आशंका ना के बराबर है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की, तो GNT भी तभी से आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को GNT पर दिखाएंगे। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत हमटा वैली का दीदार कराते हैं।

0: नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ हमटा का लोकल निवासी हूँ। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा हुआ यहाँ पे। तो ये जो हमटा वैली है, ये मात्र 40 मिनट का रास्ता है मनाली से, और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट प्लेसेस में ये आता है। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, बहुत सुंदर मीडोज हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है, और छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ये सेतन विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, होम स्टेज हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, रूम्स हैं, डबल शेयरिंग रूम्स, और बंक बेड्स भी हैं यहाँ पे। ये विलेज कम्युनिटी हॉल है, और एक छोटा सा मॉनेस्ट्री भी है इस गांव में यहाँ पे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। क्योंकि ये पूरा गांव एक बुद्धिस्ट जो पहले फार्मिंग करते थे, और अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो कुछ लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, और साथ में ये टूरिज्म वाला काम भी देख रहे हैं। ये विलेज सेतन है, एक छोटा सा गांव है जो हमटा वैली का लास्ट गांव है। इसके बाद आपका हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे, और यहाँ पे लोग अपना खेतों में देखे यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई हैं। यहाँ पे गोभी, धनिया, ब्रोकली, बहुत सारे एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे जो सब्जी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है वो हमेशा। और ये हमटा वैली में जब आप लोग विंटर टाइम में आएंगे तो आप लोगों को पूरा एरिया ये बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे आपको इग्लू स्टे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इग्लूज है वो इसी वैली में ही बनते हैं, और फर्स्ट टाइम इग्लू स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हमटा वैली में लाया गया था। और ये वाला एरिया है जो इग्लू के लिए यूज होता है विंटर में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी, ग्रीन पैच जो मीडो है, ओपन मीडो, ये टॉप का, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, और जो ब्रिगु लेक है वो उसके टॉप पे है। और ये पूरा वैली जो ऐसे राइट साइड को गया, ये हमटा वैली है जो बहुत ही फेमस ट्रेकिंग रूट है, और हमटा पास क्रॉस करने के बाद आप दूसरी तरफ स्पीटी की तरफ को जाते हैं। तो अभी मई जून से लेकर आपका सेप्टेम्बर मिड अक्टूबर तक यहाँ पे जो हमटा पास ट्रैक है वो चलता है, और आप कैंपिंग भी कर सकते हो फॉरेस्ट में, बहुत अच्छे रिवर साइड में या मीडोज में कहीं भी आप टेंट लगा दो, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग हैं पांडुरोपा में, ये सेतन से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव लोग एग्जाइल में थे वो लोग हिमालय में छुपे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पे, तो अपने उस एग्जाइल के टाइम में कुछ टाइम उन्होंने यहाँ भी बिताया। तो इस जगह में ऐसा माना जाता है कि वो धान की रोपाई करते थे, जो सीड से पौधा तैयार करते हैं वो यहाँ पे तैयार करते थे, और उसकी जो बिजाई है खेत में वो ब्रिगु लेक के पास में, वहाँ भी एक पांडुरोपा करके जगह है, वो वहाँ पे उसके रोपाई करते थे। तो अभी हम लोग हैं हमटा के एक मशहूर ढाबा कालजंग ढाबा में, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अखरोट के सिड्डू बनते हैं। यस, तो ये है सिड्डू, और ये यहीं पे बना हुआ, और इसके अंदर अखरोट का पेस्ट डाला हुआ, और ये चटनी टमाटर, पुदीना, मिर्च, पूरी तरह से ये नेचुरली ब्लेस्ड एक एरिया है।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भागीदार बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा, स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। IPL में शानदार जीत के बाद विराट कोहली आज वृंदावन पहुंचे अपनी पत्नी अनुष्का के साथ। वृंदावन में संत प्रेमानंद के आश्रम केली कुंज पहुंचे, यहां पर दोनों ने संत प्रेमानंद के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद भी लिया। विराट और अनुष्का दोनों संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम अक्सर आते रहते हैं और इस बार एक शानदार जीत के बाद वो संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ सुनिए।
3: गुड न्यूज़ चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता, अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। चमोली का सुहाना मौसम भी बढ़ा रहा है भक्तों का उत्साह। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। 40 दिनों में करीब 8,00,000 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। मनोकामना पूरी होने पर चंडीगढ़ के एक भक्त ने उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर को चढ़ाया चांदी का मुकुट और आकर्षक कुंडल। मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ भेंट की। देश माह का आज पांचवा बड़ा मंगल, सुबह से मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें। अयोध्या में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सुख शांति समृद्धि की कामना। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल के लिए रिक्वेस्ट लेटर। मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे। 3,25,00,000 करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी डील। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद बाराज से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची क्रिकेटर विराट कोहली। पत्नी अनुष्का भी साथ, हर बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: आज ज्येष्ठ महीने का पांचवा बड़ा मंगल, देश भर के हनुमान मंदिरों में बजरंग बली के भक्तों की भारी भीड़। बड़े मंगल पर लाल मसूर, लाल वस्त्र या लाल फलों का दान करने की विशेष मान्यता, सुबह से मंदिरों में लंबी कतारें। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बूढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। बड़े मंगल के दिन दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। पूजा अर्चना के बाद मंदिर या करीब लोगों में अन्नदान का विशेष महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान श्री राम हनुमान जी की मुलाकात पहली बार हुई थी। इस दिन बजरंगबली के दर्शन और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन करने के लिए उमड़ी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें। भक्तों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा। पांचवें बड़े मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार हुआ। भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं और आभूषण। पांचवें बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। अयोध्या में पांचवें बड़े मंगल पर प्रभु श्री राम की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अयोध्या में पांचवें बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने के बाद सुबह से मंदिर परिसर पर लंबी लंबी कतारें। भक्तों ने लगाया जय श्री राम की जयकारे। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के पांचवा बड़े मंगल पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन किए, जयकारे लगाए। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। 40 दिनों के भीतर 8,00,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किए। बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिल रही है वाहनों की लंबी लंबी कतारें। गैस सिस्टम के बावजूद कई जगह 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम। पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही है भक्तों की भीड़। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की संभावना। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। चंडीगढ़ के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और झुमके अर्पित किए। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया स्वरूप श्रृंगार, सुबह से भक्तों का तांता। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची राजस्थान की मंत्री मंजू बाघमार, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई के परिमाला रंगनाथन मंदिर में वसंतोत्सव की थी। वसंतोत्सव के दौरान देवता को सुगंधित द्रव्यों से करा गया स्नान, विशेष पूजा अर्चना। भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत। सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला। देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े लड़ाकू विमान समझौते की तैयारी। फ्रांस से लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए में होगी 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद। समझौते के तहत भारत में ही बनेंगे 90 राफेल लड़ाकू। सुप्रीम कोर्ट में मिले 5 नए जज। चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति ने कल ही 5 जजों की नियुक्ति को दे दी थी मंजूरी। छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज। गुलमर्ग में आज से फिर शुरू की गई गोंडोला राइड। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला का निरीक्षण किया, गायों को खिलाया गुड़। तमिलनाडु के मांड्या में पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन ने नरसिम्हा मंदिर में पूजा अर्चना की। डोडा के भलेसा में नशीली दवाओं के खिलाफ पहल। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट के जरिए लोगों के नशे के खिलाफ उनको जागरूक किया जा रहा है, कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। विद्युत नियामक उद्योग ने प्रस्तावित 10% अतिरिक्त बिजली टैरिफ वसूली पर लगाई रोक। पुरी में 24वें राष्ट्रीय लोक मेले का शुभारंभ हुआ, डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंहदेव शामिल। मेले में 17वें राष्ट्रीय कृषि मेले का भी उद्घाटन किया गया, कृषि से जुड़े सामानों की प्रदर्शनी। मेले में डिप्टी सीएम ने कलाकारों को सम्मानित किया, मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण। अहमदाबाद में मॉनसून से पहले साबरमती नदी में चलाया गया विशेष सफाई अभियान, बड़ी संख्या में लोग जुटे। हैदराबाद में तेलंगाना स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों को नमन किया। हैदराबाद में तेलंगाना स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने परेड की सलामी ली। हैदराबाद में तेलंगाना स्थापना दिवस पर तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया विधानसभा और सचिवालय। दिल्ली के बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंचे नेपाल आरएसपी पार्टी के अध्यक्ष रवि, भव्य स्वागत हुआ। आगरा पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कैलाश मंदिर में पूजा अर्चना की। रामबन में सीआरपीएफ ने 84वीं बटालियन की स्थापना दिवस श्रद्धांजलि अर्पित की श्रद्धालु। सीआरपीएफ ने स्थापना दिवस शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया, अधिकारियों ने लगाए पौधे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर मेले का भी आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को मिली नौकरी। जलगांव में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। गांधीनगर में फैबेक्सा एडिशन 11 फैब्रिक्स सोर्सिंग एक्सपो का शुभारंभ। देश भर के 1000 से ज्यादा कारोबारियों ने एक्सपो में हिस्सा लिया। एक्सपो में कॉटन, डेनिम, होजरी और तमाम फैब्रिक किस्मों की प्रदर्शनी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों की सुनी फरियाद। भुवनेश्वर में कुलपतियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओडिशा के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति ने हिस्सा लिया। प्रवासी पक्षियों से फिर गुलजार हुआ तूतुकुड़ी। बड़ी संख्या में ओरिएंटल डार्टर और लिटिल कॉमरेड का चूमा हुजूम पहुंचा। प्रवासी पक्षियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्रीनगर में पोखरीबल झील बोर्ड बना, युवाओं की पहली पसंद। कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग का ले रहे आनंद। मलप्पुरम में मंत्री एपी अनिल कुमार ने सरकार विद्यालय का उद्घाटन कर दिया। कहा शिक्षा पर सरकार का रहेगा जोर। कोटा में 15 साल बाद मिला बिछड़ा परिवार। मां से निपटकर फूट फूट कर रोया बेटा। सेना की रोमियो फोर्स ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनाया हिल काका डे। सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश के शहीदों को नमन किया। पीर पंजाल इलाके में दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित हिल काका क्षेत्र में आतंकियों के खात्मे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यह कार्यक्रम। इस मौके पर इलाके में आतंकवादियों के हमले और सेना की कार्रवाई को किया गया मंचन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी शामिल हुए। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों पर गीत गाए। हेलकाका इलाके में आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने साल 2003 में चलाया था ऑपरेशन सर्प विनाश। जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बिहार के गया के पटवा टोली का जलवा। पटवा टोली के वृक्ष संस्थान में पढ़ाई करने के बाद 10 छात्रों को जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त हुई। अपने सभी छात्रों को आईटी और जेईई परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और तैयारी करवाता है वृक्ष संस्थान। राजस्थान के एक गांव के बेटे ने पूरे देश में रोशन किया अपना नाम। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से जेईई एडवांस 2026 में हासिल किया देश में तीसरा पायदान। झुंझुनू जिले में गोठ गांव के जतिन 4360 में से 319 अंक प्राप्त करके दो बार पीलिया और एक बार टाइफाइड हुआ, फिर भी हार नहीं मानी। जतिन की उपलब्धि से सीकर में खुशी की लहर। सीकर में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जतिन। गुजरात के अहमदाबाद में भी अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। राजस्थान के जैसलमेर में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश। पर्यटकों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। अनंतनाग जिले का डरबल कापरान में कुदरती सुंदरता। अपनी पहाड़ियों और मनमोहक नजारे के लिए मशहूर है वेरीनाग से करीब 20 किलोमीटर दूर यह जगह। तेलंगाना के करीब बेघर और भूमिहीन परिवारों के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसी साल 17 सितंबर को 1,00,000 परिवारों को घर देने का ऐलान किया। फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना ऊंचा लंबा कद हुआ रिलीज। केओल परिवार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं दो नए स्टार्स। बॉबी देओल ने किया खुलासा। बॉबी देओल ने बताया एक्टर बनना चाहते हैं बेटे। फिर बदले आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाय थ्रिलर फिल्म अल्फा की रिलीज डेट 10 जुलाई की जगह 3 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट से बहस की खबर पर बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी। बोले खबर देखकर मैं भी हैरान हूं। इस हफ्ते रिलीज होने वाली है 5 फिल्में। साउथ सुपरस्टार रामचरण की पैडी, बॉबी देओल की बंदर, वरुण धवन, मृणाल ठाकुर की है जवानी तो इश्क होना है रिलीज होगी। इस हफ्ते ओटीटी पर भी होगा एंटरटेनमेंट का दबाव, एक्शन क्राइम और फैमिली ड्रामा का मिलेगा फुल डोज। तमिल सिनेमा की अभिनेता सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई करप्पू। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है मोहनलाल की दृश्यम 3, रिलीज के 12वें दिन 100 करोड़। कान थ्रिलर वेब सीरीज राग का ट्रेलर हुआ रिलीज, वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे नजर आए। खतरों के खिलाड़ी 15 का पहला BTS प्रोमो हुआ जारी, धमाकेदार एक्शन में नजर आए रोहित शेट्टी। प्योंगयांग में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर बच्चों ने गीत नृत्य और खेलों के जरिए रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। बच्चों ने पारंपरिक कोरियाई वेशभूषा पहनकर प्रस्तुति दी और वाद्य यंत्र बजाकर सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: देखिए, एक तरफ हिमाचल कश्मीर के पहाड़ों से आई जाम की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ मिजोरम जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था किसी मिसाल से कम नहीं है। हर साल इस बार भी मौसम में मिजोरम की ढेरों फोटोज सामने निकल कर आती हैं, जिसमें लोग ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए नजर आते हैं। क्या इसकी वजह है भारी जुर्माना या फिर सख्त ट्रैफिक नियम? देखिए,
4: गर्मियां आते ही मैदानी इलाकों के लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर बढ़ रहे इस बोझ का नतीजा है घंटों लंबा ट्रैफिक जाम। शिमला, मंडी, श्रीनगर और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर कुछ ऐसा ही नजारा है। लेकिन एक और तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। ये तस्वीर है मिजोरम की राजधानी आइजोल की, जहां सड़कें सकरी हैं, लेकिन गाड़ियां बिल्कुल एक सीधी लाइन में खड़ी हैं। कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा। एक तरफ उत्तर भारत के पहाड़ों में रेंगती गाड़ियां, तो दूसरी तरफ मिजोरम की ये शांत और अनुशासित सड़कें। हालांकि इसकी वजह कोई सख्त ट्रैफिक नियम नहीं, ये कानून से ज्यादा वहाँ की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। यहाँ हॉर्न बजाना अशिष्टता माना जाता है। लोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही हॉर्न देते हैं। सड़कों पर कोई परमानेंट डिवाइडर नहीं होता, फिर भी टू व्हीलर बाई तरफ और फोर व्हीलर दाई तरफ एक कतार में चलते हैं। मिजो समाज में एक शब्द बहुत मशहूर है, तलावम घाइना, जिसका अर्थ होता है दूसरों के प्रति दयालु होना, निःस्वार्थ होना और समाज के लिए खुद को अनुशासित रखना। यही सोच उनकी ड्राइविंग में भी दिखती है। वहाँ लोग मानते हैं कि सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाना या किसी से आगे निकलने की कोशिश करना सामने वाले का अपमान करने जैसा है। अक्सर मिजोरम की इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है, जिसमें ट्रैफिक के दौरान अनुशासन साफ दिखता है। पहाड़ों पर घूमना सबका हक है, लेकिन पहाड़ों की शांति को बनाए रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में जाहिर है कि मिजोरम के साइलेंट ट्रैफिक मॉडल से हम सबको सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता, अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंचे। चमोली का सुहाना मौसम भी बढ़ा रहा है भक्तों का उत्साह। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। 40 दिनों में करीब 8,00,000 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। मनोकामना पूरी होने पर चंडीगढ़ के एक भक्त ने उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर को चढ़ाया चांदी का मुकुट और आकर्षक कुंडल। मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ भेंट स्वीकारी। लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन। 70 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पुल 2023 में आई आपदा में बह गया था पुल। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल के लिए रिक्वेस्ट लेटर। मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे। 3,25,00,000 करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी डील। आरसीबी को फिर से आईपीएल में चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली और पत्नी अनुष्का भी साथ नजर आई। हर बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।
9: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
7: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: अब घर की दाल का असल स्वाद तो उसमें लगे हुए तड़के से आता है, और तड़के में क्या होता है? जी हाँ, मसाले। कभी सोचा है आपने, अगर ना होते मसाले तो ना होता स्वाद। और बिल्कुल इन मसालों की तरह है हमारा शो सास बहू और पेटिया, जहाँ हम लेकर आते हैं आप सबकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट का तड़का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
12: इतना सोना क्यों रब ने बनाया।
13: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, रक्षित को होगा अपराजिता से प्यार, शुरू होगी नई लव स्टोरी। खतरे में पड़ेगी विक्रांत की जान, मन्नत मांगेगी दुआ।
14: निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा
13: मेंटल असाइलम पहुंचेगी रूहानी, शुरू होगा नया तमाशा।
15: मैंने कहा छोड़ो।
13: सूरज के गम में मातम मनाएंगे घर वाले, आएगा कहानी में नया ट्विस्ट।

0: लापता हुई रीत राघव होगा परेशान।
1: क्या तुम्हें पता था कि रीत मुसीबत में? आपने रीत की जिंदगी पहले ही इतनी बर्बाद करके रखी हुई है। पहले उसका बच्चा खो गया और अब खुद रीत चली गई।
0: के पार जब मिला प्यार की अक्का साहिब यानी कि अनन्या खरे का देखेंगे मेकओवर, लेंगे उनसे मेकअप की
2: कोशिश। तो ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिश तो यही रहती है कि वो घर पर ही बनाएं फ्रेशली कूटे हुए मसाले। वैसे देखिए जो फ्रेश मसाले होते हैं ना, इनका तो स्वाद और सुगंध दोनों ही ओ माय गॉड हमारी रसोई में चार चांद लगा देते हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, आपको फुर्सत कहाँ होती है ये सब करने की, क्योंकि आपकी कहानी में तो है अनलिमिटेड ड्रामा, रोजाना कोई ना कोई नई सिचुएशन। तो चलिए लेकर चलते हैं हम सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।

0: बना हुआ सूरज। घर में छाया मातम।
1: रोशनी दिन रात होगी और सब घरों के खुल सजाएंगे।
0: ईशा को हुआ सूरज के होने का एहसास। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर सूरज दुनिया छोड़कर जा चुका है। ऐसे में घर वाले देखिए कैसे घर में मातम मना रहे हैं, दे रहे हैं वो सूरज को श्रद्धांजलि। ऐसे में सभी लोग बहा रहे हैं आंसू। ताई माँ, बापूजी और सभी घर वाले, इन पर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तभी वहाँ पर ईशा आती है। भाई, ईशा का दुख काफी ज्यादा है, उसने अपने प्यार को जो खोया है। ऐसे में देखिए कैसे ताई माँ और बाकी के घर वाले ईशा के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे हैं सूरज की याद में। लेकिन कहीं ना कहीं ईशा को पूरा विश्वास है कि सूरज अभी भी जिंदा है।

इस मातम के माहौल में यहाँ पर आकाश भी पहुँचा है ईशा के पीछे पीछे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईशा यहाँ पर आए। लेकिन ईशा वो तो अपनी जिद पर अड़ी है। खैर, ऐसे में यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब चलने लगती है हवाएं और आ गया है तूफान। असल में घर वालों को हो रहा है सूरज के आसपास होने का संकेत, तो वहीं डर में है आकाश। उसे हर जगह सूरज दिख रहा है, उसे लग रहा है कि यहाँ सूरज की आत्मा है और सूरज भी आकाश को डराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। तभी तो देखिए, जो सूरज की फोटो पर माला चढ़ी थी वो आ गिरी आकाश के गले में और आकाश और भी ज्यादा घबरा गया। वही मर्डर तो उसी ने किया था, ऐसे में वही सबसे ज्यादा डरा हुआ है और सूरज पूरी कोशिश में है कि डर कर मारे आकाश सारा सच उगल दे, क्योंकि सूरज तो असल में जिंदा है।

सीरियल में तो आ गया है ओम शांति ओम वाला फिल्मी ट्विस्ट, जहां सूरज अब आकाश से सच उगलवाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहां ईशा का विश्वास कायम है कि सूरज जिंदा है। तभी तो देखिए ईशा को एहसास भी हो रहा है, क्योंकि सूरज ने आकाश के पैरों में गुलाब का फूल रखा है, जो उसे और भी ज्यादा पक्का यकीन करवा रहा है कि सूरज यहीं कहीं है। उसे वो ढूंढ रही है, लेकिन सूरज छुप रहा है, क्योंकि वो एक मिशन पर जो है।

0: वही होता है कि मतलब कि यू नो जो कोई गुजर जाता है तो हम शांति के प्रतीक के लिए यू नो कुछ शांत बोलते हैं ना, मौन रखते हैं कुछ समय के लिए, वो वाली चीज़ें चालू हैं यहाँ पे। एंड फैमिली एंड शो के किरदारों के हिसाब से सूरज मर चुका है, लेकिन सूरज जिंदा है ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, सभी को पता है। एंड सूरज क्यों कर रहा है ऐसा, ये सब भी सभी को अच्छी तरह से पता है। अब ये है कि इसी में आकाश भी आ जाता है यहाँ पे ईशा जी का पीछा करते हुए कि तुम्हें कहा था ना वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल। एंड यहाँ पे सूरज जो है मतलब कि आया हुआ है चुपके से, एंड सूरज जानबूझ के आकाश को डराने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट ओम शांति ओम में जैसे कि जो शाहरुख खान रहता है पुराना, वो दिखते रहता है यू नो अर्जुन रामपाल को। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे जनरेट किया गया है। सो वही वाली चीज़ें हो रही है कि आकाश को बार बार ये लग रहा है कि मतलब कहीं ये भूत तो नहीं है, मतलब यू नो मतलब इन शॉर्ट सूरज को मैंने मारने की कोशिश की, सूरज को मार दिया मैंने और सूरज की आत्मा तो नहीं भटक रही ये वो, तो उसी डिलेमा में वो खोया हुआ है, दैट्स ऑल।
1: देखिए ये हमारे शो पति ब्रह्मचारी का बड़ा ट्विस्ट है जहाँ पे हीरो की जो है डेथ दिखा दी है, लेकिन मर्डर जो भी होता है उसके अंदर एक गिल्ट होता है जो आपने देखा होगा किसी भी शो में या रियलिटी में भी। तो ये वही हो रहा है आकाश के साथ। आकाश ने ये प्लान किया था उसका बॉम्ब ब्लास्ट उसकी कार का, तो अब आकाश को वो शक हो रहा है कि क्या ये यू नो मेरा गिल्ट है जो आ रहा है या मुझे सच में सूरज दिख रहा है। वो इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक यू नो पुलिस वाला है, आईपीएस है, ऐसी चीज़ें उसने कई बार देखी हैं। लेकिन जब आपके खुद के मन में यू नो वहम होता है, गिल्ट होता है, तो बाहर आ रहा है। ऑल्सो वो साइन दे रहा है अपनी फैमिली को कि वो है, वो गया नहीं है। और ईशा जो है ये फील कर रही है कि उसका इंट्यूशन कह रहा है कि वो ज़िंदा है। वो ऐसी चीज़ें भी कर रहा है कि वो चल के जा रही है तो उसके पाँव पे गुलाब का फूल गिर जा रहा है, वही फूल जो उसने फ़ोटो पे अभी चढ़ाया है 2 मिनट पहले। मेरे ऊपर जो है यू नो कभी झूमर गिर जा रहा है जब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता कोई मर के वापस आ सकता है। कभी वो मुझे दिख जा रहा है, उसकी शैडो दिख जा रही है, वो दिख जा रहा है, फिर वहाँ से भाग जा रहा है। कभी उनकी उसकी जो फ़ोटो है सूरज की, वहाँ से यू नो उसका जो हार है जो श्रद्धांजलि के लिए चढ़ाया है, वो उड़ के मेरे गले में आ जा रहा है। तो बड़ी सी मानो या ना मानो वाली सिचुएशन हो गई है कि अब कैसे मान लें कि मरा हुआ इंसान वापस आ गया है।
2: तो भाई अब देखना होगा क्या सूरज अपने इस मकसद में कामयाब होता है और क्या इसी दौरान ईशा का सच भी सूरज को पता चलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: रूहानी कह रही हैं कि उनका तो फेवरेट है हल्दी पाउडर, क्योंकि वो कह रही हैं कि सोते वक्त वो पीती हैं हल्दी वाला दूध जिससे उन्हें अच्छी नींद आती है। अगर उन्हें जुकाम खांसी हो जाती है तो हल्दी में शहद मिलाकर उसे चाट लेती हैं। एक्चुअली रूहानी देखिए, हल्दी के गुण तो हमारे आयुर्वेद में पता नहीं कितने हैं। अरे किचन में आपको चोट लग जाए तो उस पर भी आप हल्दी लगा सकते हैं, इमीडिएट हीलिंग हो जाती है, क्योंकि हल्दी में होता है कर्क्यूमिन जो जैसे ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो काम करता है हीलिंग का। जी हाँ, तो हल्दी तो डेफिनेटली होनी चाहिए हमारी रसोई में और हमारे खाने में भी। वैसे काश हल्दी यहाँ पर सॉल्व कर सकती इनकी भी हर परेशानी। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनूनी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
2: मुश्किल में फंसी रूहानी

वार्डन के जुल्म। पागलों से कैसे बचकर भागेगी अब रूहानी।

दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में मामा मामी और पुष्पी ने रूहानी को पागल खाने भेज तो दिया है, लेकिन पागल खाने में भी रूहानी की जासूसी कंटिन्यू है। उसने कोशिश तो की सिम छिपाने की, लेकिन वार्डन ने उसे धर दबोचा। ऐसे में एक नर्स ने वो सिम लाकर वार्डन को थमा दिया। बस फिर क्या, वार्डन ये देखकर रूहानी पर जुल्म ढाने लगी, लेकिन रूहानी उसकी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं है। बगावत वार्डन से बर्दाश्त नहीं हुई और वार्डन ने न सिर्फ उसके बाल खींचे बल्कि रूहानी का सर भी दीवार में पटक दिया। इतना ही नहीं, वो तो रूहानी को धमकी भी दे रही है कि वो उसे यहाँ पर पागल बनाकर ही छोड़ेगी, लेकिन रूहानी भी कम नहीं। भाई वार्डन से तो रूहानी की ये बगावत देखी नहीं गई और उसने अपनी सारी नर्सों को रूहानी थमा दी और उसे पागलों के बीच भेज दिया, क्योंकि उस वार्डन को पता है कि ये पागल रूहानी को खूब मारेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही रूहानी पहले घबरा भी गई थी, क्योंकि सभी ने उसे घेर लिया, लेकिन अगले ही पल रूहानी ने अपनी मुस्कान से सभी को अपने इशारों पर नचा दिया। रूहानी की देखा देखी में सभी औरतों ने वही किया जो रूहानी ने किया,

0: पेट में हो जाता है दर्द, तो बस जरूरी है इस मिर्ची को अपनी लाइफ से लिमिट करने की। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
1: राध्या और प्रथम की लव स्टोरी। डोरी ने बना दी जोड़ी।
2: मुझको ना ऐसा कुछ हुआ दीवानी, लहरों को जैसे साहिल मिला।
1: कामिनी का षड्यंत्र।

टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज आ गया है मौसम प्यार का। असल में राध्या पहुंच गई है इस पार्टी में जहां पर प्रथम भी शामिल है और यहां इन्हें दिया गया है एक कपल टास्क। इस डोरी में इन्हें बांध दिया गया है और डोरी से बाहर इन्हें निकलना है, लेकिन देखिए कैसे यहां पर देखने को मिली राध्या और प्रथम की केमिस्ट्री।

के बीच गलत फहमियाँ जरूर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार भी बेहद करते हैं और ये साफ देखने को जाहिर है। तभी तो देखिए कैसे इन्हें मिल गया रोमांस करने का बहाना और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। लेकिन ये नजारा कामिनी से देखा नहीं जा रहा, तभी तो वो चल रही है चाल ताकि स्टेज से राध्या नीचे गिर जाए और उसकी बेइज्जती हो जाए।

जाएगी वहां पे, स्टेज का स्क्रू व्रू ढीला करेगी एंड राध्या को गिरा देगी स्टेज से एंड उसको बॉडी शेम करेगी, देखो मतलब मोटी हाथी गिर गई ऐसे करके। एंड बट प्रथम बीइंग प्रथम वो उसको बचा लेगा, मतलब बचाने की कोशिश करेगा एंड सब लोगों को डांट लगा देगा जो भी ऐसे उसको बोल रहा है, तो फिर प्लान फेल हो जाएगा।

0: ट्विस्ट जब आएगा तब आएगा। फिलहाल तो इस पार्टी में राध्या हर कदम पर प्रथम का ख्याल रख रही है, लेकिन बहाने से। तभी तो जब वो ये डिश खाती है उसमें मिर्ची होती है और वो प्रथम को ये डिश खाने से रोकती है, लेकिन जिद में प्रथम खा लेता है और मिर्ची से उसका हाल बेहाल हो जाता है।
1: क्या कर रही हो राध्या?
0: तभी तुरंत राध्या उसे जूस थमा देती है। कहीं ना कहीं प्रथम को होता है एहसास कि ये सब तमाशा राध्या ने इसीलिए किया था ताकि ये डिश प्रथम ना खा सके और उसे मिर्ची ना लग सके। दूसरी तरफ घर में अलग ही तमाशा चल रहा है। हो गया है कामिनी का पेट खराब, क्योंकि दादी ने जो पानी राध्या के लिए बनाया था वो कामिनी ने पी लिया है और हो गया है गड़बड़ घोटाला।

0: तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी?
1: हाँ दादी हम ठीक है।
0: तो चलो प्रथम इंतजार कर रहा होगा।
2: ऐसा है कि प्रथम की कॉन्फ्रेंस है जिसमें दादी चाहती हैं कि प्रथम के साथ मैं जाऊं, यानी कि कामिनी। बट होता ये है कि राध्या चली जाती है। सो दादी का प्लान था कि हम ऐसा काम करेंगे कि राध्या का जो पानी है उसमें जमाल गोटा मिला देंगे और राध्या वो पी लेगी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो प्रथम के साथ जा ही नहीं पाएगी। एंड मैं प्रथम को मैनिपुलेट करूंगी कि कामिनी बेचारी घर में बोर हो जाती है तो तुम उसको ले जाओ। तो कामिनी को पता नहीं था कि दादी ऑलरेडी ऐसा कर चुकी है। तो कामिनी भी अपना दिमाग लगा के जाती है राध्या के रूम में कुछ कुछ करने एंड वो उसका पानी वो खुद पी लेती है। तो इंस्टेड ऑफ राध्या कामिनी की खुद की तबीयत खराब हो जाती है। सो राध्या की जगह मतलब कामिनी की जगह राध्या चली जाती है प्रथम के साथ।
3: तो भाई कामिनी और दादी फिर एक बार मिल चुकी हैं राध्या और प्रथम को अलग करने के लिए। अब देखना होगा कि कैसे राध्या इनका भी सामना करती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: देखिए विद्या जी, आज तो मसालों के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे आपकी कहानी में भी है हमारे लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट का मसाला। महादेव जी, आप, रज्जी, धीरज, मोगरा, ओ माय गॉड, और उसके साथ साथ भानु भी। वेल, यहाँ तो है परफेक्ट एंटरटेनमेंट का मसाला। तो क्या है इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आप सबको महादेव एंड सन्स के सेट पर।
5: महादेव एंड फैमिली की पिकनिक। मोगरा, नर्मदा और रज्जी के बीच तगड़ा कंपटीशन। मोगरा के काले इरादे,

0: के सीरियल महादेव एंड सन्स में प्रयाज पूरा परिवार मिलकर एक साथ पिकनिक पर आ गया है। और देखिए तो कैसे शुरू हो गया है यहाँ पर खेल कबड्डी का, जहाँ ये परिवार दो टीमों में बट गया है। भाई एक तरफ है ससुर जी की टीम तो दूसरी तरफ सासू माँ। ऐसे में बंटवारा तीनों बहुओं का भी हुआ है। जहाँ एक तरफ है रज्जी और नर्मदा तो वहीं उनके सामने है मोगरा, जो भाई उन्हें इस गेम में भी हराना चाहती है और अपने ससुराल से भी बेदखल करना चाहती है। तभी तो देखिए मोगरा की ये नफरत इस गेम कॉम्पिटिशन के दौरान भी देखने को मिल रही है, जहाँ उसने सबसे पहले रज्जी को गेम से बाहर किया।
1: रज्जी दीदी आप आउट है,
2: हमें हाथ
3: एक मिनट। रज्जी तुम्हें क्या लगता है कि हमारी बहन चीटिंग कर रही है?
2: अरे हम ये नहीं कह रहे कि वो चीटिंग कर रही है।
4: अरे लेकिन हाथ तो लगा ही नहीं है भाभी। अरे हाथ टच ही नहीं हुआ है, नहीं टच हुआ है। अगर रेफरी बोल रहा है कि हाथ लगा है तो हाथ लगा है,
3: बिल्कुल
4: मान लो इस बात को। देखो आप लोगों की बारी में भी तो ऐसा होगा ना।
2: ठीक है पापा जी, हम बच्चे तो है नहीं, हो जाते हैं हम आओ।
4: चलो भाई खेल आगे बढ़ाते हैं, चलो चलो चलो।
3: रज्जी
5: जिस तरह से तुम्हें खेल से बाहर निकाले वैसे ही तुम्हें घर से बाहर निकाले।
0: देखिए कैसे बारी बारी हर कोई अपनी अपनी टीम से आकर हर एक कंटेस्टेंट्स को बाहर कर रहा है और अपनी अपनी बाजी जीत या हार रहा है। लेकिन अब भी धीरज और उसके पिता के बीच मामला ठीक नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार धीरज और महादेव आमने सामने आए तो देखिए कैसा रहा उनका ये गेम।

0: अब बारी फाइनल राउंड की, जहां आमने सामने है रज्जी और मोगरा, और देखिए कैसे यहां पर शुरू हो गई है इन दोनों के बीच टशनीबाजी, जहां ये दोनों अपनी अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, लेकिन मोगरा है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं।
1: अब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ये अब खेल नहीं है, एक ओपन चैलेंज है तुम्हारे और मोगरा के बीच, इस घर और लाजवंती आंटी के बीच। तो रज्जी, कुछ भी हो जाए जीत कर ही आना, लाजवंती आंटी और मोगरा को भी तो पता चले जब तक इस घर में हम दोनों हैं ना, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने वाले हैं। जा मेरी शेरनी, अच्छे से मजा चखा देना इस मोगरा को। ठीक है, हमारी टीम से हम आएंगे और आप लोगों की रेड करने की बारी थी, तो मोगरा भाभी रेड करने आ सकती है और हम डिफेंड करेंगे। पापा जी।
2: हाँ। अरे अजीत, मम्मी जीत क्या ना, ये
1: माँ हमें आशीर्वाद दिया कि हम आपकी टीम को जिता कर यशस्वी भव। जीत हो गई तुम।
2: चलो ऑल द बेस्ट जा।
3: बेटा पूरा दम लगाना है और हारना नहीं है, ठीक है
1: जी।
3: चलो चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
4: शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, जीत के आना।
5: नमक ले ली और रज्जी की आंख में झोंक देना, से आउट कर दे, जीत तेरी।

0: तभी तो उसने इस गेम को किसी भी हाल में जीतने का फैसला कर लिया है। लेकिन रज्जी भी हार मानने वालों में से नहीं है।
1: रज्जी उठो उठो, जा रही है रज्जी।
0: ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसकी होगी जीत।
2: अरे अब तीनों हमारा कमीना पन तुमने देखा कब? नहीं छोड़ती ना इस कबड्डी के मैदान में।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो मसालों के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, और अगली एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज तो जुड़ी है इस नए शो से जिसका नाम है 30 के पार जब मिला प्यार। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शो की अक्का साहब यानी अनन्या खरे से। इनफैक्ट आज तो हमारी टीम कर रही है इनके साथ ये मेकओवर स्टोरी। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको अनन्या के पास और जानते हैं इनके इस नए शो के बारे में।
4: छोटू माँ, ओगो छोटू माँ,
5: छोटू माँ, छोटू माँ, छोटू माँ, जाने दीजिए ना छोटू माँ।
6: देवदास की कुमुद हो
7: मैंने छुपाई है, अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं।
8: क्या?
7: तिजोरी की चाबियां खो गई हैं।
6: या फिर 30 के पार की अक्का साहेब।
9: विषय संपला।
6: या फिर वेब सीरीज का कोई धमाकेदार रोल हर किरदार में ढल जाती है अनन्या खरे। अनन्या का हर किरदार लोगों के दिल में बस जाता है और इनकी एक्टिंग के तो क्या कहने। जब ये स्क्रीन पर आती है तो सबका मन मोह लेती है। और आज यही है सास बहू और बेटिया में हमारी खास मेहमान। हाल फिलहाल भी वो नजर आ रही हैं दंगल टीवी के नए शो 30 के पार जब मिला प्यार में, जिसमें वो निभा रही हैं अक्खा साहिब का किरदार। भाई ये किरदार भी काफी धमाकेदार है। लुक की बात करें तो इस लुक में भी ढेर सारे गहने हैं, साड़ी है, लाउड मेकअप है, बिंदी है, जिससे इनका ऑरा अलग ही नजर आता है। तो आज हम यही देखेंगे कैसे अनन्या अक्का साहिब के किरदार में ढलती है, कैसे होता है इनका मेकअप, और जानेंगे इनके मेकओवर की कहानी। साथ ही अनन्या सास बहू और बेटियां संग करेंगी ढेर सारी बातें। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीरियल के सेट पर करने अक्का साहिब से खास मुलाकात। तो भाई फिलहाल तो अनन्या अपने रियल अंदाज में है, लेकिन झटपट से वो रेडी होकर बन जाएंगी अक्का साहिब।
10: जब भी वो स्क्रीन पे आती है छा जाती है, और एक बार फिर से सबको लुभाने रिझाने एक बार हाजिर है अनन्या जी। और अनन्या जी इस बार अक्का साहेब बन के जो इम्पैक्ट है वो अक्का साहेब का राज कैसे चल रहा है?
11: अक्का साहेब का राज बहुत अच्छा चल रहा है और आगे और भी अच्छा चलेगा, और सारी चीजें सेट हो चुकी हैं अक्का साहेब की तरफ से।
10: तो आज जो देखेंगे कि अनन्या जी जब अक्का साहेब बनती है तो कितनी बदल जाती है, क्योंकि जब भी एक किरदार करती है उसमें ऐसी ढल जाती है कि मतलब किरदार निखर के बाहर आ जाता है।
11: नहीं नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, और लुक भी बहुत अच्छा दिया है, तो लुक के हिसाब से जब रेडी होके पूरा कैरेक्टर निकलता है तब उसका कैरेक्टर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
10: तो चलिए फिलहाल हम गुड मॉर्निंग आपके साथ हो गई है,
11: मॉर्निंग करते हैं एंड वी विल स्टार्ट द लुक एंड वी विल गेट रेडी एंड सी यू अगेन। तो आज माहौल में इतनी गहमा गहमी है क्योंकि आज हम लोग मंदिर आए हैं, और मंदिर में मैं अंबाबाई से एक स्पेशल प्रार्थना करूंगी कि मेरी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर दें। अब मेरी मनोकामनाएं क्योंकि मेरे परिवार के लिए हैं, इसलिए मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि अंबाबाई मेरी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगी। अक्का साहेब एक्चुअली अंबाबाई को अपनी तरफ लेना चाहती हैं, और वो ये चाहती हैं कि अंबाबाई उनके परिवार की स्पेशली उनके बेटे की रक्षा भी करें और उसे बहुत सुखी रखें। ये हमारा आज का बंच है, ये मेरा होमवर्क है, आज का ये सारा होमवर्क मुझे करना है, इसको याद कर करके तैयार होके और फिर मैं अंबाबाई को मनाने जाऊंगी।
6: वैसे आपको बता दे कि अनन्या खरे अपना मेकअप खुद ही करती है, भाई इतने सालों से वो इंडस्ट्री में है, ऐसे में उन्हें अपनी स्किन टोन पता है, मेकअप की हर बारीकी पता है, और वो खुद का मेकअप खुद करना ही काफी पसंद करती है। तो आज हम देखेंगे कैसे अनन्या अपना मेकअप करती है, साथ ही वो देंगी मेकअप की कुछ खास टिप्स भी, और स्टेप बाय स्टेप बताएंगी कि कैसे मेकअप की शुरुआत होने तक मेकअप पूरा होता है।
12: वो अपने स्किन के बारे में ज्यादा मालूम रहता है,
8: और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं है ना टेक केयर करने के लिए, तो उनको उतना ज़्यादा डिटेल्स इंडिविजुअल्स के बारे में मालूम नहीं रहता, तो इसलिए अपने लिए करना इसलिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें यह है कि आपको इतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और फिर आपको ये भी पता रहना चाहिए कि क्या सही प्रोसेस है, कैसे आपको क्या चीज़ फर्स्ट करनी है, क्या बात करनी है, तो उस हिसाब से आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए तब आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर उससे फिर बेटर है कि फिर प्रोफेशनल से ही करवा। Depends upon your skin. If your skin is oily, then you should not use a moisturizer. And if you are doing professional makeup, even if you are doing daily makeup, then also moisturizer तभी use करना चाहिए जब या तो मौसम बहुत ठंडा हो या तो आपकी skin बहुत dry हो। उसके अलावा moisturizer creates more problems. उससे better है कि क्योंकि इंडिया में वैसे भी हमें मालूम ही है कि मौसम गर्म नहीं रहता है अक्सर, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेकअप करना है तो इट्स बेटर कि आप अपने फेस को एक तो फ्रेश एक किसी भी एक प्राइमर से फ्रेशली प्राइम करें, उसके बाद आप एक ऐसा प्राइमर लगाओ जो सिलिकॉन बेस हो, मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर है। मैंने बेसिकली अपनी अंडर आइज को थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई मेकअप टू क्रैक, तो वो मॉइस्चराइज करके अभी मैं अंडर आइज कवर करूँगी, उसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी, उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी एंड आई विल ट्राई टू कीप एवरीथिंग वेरी लाइट बिकॉज यू हैव एन आउटडोर शूट टुडे और आउटडोर में मेकअप वैसे भी ज़्यादा दिखता है यू नो, और लाइट उतना कंट्रोल नहीं होती, तो आई कीप इट लाइट, आई कीप इट नेचुरल बट आई कीप इट इन द सेम कंटिन्यूटी जैसा हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन विद माय कलर करेक्टर। यूनिफॉर्म टेक्स्चर और यूनिफॉर्म कलर, तो जहाँ जहाँ भी हमें लगता है पूरा करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ बस उसका थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स कर। इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद आई एम गोइंग टू डू माय कंसीलर। जहाँ जहाँ भी आप चाहते हैं करेक्शन आप वहाँ थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। अंडर कलर करेक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर अंडरटोन, तो जैसा आपका अंडरटोन है कूल है वार्म है ऑलिव है उसके हिसाब से आप कलर करेक्टर का शेड चूज करना। इवन आपके रेगुलर मेकअप है जो आप सोशल मेकअप करते हैं उसमें भी यू हैव टू नेवर मेक योर करेक्टर वेरी लाइट,

तो अभी मेरा कलर करेक्शन हो गया है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय कंसीलर नाउ. कंसीलर इज नेसेसरी बिकॉज कलर करेक्शंस हैव डिफरेंट कलर्स, तो वो कलर्स स्किन पे नहीं दिखने चाहिए, इसलिए स्किन को हम लोग कंसीलर से एक बार ही वो करेक्टर और कंसीलर दोनों मिक्स करके नेचुरल स्किन टोन ले आते हैं.

फाउंडेशन में भी ना इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द टाइप ऑफ स्किन यू हैव, उस हिसाब से यू चूज योर फाउंडेशन. फॉर एन ऑयली स्किन इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू यूज अ वेरी ड्यूई फाउंडेशन, बिकॉज उससे वो ऑयली ज़्यादा आपका मेकअप लगेगा, इट बी डिफिकल्ट टू मैनेज. तो उस हिसाब से चूज योर फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन. क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, आजकल तो काफ़ी चॉइसेज आ गए हैं. तो वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू. एंड अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गेट द राइट टोन. समटाइम्स यू माइट हैव टू मिक्स टू और थ्री, सो चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन. हाँ, तो मैं मिक्स करके करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मच ऑफ अ पिंक टोन एंड आई डोंट वॉन्ट टू मच ऑफ अ येलो टोन. तो वो मिक्स करके एक नेचुरल मेरा वाला जो स्किन टोन, मेरा वाला जो

मेकअप में भी सबका अपना अपना रहता है. वॉट एवर सूट्स योर फेस, वॉट एवर सूट्स योर स्टाइल, वॉट यू वॉन्ट, ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सबके लिए काम करेगा.

जो फाउंडेशन किया है इसको मैं पाउडर से सेट कर दूंगी, तो ये इसलिए जरूरी है अगेन बिकॉज फाउंडेशन फेशियल ऑयल्स के साथ मिलकर क्रीमी हो जाता है। चाहे आप लिक्विड फाउंडेशन भी यूज करो, इट विल डेफिनेटली बिकम क्रीमियर। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फिक्स इट विद द पाउडर सो दैट इट स्टेज पुट एंड इट अब्जॉर्ब ऑयल्स। और पाउडर जनरली लोग सिर्फ टी जोन पे लगाते हैं जो ऑयली जोन है, लेकिन मैं पाउडर पूरे फेस पे लगा देती हूँ।

0: तो भाई बेस फाउंडेशन तो हो गया, अब बारी आई मेकअप की। वैसे आपको बता दे कि अक्का साहब के लुक में आई मेकअप ही उनकी यूएसपी है, यानी कि काफी लाउड है। आई शेडो हो, काजल हो या हो बाकी का आई मेकअप, इनकी आंखें बोलती है और ऐसे में आई मेकअप पर खासा ध्यान दिया जाता है। तो अनन्या बताएंगी कि किस तरह से आई मेकअप होता है और क्या क्या बारीकियों से आंखें और भी ज्यादा उभर कर आती है।
1: क्या यूज़ है आपका, उस हिसाब से आप शेडो करिए। मेरा क्योंकि आई लुक इन लोगों ने काफ़ी प्रोमिनेंट रखा है, इसके लिए मैं शेडो लुक भी थोड़ा प्रोमिनेंट करती हूँ। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग आई शेडोज, दिस इज द वे आई लाइक टू डू इट। आई मेक अ ट्रांजिशन फर्स्ट, देन आई विल डू माय क्रीज, देन आई विल ब्लेंड इट विद द शेडो एंड ब्लेंड इट विद द स्पॉट्स। लेकिन इसको कहना आसान है और करना ब्लेंडिंग में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पीनी है। यू हैव टू यूज शेडोज अकॉर्डिंग टू योर कलर टोन एंड अकॉर्डिंग टू योर ओकेजन। जैसे मेरा कैरेक्टर है, इसमें मैं शेडोज में कलर्स चेंज नहीं कर सकती, मुझे वही टोन्स रखने पड़ेंगे जो
2: एक ही मतलब
1: लुक टेस्ट में जैसा है। हाँ, क्योंकि इट्स नॉट द टाइप ऑफ कैरेक्टर जो रोज़ रोज मेकअप चेंज करेगा। और बेसिकली मेकअप का लुक भी काफ़ी लोगों को नेचुरल और यूनिफॉर्म चाहिए, तो शेडो चेंज करने का कोई

अभी जो है अभी अपना फाउंडेशन हो गया है, आई शेडो हो गया है, कटिंग हो गया है, आईब्राउज हो गया है, अभी बाकी लाइनर है और ब्लश ऑन एंड दैट्स इट, देन वी आर डन।

0: रेगिस्तान में भी दरिया बहा दे, हम फिल्मी लोग हैं।
1: तो आई मेकअप हुआ पूरा, अब बारी ब्लश ऑन, लिपस्टिक और बिंदी ज्वेलरी की। लेकिन उससे पहले हेयर स्टाइलिंग भी तो जरूरी है, तो यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट आ गई है, साथ ही साथ मेकअप भी हो रहा है।
0: तो अभी मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है एंड बॉबी इज डूइंग माय हेयर नाउ। तो हेयर में हमारा सिंपल जूड़ा का ही लुक है, तो हम लोग बस थोड़ा सा आगे से उसको मिडिल पार्टिंग करके थोड़ा पैकिंग देके सिंपल जूड़ा बनाते हैं। तो शी इज़ डूइंग दैट। मैं नॉर्मली मेकअप करते करते अपने मंत्र सुनती हूँ, तो मैं अब वो मंत्र सुनना शुरू करने वाली हूँ।

0: अब मेरा मेकअप और हेयर हो चुका है और अब ये मेरा आज का कॉस्ट्यूम है, तो मैं कॉस्ट्यूम पहनने के बाद आपसे मिलूं।
1: चेंज कर अब अनन्या बन गई है अक्का साहेब। अब ये बड़ी सी बिंदिया भी लग चुकी है, हेयर स्टाइलिंग भी हो गई है, अब बारी है ज्वेलरी पहनने की, जिसके बाद पूरा हो जाएगा अक्का साहेब का लुक।
0: तो अब मैंने अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया है और अब मेरी ज्वेलरी सिलेक्ट हो रही है, जो कि यहाँ पर सब बिछी हुई है और इसमें से बेस्ट ज्वेलरी पहनकर मैं जाने वाली
2: हूँ। कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं कि बड़ी के साथ में क्या अच्छा लगेगा, किसके साथ में, सो देट कि अक्का साहब भी लगे और ओवर भी ना लगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस कि हम ये बड़ा वाला ट्राई करेंगे और इसके साथ में एक छोटा वाला।

भाई भारी भरकम साड़ी, ढेर सारी ज्वेलरी, हाथों में चूड़ियां और बिंदी लगाकर पूरा हो चुका है अक्का साहेब का लुक। और अब अनन्या पूरी तरह से अक्का साहेब के किरदार में ढल चुकी है। तो चलिए चलते हैं इनके साथ सेट पर और मिलते हैं इनके परिवार से, यानी कि रील परिवार से।

0: सो ये है मेरी पूरी फैमिली स्टार्टिंग विद
1: हेलो हाय
0: एंड देन प्रखर भी यही था, अभी प्रखर गया हुआ है, अभी आता है वापस. ओ ये रहा, हियर इज प्रखर. प्रखर से हाय टू एवरीवन.
2: हाय
0: हेलो एंड दिस इज माय बिलव्ड भाभी वैष्णवी एंड दिस ऑफ कोर्स इज काकू.
3: हेलो
0: And this is Deeksha.
4: Hi.
0: This is Pari.
5: Hi.
0: This is Akshay.
6: Hello.
0: This is Baba. And this here, this hot thing is Sindura. Pretty woman.
7: Pari shooting ki. तो भाई शूटिंग के बाद अभी कई और सीन्स हैं जो अक्का साहब को शूट करने हैं, इसीलिए वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का. उम्मीद है आपने मेकअप की ढेर सारी टिप्स ली होंगी और अनन्या यूं ही अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का मनोरंजन करती रहे.
0: थैंक यू वेरी मच. मुझे आज का एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग, बहुत अच्छा लगा. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने गेट रेडी विद मी अपने लुक के साथ किया है. एंड थैंक यू सो मच नूपुर फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर अस. एंड सो आई एम श्योर यू आर हैप्पी विद द लुक लाइक आई एम. जैसे आपने आज तक मेरे हर किरदार को प्यार दिया है, वैसे हमारे इस शो को 30 के पार जब मिला प्यार दंगल टीवी पर मंडे टू सैटरडे 9:30 जरूर देखिए और हम सबको अपना प्यार जरूर दीजिए.

0: से नुपुर माओजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाल मिर्च, अब ये मसाला तो लेकर आता है खाने में वो तीखापन, हाउ रॉकिंग, लेकिन अगर हो जाए ये ज्यादा तो क्या करेंगे आप, फिर तो निकलेंगे आंखों से आंसू और निकलेगा कान से धुआं और हो जाएगा आपके लिए शॉकिंग। तो जरा संभल कर, कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास, ये सारी खबरें चलने ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये अगला सेगमेंट जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें, बात करते हैं अनुपमा की। भाई बिहाइंड द सीन देख लीजिए कैसे अपने लेडीज गैंग के साथ अनुपमा कर रही है डांसिंग फन।

0: नजर डालते हैं लाफ्टर शेफ के नए प्रोमो पर, जहां पर फिर एक बार शुरू हो चुकी है नई मस्ती।
1: एक अवगुण को रिप्लेस करने आ गई है सरगुण।
2: सरगुण, मुझे लगा कि आप मेरी फ्रेंड हो।
3: एक्चुअली पैसे के आगे कौन दोस्त होता है।
4: करिश्मा मैम, जब भी आपको देखते हैं तो वो सारी फिल्में, वो सारे गाने कानों में बजने लगते हैं, और आज यहाँ पर अगर आपने इनको चीची भैया बुला ही दिया है, तो अगर एक डांस हो जाए इनके साथ।
0: जल्द आने वाला है इंडिया बेस्ट डांसर का सीजन 5। ऐसे में देख लीजिए इसका नया प्रोमो, जहां जजेस नजर आ रहे हैं, यानी जावेद जाफरी, करिश्मा कपूर, गीता कपूर और टेरेंस लुइस।

0: वैसे इसी के साथ आहान पांडे नजर आने वाले हैं फिर एक बार अनीत पड्डा के साथ। मोहित सूरी एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जो कि है इंटेंस रोमांटिक फिल्म, जिसकी शूटिंग अक्टूबर या नवंबर 2026 में शुरू हो जाएगी, वो भी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंडर। दृश्यम 3 जल्द ही आने वाली है और इसकी शूटिंग का हो गया है रैप अप, तो हो जाइए तैयार दृश्यम 3 में नई कहानी देखने के लिए।
1: अलग है मेरा सच, मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है। जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूँ, चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, एक दीवार बनकर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा

0: ये जो सामने कृष्ण चूरा का पेड़ देख रहे हो ना, ये बहुत सालों बाद फिर से खेल उठा है।
1: मौसम ही कुछ ऐसा है।
2: जल्द आने वाला है नया शो सैराब, देख लीजिए इसका नया प्रोमो।
0: तुम्हारे बैंड का नाम सैराब क्यों है? सैराब का मतलब क्या होता है?
1: सैराब यानी फिर से खेलना है। बिल्कुल तुम्हारे कृष्ण चूरा पेड़ की तरह। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, ना कोई उम्मीद, ना जीने का जज्बा, और ऐसे वक्त तुम्हारे जिंदगी में कोई आ जाए तो तुम्हारे ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को फिर से रंगों में भरते, वही है सैराब।

0: बनी।
1: सीरियल गुम हुई यादें में आने वाला है भूत वाला ट्विस्ट। अब देखना होगा कि डॉक्टर इससे कैसे लड़ते हैं।
2: समस्या तनिक भारी है, ये भूत है या कोई बीमारी है? यादी
1: भाई, खबरों की माने तो कलर्स का पॉपुलर शो शहर होने को है। 6 साल का लीप लेने वाला है और लीप के बाद कई सारे बदलाव होने वाले हैं। भाई खबरें हैं कि रिशिता खोटारी शो को छोड़ देंगी और अब माहित यानी कि 5 समथान के अपोजिट नजर आने वाली है डॉक्टर आरंभी में मनमीत का किरदार निभाने वाली सुमित सिंह। अब देखते हैं सीरियल में क्या फेरबदल होते हैं।
3: अपराजिता ने तो मुझे अभी भी बताया है कि उनका फेवरेट मसाला है छोले मसाला। इनफैक्ट इनको इतने पसंद है छोले कि ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में छोले खा सकती हैं। अपराजिता आपको एक बात बताऊं, मेरी जो सिस्टर है ना वो एग्जैक्टली सेम है, वो तो छोले रोज खा सकती है तीनों मील्स में, इतनी क्रेजी है वो छोलों के बारे में। वैसे मुझे तो लग रहा है यहाँ पर क्रेजीनेस शुरू हो गई है इनकी कहानी में भी, क्योंकि देखिए अपराजिता और रक्षित ने डेवलप कर ली है फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। अब क्या ये इन फीलिंग्स को फाइट करेंगे या फिर उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर।
1: अपराजिता के प्यार में खोए रक्षित। कभी गाड़ी के पास तो कभी फूल वाले के पास, हर जगह रक्षित को नजर आए अपराजिता।

0: हो गई प्यार की ये कहानी।
1: इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना।
0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में रक्षित को अपराजिता से प्यार हो चुका है और वो मौका ढूंढ रहा है कि कैसे वो अपराजिता को प्रपोज करे।

भाई उसे तो हर तरफ बस अपराजिता ही अपराजिता नजर आ रही है, चाहे फिर वो फूलों की दुकान पर हो या गाड़ी के पास हो या फिर कहीं और।

भाई प्यार का जादू ही ऐसा है, तभी तो चाहे सब्जी खरीदती हुई अपराजिता हो या फिर फूलों का गुलदस्ता लेती हुई, हर किसी में वो अपराजिता को ही देख रहा है। ऐसे में स्कूटर पर होकर सवार आज रक्षित की खुशी दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि उसने ये फूलों का गुलदस्ता ले लिया है और ले ली है रिंग और निकल पड़ा है अपराजिता को प्रपोज करने के लिए।

या फिर इस बेंच पर बैठी हुई उसे हर तरफ बस अपना प्यार ही नजर आ रहा है और प्यार में रक्षित इस कदर खो गया है कि उसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। कुछ तो

0: भाई रक्षित ने ठान लिया है कि वो अपराजिता को प्रपोज कर ही रहेगा। अब ऐसे में जब रक्षित को सच का पता चलेगा तो उसका दिल टूटेगा या कहानी में ट्विस्ट आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
2: देखो मैं अपराजिता शर्मा एक चीज का वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बस तुम देना साथ मेरा। आई लव यू अपराजिता शर्मा। आई लव यू। आई लव यू।
3: वाओ, मुझे तो यहाँ पर आ रही है किसी मसाले की खुशबू। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पक रहा है यहाँ पर मन्नत की कहानी में। क्या यहाँ पर पक रही है एक नई खिचड़ी? ओह माय गॉड, खिचड़ी का मतलब है कंफ्यूजन। और देखिए वो हो गई ना बिरबल की खिचड़ी जो बस पकती ही रही। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। क्या है मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में सब कुछ ठीक या फिर से आया है कोई नया ट्विस्ट? लेट्स चेक इट आउट।

0: विक्रांत को लेकर मन्नत का डर।
1: हमरी उलझन
2: विक्रांत की रक्षा करती
1: बिन हमरा कोनो नहीं।
0: भगवान के आगे मन्नत की प्रतिज्ञा।

0: खतरे में विक्रांत की जान।
1: विक्रांत सलूजा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का एक दिन भी खुशियों से भरा नहीं रहने दूंगा। आज इस माँ का एक बेटा दूसरे बेटे के खातिर अपनी जान गवाएगा।
0: कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में विक्रांत और मन्नत शादी के बंधन में तो बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज मन्नत काफी टेंशन में है। उसे हो रहा है एहसास कुछ गलत होने का। असल में विक्रांत अचानक से कहीं चला गया है और उसके पीछे पीछे नीतू भी चली गई है, और यहाँ पर मन्नत को एहसास हो रहा है कि विक्रांत मुश्किल में पड़ने वाला है। तभी तो देखिए कैसे वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि विक्रांत को कुछ भी ना हो। इतना ही नहीं, आज तो मन्नत ने ये जलता दिया भी अपने हाथों में ले लिया है। विक्रांत की सलामती के लिए वो मांग रही है दुआ।

भाई तूफान आ चुका है और तूफान लेकर आया है ये डर भी। मन्नत बहा रही है आंसू क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के कोने में उसे पता चल चुका है कि विक्रांत खतरे में है। ऐसे में जब यहाँ दिया गिरने वाला होता है तब दुआ आकर संभाल लेती है।

0: विकराल और बिल्कुल अभी तक कोई ऐसा पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है दोनों, किस हाल में है, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा।
1: मन्नत का ये डर सभी घर वालों को पता चला और ऐसे में सभी देखे कैसे हाथ जोड़कर भगवान से विक्रांत की सलामती की प्रार्थना करते नजर आए।

0: कभी दुख से।
1: हाँ तो विक्रांत अचानक से गायब हो गया है, उसके पीछे पीछे नीतू जी भी गई है उसे ढूंढने, उसे फॉलो करती हुई। तो हमें, हम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, विक्रांत कहाँ गया होगा। ना तो वो फोन उठा रहा है, ना उसके लोकेशन के बारे में हमें कुछ पता चल रहा है, तो सब काफ़ी वरेड है। तो मन्नत को, आई थिंक मन्नत को ना कहीं एक गट फीलिंग हो रही है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और इसीलिए वो माता रानी जी से प्रार्थना कर रही है कि अगर विक्रांत, अगर कहीं वो किसी मुसीबत में है तो प्लीज़ विक्रांत और नीतू जी को प्रोटेक्ट करना माता रानी जी। वो एक मतलब प्रेयर कर रही है और दुआ को भी दिलासा दे रही है कि बच्चे, पापा को कुछ नहीं होगा, वो और नानीमा ठीक ठाक वापस आ जाएंगे, जैसे कि पेरेंट्स हमेशा करते हैं कि खुद चाहे कितने भी टेंशन में क्यों ना हो लेकिन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की, उनको दिलासा देने की कोशिश करते हैं। तो मन्नत वही कर रही है, अपनी बेटी को दिलासा दे रही है।
2: भाई विक्रांत को मुश्किल में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि धैर्य ही है। अब देखना होगा कि कैसे विक्रांत मुश्किल से बाहर निकलता है।
3: विक्रांत सलूजा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का एक दिन भी खुशियों से भरा नहीं रहने दूंगा। आज इस माँ का एक बेटा दूसरे बेटे के खातिर अपनी जान गवाएगा। मैं एक एक करके तुमसे वो हर चीज छीनूंगा जिस पर मेरा हक है।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: वैसे हमारी जो रीत और राघव है ना, उनकी केमिस्ट्री भी बिल्कुल देगी मिर्च की तरह है। अरे माय गॉड, कभी कभी तो हमारी टीवी स्क्रीन पर भी लग जाती है आंख। और हम तो चाहते हैं कि केमिस्ट्री हमेशा यूं ही रहे बरकरार, लेकिन क्या करें, इनकी कहानी में है इतने सारे ट्विस्ट और इतना ड्रामा की कहानी भी लेती रहती है नए नए मोड़। तो चलिए फिर जानकर आते हैं, इस कहानी का अपडेट लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर।
5: मिसिंग है, मुसीबत में तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया?
2: लापता हुई रीत
5: का इंतजार कर रही थी, रीत के मरने की खबर आने का।
6: मम्मी किसी कोई टाइम है ये सब बातें बोलने का? मत बोलो ये सब,
5: मुझे बताइए ऐसे कैसे रीत गायब हो गई?
2: परेशान हुए घर वाले।
5: कुछ उल्टा सीधा बोला होगा आपने, रीत की जिंदगी पहले ही इतनी बर्बाद करके रखी हुई है। पहले उसका बच्चा खो गया और अब खुद रीत चली गई।
2: बड़े राघव की बेचैनी। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज राघव पहुंच गया है रीत के मायके, रीत को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे रीत मिल जो नहीं रही है। ऐसे में जैसे ही रीत की चाची को ये पता चला कि रीत गायब है, वो तो परेशान हो गई, और तो और ये जानने के बाद वो राघव पर ही बरस रही है।
5: मुसीबत में तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? तुम किस बात का इंतजार कर रही थी, रीत के मरने की खबर आने का?
6: मम्मी किसी कोई टाइम है ये सब बातें बोलने का? मत बोलो ये सब,
5: बिल्कुल सही समय नहीं है। इन दोनों भाई बहनों ने मेरे घर के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मुझे बताइए ऐसे कैसे रीत गायब हो गई? आपने उससे कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। आपने रीत की जिंदगी पहले ही इतनी बर्बाद करके रखी हुई है। पहले उसका बच्चा खो गया और अब खुद रीत चली गई। आप दोनों लोग रीत को कितनी बार मारोगे, मेरी बच्ची को कितनी बार मारेंगे?
6: मम्मी प्लीज बस करो, मत बोलो ये सब।
2: भाई एक तो बच्चे के खोने के गम से पहले ही रीत परेशान है, ऊपर से वो लापता है, ऐसे में चाची का बेचैन होना तो बनता है। वो तो रो रही है और ऊपर वाले से दुआ भी मना रही है कि रीत सही सलामत हो। वहीं दूसरी ओर राघव के घर पुलिस आ गई है। असल में परिवार वाले कंप्लेन लिखाना चाहते हैं कि रीत गायब है, लेकिन पुलिस ने कंप्लेन लिखने से मना कर दिया, ये बोलकर कि अभी तक 24 घंटे नहीं हुए हैं, हो सकता है रीत वापस आ जाए। ऐसा बोलकर पुलिस निकल भी जाती है कि तभी राघव घर में आता है और सभी रीत के बारे में उसे जानने की कोशिश करते हैं कि तभी राघव का घाव देखकर सभी परेशान हो जाते हैं।
7: इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने आप को चोट पहुंचा, बस
0: ध्यान रखने के लिए तुम्हें अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ठीक रखना होगा।
2: फिलहाल तो राघव ने तय कर लिया है कि वो रीत को ढूंढ कर रहेगा, उसके लिए चाहे भले ही उसे कितनी भी चोट लगे। अब देखना होगा क्या राघव को पता चल पाएगा क्या रीत वाकई मुश्किल में है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: वैसे फ्रेशली कूटे हुए मसालों की तो बात ही अलग होती है, उनकी महक और उनका स्वाद होता है लाजवाब। वाह वाह वाह वाह। वैसे इतनी ही फ्रेश है हमारी ये अगली खबर, जिस तरह हम परोस रहे हैं आपको आपके लंच टाइम में गर्मा गर्म। कैसे? ऐसे
7: होने लगा सनसेट, भाई तेरा फुल सेट, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा, देखो तो हसीना को वाना भी करीना।
8: निशी की बर्थडे पार्टी
7: चढ़ने लगा, थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल
8: हुआ अनुपमा टीम का रीयूनियन,
7: होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे
8: देखी सागर और निशी की दोस्ती।
7: Let's not draw.
8: भाई मौका है अनुपमा में डिम्पी का किरदार निभाने वाली निशी के बर्थडे का, और ऐसे में निशी ने थ्रो की है धमाकेदार बर्थडे पार्टी जिसमें शामिल हुए हैं कई सारे सितारे। भाई यहाँ पर निशी के साथ साथ नजर आए उनके बेस्ट फ्रेंड सागर, और इन दोनों ने मिलकर ये पार्टी होस्ट की। भाई इस पार्टी में हो गया है अनुपमा टीम का रियूनियन, क्योंकि यहाँ पर वनराज है, अनुपमा है, बा है और है बाकी के सभी कलाकार, यानी कि यहाँ सुधांशु पांडे पहुँचे अपनी वाइफ संग। तो वहीं बा एकदम मॉडर्न अंदाज में नजर आई। बात करें अनुपमा रूपाली गांगुली की, तो आज इनका टशन देखने लायक है।
7: Let's not draw.
8: भाई पार्टी की थीम है ब्लैक, और ऐसे में सभी ब्लैक कलर के आउटफिट्स में नजर आए। जहां बर्थडे गर्ल इस शॉर्ट ड्रेस में लग रही हैं बेहद खूबसूरत, तो वहीं सभी सितारों ने काला कलर चुना है, या फिर इनके आउटफिट में कुछ ब्लैक रंग का जरूर है।

इसके अलावा निशी की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए कई और सितारे जैसे कि ओरा भटनागर। राजन और इशिका शाही, तेरे तो की सिखा। कुवर अमर, तेरे दे की लिखा। हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा। विजेंद्र कुमेरिया, हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा। हुसन तेरा तौबा तौबा। रचना मिस्त्री,

아랴바밭. और कई और सितारे जिन्होंने इस पौधे की शान बढ़ाई।

वही पार्टी के इनसाइड नज़ारे भी देख लीजिए, जहां सभी इस पार्टी को दिल खोलकर एंजॉय कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी निशी को बर्थडे की ढेर सारी बधाइयां।

मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। रोहित तो कह रही हैं कि उनका ऑल टाइम फेवरेट मसाला है गरम मसाला, जो सब्जी में लेकर आता है स्वाद। वैसे एंटरटेनमेंट का स्वाद तो आता है आपकी कहानी से, और आपके ऑल टाइम फेवरेट भी तो है नाहर। लुक लुक, रूही इज ब्लशिंग। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको नाहर और रूही के पास, उनके शो मन सुंदर के सेट पर।

0: चल पड़ी रूही नाहर के प्यार की गाड़ी।
1: इश्क बुलावा आवे जब आवे।
0: नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत।

लगा खुशियों को ग्रहण। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूहीनार की जिंदगी में जितने भी ट्विस्ट थे वो जा चुके हैं। ऐसे में रूहीनार बहुत खुश है और अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे दोनों कार में सवार होकर निकल चुके हैं अपने हनीमून पर। ऐसे में रूही और नाहर दोनों ही बहुत खुश हैं अपने इस नए सफर को लेकर।

0: खुद ही
1: सिंह के हिसाब से बताऊं तो युवराज नाहर और रूही की जिंदगी से जा चुका है और दोनों एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो रूहान को भी जाना है 3 दिन के लिए समर कैंप में। तो नाहर ने दिमाग लगाया क्योंकि एनिवर्सरी है, रूही को सरप्राइज देते हैं। हम लोग कभी हनीमून पर नहीं गए तो मैंने सोचा क्यों ना बेबी मून पर
2: चल,
1: तो बेबी मून पर चले हम लोग मालदीव्स।
3: रूही और नाहर खुशी से अपनी राह तय कर रहे हैं कि तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। गाड़ी चलाते चलाते अचानक नाहर को आने लगते हैं चक्कर, उस पर छाने लगती है बेहोशी। ऐसे में रूही ये देखकर परेशान है, वो तो नाहर को गाड़ी रोकने के लिए भी कहती है लेकिन गाड़ी रुकने से पहले ही हो जाता है गाड़ी।

0: कैमरे को ऊपर
1: आप गेस कर ही सकते हो कौन है। आई थिंक इट्स दादी मे बी। मेरा गेस ये है, लेट्स सी।
2: भी कार का एक्सीडेंट देखकर वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन नाहत उसे होश आता है और अपनी बेहोश रूही को गोद में उठाता है ताकि वो जल्द से जल्द उसे अस्पताल ले जा सके। अब देखना होगा कि कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह आज मेरी इस रसोई में है मसालों का परफेक्ट मिक्स, यहाँ भी है एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स। मैं तो बात कर रही हूँ रियलिटी शो तुम हो ना की। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस शो के मंच पर और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग, क्योंकि यहाँ तो है इमोशंस, मस्ती, ड्रामा और फन का परफेक्ट कॉम्बो। गेट सेट गो।
3: जोरदार तालियां AI यानी अरुणा ईरानी जी के लिए। रेट्रो लुक और ये गजरा, मेरी जो वेशभूषा है ये आपकी शान में समर्पित है।
4: अरे यार, एक्चुअली मैं करने की थी पर इनका हाथ मेरे हाथ सही मानू में इस घर की सुपरस्टार है। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है। उनका समय था तो वो भी शादीवादी करके अपना घर बसा सकती थी, पर उन्होंने इस वक्त ये सोचा कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरे ये छोटे भाई बहनों को कौन देखेगा। तो उन्होंने हमारे को सबको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और हम सब सभी बहन भाइयों का अच्छा घर संसार है। तो वो हमारी सुपरस्टार है ना?
3: बिल्कुल है।
4: सही गाना लिखा गया, वो शायद मेरी बहन के लिए ही लिखा गया कि फूलों का तारों का सबका कहना है एक लाखों में मेरी बहना है।
3: गंगा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जूतों का जो ये काम है, ये काम आपने कैसे लिया?
5: वैसे तो लोगों के लिए मेरे पास 3 बेटे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे पास 4 बेटे हैं। एक दुकान मेरा चौथा बेटा है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे आदमी को बोला अपन दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के करेंगे तो अपना घर अच्छा हो जाएगा। जैसे हमारा घर बहुत टूटा फूटा था, हमको 3-4 बार चूहा काट लिया था। बोले ऐसा कब तक जिएंगे, इसको कुछ तो करेंगे ना। कलयुग ऐसा है ना कि कल जाके मेरा पति भी मुझे छोड़ सकता है, मेरे 3 बेटे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दुकान, ये मेरा बेटा, ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकता है। मुझे इसके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है।
6: क्या प्यारी माँ मिली है तुम लोग को बेटा। तुम मुझे बहुत छोटी हो बेटा, लेकिन तुम्हारी महान। अपनी बात कहूंगी, जब मैंने एक वॉमिट गॉप फिल्म की, कारवां फिल्म की, दोनों पिक्चर सुपरहिट, सुपर सिनेमा में जुबली और ड्रीमलैंड में जुबली, और 3 तक मेरे पास कोई काम नहीं। और जब मैंने काम शुरू किया तो क्या शुरू किया, एक लावनी की मराठी पिक्चर की। और मैंने ये हिम्मत से कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे दिखना है कि मैं जिंदा हूँ। और मैंने कहा नहीं, जाना है। और वही जाना मेरा इतना फला कि वहाँ लोग मुझे मिले।
2: गरम मसाला, इसका भी एक अलग ही स्वाद है, और स्पेशली जब सब्जी बनने के एकदम बाद ये स्प्रिंकल किया जाता है ना, तो बस स्वाद हो जाता है रॉकिंग। लेकिन अगर ये भी हो जाएगा ज़्यादा, या इसका इस्तेमाल आप रोज़ाना करेंगे, तो डेफिनेटली हो जाएगा आपके पेट के लिए शॉकिंग। और ऐसा ही है हमारा अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज़।
7: वाला है लॉकअप सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर, और इसके होस्ट हो सकते हैं फारा खान और रितेश देशमुख, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।
8: I personally wanted to thank all of you. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। People have been reaching out to me from all over. I'm so grateful to all of you. कि आपकी प्रेयर्स की वजह से आई एम ऑन अ रोड टू रिकवरी नाउ।
7: शेफ पंकज भदौरिया इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। ऐसे में हॉस्पिटल से उन्होंने दिया है अपने हेल्थ का अपडेट कि अब वो ठीक है।
8: मेरे लिए प्रेयर्स की हैं। दिस इज थैंक्स टू दैट। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस।
7: बीती शाम हुआ लॉन्च पिंक रिक्शा का, जो एम्पावर करेगी 1000 विमेंस को। ऐसे में इस खास मौके पर नजर आई भूमि पेडनेकर और अमृता फडणवीस।

कुछ तो हुआ है और दोनों बेहोश हो गए हैं और रूही को लेके मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आगे का ड्रामा बहुत ही इंटेंस है, सो स्टे ट्यून्ड। मुझे लगता है अभी एक ही विलेन है क्योंकि सारे विलेन मर चुके हैं। अग्नि भी जेल में है, युवराज भी धरती माँ के यमलोक पहुंच चुका है यमराज, और आई थिंक

0: मुंबई हाल ही में लॉन्च हुआ है फिल्म काला हिरन का पोस्टर, ऐसे में सलमान खान की लीगल टीम ने ले लिया है इस पर एक्शन।
1: यह अब तक का सबसे संगीन अपराध माना जा रहा है।
0: जल्द आने वाली है सोनाली बेंद्रे और अली फैजल की फिल्म राख, देख लीजिए इसका ट्रेलर।
2: आर्मी में हाई पोस्ट पे और माँ स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, जहाँ बच्चों को
3: हरे रंग की चोरी की मोटर कार में अगवा किया गया।
4: नहीं, वो सरदार जी के साथ स्कूटर पर देखा गया था और शायद मल्टीपल टाइम्स अटैक किया गया।
5: मुझे नहीं लगता है किसी एक आदमी का काम है सर।
6: बॉम्बे, एक और का कत्ल,
7: इतनी मुश्किल से एक केस हाथ आया मेरे। आप मेरा हौसला नहीं बढ़ा सकते, कम से कम मेरा मजाक तो मत बनाइए।
8: खुला घूम रहा है वो जानवर, कब पकड़ेंगे आप इसे?
4: अरे हथियार क्या है, ये तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा।
9: क्या ये हीरो बनने का इतना शौक है ना? फिल्म लाइन में जाके ट्राई कीजिए आप।
10: हमें ना कभी किसी के लिए हीरो बनना पड़ता है।

0: अब ट्विस्ट तो आ जाता है आप सबकी जिंदगी में, जब घर में टमाटर भी ना हो और नींबू भी नहीं हो और चाहिए आपको सब्जी में खटास। खैर ये काम यूं मिनटों में कर देंगे चाट मसाला और अमचूर पाउडर और हो जाएगा ये ट्विस्ट दूर। लेकिन कैसे दूर होंगे ये सारे ट्विस्ट हमारी कहानियों में से, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ट्विस्ट ही लेकर आते हैं कहानियों में एंटरटेनमेंट। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला वो भी एक साथ।
1: दुनिया एक दिल
2: दिखाइए क्या मिला है आपने अभी छाछ में।
3: छोड़ो छोड़ो मत।
2: क्यों छोड़ू बताइए मुझे क्या मिला है। कुछ नहीं है, मैंने खुद अपने आप को
3: अरे मैं दिखाइए मुझे
2: छोड़ो दिखाइए छोड़ो दिखाओ मुझे मेरी देखा है सुनो अभी क्या छुपा रहे हो
3: हमारे पास
2: दिखाओ मुझे
3: अरे क्या छुपा रहे हो दिखाओ
2: दिखाओ क्या करी दिखाइए
3: अब छोड़ो छोड़ो
2: छोड़ो कुछ नहीं हमारे पास
3: सुनो मम्मी ने अपनी आपको से देखा दिखाइए
2: अरे कुछ नहीं है अरे छोड़ो हमारे आपको से देखा
4: अरे क्या हुआ क्या है सोनम जी बोला जी भी हुआ क्या
3: ये देखो ये झूठ बोली है मैं अंदर गई जो छाछ रखी थी ना इसमें उन्होंने कुछ मिलाया मैंने
4: पीला सड़का होगा माँ क्या डालेगी नमक डाला होगा एक सेकेंड अरे सुनो
2: अरे
4: खिला डालूंगा

0: charge you.
1: Nate being young.
0: छाछ पीजे
1: नहीं पीना है हमको
0: तीसरी बार कह रहे सुनो छाछ पियो
1: हमने कहा ना नहीं पिए क्या
2: छाछ पियो
1: नहीं पिएंगे
3: लाइए सर हम पी लेते हैं

0: तुमने छाछ में क्या मिलाया है?
1: अरे मम्मी जी कुछ भी नहीं मिलाया हमने, ये फालतू का इल्जाम लगा रही है हम पे। जब से आई है सब इल्जाम भी लगा रही है, पहले सूरज पे इल्जाम लगाया आप हम पे लगा रही है।
0: सूरज?
2: अरे माँ भुना हुआ जीरा मिलाया होगा।
1: अरे चुप बैठिए। अरे मम्मी जी कल की आई हुई लड़की है, हम तो आपके पहले से बहू है, हम पे थोड़ा भरोसा करना सीख लीजिए। ये झूठी

0: करो मेरे को है। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनाज सालिमी।
1: माहिद साहब
2: जी, जी आप, आपकी चोट कैसी है?
1: बेहतर, शुक्रिया। एक सवाल करना था आपसे।
2: जी।
1: आप होने वाले मुफ्तिया शहर हैं, इबादत गुजार हैं। हम मानते हैं अल्लाह ने आपको अच्छा मशवरा देने की काबिलियत जरूर दी होगी। क्या आप बता सकते हैं हमें आके क्या करना चाहिए? घर से तो भाग निकले।
3: तो देखा आपने, आज तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने आपके साथ मसालों को लेकर कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को शेयर किया। लेकिन क्या करें, अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family. No matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
11: हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता। अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। चमोली का सुहाना मौसम भी बढ़ा रहा है भक्तों का उत्साह। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। 40 दिनों में करीब 8 लाख भक्तों ने दर्शन किए, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन। 70 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पुल। 2023 में आई आपदा में बह गया था पुल। मैदानों की गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा हिमाचल के खजियार का मौसम। बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं पर्यटक। स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। भारत ने पेश की मानवता की मिसाल। इबोला प्रभावित अफ्रीका के लिए भेजी 43 टन की दूसरी चिकित्सा सहायता। विदेश मंत्री बोले, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल में अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है भारत। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद देने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली। पत्नी अनुष्का भी साथ। हर बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: आईपीएल जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। आश्रम से बाहर निकलते वक्त विराट ने माथे पर चंदन और त्रिपुंड लगाया, हाथ में भी एक किताब। हर बड़े टूर्नामेंट जीतने पर प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करते हैं विराट अनुष्का, अब तक 7 बार प्रेमानंद जी से मिल चुके हैं विराट और अनुष्का। हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता, अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, सुहाने मौसम ने भिड़ा रहा है भक्तों का उत्साह। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं भक्त, 40 दिनों में करीब 8 लाख भक्तों ने दर्शन किए, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिल रही है वाहनों की लंबी कतारें, गेट सिस्टम के बावजूद कई जगह 7 से 8 किलोमीटर तक लग रहा है जाम। पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही है भक्तों की भीड़, जून के महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन पूजन। चंडीगढ़ के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और झुमके अर्पित किए। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।

0: स्वतंत्रोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। वसंतोत्सव के दौरान देवता को सुगंधित द्रव्यों से कराया गया स्नान, विशेष पूजा अर्चना के साथ दिव्य आभूषणों और फूलों से सजाया गया। आज ज्येष्ठ महीने का पांचवा बड़ा मंगल, देशभर के हनुमान मंदिरों में बजरंग बली के भक्तों की भीड़। बड़े मंगल पर लाल मसूर, लाल वस्त्र या लाल फलों का दान विशेष उसकी मान्यता है। सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है पूजा। बड़े मंगल के दिन दान करने का विशेष महत्व, तो पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन का दान करना विशेष फलदायी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान राम और हनुमान जी की पहली बार हुई थी भेंट। इस दिन बजरंग बली के दर्शन और भंडारे आयोजित करने से दूर होते हैं कष्ट। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। पांचवें बड़े मंगल पर बजरंग बली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार, भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। पांचवें बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। अयोध्या में पांचवें बड़े मंगल पर प्रभु राम की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अयोध्या में पांचवें बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की कतारें, भक्तों ने लगाया जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंधुआ हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत, सरकार के 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला, देश के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े लड़ाकू विमान समझौते की तैयारी। फ्रांस से लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में होगी 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद, समझौते के तहत भारत में ही बनेंगे 90 राफेल लड़ाकू विमान। सुप्रीम कोर्ट में मिले 5 नए जज, चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ, राष्ट्रपति ने कल ही 5 जजों को नियुक्ति कर दी मंजूरी। छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, गुलमर्ग में आज से फिर शुरू की गई गंडोला राइड, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रोकी गई थी ये सेवा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें तो समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
10: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद तो भाइयों और बहनों मेरा नाम बाबा रवि गिरी है मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं और उसका नाम क्या है बवासीर अरे भाई और बहनों ये कोई शर्म की बात नहीं है ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है न पैसा देखता है न पद या ओहदा देखता है बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है जलन दर्द खून आना बैठ भी ना पाए मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो मैंने जड़ी बूटियों को परखा हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है तो भाइयों और बहनों आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे कई दवाइयां खाई होंगी लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सुरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं, बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: Join SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
4: हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता, अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। चमोली का सुहाना मौसम भी बढ़ा रहा है भक्तों का उत्साह। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं भक्त, 40 दिनों में करीब 8 लाख भक्तों ने दर्शन किए, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन, 70 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पुल, 2023 में आई आपदा में बह गया था पुल। मैदानों की गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है हिमाचल के खजियार का मौसम, बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं पर्यटक, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। भारत ने पेश की मानवता की मिसाल, इबोला प्रभावित अफ्रीका के लिए भेजी 43 टन की दूसरी चिकित्सा सहायता, विदेश मंत्री बोले वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल में अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है भारत। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी साथ, हर बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। आज मंगलवार है और साथ आज ही है ज्येष्ठ मास का पांचवा बड़ा मंगल। आज हम अपनी इस खास पेशकश में जानेंगे मंगल से शनि का आखिरकार क्या कनेक्शन है। देखिए, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये दोनों ग्रह इंसान की जिंदगी में उथल पुथल मचा सकते हैं, लेकिन वहीं अगर शनि और मंगल अनुकूल हो जाए तो इंसान को रंग से राजा भी बना सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या होता है जब आपकी कुंडली में शनि और मंगल का एक साथ दुष्प्रभाव होता है, साथ ही जानेंगे अगर मंगल और शनि प्रतिकूल है तो कैसे इसे शुभ कर सकते हैं।

0: अद्भुत है मंगल और शनि का जोड़, दोनों ग्रहों का मिलन है बेजोड़। ज्योतिष में शनि और मंगल की युति को प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं कि शनि वायु तत्व है और मंगल अग्नि तत्व। जानकार बताते हैं कि जब ये दो विपरीत स्वभाव वाले ग्रह एक साथ आते हैं तो जीवन में मिला जुला असर देखने को मिलता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कुंडली में शनि और मंगल के बीच तीन तरह से संबंध बनता है। पहला, जब ये किसी भाव या राशि में एक साथ विराजमान होते हैं तो उसे युति संबंध कहते हैं। दूसरे, जब वे एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो दोनों के बीच दृष्टि संबंध होता है। तीसरा, जब ये दोनों एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो उस घटना को राशि परिवर्तन संबंध कहते हैं। सभी का अलग अलग प्रभाव होता है।
1: देखिए, शनि हमारा ज्योतिष में नौ ग्रहों में न्यायाधीश के पद पर आसीन है, हमेशा न्यायाधीश के रूप में शनि को देखा जाता है। मंगल सेनापति के रूप में कार्य करते हैं ग्रहों के में, तो मंगल सेनापति भूमि पुत्र मंगल होते हैं और सूर्य पुत्र शनि होते हैं, शनि है और इनका यही मित्रता है, दोनों मित्र ग्रह हैं।
0: शनि को न्यायाधीश कहते हैं जबकि मंगल सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। दोनों को आप मित्र ग्रह कह सकते हैं। माना जाता है कि अगर शनि और मंगल की स्थिति कुंडली में ठीक ना हो तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और शनि वायु तत्व का। इनके मिलन से कुंडली में अंगारक योग का निर्माण होता है जो आपको साहसी और पराक्रमी तो बनाता है लेकिन साथ ही जीवन में आक्रामकता, परेशानियां और अचानक विवाद लेकर आता है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शनि और मंगल की युति होती कैसी है। शनि और मंगल दोनों ही पाप ग्रह माने जाते हैं। दोनों का आपसी संबंध विशेष प्रभाव पैदा करता है। शनि वायु है और मंगल अग्नि, दोनों का संबंध विस्फोट पैदा करता है। यह संबंध साथ होने से, परस्पर दृष्टि से और स्थान परिवर्तन से बनता है।
1: शनि और मंगल दोनों जब मिल जाते हैं तो इसमें बहुत से जघन्य ऐसे ऐसे रोगों की भी उत्पत्ति हो जाती है। दोनों का कुंडली में संबंध हो तो मंगल के दोनों के राशि के दोनों के जो रत्न है उनको धारण करें, इनके जो देवता हैं उनका उपासना करें, पूजन करें, जिससे कि यह हमारे अनुकूल होकर चले।
0: इन दोनों के मिलन से कई तरह के विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए इन दोनों से जुड़े रत्न धारण करें और इसके देवों की उपासना करें। शनि और मंगल दोनों ही शक्तिशाली ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में पथ, स्वभाव और कर्म को गहराई से प्रभावित करते हैं। ज्योतिष में मंगल ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और संघर्ष का प्रतीक माना गया है, जबकि शनि अनुशासन, विलंब और जीवन के सबक का प्रतीक है। चलिए आपको बताते हैं शनि और मंगल आपके जीवन पर किस तरह से असर करते हैं। शनि और मंगल के संबंध से अग्नि भड़क जाती है। ये संबंध दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और खतरा पैदा करता है। ये संबंध किसी अंग विच्छेद की सूचना भी देता है। ये संबंध कभी कभी लाभकारी भी हो जाता है। इस संबंध वाले लोग एकदम से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। आकस्मिक रूप से धन और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो जाती है, पर इनका अंत भी आकस्मिक तरीके से ही होता है।
1: शनि यदि आपका अच्छे स्थान पर जाकर बैठा हुआ है कुंडली में, तो वो आपको लाभ करेगा। और यदि शनि मजबूत है, शनि यदि मजबूत रहता है तो व्यक्ति को नौकर बनाता है, नौकरी पेशा में भेजता है। मंगल यदि मजबूत है तो वो प्रशासनिक कार्य के लिए आपको दक्ष करता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मंगल और शनि का स्थान जब कुंडली के 11वें भाव में होता है तब ये धन लाभ के साथ इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। माना जाता है कि ये एक मिश्रित फल देने वाला योग है जो आरंभिक संघर्ष के बाद व्यक्ति को बड़ी सफलता और समाज में मान सम्मान दिलवाता है। लेकिन इसके लिए आपको बरतनी होगी सावधानी और करना होगा महा उपाय। तो चलिए,
1: शनि को प्रसन्न करने के लिए कहा गया मंद, मंद माने शनि, मंदे च मृत्युंजय, महामृत्युंजय की उपासना करने से शनि प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से शनि प्रसन्न होते हैं। दशरथ जी के द्वारा उपासना किया गया था तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का निर्माण किया महाराज दशरथ ने, उस शनि स्तोत्र का भी पाठ करने से शनि प्रसन्न हुआ करते हैं। हनुमान जी का आराधना करने से मंगल और शनि दोनों प्रसन्न हुआ करते हैं।
0: शनि और मंगल से जुड़ी सावधानी, वाहन और शास्त्रों के प्रयोगों में सावधानी रखें, आग और बिजली की वस्तुओं के प्रयोग में सावधानी रखें, आंखों और शल्य चिकित्सा का हमेशा ध्यान रखें, नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करें, अधिक से अधिक हनुमान जी की उपासना करें, मूंगा और नीलम सोच समझ कर धारण करें, काले और लाल वस्त्र एक साथ धारण ना करें। इसके अलावा भी ज्योतिष में बताए कुछ महाप्रयोग आप कर सकते हैं जिससे आपकी कुंडली में शनि और मंगल की कृपा बरस सके, तो गौर से देखिए वो महाप्रयोग।
1: शनि के लिए लोहे का छल्ला धारण किया जाता है, शनि के लिए पीपल के वृक्ष में जल दूध और दीप का दान सायंकाल में किया जाता है। मंगल के लिए मूंगा आता है, लाल कनैल की जड़ आती है अथवा लाल चंदन की माला, ये धारण करने से मंगल की शांति प्राप्त होती है। मंगल में स्किन प्रॉब्लम भी संभव है, शरीर में दाने दाने हो जाना, नेत्र हमेशा लाल लाल रहना, क्रोध की अधिकता हो जाना, यह सब मंगल के लक्षण है।
0: आगे हम आपको बताएंगे मंगल को शुभ करने के लिए कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न, साथ ही जानेंगे किन मंत्रों के जाप से मिल सकती है शनि और मंगल की कृपा। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आज ज्येष्ठ महीने का पांचवा बड़ा मंगल है। ज्येष्ठ माह में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि बजरंग बली से आशीर्वाद पाने की बड़ी ही अलौकिक तिथि है बड़ा मंगल। माना जाता है कि मंगलवार का दिन आपके जीवन में सब कुछ मंगल कर देगा।
0: मंगलवार का व्रत करेगा सब मंगल ही मंगल। छट जाएंगे संकट के बादल, दूर होगा अमंगल। हमने आपको पहले भी बताया था, इस साल ज्येष्ठ में अधिक मास लगा है जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है, क्योंकि इसी माह में हुआ था भक्त और भगवान का मिलन। श्री राम से मिले थे उनके भक्त हनुमान जी, इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना परम पुण्यकारी बताई गई है। आज ज्येष्ठ महीने का पांचवा बड़ा मंगल है। माना जाता है कि इस तिथि पर हनुमान जी और शनिदेव के मंत्रों का जाप भक्तों का कल्याण होता है।
1: शनि का हमने मंत्र आपको बताया अभी, ओम शनो देवी रविष्टय आपो भवंतु पीतये संजो रविश्रवंतु।

0: तये संजो रवि श्रवंतुना। यह वैदिक मंत्र रहा शनि का, ओम सम शनैश्चराय नमः। यह पौराणिक मंत्र है शनि का, मंगल के लिए भी हमने आपको बताया। अग्निर्मूर्धा दिवाह ककुत्पति पृथिव्या अयम अपहगुरे ताग्नोसे जिन्वती, मंगल का या वैदिक मंत्र बता दिया। भौमाय नमः, भौमाय नमः, भौमाय नमः करके मंगल का ये पौराणिक मंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
1: आज ज्येष्ठ के पांचवें पड़ा मंगल पर हम आपको मंगलवार व्रत की महिमा समझाएंगे, जिससे संकट मोचन हनुमान जी की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही मंगल ग्रह भी शांत हो जाता है। मंगलवार के नाम में ही छिपा है इस दिन का महत्व, यानी ऐसा दिन जब मंगल ही मंगल होता है। इस दिन व्रत रखने से अजर अमर बजरंग बली की पूजा और उपासना करने से जीवन में खुशियां आती हैं।
2: मंगलवार के दिन मंगलवार का मंगल ग्रह के लिए व्रत करने से हमें जो हमारे मन की शांति होती है वो प्राप्त होती है और हमारे जीवन में उत्तम फल प्राप्त होता है और हम जीवन में उत्कृष्ट फल पद प्राप्त करते हैं और हम जहाँ भी जाते हैं हमें विजयश्री प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो साहस का प्रतीक ग्रह माना गया है। इस वजह से अगर हम लोग मंगलवार के दिन मंगल का व्रत करें तो हमें उत्तम फल प्राप्त होगा।
1: मंगलवार का व्रत मंगल ग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मंगल की समस्याओं से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, गलत कार्यों से बचाव होता है। इस व्रत को करने से अमंगल टल जाता है और मंगल होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यदि मंगलवार का व्रत रखा जाए तो यकीनन ये परम फलदायी होगा। जीवन में धन का अभाव हो या फिर कर्ज ने परेशान कर रखा हो, मंगलवार का व्रत विशेष लाभकारी माना गया है। जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा हो, अगर उग्र चिड़चिड़ा या हिंसात्मक स्वभाव हो, अगर मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो, अगर पेट या रक्त की समस्या हो, घर में लंबे समय से कोई मंगल कार्य ना हो पाया हो, चलिए अब आपको मंगल के दोष दूर करने के लिए मंगल देव को प्रसन्न करने का एक ज्योतिषीय महा उपाय बताते हैं। माना जाता है कि मंगलवार का व्रत करने से मांगलिक दोषों से छुटकारा मिल जाता है।
2: मंगल दोष मिटाने के लिए शास्त्र में आया है कि पूर्व जन्म के तम पापम व्याधि रूप बाधते तांत्र जप होमार्चना दिवि, यानी कि हमारे जन्म कुंडली में जो ग्रह बताए गए हैं, जो ग्रह विपरीत हैं, उनकी शांति के लिए हमें उसका जप करना चाहिए और उसके अनुकूल जो ग्रह में लकड़ी बताए गए हैं उसके हवन करना चाहिए और संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए। जैसा कि मंगल के लिए मसूर दाल बताया गया है और खैर की लकड़ी का हवन बताया गया है, या लाल वस्तु दान करना चाहिए जिससे हमारे मंगल दोष दूर होते हैं और उत्तम प्रद हम प्राप्त करते हैं।
1: मंगलवार को लाल आसन पर बैठकर मंगल देवता की पूजा करें। लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा स्थल पर एक चौमुखी दीपक जलाएं। ओम क्रोम यंग रंग लंग वंग भौमाय नमः मंत्र का 7 माला जाप करें। गुग्गल की धूप जलाकर मूंगे की माला से मंत्र जाप करें। फलों का प्रसाद अर्पित करके गुड़ और मेवे का प्रसाद बांटें। माना जाता है कि जीवन की बाधाओं का अंत करने के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस तिथि के देव हैं हनुमान जी। संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन की सभी बाधाओं का अंत कर सकते हैं, तो आप भी मंगलवार का व्रत करें और हनुमान जी की महाकृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन आपको इस तिथि पर कैसे करना है मंगलवार का व्रत, क्या है व्रत की विधि, आगे जानिए।
3: मंगलवार को बजरंग

बलि की उपासना से न सिर्फ संकटों का समाधान संभव है बल्कि मंगल की पीड़ा से भी निजात मिल सकती है। मंगल मूर्ति हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि उनके प्रताप से जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं। महाबली हनुमान की उपासना का वो दिव्य प्रयोग जिससे दूर होगा आपकी कुंडली का मंगल दोष, आइए जानते हैं।

0: नव ग्रहों की कृपा दिलाते हैं महावीर हनुमान। मंगलवार को कीजिए पवन सुत का ध्यान, मंगल दोष से मिलेगी मुक्ति, होगा कल्याण, आपको मिलेगा मनोकामना पूर्ति का वरदान। माना जाता है कि जहां हनुमान जी होंगे वहां अमंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे शिव के रुद्रावतार हैं और शिव के अंशावतार के अधीन ही हैं नवग्रह, और इन्हीं में से एक ग्रह है मंगल। अगर जीवन में मंगल शुभ हो तो जीवन में आने वाले सारे संकट खुद ब खुद मिट जाते हैं।
1: मंगलवार के दिन हम लोग प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य स्नान करें और भगवान हनुमान जी का तस्वीर या मंगल ग्रह का कोई भी एक यंत्र लेकर के हमें उसका यथोविधि पूजन करना चाहिए। जैसे गंध पुष्प धूप दीप और लाल पेड़ा नैवेद्य और जो ऋतु फल बताए गए हैं उसको अर्पित करके मंगल ग्रह की शांति करें, या हनुमान जी का भी व्रत करने से हमारे मंगल ग्रह अनुकूल होते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सबसे उग्र ग्रह है मंगल। ऐसे में मंगल दोष दूर करने के लिए महाबली हनुमान की साधना से उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। तो देखिए मंगल दोष से मुक्ति दिलाने के लिए कैसे करें हनुमान की उपासना। मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर जाएं, बजरंग बली को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें, बूंदी या लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो ओम हं हनुपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा लगातार 9 मंगलवार तक करें, दूर होगा कुंडली का मंगल दोष। माना जाता है कि मंगल दोष दूर करने के लिए मंगलमय हनुमान जी की साधना सबसे अचूक और उत्तम मानी गई है। कई बार मंगल दोष के कारण विवाह में भी विलंब आने लगता है, तो उसका समाधान भी इस ज्योतिषीय उपाय में छिपा है। ध्यान से देखिए, अगर मंगल दोष के कारण विवाह होने में विलंब हो रहा हो, नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करें, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके उनकी पूजा करें, शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। जानकारों की माने तो मंगलवार की शाम को पवन सुत हनुमान जी के कुछ विशेष मंत्रों के जाप से कुंडली का मंगल दोष दूर हो सकता है। तो अब हम आपको बजरंग बली के उन दिव्य मंत्रों के बारे में बताने वाले हैं जिनके निरंतर जाप से कुंडली का मंगल दोष भी छू मंतर हो सकता है। देखिए, ओम रुवीर्य समुद्भवाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः, ओम शूराय नमः। तो आप भी मंगलवार की शाम को महाबली हनुमान जी के सामने इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, जिससे आपकी कुंडली का मंगल शुभ हो सके और आपका जीवन खुशहाल हो जाए।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए GNT के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
4: है। One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
6: somebody save me,
5: to timeless favorites,
6: life is like a song,
5: and new discoveries.
7: So much more than a history. Wake up.
5: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की, तो जीएनटी भी तभी से आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज पर दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत हामटा वैली का दीदार करवाते हैं, जहां के सीनिक ब्यूटी, ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। इस वीडियो को हामटा वैली के ही एक दर्शक ने हमें भेजा है,

0: नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ हमटा का लोकल निवासी हूँ। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा हो यहाँ पे। तो ये जो हमटा वैली है, ये मात्र 40 मिनट का रास्ता है मनाली से, और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट प्लेसेस में ये आता है। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, बहुत सुंदर मीडोज हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है, और छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ये सेतन विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, होम स्टेज हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, रूम्स हैं, डबल शेयरिंग रूम्स, और बंक बेड्स भी हैं यहाँ पे। ये विलेज कम्युनिटी हॉल है, और एक छोटा सा मॉनेस्ट्री भी है इस गांव में, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, क्योंकि ये पूरा गांव एक बुद्धिस्ट जो पहले फार्मिंग करते थे, और अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो कुछ लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, और साथ में ये टूरिज्म वाला काम भी देख रहे हैं। ये विलेज सेतन है, एक छोटा सा गांव है जो हमटा वैली का लास्ट गांव है। इसके बाद आपका हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे, और यहाँ पे लोग अपना खेतों में देखिए यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई है। यहाँ पे गोभी, धनिया, ब्रोकली, बहुत सारे एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे जो सब्जी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है वो हमेशा। और ये हमटा वैली में जब आप लोग विंटर टाइम में आएंगे तो आप लोगों को पूरा एरिया ये बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे आपको इग्लू स्टे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इग्लूज है वो इसी वैली में ही बनते हैं, और फर्स्ट टाइम इग्लू स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हमटा वैली में लाया गया था। और ये वाला एरिया है जो इग्लू के लिए यूज होता है विंटर में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी ग्रीन पैच, जो मीडो है, ओपन मीडो, ये टॉप का, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, और जो भृगु लेक है वो उसके टॉप पे है। और ये पूरा वैली जो ऐसे राइट साइड को गया, ये हमटा वैली है जो बहुत ही फेमस ट्रेकिंग रूट है, और हमटा पास क्रॉस करने के बाद आप दूसरी तरफ स्पीति की तरफ को जाते हैं। तो अभी मई जून से लेकर आपका सेप्टेम्बर मिड अक्टूबर तक यहाँ पे जो हमटा पास ट्रैक है वो चलता है, और आप कैंपिंग भी कर सकते हो फॉरेस्ट में, बहुत अच्छे रिवर साइड में या मीडोज में कहीं भी आप टेंट लगा दो, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग हैं पांडुरोपा में, ये सेतन से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव लोग एग्जाइल में थे वो लोग हिमालय में छुपे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पे, तो अपने उस एग्जाइल के टाइम में कुछ टाइम उन्होंने यहाँ भी बिताया है। तो इस जगह में ऐसा माना जाता है कि वो धान की रोपाई करते थे, जो सीड से पौधा तैयार करते हैं वो यहाँ पे तैयार करते थे, और उसकी जो बिजाई है खेत में वो भृगु लेक के पास में वहाँ भी एक पांडुरोपा करके जगह है, वो वहाँ पे उसकी रोपाई करते थे। तो अभी हम लोग हैं हमटा के एक मशहूर ढाबा कालजंग ढाबा में, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अखरोट के सिड्डू बनते हैं। तो ये है सिड्डू, और ये यहीं पे बना हुआ, और इसके अंदर अखरोट का पेस्ट डाला हुआ, और ये चटनी टमाटर, पुदीना, मिर्च, पूरी तरह से ये नेचुरली ब्लेस्ड एक एरिया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit invinciblewifi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: प्रेमगुण साहिब में लगा भक्तों का तांता, अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु ने टीका मथा। चमोली का सुहावना मौसम बढ़ा रहा है भक्तों का उत्साह। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। 40 दिनों में करीब 8,00,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किए, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन। 70 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पुल 2023 की आई आपदा में बह गया था ब्रिज। मैदानी इलाकों में गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहे हिल स्टेशंस। हिमाचल के खजियार में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटक, स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। भारत ने पेश की मानवता की मिसाल, इबोला प्रभावित अफ्रीका के लिए भेजा 43 टन हेल्थ रिलीफ का दूसरा स्टॉक। विदेश मंत्री बोले अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है भारत। आरसीबी को फिर आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का रही मौजूद। हर बड़े अवसर पर वृंदावन पहुंचते हैं स्टार क्रिकेटर।

एआई से कंपनियां सताई, कर्मचारियों की याद आई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और यही है आज का मुद्दा जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल एआई ने लाखों लोगों की नौकरी छीन ली, लेकिन अब यही एआई उन कंपनियों का बिल बढ़ा रहा है जो एआई को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि जिस एआई को लागत घटाने का मसीहा समझा जा रहा था, आज वही कंपनियों की तिजोरी खाली करने वाला सबसे महंगा सौदा साबित हो रहा है। मानो वो ये भी कह रहा हो कि इंसानी दिमाग ही काफी था। तो क्या वाकई एआई पर कई कंपनियां भरोसा करके गलती कर रही हैं? एआई की लागत कंपनियों पर आफत, क्या कर्मचारियों से महंगा है एआई कोड? इन तमाम सवालों पर आज देश के जाने माने टेक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य कहा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा हर बार हर और इसी की होती है, लेकिन इसको लेकर कुछ सवाल भी सामने आए हैं और वो सवाल क्या हैं उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट और उबर जैसी कंपनियों के अधिकारियों के बयान ने चर्चा को और हवा दे दी। खबर है कि इन कंपनियों में अंदर खाने एआई के बढ़ते खर्च पर चिंता जताई गई है। एआई के बिल से कंपनियां सोचने को मजबूर हैं कि कहीं कर्मचारियों की छंटनी का फैसला सही था या नहीं। उबर की बात करें तो उसने 4 से 5 महीने में ही साल का एआई बजट खत्म कर दिया है और अभी पूरा साल बाकी है। माइक्रोसॉफ्ट भी बढ़ते एआई खर्च से उलझन में है, लिहाजा माइक्रोसॉफ्ट ने कई सब्सक्रिप्शंस खत्म कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई लाइसेंस भी घटा दिया है और अब कंपनियां भी एआई खर्च पर अलर्ट हो गई हैं। वो भी क्यों ना, एक कंपनी ने एआई पर 1 महीने में 4200 करोड़ रुपए का बिल चुकाया है। तो ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या इंसानी दिमाग से महंगा है एआई? क्या कई कंपनियों ने जल्दबाजी में छटनी की? बात यह भी हो रही है कि अब कुछ कंपनियों में एआई से कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन नहीं होगा जो अभी तक हो रहा था, क्योंकि एआई भावनाएं नहीं समझता। कर्मचारियों की तरफ से ही विरोध हुआ जिसके बाद यह तय किया गया। लिहाजा कर्मचारियों की शिकायत के बाद कुछ कंपनियों ने यही फैसला लिया है, कुछ कंपनियों ने एआई पर खर्च भी घटाया है। वैसे एक बड़ी समस्या बिजली और डेटा सेंटर्स की भी आई है। एआई मॉडल की को चलाने के लिए जितनी बिजली चाहिए वो अब पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए चिंता का सबब बन गई है। अमेरिका में कई जगह पर डेटा सेंटर्स का विरोध भी लगातार हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं। तो कंपनियों ने जिस एआई को लागत कम करने और फाइनेंशियल बोझ पर काबू पाने का एक तरीका समझा था, वो आज के दौर में पैसा खाने वाली मशीन के रूप में सामने आ रहा है। एआई मॉडल को चलाने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स, हजारों महंगे जीपीयू चिप और काफी बिजली की जरूरत होती है। वैसे हाल के समय में जो शब्द टेक कंपनियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है छटनी और एआई। पिछले कुछ समय में टेक वर्ल्ड में छटनी शब्द किसी खौफनाक साय की तरह मंडरा रहा था, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह यकीनन एआई ही है, जिसने कंपनियों को यह भरोसा दिलाया था कि इंसान अब आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन वक्त का पहिया जरूर घूमता है, समय एक जैसा नहीं होता और बिल्कुल वैसा ही हुआ है।

0: और इस बीच उबर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने भी एक बड़ी बात बताई है। उनकी कंपनी ने साल 2026 के लिए तय किया गया पूरा एआई बजट साल की शुरुआती 4 महीनों में ही फूंक दिया है। अब कंपनी को समझ ही नहीं आ रहा है कि एआई पर हो रहे इस भारी भरकम खर्च के बदले उन्हें फायदा क्या हुआ है। एंड्रयू मैकडोनल्ड ने कहा है कि कंपनी के लिए एआई तकनीकों में किए जा रहे भारी निवेश को सही ठहराना मुश्किल होता जा रहा है, खासकर एआई उद्योग में प्रचलित टोकन मैक्सिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर एआई पर खर्च होते कैसे, किस तरीके से एआई काम करता है और कितना खर्चा कंपनियों को करना पड़ता है। दरअसल एआई कंपनियां क्रेडिट या फिर टोकन सिस्टम पर काम करती हैं। एआई कंपनियां काम करवाने के हिसाब से ही पैसे लेती हैं। छोटे सवाल पूछने पर खर्च कम होता है, लेकिन लंबी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उस पर खर्च उतना ही ज्यादा होगा। साथ ही साथ बार बार काम करवाने पर खर्चा बढ़ता रहता है। इसी के साथ साथ क्रेडिट खत्म हो जाने पर आपको तुरंत से रिचार्ज करवाना जरूरी होता है ताकि आपका एआई लगातार काम करता रहे। तो चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त अमित मल्होत्रा जी, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, और जितिन चावला जी, करियर काउंसलर हैं। जितिन जी, आप करियर काउंसलर भी, आपसे शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि देखिए अभी इसी रिपोर्ट में हमने बताया कि टेक कंपनियों में अगर देखा जाए तो सबसे डरावना और खौफनाक शब्द जिसको हम कहेंगे छटनी है। बड़ी संख्या में आज की तारीख में बच्चे, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स हर जगह पर पढ़ते हैं और डिग्रीज भी ले रहे हैं, लेकिन डर ये सता रहा है कि क्या नौकरी उनको मिलेगी या एआई को मिलेगी। अब जिस तरीके से कंपनियों ने ये चिंता जताई है कि भाई इंसानी खर्च से भी ज्यादा महंगा है एआई, क्या लगता है आगे?
1: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले ये कि भाई एआई इज नॉट रिप्लेसिंग एम्प्लॉइज, वो प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए है। जो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा वर्कफोर्स की, लेकिन जो रिपीटेड टास्क हैं उसको रिप्लेस करके उसको ऑटोमेट कर दिया, चाहे मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, कस्टमर केयर में हो, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, लेकिन उतना छटनी, उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। और अभी जैसे हमने सुना प्रोग्राम में कि भाई उबर ने अपना एंटायर ये बजट बर्न कर दिया, इस तरह से सारी कंपनीज को वही एक्सपीरियंस हो रहा है। हम खुद भी इंटरनली हम लोगों ने क्लाउड यूज किया, लेकिन मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे 4 टीम मेंबर्स जो यूज कर रहे थे वो बहुत बेसिक टास्क के लिए यूज कर रहे थे, तो जल्दी से टोकन्स खत्म हो जाते हैं। मतलब बिकॉज हमारा मन था कि भाई उसको हम और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए यूज करें, कोडिंग के लिए या किसी और चीज के, लेकिन कोई अगर बेसिक टास्क के लिए करेगा तो टोकन्स खत्म हो जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगी। तो इसलिए कंपनीज ने अंडर एस्टिमेट किया रियल कॉस्ट ऑफ एआई। उसमें एंटरप्राइज लाइसेंसिंग कॉस्ट हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉस्ट हैं, डाटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस है, एम्प्लॉई ट्रेनिंग है, एआई इंप्लीमेंटेशन के टीम्स को आपको सेट करना है, तो ये सब चीजें। और प्लस ये वाली जनता काफी महंगी भी हो गई। जो जो लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स थे पिछले, अगर हम 1-1.5 साल की बात देखें तो, इसलिए क्या ये सोचना कि एआई काफी जॉब्स को खत्म करेगी, क्वेश्चन मार्क है। डेफिनेटली एम्प्लॉयज की नीड है और चलती रहेगी, और खासकर से अगर इंडिया जैसी कंट्री में देखो तो अभी उसका बहुत इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा। और इतना लोगों ने, इतना इंडियन कंपनी ने तो बजट नहीं किया है इस तरीके से जैसे कि बाहर की कंपनीज की। अडेप्टेशन ऑफ एआई वॉज वॉच मच फास्टर, वो चीज़ इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन इंडिया में नई करियर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं जो बच्चों को देखनी चाहिए, जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट कोर एआई की देखेंगे तो जैसे एआई इंजीनियर हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर विजन इंजीनियर हो गया, रोबोटिक्स इंजीनियर, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया, या डोमेन के साथ मतलब हेल्थ केयर प्लस एआई को कंबाइन कर रहे हो, साइकोलॉजी प्लस एआई, फाइनेंस प्लस एआई, मार्केटिंग प्लस एआई, लॉ प्लस से आए, तो ये जो करियर संभावनाएं ये और अच्छी तरह बढ़ेंगी। तो मैं एक अगर किस चीज के साथ कंबाइन करके जहां मेरा इंटरेस्ट हो मैं उसके करियर को बढ़ाऊंगा।
0: ठीक है अमित जी, यहाँ तो करियर की बात होगी, लेकिन जब हम सीधे तौर पर इन बड़ी कंपनियों की बात करते हैं जहां पर कंपनियां इस बात को रियलाइज कर रही हैं कि एआई का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात जिसको लेकर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, हालांकि जितिन जी कह रहे हैं कि दोनों को साथ लेकर ही चलना होगा, दोनों एक साथ चलेंगे, लेकिन एक कंपनी अगर एक कर्मचारी पर खर्चा करती है, कर्मचारी को हटाकर उन्होंने एआई कोड का इस्तेमाल किया, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 4 महीने में ही पूरा बजट खर्च हो चुका है, इससे अच्छा इससे बेहतर तो कर्मचारी ही थे।
2: मैम देखिए क्या है कि एआई की वजह से काफी सारी जॉब लॉस हुई है, ठीक है, क्योंकि इधर ऑटोमेशन की वजह से, ठीक है, इथिकल इश्यूज आए हैं। एआई गलत डिसीजन भी ना ले सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि एआई हमेशा ही परफेक्ट लेगा, क्योंकि उसके ना पहले क्या ना होता था कि हम एआई को सिर्फ एक कैलकुलेटर की तरह करते थे, जो भी हम उसको देंगे इनपुट वो उसका आउटपुट देता था, लेकिन एआई अब एक असिस्टेंट बन गया है, वो खुद सजेस्ट कर रहा है, खुद करेगा, खुद डिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो उससे ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है, कंट्रोल प्रॉब्लम आई है कि ना एआई की वजह से हम लोग, एआई अगर हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया तो आगे क्या क्या ना होगा।
0: लेकिन अमित जी,
2: हाँ जी,
0: मैं एक लाइन इसमें और जोड़ती हूँ, क्योंकि एक कंपनी है जहां पर एम्प्लॉयज ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग के लिए एआई को लगाया गया था, उसमें उन्होंने कहा कि एआई इंसानी भावनाओं को नहीं समझ सकता है,
2: नहीं समझ सकता, फैक्ट है।
0: तो उसमें सीधे तौर पर नुकसान तो कंपनी और उसके कर्मचारियों को हुआ।
2: हाँ जी, लेकिन मैम आगे जाके क्या है कि एआई इतना पावरफुल बन रहा है कि उसको हम लोग इस टाइप से डेवलप कर रहे हैं कि उसको ह्यूमंस के बेनिफिशियल के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो डेंजरस है बहुत। क्यों है डेंजरस है? क्योंकि एआई सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रहा है, हम एआई को यूज कर रहे थे कॉस्ट सेविंग के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, ताकि हमारा ज्यादा प्रमोशन हो, हमारे एआई जो है हमें अच्छा आउटपुट दे निकाल के, तो हम लोग कॉस्ट कटिंग करें, लेकिन हमारी जीपीयू की कंप्यूटेशन होगी, हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, हमारी जितनी चीज, जैसे कि अभी बात हुई थी कि टोकन्स, एआई काम क्या करता है टोकन पे, जो आपने इनपुट दिया उसका जितना ज्यादा आउटपुट आप लोगे उतने टोकन आपके कंज्यूम होंगे। किसी प्रोजेक्ट को आप बना रहे हो तो आपने उसको यूज करने के लिए मान लिया, अगर ज्यादा अच्छी कंप्यूटेशन करोगे तो टोकन्स ज्यादा यूज होंगे आपके, जहां आपका 3x टोकन्स में काम हो रहा है वहां वहां आपका 10 टोकन्स में काम होगा, लेकिन आउटपुट फिर भी इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एआई आप अगर आज की डेट में गूगल जेमिनी को चलाते हो तो जेमिनी से आप कुछ भी एक चीज बनवा लो, उसके डेटाबेस में वही चीज फीड हो जाती है, वो बार बार उसी सेम चीज को आउटपुट देता रहता है, आप कितना मर्जी अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर लीजिए, कितना मर्जी कुछ लिख लीजिए, लेकिन जेमिनी एक ही चीज को प्रॉम्प्ट देता है, अंटिल अनलेस आप जब तक एआई को कंप्लीट बंद करके फिर से नहीं खोलते हो। तो एआई के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि एआई स्मार्ट तो वर्क कर रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी भी ठीक निकाल रहा है, लेकिन ह्यूमंस की सैलरी के कंपेरिजन में वो काफी ज्यादा कॉस्ट हमारी खींच रहा है,
0: खर्चा ज्यादा है। अब मोहित यादव जी आगे बढ़े उससे पहले जरा मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को जरा समझा दीजिए, जब कंपनियां एआई इस्तेमाल करती हैं किसी एक चीज के लिए तो वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, कैसे कंपनियां खर्चा करती हैं, कितना कंपनियों को उससे फायदा होता है, और क्या एआई वाकई एक कर्मचारी का रिप्लेसमेंट हो सकता है?
3: देखिए कुछ सेक्टर्स में कुछ जगह पे हाँ एआई की काफी सारी यूसेज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जहाँ पे काफी सारे लोगों को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब जैसे डिजाइनिंग वाला सेक्टर हो गया, फोटो आप कोई बना रहे हो या इमेज कोई जनरेट कर रहे हो या पीडीएफ आप रीड कर रहे हो, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एआई ने काफी सारी जॉब्स को खा गई है। एक्चुअली मैं जनरली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो यस, वो जॉब बहुत कम हो गई है वहां पे लोगों को, बिकॉज अब स्किल जो रह गया है ना वो एआई को चलाने वाला स्किल रह गया है, और ये जो कंपनीज हैं ये जो डेटा के बेसिस पर ही काम होता है, क्योंकि जो भी हम डेटा डालते हैं उस डेटा के बेसिस पर ही वो ट्रेन होते हैं, और जो भी कंपनी इस तरह की एआई एप्लीकेशंस को अपने सिस्टम्स में या अपने ऑफिस में लगा रही है तो वो जो कॉस्ट आ रहा है ना हर एक सब्सक्रिप्शन का वो बहुत हाई जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि कुछ एआई के साथ है, ये काफी सारे एआईज हैं, मतलब आपको शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी जल्दी आप काम कर रहे हो, लेकिन जब आप उसका मंथली प्रोडक्शन देखोगे ना, मंथली आपके पास जो बिल जनरेट होगा 1 से 10 अकाउंट, 10 से 20 अकाउंट, और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स हैं जो उनपे काम करते हैं, तो उस लेवल पर एआई का जो मंथली कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और यूसेज बहुत सारे लोग तो एआई की फुल कैपेसिटी यूज भी नहीं कर रहे, मतलब आपको आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र दे दिया लेकिन आप उससे सिर्फ बहुत छोटे छोटे काम करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन भी है, जो आप एआई से ज्यादा काम करवा सकते थे वो आप करवा ही नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों को आजकल नॉलेज भी नहीं है एआई को अच्छी तरीके से बेस्ट तरीके से कैसे कैसे यूज करना है, और कुछ एआई चैटबॉट्स कुछ एआई की कंपनी जो जैसे क्लॉड एंथ्रोपिक इनके बहुत हाई टोकन्स यूज होते हैं जो, लेकिन हाँ वहीं अगर आप बात करें तो इनका कोडिंग का लेवल भी बहुत बढ़िया है। तो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कोडिंग लेवल वो आपको करके देते हैं, अच्छी एप्लीकेशंस को जनरेट करके देते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा आपसे ले भी लेते हैं। कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये सब आजकल जॉब के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है और बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं बिकॉज कंपनीज को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। और हमने भी एज एन हमने एक कंपनी है तो डेफिनेटली हमने भी एआई को इम्प्लीमेंट किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगह पे, तो लेकिन लोगों को उससे उनकी काम जो है वो इजी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको रिप्लेसमेंट हो गया, कुछ जगह ऐसा हो गया कि अब उनको काम फास्ट हो गया है बस।
0: ठीक है, चलिए पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, एक तो थोड़ा सा हमें समझाएगा कि किस तरीके से खर्चा कंपनियों का अगर आप बता पाएं कि बढ़ा है जब उन्होंने एआई टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। और दूसरी बात ये कि अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और उबर जैसी कंपनियां अब कह रही हैं कि हमने अपने सब्सक्रिप्शन कम कर दिए हैं।
4: देखिए, जब आप बिना किसी लगाम के कोई सुविधा प्रदान करते हैं तो लोग फिर बेलगाम हो जाते हैं। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड पैकेजेस अपने एम्प्लॉयज को देने शुरू कर दिए, जिन्होंने अंधाधुंध होके उसका इस्तेमाल चाहे आवश्यक था या नहीं था करना प्रारंभ कर दिया। तो जब आप इतना अंधाधुंध इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली तो एआई टोकन्स पर काम करता है, एआई के हर जवाब की एक कॉस्ट है। तो अगर आप अंधाधुंध होके कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस एआई को देंगे तो उतने ही ज्यादा टोकन लगेंगे। उतने टोकन लगने का मतलब यह है कि आपका कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तभी तो अब बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं कि साहब अब एआई महंगा होता जा रहा है, इंसानी लेबर सस्ता नजर आ रहा है, तो हम पुनः से वापस इंसानों के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बिल तो हम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी तक तो हनीमून पीरियड था, अच्छा लग रहा था, लेकिन जब इतने बड़े बड़े पैमाने पर अब बिल जाने लग गए हैं तो हम तो ये अफोर्ड कर नहीं सकते। ज्यादा अच्छा है कि आप किसी इसे कम पैसे पर किसी इंसान को अपना नौकरी पर रखिए, उनसे काम कराइए। ठीक है, एआई जैसा उतना बेहतरीन काम नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो सही और अल्टीमेटली कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और अल्टीमेटली कंपनी आप जो काम भी कर रहे हैं किसी कस्टमर के लिए कर रहे हैं, मार्केट के लिए कर रहे हैं, और अगर मार्केट उनको वो पैसा नहीं देगी जो पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जला रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिकली वायबल मॉडल रहेगा नहीं। इसका तात्पर्य सीधा ये होगा कि कंपनी या तो लॉस में चली जाएगी, एक्सटर्मिनेशन में चली जाएगी। तो इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए ग्रोइंग रियलाइजेशन हो गई है कि साहब एआई बहुत महंगा होता जा रहा है, इससे बेहतर है कि आप इंसानों को एज मुलाजिम रखिए, एज नौकरी पर रखिए, कम काम करेंगे, थोड़ा काम उनसे करा लीजिए, बाकी काम एआई से करा लीजिए, तो कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। यही एक मुख्य ट्रेंड है जो पूरी दुनिया भर में आजकल नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल मोहित जी, ये भी कहा जा रहा था और हुआ भी है, बहुत से सेक्टर्स में हुआ भी है कि एआई ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है, एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन अब कंपनियां वापस से उस और फिर से सोच रही है, जैसे कि अभी दुग्गल जी भी कह रहे थे। क्या दोनों में समन्वय की कमी लग रही है? क्या एआई पूरी तरह से इंसानों को रिप्लेस कर देगा या फिर कंपनियां वापस से ये सोचने को मजबूर हो गई कि नहीं, वापस एम्प्लॉयज ही ज्यादा बेहतर है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है?
3: देखिए, जब कॉस्ट इफेक्टिव की आप बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि एआई जब आप यूज करते हो तो एआई के अंदर टोकन्स वाला काम होता है। टोकन्स में एम्प्लॉय जब उस पर काम कर रहे होते हैं तो अगर एक एम्प्लॉय उस पर काम कर रहा हो कि अनट्रेन्ड एम्प्लॉय है, मतलब उसको एआई कितनी ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, बिकॉज आजकल एआई जो यूज कर रहे हैं वो भी एआई को सिर्फ प्लेन इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये क्रिएट करना है, इसको ऐसे क्रिएट करना है। तो अब एआई तो एक सॉफ्टवेयर है, वो अनलिमिटेड टोकन्स के साथ काम करता है, वो टोकन्स को कंज्यूम करता जाता है। अगर कुछ एआई खासकर इस तरह से बने हुए हैं कि वो ज्यादा टोकन्स यूटिलाइज करते हैं, मतलब उनके प्रॉफिट लेवल ना ज्यादा है, मतलब आप जैसे क्लॉड जैसा एआई है जो बड़ा एआई है तो वो ज्यादा टोकन्स लेता है, जहीं वही हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, वो थोड़े कम टोकन्स लेता है। और मॉडल टू मॉडल भी डिपेंड करता है ये कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। जिस अगर आप एजेंटिक एआई यूज कर रहे हो तो उसमें ज्यादा टोकन्स यूज होते हैं, और अगर आप चैटबॉट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर कम टोकन्स यूज होते हैं। तो कॉस्टिंग बढ़ती है एज पर द यूजर, जो एम्प्लॉय यूज कर रहा है क्लाउड को या किसी भी एआई पे, वो उसके बेसिस पर बढ़ती है।
0: मोहित जी जरा एक आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, हमारे वो दर्शक जो एआई तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है, आसान भाषा में ये टोकन सिस्टम क्या होता है एक बार समझा दीजिए।
3: देखिए जैसे मैं आप कोई भी क्वेश्चन आप एआई को पूछते हो तो उसका एक रिप्लाई आता है, तो उसको रिप्लाई को जनरेट करने के लिए एआई एक एआई ने टोकन्स बना रखे। जैसे मैंने अगर एआई से पूछा कि इस कंपनी, ये कंपनी किस जगह पे है, तो वो आपको जवाब में देती है कंपनी इस जगह पे है, तो वो जो पूरी लाइन लिख के देती है वो पूरा टोकन सिस्टम होता है। मतलब अगर उसने 5 कैरेक्टर लिखे थे तो 5 टोकन यूज हो जाएंगे। तो आप इस तरह से समझिए कि उसका जो रिप्लाई आंसर वो आपको दे रही है वो एक टोकन ही होता है, और जितना आप उससे डिटेल्ड में या फिर वेग क्वेश्चन पूछोगे वो टोकन्स आपके खर्च होते रहेंगे और जल्दी खर्च होंगे, और उसके बाद फिर वो आपको रिप्लाई देने बंद कर देगा। क्योंकि पहले तो डिपेंडेंसी बन जाती है कंपनीज के ऊपर कि आप एआई को यूज कर वो कुछ काम करा पाते हैं, और फिर वो अगर ठीक तरीके से यूज ना किया जाए तो टोकन्स बहुत तेजी से खर्च हो जाते हैं। मतलब आंसर देने का जो तरीका होता है वो कम हो जाता है।
0: बिल्कुल, जिसको क्रेडिट सिस्टम भी हम कहते हैं। जितिन चावला जी,
3: बिल्कुल
0: जितिन चावला जी, सब लोगों की बातचीत आपने सुनी। सर आज की डेट में अगर स्टूडेंट्स को आप एडवाइस करेंगे, हालांकि कंपनियां सोच रही हैं बैलेंस बनाने की जरूरत है, और सही कह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, या फिर बहुत बार बहुत कंपनियों ने ऐसा भी किया है कि शायद ट्रेंड लोग उनके पास नहीं थे और इसी वजह से ये स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, तो आज की तारीख में अगर बात की जाती है एम्प्लॉयमेंट की या फिर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो क्या वाकई एआई नेसेसिटी हो गया? बिना एआई के आपको कहीं नौकरी या जॉब वॉब नहीं मिल सकती?
1: तो देखिए, एक तो दो बातें हैं इसमें कि एक एआई यूज करके डेफिनेटली आप अपना जो काम है उसका वो बढ़ा सकते हैं, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो अच्छे कॉलेजेस में सब जगह, इंडिया में भी बाहर की दुनिया में भी एआई इंटीग्रेट कर दिया गया है। आज मैं बीबीए कर रहा हूँ, बीएमएस कर रहा हूँ, तो साथ में एआई समझ रहा हूँ कि कैसे एआई को यूज करूंगा। मैं एआई बनाने की बात नहीं कर रहा, एआई को यूज करूंगा अपने सिस्टम में। मैं साइकोलॉजी करूंगा अच्छी तरह, तो वहां मैं एआई को कैसे यूज करूंगा? मैं हेल्थ केयर में जाने वाला हूँ, बट वहां मैं एआई को कैसे यूज करूंगा? और इसमें बस यही है कि जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ये भी चाहिए कि भाई टॉप मैनेजमेंट जो है वो देखेगी किस में, देयर हैज टू बी अ सेपरेशन ऑफ टास्क, वो देखे कि भाई किस टास्क के लिए यूज हो रहा है। ऐसे नहीं कि जनरल यूज होगा तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसके लिए यूज होगा तो फिर मजा आएगा। अब फाइनेंस की फील्ड है तो फाइनेंस में एआई अभी नहीं, काफी टाइम से यूज हो रहा है। क्वांट फाइनेंस है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, तो इसकी जॉब सबसे पहले यूएस में ऐसी कंट्रीज में थी, बट आज की डेट में इंडिया में भी है, हांगकॉन्ग में भी है, बाकी जगह भी है। तो ऐसी वाली जॉब्स के लिए डेफिनेटली चाहिए। तो अगर मैं किसी को देखूं भाई प्रोग्रेस कर रहे हो तुम लाइफ में, आगे तुम्हें फास्ट ग्रोथ चाहिए, अच्छी मल्टीनेशनल्स में, नए स्टार्टअप्स में काम करें, तो डेफिनेटली चाहिए। अगर लीगेसी कंपनीज हैं तो शायद उतना यूज ना करें, लुकिंग एट द कॉस्ट, उतना पूरा सिस्टम ओवरहॉल ना करें। गवर्नमेंट को भी टाइम लगेगा, जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, तो उनको भी टाइम लगेगा एआई यूज करने में। तो वहाँ वाली जॉब्स में शायद इमीडिएटली जरूरत ना हो, बट आफ्टर सम टाइम तो जरूरत होगी, डेफिनेटली होगी।
0: अमित जी, एक बड़ा सवाल देखिए यहाँ ये भी है, आज की तारीख में जब से एआई आया है, क्या कंपनियों के लिए एआई इस्तेमाल जरूरी है या मजबूरी है?
2: मैम देखिए, अगर एआई की बात करते हैं तो एआई भी, एआई के ड्रॉबैक्स भी हैं और मैम बेनिफिट्स भी हैं। अगर एआई के बेनिफिट्स हम लोग देखें तो हम लोग अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हमारा जहाँ पे एक दिमाग चलता है वहां पे हम 5 दिमागों का काम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो हम टोटल डिपेंडेंट इसके ऊपर हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आजकल के बच्चे हैं, पहले बच्चा इंग्लिश सीखता था, बोलता था, करता था, आजकल हर बच्चा चैट जीपीटी खोल के हिंदी में टाइप करता है, ट्रांसलेट करके सामने वाले को इंग्लिश बोल देता है, जल्द लिख देता है मैसेज। सिंपल क्या है कि वो टोटल का टोटल एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, अपना दिमाग यूज करना ही छोड़ दिया। अगर मैथ की बात करते हैं तो हम 2+2=4 करते थे, आजकल बच्चा क्या कर रहा है, हर छोटी सी कैलकुलेशन भी एआई से पूछ के कर रहा है। तो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी होना, इसी टाइप से अगर कंपनियों की बात करते हैं तो कंपनियां भी अगर टोटल डिपेंडेंट इसके ऊपर हो रही हैं तो वो अपने आप अपना सब कुछ खोती जा रही हैं, धीरे धीरे बिल्कुल लॉस में चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद की दिमाग से तो की गई चीज नहीं है, और एआई कल को हमारे ऊपर इतना पावरफुल पड़ गया, हमसे आगे पहुंच गया, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एआई हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहा है, कॉस्ट कटिंग भी हमारी ठीक है मानता हूँ कम कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए कंप्यूटेशन इतनी है ठीक है और हमारा मतलब क्लाउड स्पेस घेर रहा है सब चीजें कर रहा है, तो अगर सबका ओवरऑल एक्सपेंस जोड़ा जाए तो हमें वो महंगा पड़ रहा है, लेकिन हम डिपेंडेंट उसके ऊपर हो रहे हैं, हम आदत उसकी डाल रहे हैं कि हम खुद से कुछ भी करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे कल को।
0: दुग्गल जी इसी पर एक राय आप अपनी बताइएगा, साथ ही साथ क्योंकि कंपनियां एआई को अपनाने का दावा करती है और दावा ये भी करती है कि कार्यक्षमता जो है वो बढ़ती है, क्या वाकई ऐसा होता है, इसका असर दिखा है? सर ऑडियो म्यूट है।
4: इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपका जो परफॉर्मेंस, आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपकी जो एफिशिएंसी लेवल्स वो लगभग 10 गुना हो जाते हैं और आप अपना समय बचा पाते हैं ताकि उस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इंसानों की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऑर्डिनरी या साधारण आदमी की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि एआई ने सारा कंटेंट जो इंसानों ने आज तक बनाया है वो पढ़ चुके हैं। जब एआई वो सब कुछ पढ़ चुका है तो ऑब्वियसली आपके और मेरी तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट होगा ही। लेकिन जहां एक और ये हमारे जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है और दूसरी ओर कहीं ना कहीं हमें एक नशे में भी डाल रहा है। देखिए कुछ साल पहले, कुछ दशकों या कुछ शताब्दियों पहले चाइनीज मॉडल बहुत पॉपुलर होता था, चाइनीज मॉडल ऑफ ओपियम कहा करता था साहब उनके, ना अफीम गांजा की बहुत ज्यादा खेती होने लग गई लेकिन डिमांड नहीं हुआ करती थी। तो चीनी लोगों ने एक मॉडल अपनाया कि लोगों को छोटी छोटी क्वांटिटीज मुफ्त में अफीम गांजा देना बांटना शुरू कर दिया। एक बार लोगों को लत लग गई फिर उन्हीं लोगों को उन्होंने ये गांजा अफीम लगातार बेचना शुरू कर दिया। अभी एआई भी कुछ इस तरह के मॉडल पर है, अभी जो फ्री हमको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे रहा है इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो हमारे हित को सर्वोपरि रखना चाहता है, उसलिए दे रहा है क्योंकि हम सब हैबिटुएट हो जाए। और आपको तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब एक नया ट्रेंड मैं आज देख रहा हूँ, उसे मैं कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म बोलता हूँ। 78 साल तो हुए थे कि भारत अभी स्वतंत्र हुआ था और अब भारत के बहुत सारे लोग परतंत्रता की या गुलामी की ओर चल पड़े हैं। यह है कॉग्निटिव गुलामी, कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म, जहां पर हम अपनी जो सोचने की क्षमताएं हैं उसको पूरी तरीके से छीण करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे अनुसार अब एआई हमारा काम करेगा तो हमें खुद सोचना नहीं, तो हम कहीं ना कहीं अब दिमागी तौर पर गुलाम होते जा रहे हैं बिग डेटा कंपनी एक एआई टेक कंपनीज के लिए। और ये कंपनियां अल्टीमेटली कोशिश करेंगी कि हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करेंगी, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगी हमारी जो सोच विचार है, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है और हमारी जो डिसीजंस है, पर्सपेक्टिव्स है, उसको वो इन्फ्लुएंस कर सके, इम्पैक्ट कर सके। तो आने वाला समय काफी खतरनाक समय नजर आ रहा है। लोगों को तो लग रहा है कि बहुत गोल्डन पीरियड है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसानी लिबर्टीज, ह्यूमन अधिकार जो है और मानवीय अधिकार, उन पर नकारात्मक रूप से हनन होने वाला है। तभी आप आज आवश्यकता है कि आप लोगों के एआई अकाउंटेबिलिटी अधिकारों को भी समझें। दो हफ्ते पहले नई दिल्ली में इंटरनेशनल एआई अकाउंटेबिलिटी फोरम ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ एआई अकाउंटेबिलिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया, यानी कि इंसानों का अब हक है कि साहब एआई मेरी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित ना कर सके, मेरे सोचने की क्षमता को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना कर सके। अभी तो बहुत मस्ती लग रही है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा समय दे दीजिए। अब लोग इतने ज्यादा नपुंसक हो जाएंगे क्योंकि इतने ज्यादा वो डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई पर, वो और कुछ काम करना ही नहीं चाहेंगे। अब तब एआई के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं मझधार में लटके रह जाएंगे।
0: यहीं से सर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस पर बाकी पैनलिस्ट की क्या राय है और क्यों कंपनियां ये कह रही हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने छटनी कर ली, क्या वो फैसला सही था या गलत था, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

0: एआई से कंपनियां सताई, कर्मचारियों की याद आई। अब कंपनियां इस बात को लेकर भी विचार कर रही हैं कि जल्दबाजी में कर्मचारियों की छटनी क्यों कर दी, इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दुग्गल साहब ने एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही थी कि हमें ये सोचना होगा कि एआई फ्यूचर में हमारे लिए कितना सही है। इस पर एक एक राय आप सभी की। अमित जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी। सर ऑडियो म्यूट है, शायद आवाज आपकी नहीं सुन पा रही हूँ।
1: मैम सुन पा रहे हैं?
0: जी जी बिल्कुल सर।
1: मैम यही कहना चाहूंगा कि मैम एआई जो हमारा कॉस्ट एक्सप्लोजन है कि हम जैसा आर्टिकल है, मतलब जितना एआई करेंगे यूज उतनी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, टोकन उतने यूज होंगे, कभी कभी एम्प्लॉय से भी महंगा पड़ रहा है। मतलब जैसी हमारी फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। और एथिकल और लीगल रिस्क देखेंगे तो बहुत है, डेटा मिसयूज हो सकता है, एआई डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी बीच में आ सकते हैं इसके ऊपर, तो काफी कंट्रीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कॉन्स्टेंट अपग्रेड भी है, अगर टेक्नोलॉजी फास्ट है तो हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड भी करना पड़ेगा एआई को। अगर कोई कंपनी एक एआई के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको अपने अपने एआई को साथ साथ मॉडल को अपग्रेड भी करना होगा। अगर वो अपग्रेड नहीं करता तो एआई हम लोग एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते बिल्कुल।
0: बिल्कुल मोहित यादव, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सवाल ये भी था कि क्या वाकई हम पूरी तरह से डिपेंड हो रहे हैं एआई पर, क्योंकि आजकल स्कूलों में देख लीजिए बच्चे पूरी तरह से डिपेंड है, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, जो पहले दौर में पढ़ाई हुआ करती थी वो अब एआई के आने के बाद उतना टफ नहीं रह गया। तो क्या ये जिंदगी आसान बना रहा है या जिंदगी मुश्किल बना रहा है, आजादी या गुलामी?
2: शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये जिंदगी आसान बना रहा है, मतलब आप छोटे छोटे काम उससे करा रहे हो, ठीक है, और वो एक तरह से आपका एडवाइजर है। मतलब आपको कुछ भी पूछना है, आपका आपका आज एक टेस्ट हुआ जो कि फुल बॉडी टेस्ट हुआ और आपने एआई पे रिपोर्ट डाली और रिपोर्ट करके बताया कि आप बीमार हो या आप सही हो या आपके क्या वाइटल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो एक तरह से इस मोमेंट पे तो जिंदगी को आसान बना रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम इसकी बात करेंगे तो हाँ, तो डिफिकल्ट हो जाएगा आगे डिसीजंस विदाउट किसी चीज के हेल्प के लेने के। मतलब आपको हमेशा किसी ना किसी चीज का हेल्प लेना पड़ेगा अपने डिसीजंस को लेने के लिए। जैसे अभी हर छोटी से छोटी चीज आप किसी ना किसी एआई से पूछ लेते हो, किसी ना किसी आपको एक मेल लिखवाना होता है तो वो भी आजकल लोग अपने एआई से लिखवा रहे हैं। तो अगर किसी को फ्यूचर में जाके आप सोचो कि आपको एक ईमेल लिखवाना होगा तो लोग खुद भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बच्चे अभी एआई को यूज कर रहे हैं वो किस तरह का इम्पैक्ट उनके ऊपर डालने वाला है, तो वो एक कंसर्न है फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, कि कितना एक्सेस उनको एआई का देना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डेवलप भी होना चाहिए यूजर्स का, वो कहीं ना कहीं एआई सप्रेस कर देता है।
0: जितिन जी, आपकी क्या राय इसको लेकर?
3: जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि अभी डेफिनेटली वैल्यू एड है। आपको हैरानी होगी, मेरी एक 9th class की स्टूडेंट, जैसे मैंने उसे कहा कि चलो हम जेरियाट्रिक केयर के लिए ऐप बनाने का प्लान बनाते हैं, तो उसने एआई यूज करके, और बहुत ही स्मार्ट है, उसने एआई यूज करके इतना अच्छा बिजनेस प्लान बनाया जो कि कोई बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए को अहमदाबाद से करके 4-5 साल बाद बनाए। तो वो इसीलिए बना पाई क्योंकि एक उसको प्रॉम्प्ट अच्छी तरह पूछना आता है, दूसरा उसको उसका बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में क्लियर था और वो कर पाई। वो तो बहुत ही, एक कंपनी है यूएस में फ्यूचर एजुकेशन, वो 6-7 से बच्चों को कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाना, गेम्स बनाना, ये सब सिखा देती है और एआई से सिखा देती है। इनफैक्ट एक और कंपनी अभी स्टार्ट हुई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक तो डिवाइड बढ़ जाएगा, तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं जहाँ की रिसोर्सेज और अच्छे हैं, जहाँ की सोच भी खुली हुई है, तो वहाँ पर ये काम और अच्छी तरह से अडेप्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी की वहाँ जल्दी फास्ट होगी। हमारी जैसी कंट्री में जब हम वैसे भी कहते हैं कि इंडिया एक है और भारत एक है, तो भारत में एक तरह से दिक्कतें भी आएंगी कि भाई नई टेक्नोलॉजी का यूजेज नहीं है, स्कूलों में वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही, टीचर्स उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को इवन प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो कैसे उसका प्रोपगेशन होगा एक बड़ा चैलेंज है। पुरानी यूनिवर्सिटीज जो चल रही हैं उसमें एकदम से चेंज लाना मुश्किल है। तो बहुत ही, मतलब वैसी बात है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि बच्चे खूब सारे ऑनलाइन हैं, तो आज भी हम बच्चों को कहते हैं कि अच्छा आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो जो लेटेस्ट कोर्स है वो यार ऑनलाइन, साइबर सिक्योरिटी का आप ऑनलाइन कर लेना, या फिर आप ये वाला कोर्स है तो एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट से बाहर से कर लो, तो वो वाली चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन दोनों चीजें हाइब्रिड मोड में चलेंगी। अभी भी हम कहते हैं भाई खाली बैटरी वाली कार चलाएं या फिर पेट्रोल ड्रिवन होनी चाहिए, तो हाइब्रिड है जिसमें आपके दोनों सॉल्यूशन है कि कहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब भी आप चलाते रहोगे। इसमें एआई भी चलेगा और पीपल भी चलेंगे, दोनों चीजें चलेंगी, तो हाइब्रिड मोड सबसे अच्छा चलेगा।
0: बिल्कुल दुग्गल साहब, एक और बड़ी समस्या है जिसको लेकर अमेरिका में तो अब विरोध भी हो रहा है, बिजली और डेटा सेंटर, क्योंकि एआई मॉडल्स को चलाने के लिए जितनी बिजली चाहिए होती है वो अब पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए चिंता बन गई है। विरोध इसका होना शुरू हो चुका है अमेरिका में भी।
4: लाजमी सी बात है, क्योंकि आज एआई को चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, पावर चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, जीपीयू चाहिए, वो सब पैसा मांगते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आपका जो भी आप काम कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट पावर इकोसिस्टम में, क्लाइमेट इकोसिस्टम में होने वाला है। पावर की तंगी होने वाली है, पानी की तंगी होने वाली है, नकारात्मक प्रभाव उसका क्लाइमेट पे पड़ने वाला है। तो अभी तो हम लोग सब हनीमून पीरियड में हैं, सबको लग रहा है हा एआई आ गई है बहुत बढ़िया हो गया। आप ये भूल रहे हैं कि साहब एआई के आने के साथ बहुत सारी नई चुनौतियां आ रही हैं जिनको आपको इफेक्टिवली टैकल करना पड़ेगा। वो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट विल बी पावर, बिकॉज आपके डेटा सेंटर्स गसल करेंगे ह्यूमंगस वॉल्यूम्स ऑफ पावर, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है। जितनी पावर ज्यादा होगी उतना पानी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि एक डेटा सेंटर्स जो बहुत जल्दी गर्म होते जा रहे हैं उनको ठंडे किया जा सके। उनको ठंडे करने का सीधा तात्पर्य यह है कि जो आपका हैजार्डस आउटकम निकलेगा उसका इम्पैक्ट जो होगा वो क्लाइमेट पर पड़ेगा। तो एआई के आने से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ जाने वाली है, अल्टीमेटली मानव मात्र के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाने वाली है। तो मुझे लगता है हम जो भी आगे बढ़ेंगे एक सामंजस्य स्थापित करें, गोल्डन बैलेंस होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वरना बह जाएं एक भाव में तो बह जाएंगे, अल्टीमेटली बाद में हम ही पछताएंगे क्योंकि हमने ऐसा काम कर दिया बिना सोचे समझे कि उसके लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस मानव मात्र के लिए, पृथ्वी के लिए क्या होने वाले हैं।
0: बिल्कुल मोहित, इस पर आपकी क्या राय है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आने वाले साथ देखिए जो एआई होता है वो चलता जीपीयूज पर ही है, और जीपीयू जितना ज्यादा एआई यूज होता है, जितने ज्यादा लोग इस तरह की एप्लीकेशन को यूज होते हैं वो गर्म होते हैं, और गर्म होने के लिए उनको ठंडे मतलब कूलेंट देना होता है, और कूलेंट कैसे आएगा, आप या तो उनको ऐसे एरिया में सेटअप करना पड़ता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अबंडेंट हो या ठंड हो, तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं इसका गलत इफेक्ट आए। गलत इफेक्ट की जब बात करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट आता है, और महंगा, डेफिनेटली एआई महंगा होता जा रहा है क्योंकि जो मिनरल्स जिसके बेसिस पे आजकल जीपीयू क्रिएट होते हैं, जीपीयू बनते हैं, वो जीपीयू की कई कई जगह पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रखी है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज है, क्योंकि डायनेमिक तरीके से इसको शॉर्टेज बनाया भी गया है। और वो ये सारा का सारा हो क्यों रहा है, क्योंकि कुछ ही स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जो इस तरह के जीपीयू बनाती हैं और उनका पूरा कंट्रोल है, तो इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, गर्म हो रहे हैं सीपीयू जितने भी आप देखते हो, और इनफैक्ट आप जब अपने आप आसपास अगर कोई भी सिस्टम्स वगैरह लेने जाते हो तो आजकल की जो कॉस्टिंग है सिस्टम्स की इतनी ज्यादा बढ़ गई है एआई की वजह से, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटेशन, ज्यादातर जो जीपीयू है वो एआई में ही लग रहे हैं, मतलब आप घर के लिए एक पीसी लेने जाओगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली आज के समय पे, और वो अगर आप 4 साल पहले लेते तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता।
0: बिल्कुल, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, माइक्रोसॉफ्ट और उबर जैसी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, विचार इसको लेकर हो रहा है, पहली बात तो इसी को लेकर चर्चा चल रही है कि चटनी थोड़ा जल्दी कर दी, और दूसरा बैलेंस आउट करने की बात हो रही है कि एआई तकनीक को भी लिमिट किया जाए और एम्प्लॉयज को वापस से एम्प्लॉयमेंट दी जाए। मोहित,
2: बिल्कुल करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयज तो चाहिए चाहिए, क्योंकि एआई भी जो रन करने के लिए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी पड़ेगी, प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए कोई तो चाहिए, कोई काम कराने को मतलब एआई को इंस्ट्रक्शंस देने वाले भी तो पर्सन होने चाहिए, क्योंकि एआई खुद ब खुद तो एक्शंस लेगा नहीं, आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कोई भी आपको मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के लिए इंफ्रा के लिए कोई ना कोई चीज पूरा सेटअप करेगा। हाँ, लेकिन ये होगा कि पहले 1000 लोग हो रहे थे, अब 1000 की जगह पे 500 होंगे, धीरे धीरे इवेंचुअली करके वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में शिफ्ट होंगे, हो सकता है अभी एक प्रोफाइल शायद खत्म हो जाए, उससे 10 प्रोफाइल और बने, तो वो उस तरफ शिफ्ट आउट होगा, लेकिन इम्प्लॉय उतने ही रहेंगे जितनी और हायरिंग होती रहेगी, लेकिन न्यू प्रोफाइल्स

0: वन टाइम सेटअप तो आपको कराना पड़ेगा, उसके बाद और उसको बार बार जब तक आप उसको रेगुलर तरीके से इम्प्रूव नहीं करोगे तो वो कई बार ऐसे हेलुसिनेट भी करता है. तो मतलब आपको रेगुलर तरीके से आपको अपने सिस्टम्स को आप रखना पड़ेगा और उसको बहुत बढ़िया तरीके से सर्व करना पड़ेगा.
1: बिल्कुल अमित जी, एक बार आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है अपने एम्प्लॉयज को मॉनिटर करने के लिए और उसी के आधार पर उनकी छटनी की गई है, जिसको लेकर विरोध भी लगातार हो रहा है कि आप सीधी सी बात है, एआई सब कुछ देख सकता है लेकिन वो आपकी भावनाओं को नहीं पढ़ सकता है. तो ये कितना सही है, अब इसको लेकर फिर से विचार हो रहा है.
2: मैम देखिए, एआई हमारी भावनाओं को नहीं पढ़ सकता. एक मूवी आई थी रोबोट, अगर सबने देखी हो, तो रोबोट में जो चिट्ठी बनाया गया था उसके अंदर इमोशंस डाले गए. इमोशंस डालने के बाद उसने ये नहीं सोचा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो अपने इमोशंस में डूब गया. इस टाइप से गूगल का जो डेटा सेंटर्स है, गूगल ने दुनिया भर में डेटा सेंटर्स लगाए हैं. गूगल इनके ऊपर बिल्कुल रोबोटिक्स पे काम कर रहा है पूरा डिटेल में, ठीक है. और गूगल की अगर पावर कंजम्पशन की बात करते हैं तो 20 से 25 टेरा वॉट्स पर आवर पर ईयर की कंजम्पशन है. तो गूगल के जीपीयूस टीपीयूस सबका यूज करके एआई को इतना ऊपर लेके जा रहा है, इतना मॉडिफाई कर रहा है कि एआई जो है, कल को आप एआई से अपने आज की डेट में भी अगर आप एआई को अपने इमोशंस पर बताते हो तो एआई उसका भी जवाब देगा. एआई को अगर आप गाली देते हो तो एआई उसका भी जवाब देगा, ठीक है. धीरे धीरे एआई के अंदर इमोशंस डाले जा रहे हैं और ये जो इमोशंस हैं हमें आगे जाके हमें दिखेंगे कि ये हमें एक्चुअल में इमोशंस दिख रहे हैं और काम कर रहे हैं बिल्कुल रियलिटी में. लेकिन क्या कि अगर एक मशीन जो है हमारी अगर इमोशंस के अंदर आ जाएगी तो हमारा काम करना उतना टफ हो जाएगा.
1: जितिन जी, कैसे बैलेंस आउट होंगी चीजें?
3: हाँ, मेरे को लगता है कि दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे. जैसे अभी रियलाइज हो रहा है और कई कंपनी को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, जैसे एंथ्रोपिक ही है तो एंथ्रोपिक को भी इंटरनली झटका लगा कि हाँ इतना सारा यूज हो गया और इतना सारा हमारा बजट बर्न हो गया. उबर की हमने बात करी तो इससे पता चलेगा. तो आई थिंक देयर बी अ बैलेंस्ड अप्रोच जहाँ की ह्यूमंस कुछ चीज में प्रायोरिटी पर है लेकिन कुछ टास्क जो ऑटोमेट हो जाते हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गया, जैसे कॉल सेंटर जैसे टास्क हो गए, तो इस टाइप के जो टास्क हैं जो कि आई वुड से लोअर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वाले हैं तो वो तो कंपनीज डेफिनेटली ऑटोमेट करेंगी यूजिंग एआई. लेकिन जो हायर लेवल जहां रीजनिंग चाहिए, जहां क्रिएटिविटी चाहिए, जहां मतलब हमें सोच चाहिए कि कैसे करना है, प्लानिंग एक अलग लेवल की चाहिए, तो वो वाले टास्क ह्यूमन्स ही रहेंगे. लेकिन उसकी उनकी दे ऑल्सो मे यूज एआई बट ह्यूमंस उसमें प्रेडोमिनेंट रहेंगे. इसलिए स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं आज की डेट में तो आपको बेसिक्स ऑफ एआई समझना पड़ेगा, प्रॉम्प्टिंग समझना पड़ेगा, आप कैसी कैसी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं वो चीज़ समझ के. और बहुत सारे टूल्स फ्री ऑफ चार्ज हैं, आप एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज. आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे, मे बी आप बहुत छोटे टाउन से आ रहे हो, फिर भी ये सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं. बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड्स जैसे CBSE ने एक छोटे बच्चों के लेवल से स्टार्ट कर दिया, ये करिकुलम बन गए और सबके पास मोबाइल्स हैं तो आप मोबाइल पे भी बेसिक कोर्सेज कर सकते हो. बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल वगैरह भी फ्री ऑफ चार्ज लॉन्च कर रही हैं. तो ये करने से हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है दे विल बी एआई इनेबल्ड और जो पूरी पछड़ी जाएंगी उसको लेने के लिए तैयार रहेंगे.
1: ठीक है पवन जी, सॉल्यूशन क्या है इसका?
4: सॉल्यूशन हमारे ऊपर है कि आप बैलेंस करिए. एआई से दूर नहीं भागना, भाग नहीं सकते. एआई का सदुपयोग करना है. एआई बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, हमारे ऊपर राज करने की तैयारी कर रहा है, मानव मात्र के इंटरेस्ट को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की तैयारी कर रहा है, हमारी निजता के अधिकार को पूरी तरीके से लुप्त करने की दिशा में आगे जा रहा है. इसलिए ये एक रामपुरी छुरी है जो हम लोगों ने बना तो ली है, अब दायित्व हमारे ऊपर है कि साहब इस छुरी से हम सब्जी काटेंगे या खून करेंगे. लेकिन ये विचार प्रकार की छुरी है, छुरी खुद डिसाइड करने वाली है कि मुझे क्या करना है. तो इस छुरी को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, इसलिए एडिक्वेट गार्ड रेल्स बनाने आज जरूरी है ताकि ये अल्टीमेट टेक्नोलॉजी जो है मानव मात्र के इंटरेस्ट के बदलाव काम ना कर सके. बहुत जबरदस्त गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है. आग के आने के बाद और इंटरनेट के आने के बाद अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है तो पूरे मानव मात्र के जीवन को अनप शनप तरीके से प्रभावित कर सकती है. तो वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अब हम जितनी जल्दी उसको रेगुलेट कर सकें, उसे गार्डरेल्स में डाल सकें और विवश कर सकें,

0: वो इंसानों के इंटरेस्ट का उल्लंघन ना करेगा उतना अच्छा है, वरना तो हमें गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बहुत जल्दी हम सब गुलाम होने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज करने वाला है, और हम सबकी जो अपने मानवीय अधिकार हैं उनका डेली हनन होने वाला है। इस दिशा में हम अगर तैयार हैं तब तो एआई को पूरी तरीके से विश्वास कर लीजिए, उसको रिलाई कर लीजिए, जीवन का हिस्सा बना लीजिए, वरना बैलेंस्ड आर्म्स लेंथ तरीके से एआई का इस्तेमाल करिए।
1: बिल्कुल, बैलेंस तरीके से अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: प्रधानमंत्री मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की, तो गुड न्यूज टुडे भी तभी से आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के लिए कह रहा है। तो हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हामटा वैली का दीदार करवाते हैं, जहां के सीनिक ब्यूटी, ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। और इस वीडियो को हामटा वैली के ही एक दर्शक ने हमें भेजा है।

0: नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ हमटा का लोकल निवासी हूँ। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा हुआ यहाँ पे। तो ये जो हमटा वैली है, ये मात्र 40 मिनट का रास्ता है मनाली से, और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट प्लेसेस में ये आता है। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, बहुत सुंदर मीडोज हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है, और छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ये सेतन विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, होम स्टेज हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, रूम्स हैं, डबल शेयरिंग रूम्स और बंक बेड्स भी हैं यहाँ पे। ये विलेज कम्युनिटी हॉल है, और एक छोटा सा मॉनेस्ट्री भी है इस गांव में यहाँ पे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। क्योंकि ये पूरा गांव एक बुद्धिस्ट जो पहले फार्मिंग करते थे, और अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो कुछ लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, और साथ में ये टूरिज्म वाला काम भी देख रहे हैं। ये विलेज सेतन है, एक छोटा सा गांव है जो हमटा वैली का लास्ट गांव है। इसके बाद आपका हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे, और यहाँ पे लोग अपना खेतों में देखे यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई है। यहाँ पे गोभी, धनिया, ब्रोकली, बहुत सारे एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे जो सब्जी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है वो हमेशा। और ये हमटा वैली में जब आप लोग विंटर टाइम में आएंगे तो आप लोगों को पूरा एरिया ये बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे आपको इग्लू स्टे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इग्लूज है वो इसी वैली में ही बनते हैं, और फर्स्ट टाइम इग्लू स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हमटा वैली में लाया गया था। और ये वाला एरिया है जो इग्लू के लिए यूज होता है विंटर में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी, ग्रीन पैच जो मीडो है, ओपन मीडो, ये टॉप का, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, और जो भृगु लेक है वो उसके टॉप पे है। और ये पूरा वैली जो ऐसे राइट साइड को गया, ये हमटा वैली है जो बहुत ही फेमस ट्रेकिंग रूट है, और हमटा पास क्रॉस करने के बाद आप दूसरी तरफ स्पीति की तरफ को जाते हैं। तो अभी मई जून से लेकर आपका सेप्टेम्बर मिड अक्टूबर तक यहाँ पे जो हमटा पास ट्रैक है वो चलता है, और आप कैंपिंग भी कर सकते हो फॉरेस्ट में, बहुत अच्छे रिवर साइड में या मीडोज में कहीं भी आप टेंट लगा दो, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग हैं पांडुरोपा में, ये सेतन से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव लोग एग्जाइल में थे वो लोग हिमालय में छुपे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पे, तो अपने उस एग्जाइल के टाइम में कुछ टाइम उन्होंने यहाँ भी बिताया है। तो इस जगह में ऐसा माना जाता है कि वो धान की रोपाई करते थे, जो सीड से पौधा तैयार करते हैं वो यहाँ पे तैयार करते थे, और उसकी जो बिजाई है खेत में वो भृगु लेक के पास में, वहाँ भी एक पांडुरोपा करके जगह है, वो वहाँ पे उसके रोपाई करते थे। तो अभी हम लोग हैं हमटा के एक मशहूर ढाबा कालजंग ढाबा में, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अखरोट के सिड्डू बनते हैं। यस, तो ये है सिड्डू, और ये यहीं पे बना हुआ, और इसके अंदर अखरोट का पेस्ट डाला हुआ, और ये चटनी टमाटर, पुदीना, मिर्च, पूरी तरह से ये नेचुरली ब्लेस्ड एक एरिया है।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बस उठाइए अपना मोबाइल फोन और अपने आसपास की तस्वीरें और वीडियोस बना के हमें शेयर कर दीजिए, हम इसे गुड न्यूज स्टूडियो पर दिखाएंगे। आपको शेयर कहां करना है, आपको हमें व्हाट्सएप करना है 7303409922 पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या चंदन के प्रयोग से क्रोध को कम किया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से राहु और केतु की बाधा को दूर कर सकते हैं? क्या है चंदन का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
1: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
2: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
1: Big 12 Radio.
3: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
1: and
3: down.
1: And talk sports.
4: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
1: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए, क्रिकेट की दुनिया में कोहली का कद विराट है और वो जितने बड़े स्टार हैं, आध्यात्म की दुनिया में उतने ही साधारण है। आईपीएल के धूम धड़ाके के बाद विराट और अनुष्का मथुरा पहुंचे और वहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया और इसकी तस्वीरें थोड़ी ही देर में हम आपको आगे दिखाएंगे।
8: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, विराट की बात तो करेंगे ही, लेकिन विराट के अलावा हम वैभव की भी बात करने वाले हैं, जो धमाकेदार खेल के बाद आश्चर्य का दूसरा नाम बन गए हैं। हाल ये है कि उनके स्टाइल पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जी हां, और IIM इंदौर में उनके खेल पर स्टडी की तैयारी है। तो क्या है पूरी खबर, ये आपको आगे बताएंगे।
9: नमस्कार, मैं शुभ्रा, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आगे बात सलमान खान की भी करेंगे, जो एक फिल्म को लेकर निर्माता से भिड़ गए हैं। सलमान ने काला हिरन नाम की फिल्म को लेकर मेकर्स को लीगल नोटिस दे दिया है और खुद की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इस पूरी खबर को डीकोड करेंगे।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, आज के कार्यक्रम में बात होगी क्रिकेट की और एंटरटेनमेंट का डोज भी होगा और आगे आपको बताएंगे बच्चों की किस जिद के आगे झुक गए न्यूयॉर्क के मेयर और बच्चों ने मेयर से किस आदेश पर करा लिया जबरन सिग्नेचर। ये खबर भी आगे आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
8: आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। मैदानी इलाकों में गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है हिल स्टेशन। हिमाचल के खजियार में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटक, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन, 70 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पुल, 2023 की आई आपदा में बह गया था ब्रिज।

हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान। मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला। कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। भारत ने पेश की मानवता की मिसाल, इबोला प्रभावित अफ्रीका के लिए भेजा 43 टन हेल्थ रिलीफ का दूसरा स्लॉट। विदेश मंत्री बोले, अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है भारत। आरसीबी को फिर आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी रही साथ। हर बड़े अवसर पर वृंदावन पहुंचते हैं स्टार क्रिकेटर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आईपीएल जीत की खबर कल आपको हमने दिखाई थी, उसी से जुड़ी आज की भी खबर है। दरअसल आईपीएल जीत का जश्न, ट्रॉफी की चमक और करोड़ों फैंस की बधाइयों के बीच विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर से भक्ति की शरण में नजर आए हैं। दरअसल आरसीबी के लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने के महज दो दिन बाद ये स्टार कपल वृंदावन में दिखा, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद भी लिया। वायरल तस्वीरों और वीडियो में विराट और अनुष्का राधाकेली कुंज आश्रम में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने आध्यात्मिक गुरु के साथ कुछ समय भी बिताया। वैसे शगुफ्ता, हम पहले भी दिखा चुके हैं विराट और अनुष्का को कि जब भी उनके जीवन में मुझे लगता है कि कोई खास मौका, खास पल आता है, वो वृंदावन जाना और प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते।
2: बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पहली बार नहीं है। 2025 में भी आपको याद होगा कि यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मुझे लगता है कि इनके जीवन का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जब भी कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ अच्छा होता है, तो ये स्पेशली यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं। और बहुत क्लोज फ्रेम्स अगर हमने देखे, आपको याद होगा, रिकॉल करेंगे, अनुष्का शर्मा की आंखों में आंसू थे, सुन रही थी वो हाथ जोड़ के। तो आई थिंक जब भी ऐसा कुछ होता है तो इन दोनों की ये तस्वीरें, एक ये भी है कि आप कनेक्ट बहुत इजीली इन लोगों के साथ कर पाते हैं। वो सादगी भरे लिबास में वहां पहुंचते हैं, ये नहीं लगता कि कोई स्टार कपल वहां पर पहुंचा।
1: और एक और चीज, इस बार जब मैच चल रहा था तो मैंने नोटिस किया, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं, जब अनुष्का क्लोज फ्रेम में दिख रही थी तो उन्होंने तुलसी माला पहन रखी थी,
2: देखी सबने, देखी
1: है ना। तो वो बहुत ही अपने आप में बताता है कि आप कितने कनेक्टेड हैं और कितने आध्यात्म से आप जुड़े हैं।
3: आपको पता है क्या, मैं अक्सर, हमें ऐसा लगता है कि जो मटेरियलिज्म है और स्पिरिचुअलिटी ना कभी साथ साथ नहीं चलती, बट कर दिखाया है विराट कोहली ने। और मुझे लगता है, कहते हैं ना, एक महिला ही होती है आदमी के सक्सेस के पीछे, तो अनुष्का शर्मा ने जिस तरीके से उन्हें अध्यात्म की राह पर लेकर आई है वो, और 18 साल के वेट के बाद हमने देखा कि आरसीबी ने लास्ट टाइम जीता और इस बार जीता, तो इसमें अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल रहा है।
1: बिल्कुल।
2: चलिए देखिए, ये तस्वीरें तो आपने देखी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि विराट और अनुष्का का वृंदावन और इसके साथ जुड़ाव कोई नया नहीं है। दोनों कई खास मौकों पर यहां आकर आशीर्वाद लेते रहे हैं, और एक तरफ मैदान पर ऐतिहासिक जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ जीवन में आध्यात्मिक संतुलन की तलाश। तो आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद अनुष्का ने सोशल मीडिया पर विराट के साथ एक खास तस्वीर भी शेयर की थी, आपने देखी होगी वो तस्वीर भी। विराट और अनुष्का हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से थोड़ा दूर रखना काफी पसंद करते हैं, और शायद यही रीजन है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी जीतों में से एक का जश्न मनाने के बाद भी इस कपल ने सबसे पहले वृंदावन पहुंचकर आशीर्वाद लेना जरूरी समझा।

0: ये तस्वीर सिर्फ सफलता की नहीं धर्म की ताकत भी है, जिसने खेल के मैदान पर कई रन बनाए। जिसकी एक झलक पाने को फैन बेताब रहते हैं, वो आज भी उस शक्ति के सामने सिर झुकाता है। इसी अध्यात्म की डोर में बंधे विराट कोहली और अनुष्का एक बार फिर वृंदावन में अपने गुरु प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन को पहुंचे। विराट अनुष्का साधारण कपड़ों में बिना किसी दिखावे के आश्रम गए। वहां दोनों ने प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में सिर नवाया। आश्रम में सत्संग और आध्यात्मिक चर्चा हुई। दोनों ने शांत वातावरण में कुछ पल बिताए। उनके इस आध्यात्मिक दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें विराट और अनुष्का की विनम्रता और भावुकता साफ नजर आ रही है। ये धर्म की ताकत है जो चैंपियन को साधक बनाती है। विराट कोहली ने मैदान पर हमेशा आक्रामक और जुझारू खेल दिखाया है, लेकिन उनके अंदर की शांति और संतुलन का राज इन आध्यात्मिक यात्राओं में छिपा है। ये पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे हों। साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक अनुष्का और विराट कई बार उनके दर्शन के लिए गए हैं। हाल ही में संत प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया। इससे पहले अप्रैल में अक्षय तृतीया के मौके पर दर्शन करने गए थे। फरवरी में भी अपने परिवार के साथ दर्शन को आए थे। दिसंबर 2025 में भी दर्शन करने गए थे। 2025 में ही मई महीने में दोनों ने प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया था, जबकि 2025 की शुरुआत भी प्रेमानंद जी के आशीर्वाद से ही की थी। बार बार दर्शन के लिए वृंदावन आना ये बताता है कि मैदान पर रनों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं। हर वो इंसान जो इस मार्ग पर चलता है, वो जान पाता है कि शांति और सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो विरुष्का का अध्यात्म तो आपने देख लिया, लेकिन देखिए आईपीएल भले ही खत्म हो गया, चर्चा अभी भी हो रही है। एक तरफ आपने देखा विराट भाई कप लेने के बाद सीधा प्रेमानंद महाराजी के पास पहुंचे, वहीं राजस्थान की टीम से खेलते हुए धमाल मचाने वाले विरोधी टीमों के गेंदबाजों को अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हैरान करने वाले वैभव सूर्यवंशी, जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। भाई समझ में नहीं आता है कि क्या खाते हैं, मम्मी ने उनकी क्या क्या खिलाया है उनको। हमेशा ऐसा होता है ना कि जो घर का एकदम स्मार्ट बच्चा होता है, लड़की हो या लड़का हो, तो पूछा जाता है भाई तुम्हारी मम्मी खिलाती क्या,
2: जो तभी तो स्टडी किया जाएगा ना उनको, यही रीजन। और मैं एक और चीज बताऊं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, फॉरनर्स तक ये फेमस हो गए हैं। फॉरनर्स इनको देख के मीम्स बना रहे हैं और रील्स बनाई जा रही है कि ये कहीं भी खड़ा हो गया ना सिक्सर लगा देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इतनी स्किल इनकी स्ट्रांग है।
1: युवराज सिंह ने बेबी बॉस ऐसे नहीं उनको बोला।
3: अब आप सोचिए इनकी तुलना हो रही है युवराज सिंह से, सचिन तेंदुलकर से, लेकिन ये तो उनसे भी ज्यादा यंग है। आप सोचिए 15 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, और मुझे लगता है कि आईपीएल का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। और हम आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी को अब कहां देखने वाले हैं,
4: लेकिन कोई तो राय नहीं। बिल्कुल, और ये देखना होगा, देखिए आईपीएल तो वो फॉर्मेट हुआ, लेकिन ये समझने की बात है कि वाकई इतने कम उम्र में और जिस जगह से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं, बिहार का एक छोटा सा वो शहर है, वहां से वो आते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, जैसे बताया जाता है कि उनके पिता ने अपने खेत को बेच करके उसके बाद वो जगह बनाई, क्रिकेट ग्राउंड बनाया जहां वो खेल सके, सीख सके, तो टोटैलिटी में हमें देखना चाहिए। और आगे की स्टडी तो आईएम करेगा,
1: आईएम इंदौर में ये स्टडी होगी, और अब वो इसी बात को लेकर स्टडी करेंगे भाई लड़के में ऐसी क्या, क्या खास बात है,
3: क्या खास बात है, कैसे बन गए वैभव सूर्यवंशी रातों रात एक सेंसेशन। आइए नजर डालते हैं।

0: कोई जादूगर कह रहा है कोई मास्टर, तो कोई क्रिकेट का अजूबा। वैभव सूर्यवंशी के नाम के इतने विश्लेषण हैं कि गिनना मुश्किल है। क्रिकेट के पंडित जब तक वैभव के खेलने की स्टाइल की स्टाइल शीट तैयार करते हैं, वैभव कुछ नया रच देते हैं। आईपीएल की आंधी से हाल ही में वैभव के नाम का जो तूफान गुजरा है, उस तूफान की वजह को अब पढ़ा जा रहा है। समझने की कोशिश हो रही है कि वैभव आखिर किस मिट्टी के बने हैं, क्यों उनमें बड़े से बड़े गेंदबाजों का खौफ नहीं है, कैसे उनकी आंखें अपनी ओर आती गेंदें बखूबी पढ़ लेती हैं, और कैसे मात्र 15 साल में वैभव का वैभव सातवें आसमान तक जा पहुंचा है। वैभव के खेल, उनकी तकनीक, उनका स्टाइल अब केवल क्रिकेट की किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब मैनेजमेंट की पढ़ाई का हिस्सा बनने जा रहा है। ये पहल IIM इंदौर ने की है, जहां वैभव को समझा जाएगा और उनकी खूबियों को मैनेजमेंट के मंत्र की तरह पढ़ा जाएगा।
1: वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि भी ऐसा ही एक उदाहरण है। ये केवल क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि मानव क्षमता, प्रतिभा विकास, अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और एक दीर्घकालिक उत्कृष्टता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है।
0: दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर वैभव सूर्यवंशी को अपनी स्टडी में शामिल करने जा रहा है, जिसके तहत वैभव मॉडल पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। वैभव की हैरतअंगेज बैटिंग की दुनिया कायल है, ऐसे में IIM इंदौर अब उनकी सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड करने पर काम शुरू कर रहा है।
1: हम यदि देखें तो मात्र 15 वर्ष की आयु में जिस आत्मविश्वास और कौशल के साथ वैभव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, वह दर्शाता है कि असाधारण प्रतिभा को यदि वातावरण, मार्गदर्शन और अवसर प्राप्त हों, तो वह असाधारण परिणाम दे सकती है। उनकी यात्रा हमें यह भी बताती है कि बड़ी उपलब्धियों के पीछे केवल व्यक्तिगत क्षमता नहीं होती, बल्कि परिवार, प्रशिक्षकों, संस्थागत सहयोग और निरंतर परिश्रम की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: वैभव ने मात्र 15 साल की उम्र में जो कर दिखाया है, उससे केवल क्रिकेट की दुनिया अभिभूत नहीं है, बल्कि IIM इंदौर के प्रोफेसर भी आश्चर्य में हैं। ऐसे में संस्थान इस बात पर भी रिसर्च करेगा कि वैभव जैसी प्रतिभा को कैसे संभाला और संवारा जाए।
1: इसलिए प्रतिभा के संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और दीर्घकालिक विकास को उतनी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए जितनी इनकी उपलब्धियों को। IIM इंदौर इस संदर्भ में एक व्यापक एवं बहुविषयक अध्ययन करेगा। यह अध्ययन उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत कारकों का विश्लेषण करेगा जो कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं के विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
0: जाहिर है वैभव की ये क्रिकेट जर्नी अद्भुत है, जिसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, परिवार का समर्पण और मेंटोर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वैभव के कुछ पुराने वीडियोस और तस्वीरें दर्शा रहे हैं कि उनको कामयाबी एकाएक नहीं मिली, इसके पीछे एक बच्चे का अटूट जुनून भी छिपा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आधुनिकता के इस दौर में हिंदुस्तान की सनातन भाषा संस्कृत हमसे काफी पीछे छूट चुकी है। वैदिक काल में घर घर की बोलचाल की भाषा रही संस्कृत आम लोगों के बीच अब कौतूहल का विषय भी बन चुकी है।
3: लेकिन फर्ज कीजिए कि आप एक सभ्य सभा में मौजूद हैं और वहां पर एक वक्ता फर्राटेदार अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ शुद्ध व्याकरण के साथ संस्कृत बोलने लगे, जाहिर है कि आपको बहुत आश्चर्य होगा। अब हम आपको ऐसी ही एक सभा में लिए चलते हैं जहां पूरे प्रवाह के साथ संस्कृत बोलने वाला शख्स आपके लिए अनजान नहीं है, बल्कि बॉलीवुड का एक्शन हीरो है।

0: कमांडो फेम बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल की भारतीय योग पद्धति में गहरी अभिरुचि से दुनिया वाकिफ है, लेकिन संस्कृत भाषा में भी उनकी अद्भुत मास्टरी है। इसकी झलक देखने को मिली योगोत्सव 2026 कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के लोनावला स्थित कैवल्य धाम में इंडियन योग एसोसिएशन की ओर से आयोजित योगोत्सव 2026 में विद्युत जामवाल ने अंग्रेजी और हिंदी के साथ ही संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह भाषण देकर सबको हक्का बक्का कर दिया।
1: अस्माक्षु संस्कृत सभायाम उपस्थित सर्वे सम्माननीय, एतत् अवसर प्राप्त हम अत्यंत सम्मानित अस्मि। अहम सनिधियो वदन महत सौभाग्यमणे। अस्मिन् शुभ संवेशाम अहम आदर पूर्वक वंदे।
0: भारतीय योग विज्ञान पर 29 और 30 मई को हुए इस कार्यक्रम में विद्युत जामवाल को एंशियंट रूट्स फ्यूचर मूव्स योगा फॉर दिस जेनरेशन नाम के विशेष पैनल में वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। इस मौके पर इंडियन योगा एसोसिएशन ने उन्हें एम्बेसडर फॉर यूथ IDY 2026 के रूप में प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने खास तौर पर युवाओं के लिए योग, प्राणायाम, सोशल मीडिया, स्क्रीन एडिक्शन और मानसिक शांति जैसे विषयों पर अपने विचार और अनुभव साझा किए। एक ही वक्ता के मुख से निकली संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर वहाँ मौजूद लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए।
2: मैं ये बोलना चाहता
1: हूँ, आदमी के अंदर एक कोई अपनी चीज होती है, एंड जब भी मैं नर्वस होता हूँ या कुछ एक्साइटमेंट होती है, प्यार की बात होती है, गुस्से की बात होती है, आई बिलीव इन साइंस। जैसे मैं अगर कभी शूटिंग के लिए जाता हूँ और सारी लाइट्स ग्रीन दिखती हैं, आज अच्छा दिन जाएगा, दिस इज अ साइन। कभी कभी बटरफ्लाइज दिख जाती हैं, दिस इज अ साइन। सो मैं छोटे छोटे साइन ढूंढता रहता हूँ। कल जब मैं रात को केवल्य धाम के कमरे में गया और मैंने ये लिस्ट देखी जिनके बीच में मुझे बैठाया जाएगा, थोड़ी हार्ट रेट थोड़ी सी अलग सी चेंज हुई। आई एम यूज्ड टू ग्रेट पीपल बट दिस इज डिविनिटी हियर। सो मुझे लगा रात को हो सकता है नींद ना आए, कोई साइन तो होना चाहिए। आई स्विच ऑफ द लाइट और खिड़की के बाहर चमचमाते हुए 10,000 के करीब जुगनू थे, लाइक फायरफ्लाइज। मैंने कहा नींद अच्छी आएगी।
0: इस मौके पर विद्युत जामवाल ने शंख भी बजाया। शंख की टंकार सुनकर सभा स्थल में मौजूद लोग आध्यात्मिक चेतना के भाव से भर गए।

0: एक ही सांस में शंख की इतनी लंबी टंकार शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। साफ है कि विद्युत जामवाल भारतीय योग पद्धति पर सिर्फ स्पीच नहीं देते बल्कि वो इसके डीप प्रैक्टिशनर भी हैं। और यही वजह है कि सनातन संस्कृति और उसके स्क्रिप्चर्स में उनकी गहरी आस्था है। जामवाल ने अप्रैल 2026 में लास वेगास में आयोजित सिनेमाकॉन के दौरान अपनी हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के प्रमोशन के मंच पर गायत्री मंत्र का जाप करके सबको हैरान कर दिया था। लास वेगास में हॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक अभिनेता के मुख से गायत्री मंत्र का जाप सुनकर वहां का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। पूरी दुनिया में जामवाल की इस पहल की खूब तारीफ हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि सलमान खान पर बेस्ड काला हिरन फिल्म का पोस्टर जारी होते ही एक नया विवाद अब शुरू हो गया है। सलमान की टीम ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कानूनी नोटिस भेज दिया है।
2: बिल्कुल, देखिए इस नोटिस में फिल्म की रिलीज रोकने और पोस्टर को सोशल मीडिया से हटाने की बात की गई है। क्या है पूरा विवाद, आइए जानते हैं। हाँ,
3: रियल लाइफ जब रील पर उतरती है तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। बॉलीवुड के दबंग सलमान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की तनातनी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इसकी असल वजह 1998 का काला हिरण शिकार का मामला है, जिस पर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। अब इस हाई प्रोफाइल विवाद को बड़े पर्दे पर उतारने की पूरी तैयारी हो गई है। फिल्म मेकर्स ने फिल्म का नाम ही काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी रखा है। 29 मई को फिल्म के प्रोड्यूसर ने काला हिरण का पोस्टर जारी किया, लेकिन फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सलमान खान की लीगल टीम ने काला हिरण के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को फिल्म को लेकर एक कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के जरिए मेकर्स से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही इस पोस्टर को सोशल मीडिया से भी जल्द से जल्द हटाने की बात नोटिस में शामिल है।
4: 1998 में काकानी गांव है जो जोधपुर का, उसमें हिरण शिकार की घटना हुई। सलमान खान, सैफ अली खान सब नामजद हुए, तब्बू से लेके और सोनाली बेंद्रे तक। उसमें सलमान खान को जेल जाना पड़ा, 3 बार जेल गए, 2 बार सजा हुई। एक बार सजा हुई लोअर कोर्ट से, दोबारा हुई सेशन कोर्ट से। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि साहब मैं तो बरी हो गया हूं और आप मेरे विषय पे फिल्म नहीं बना सकते। यहाँ कितने कोर्टरूम ड्रामे बने हैं जिसमें हमने भट्टा पारसोल से लेके बाकी सब पे जीत की फिल्म के जरिए दिखाई है। या अजमल कसाब के 26/11 फिल्म बनी है, यहाँ पे भगत सिंह की फांसी फिल्म बनती है, जितने रियल इंसिडेंट है। अभी हमने धुरंधर में देखा कि नोटबंदी दिखाई गई है और अतीक अहमद का हमने पूरा काला चिट्ठा उसमें दिखाया है। तो तमाम चीजें जो है फिल्मों में दिखती हैं। तो सलमान खान को अछूत थोड़ी है कि हम उनकी जिस घटना में नामजदगी है उस घटना को पर्दे पे नहीं ला सकते हैं। तो ये कोर्टरूम ड्रामा भी है, जो संघर्ष था बिश्नोईयों का, जो लड़े वो पूरे स्टारडम से, पूरे बॉलीवुड से, और वहां पे हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से वकील आते थे। उनके पास प्रिया स्कूटर वाले वकील थे, वो गरीब लोग थे, उनके घर में अभाव था और ये करोड़ों रुपए रिश्वत की पेशकश करते थे इनके लोग। उसके बावजूद भी ना कोई बिश्नोई बिका, ना रुका, ना झुका। तो जो उनकी लेगेसी है, जो उनकी विरासत है कि 363 लोगों ने, बिश्नोईयों ने खेजड़ली गांव में मां अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। जो उनका वन्य जीवों से और हिरणों से प्रेम है, उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है, उसको हमने पर्दे पे उतारने का काम किया है।
3: रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में कोर्टरूम ड्रामे से लेकर सलमान खान की गिरफ्तारी और बिश्नोई समाज की नाराजगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टकराव की पूरी कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा संभल, मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में शूट किया गया है। फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए अमित जानी ने ये भी बताया कि इसी महीने की 20 तारीख को फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब सलमान के कानूनी नोटिस का इस रिलीज पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म आलिया भट्ट की सबसे खतरनाक अवतार बॉबी देओल जैसा विलन, और अब रिलीज डेट पर एक बड़ा अपडेट। जी हाँ,
0: जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस अल्फा को लेकर एक नहीं बल्कि कई खुलासे सामने आए हैं। फिल्म की रिलीज डेट भी अब बदल दी गई है।
2: बिल्कुल, देखिए आलिया और बॉबी की कथित अनबन पर खुद बॉबी देओल ने चुप्पी फाइनली तोड़ दी है। अब फिल्म की कहानी को लेकर भी ऐसी डिटेल सामने आई हैं जो स्पाई थ्रिलर को अब तक की सबसे डार्क फिल्म बना सकती हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: जब मिशन खतरनाक हो तो खुद को हथियार बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तैयारी की है आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा के लिए। वो आलिया जिन्हें अब तक आपने रोमांस, ड्रामा और इमोशनल रोल्स में देखा, अब पहली बार बड़े पर्दे पर एक ऐसे अवतार में दिखेंगी जो खुखार भी होगा, घातक भी और बेहद रहस्यमय भी। लेकिन सबसे पहले बात फिल्म की रिलीज डेट की। अल्फा की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले मेकर्स इसे साल 2025 में रिलीज करना चाहते थे, इसके बाद फिल्म को अप्रैल 2026 और फिर 10 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन अब ताजा जानकारी बता रही है कि फिल्म 10 जुलाई नहीं बल्कि 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि यशराज फिल्म्स की तरफ से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की धमाल 4 के 17 जुलाई पर शिफ्ट होने के बाद मेकर्स को 3 जुलाई की विंडो ज्यादा बेहतर लगी। ऐसे में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को एक हफ्ता पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। लेकिन रिलीज डेट के साथ साथ जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कथित अनबन की खबरें, जो काफी समय से चर्चा में थी। चर्चा ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों सितारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब खुद बॉबी देओल ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बता दिया है। बॉबी के मुताबिक, मुझे भी किसी दोस्त ने उस खबर का स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं भी हैरान था, लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं। अब बात उस कहानी की जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्फा में आलिया किसी सामान्य रॉ एजेंट या स्पाई के रोल में नजर नहीं आएंगी बल्कि एक ऐसी खतरनाक असेसिन के किरदार में दिखेंगी जिसका पूरा बचपन ट्रेनिंग, दर्द और हिंसा के बीच गुजरा है। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिर्फ मारना सिखाया गया, जो धीरे धीरे एक घातक हथियार में बदल गई और जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि आलिया ने अपने करियर की सबसे कठिन फिजिकल तैयारी शुरू की। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने करीब 4 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट सीखी, हथियारों को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना सीखा, वायर वर्क और एरियल स्टंट्स की ट्रेनिंग ली और स्पीड और साथ ही फुटवर्क पर हफ्तों तक मेहनत की। बॉबी देओल भी आलिया की तैयारी देख हैरान रह गए थे। बॉबी ने आलिया की कमिटमेंट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की तैयारी उन्होंने की उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया। बॉबी की इन सभी बातों से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में आलिया और बॉबी के बीच कई हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देती है तो क्या ये वाकई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल एक्शन ब्लॉकबस्टर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात उस खबर की जो कि लाखों लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी बन गई है। सुबह ऑफिस, शाम को बाइक टैक्सी, रात में पीएचडी की पढ़ाई। सुनने में शायद नामुमकिन लगे लेकिन अहमदाबाद के दीपक पांडे के लिए यही रोजमर्रा की जिंदगी है। दिन भर नौकरी करने के बाद जहां ज्यादातर लोग आराम करना चाहते हैं, वहीं दीपक शाम होते ही सड़कों पर बाइक टैक्सी चलाने निकल पड़ते हैं। इसके बाद भी उनका दिन खत्म नहीं होता। घर पहुंचकर वे खाना बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं और फिर अपनी पीएचडी की पढ़ाई में जुट जाते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए दीपक की कहानी सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। वजह सिर्फ उनका व्यस्त शेड्यूल नहीं बल्कि वो सोच है जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी है।

0: यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस अदृश्य शक्ति से हुआ बाबा बागेश्वर का सामना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Schwarber to right field, and it will lead.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक की गिरावट। मैदानी इलाकों में गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहे हिल स्टेशन, हिमाचल के खजियार में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटक, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन, 70 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पुल, 2023 की आई आपदा में बह गया था ब्रिज। बात करते हैं बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो बद्रीनाथ के पास स्थित नारायण पर्वत की एक गुफा में है। 21 दिन की एकांत साधना पूरी कर अपने धाम लौट चुके हैं। साधना के दौरान की अनुभूतियों को पहली बार साझा करते हुए उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है।
3: बिल्कुल, देखिये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अद्भुत अनुभूति को सुनकर हर कोई हैरान है। ये बात ऐसी है जिस पर आसानी से यकीन कर पाना ही मुश्किल है, लेकिन वाकई की चर्चा उन्होंने जिस तरीके से की है उसे झुटला देना भी आसान नहीं है।

0: कभी कभी जीवन में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिसे लेकर मन द्वंद्व से घिर जाता है। इस बात पर यकीन करें तो कैसे करें और यकीन ना करें तो कैसे ना करें। ऐसा ही एक दिव्य वाक्या हुआ है विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। सबको पता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते 6 मई को एकांतिक साधना के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर ने बद्रीनाथ धाम से और ऊंचाई पर स्थित नारायण पर्वत की तलहटी में कल कल बहती पतित पावन ऋषि गंगा के पास एक दुर्गम गुफा में पूरे 21 दिन तक नितांत एकांतिक साधना पूरी की। इस साधना के दौरान खुद के साथ हुए एक अजीब वाकये की अनुभूति जब उन्होंने साझा की तो उसे सुनकर लोग विस्मित हो गए।
1: किसी ने 2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी हो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, एक आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी तो हम सावधान होकर के, हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सोई रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया, लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था।
0: अठारह 19 फीट लंबे इंसान की कल्पना तक आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब अति विशाल काय सफेद वस्त्रधारी कोई महात्मा थे तो फिर खिड़की पर जोर से लात मारने वाला कौन था?
1: अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी? बोले यहाँ पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, अब वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे ये कौन थे? बोले बेटा ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते हैं। इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ।
0: जिस महाअवतार बाबा का जिक्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं उनके बारे में परमहंस योगानंद ने साल 1946 में प्रकाशित अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में विस्तार से बताया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है जिसका एंडोर्समेंट एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से लेकर द बीटल्स के संगीतकार जॉर्ज हैरिसन, प्रसिद्ध अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेसली और क्रिकेटर विराट कोहली तक ने किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील को देशभर में सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। अब इसी कड़ी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। उन्होंने वीआईपी संस्कृति से दूर रहते हुए दिल्ली से झांसी तक ट्रेन में आम यात्रियों के साथ सफर किया और वहां से सड़क मार्ग से वो बागेश्वर धाम पहुंचे।
3: बद्रीनाथ धाम में साधना और धार्मिक कार्यक्रमों के समापन के बाद लौटते समय बाबा बागेश्वर ने सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यात्रा के दौरान बाबा ने यात्रियों से संवाद भी किया और सभी से प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करने का आग्रह किया। उनका ये कदम न केवल सादगी का संदेश देता है बल्कि राष्ट्रहित में संसाधनों के बेहतर उपयोग और जन जागरूकता की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी माना जा रहा है।
4: देखिए अभी मैं एक फिल्म का नाम ले दूंगी ना, तो ये नॉनस्टॉप बुलेटिन उसी फिल्म पे चल सकता है, धुरंधर।
2: हाँ बिल्कुल, आपने देख ली?
4: देख नहीं ली, शुरू हो जाओ बस धुरंधर का नाम लेते ही सब शुरू हो जाते
2: हैं। अब तो मैं ये कहती हूँ कि जिन्होंने नहीं भी देखी ना वो भी सब जानते हैं, दे नो द प्लॉट, दे नो द ट्विस्ट एंड एवरीथिंग, बट नाम क्यों लिया?
4: नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है जहाँ धुरंधर शूट हुई है,
2: लेह लद्दाख।
4: यस, अब हम आपको वहीं पर लेकर जा रहे हैं।
2: अरे
4: बिल्कुल एग्जैक्ट, हालांकि किरदार अलग हैं, वो तो फिल्म के किरदार थे, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है। देखिए प्रधानमंत्री ने तो अपील की ही है, हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि आप अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कीजिए, और हमारे दर्शक लगातार हमें भेज रहे हैं वीडियोज और फोटोज। तो एक दर्शक ने ऐसा ही सुकून भरा, लद्दाख की वादियों में सुकून भरा ये वीडियो भेजा है, तो ये वही जगह है जहाँ पर धुरंधर की शूटिंग हुई है।

0: कास्टिंग का काम करते हैं और साथ ही पीएचडी की पढ़ाई भी करते हैं।
1: मीठे जहर को समझने में तब लगता था कि लाइफ कितनी सेट है ना, लोग बाहर धूप में मर रहे हैं और मैं एसी में बैठकर काम कर रहा हूँ। पर तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एसी की ये ठंडी हवा मेरे अंदर के सपनों की आग को भी धीरे धीरे ठंडा कर रही है। समझ आते आते 4 साल निकल गए। अब मेरा फ्लाइट टैक्सी के
0: दीपक की जिंदगी की ये दिलचस्प कहानी अब वायरल है। दीपक बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब उन्हें लगता था कि नौकरी के बाद उनमें किसी और काम की ऊर्जा नहीं बचती। वो खुद को सीमित समझते थे और अपनी जिंदगी से खुश भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू किया। पहले पीएचडी में दाखिला लिया, फिर बाइक टैक्सी चलानी शुरू की और बाद में कंटेंट क्रिएशन भी जोड़ लिया।
1: एक कारण काफी है और वो है मेरा सपना। आप भी महसूस करते होंगे ये तकलीफ, पर आप अकेले नहीं हैं और हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे।
2: यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपको बताएंगे बच्चों ने किस ऑर्डर पर करा लिए न्यूयॉर्क के मेयर के सिग्नेचर।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: You hear it once and remember everything.
5: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
4: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बच्चों की बात करते हैं, देखिए ऐसा अक्सर होता है कि अगर आप देर रात तक जागते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको डांट देते होंगे, जिस पर मजबूरी में सो भी जाते होंगे। लेकिन अमेरिका में न्यूयॉर्क के बच्चों की किस्मत शायद इन दिनों कुछ ज्यादा ही अच्छी है।
2: बिल्कुल, दरअसल वहां के मेयर जोरान ममदानी ने खुद एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें बच्चों को देर रात तक जाकर एनबीए फाइनल्स देखने की इजाजत दे दी गई है। देखिए वजह है, 27 साल बाद न्यूयॉर्क की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और पूरा शहर जश्न के मूड में है।
3: खेल के जुनून में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन न्यूयॉर्क में तो मेयर ही बच्चों के साथ

0: फैन बन गए। न्यू यॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी ने एक मजेदार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें बच्चों को देर रात तक जागकर NBA फाइनल्स देखने की अनुमति दी गई। हालांकि ये कोई असली सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि बास्केटबॉल के प्रति दीवानगी दिखाने का एक अनोखा तरीका था।
1: For the Knicks finals run. Are we ready? Who here was alive in 1999? No, you were not. You were? Okay, we're going to talk about that later.
2: I don't know when I was born.
1: All right, here we go. We're signing it.
2: I don't know.
1: Okay, my friends. Executive order is signed.
2: I don't know when I was.
1: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals.
0: कार्यक्रम के दौरान बच्चों को भी खास मेहमान बनाया गया। मेयर ने बच्चों को उस दस्तावेज पर अपने हाथों के निशान लगाने के लिए आमंत्रित किया और फिर सबने मिलकर न्यूयॉर्क निक्स के समर्थन में जोरदार नारे भी लगाए। पूरा माहौल किसी राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जैसा नजर आया।
1: Quick.
3: Yes, girl.
1: Decisive.
0: इस उत्साह की वजह भी खास है। न्यूयॉर्क निक्स 1999 के बाद पहली बार NBA फाइनल्स में पहुंची है, यानी लगभग 3 दशक बाद टीम के पास चैंपियन बनने का मौका है।
1: Let's go Knicks. Let's go Knicks. Let's go Knicks.
0: फाइनल में उसका मुकाबला सैन एंटोनियो स्पर्स से होगा और पहला मैच बुधवार रात खेला जाएगा। टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे शहर को उत्साह से भर दिया है।
1: Okay.
0: अब तो फैंस की लिस्ट में खुद मेयर भी खुलकर सामने आ गए हैं। वैसे यह आदेश कानूनी रूप से भले लागू ना हो, लेकिन न्यूयॉर्क के बच्चों के लिए इससे बेहतर बहाना शायद ही कोई हो सकता है। अगर मम्मी पापा सोने के लिए कहें तो जवाब तैयार है, वो ये कि मेयर ने खुद इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए चाय पर चर्चा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at Quo.com/tune in. That's Quo.com/tune in.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates. And Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: हवाई के खिला हुआ ज्वालामुखी पर एक हैरान कर देने वाला नजारा कैमरा में कैप्चर हुआ। अमेरिकी एजेंसी USGS के कैमरों ने ज्वालामुखी के ऊपर हवा के एक छोटे से घूमते हुए बवंडर को रिकॉर्ड किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई खतरनाक तूफान या फिर बड़ा बवंडर नहीं था, बल्कि ज्वालामुखी की गर्मी और मौसम की खास हालातों से बना हुआ एक अस्थायी हवा का चक्र था।
2: वैज्ञानिकों के अनुसार 23 दिसंबर 2024 से यहां रुक रुक कर विस्फोट हो रहे हैं। वैसे तो इस ज्वालामुखी पर साइंटिस्ट की नजर रहती है, लेकिन इस बार इसके ऊपर बना ये बवंडर लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था।
1: शादी से पहले होने वाले प्री वेडिंग शूट में आमतौर पर रोमांटिक पोज, खूबसूरत लोकेशंस और फिल्मी अंदाज ही देखने को मिलता है, लेकिन एक कपल ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब दोनों अपनी शादी की तैयारियों में बिजी थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका रिश्ता दूसरों से थोड़ा सा अलग है। दोनों को हमेशा से एडवेंचर और स्पोर्ट्स का शौक रहा है, तो ऐसे में शिवांगी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना प्री वेडिंग शूट को भी उसी जुनून के साथ किया जाए।
3: बस फिर क्या था, पारंपरिक पोज और रोमांटिक वॉक की जगह बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग ने लेनी। होने वाली दुल्हन ने भारी भरकम पोज देने के बजाय स्की पहनकर बर्फ पर रफ्तार भरना चुना। और देखिए, खास बात ये रही कि उन्होंने पारंपरिक लहंगे को भी इस एडवेंचर का हिस्सा बना लिया, जिससे पूरा शूट और भी ज्यादा शानदार बन गया।

0: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, कल फिर शाम 5 बजे मिलते हैं चाय पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
2: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: क्या चंदन के प्रयोग से क्रोध को कम किया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से राहु और केतु की बाधा को दूर कर सकते हैं? क्या है चंदन का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक की दर्ज की गई गिरावट। मैदानी इलाकों में गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहे हिल स्टेशन, हिमाचल के खजियार में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटक, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन, 70 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पुल, 2023 की आई आपदा में बह गया था ये ब्रिज। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान। मियांपुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला। कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त में शिक्षा। भारत ने पेश की मानवता की मिसाल। इबोला प्रभावित अफ्रीका के लिए भेजा 43 टन हेल्थ रिलीफ का दूसरा स्लॉट। विदेश मंत्री बोले, अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है भारत। आरसीबी को फिर आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली। पत्नी अनुष्का भी रही साथ। हर बड़े अवसर पर वृंदावन पहुंचते हैं स्टार क्रिकेटर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात प्रगति की। मेघालय के चुनौतीपूर्ण टेरेन में भारतीय सेना ने हाल ही में प्रगति युद्धाभ्यास किया। प्रगति यानी पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत समेत 13 देशों की सेनाएं 20 से 31 मई तक हुए इस युद्धाभ्यास का हिस्सा भी बनी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सेनाओं के बीच में सहयोग, विश्वास और सामूहिक तैयारी को मजबूत करना था। प्रगति 2026 के तहत 12 देशों की सेनाएं भारत पहुंची और भारतीय सेना के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में उन्होंने हिस्सा भी लिया। इस अभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान गुड न्यूज टुडे भी मेघालय पहुंचा। इस दौरान हमारे संवाददाता ने करीब से भारतीय सेना के पराक्रम की इन तस्वीरों को देखा। ऑपरेशन प्रगति से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सीधे मेघालय के उमरोई मिलिट्री बेस से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

ये मुश्किलों को कर देते हैं चूर। ऊंचाइयों से इन्हें जरा भी खौफ नहीं,

न फिक्र है इन्हें दरिया की गहराइयों की। हौसलों को हथियार बना, ये लड़ते हैं आफत से जंग। और मौत के जबड़े से छीन लाते हैं जिंदगी। ये हर पल करते हैं तैयारी जीत की।

0: कि ये है इंडियन आर्मी। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जांबाज भारत के पूरब में हुंकार भर रहे हैं। मेघालय के पहाड़ों पर ये भारतीय सेना के पराक्रम का प्रदर्शन है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन प्रगति 2026, जिसे भारत के सैनिकों ने 13 मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर अंजाम दिया। से 31 मई तक मेघालय के उमरोई में चली इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपीन, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम की सेनाएं शामिल हुई। दो हफ्ते चले अभ्यास में 20 महिला सैनिकों समेत 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया, अपने रणकौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया और खतरों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को धार दी।
1: मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में भारत की लीडरशिप में 12 देशों की सेनाएं एक साथ इकट्ठा हुई हैं। ये सभी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। सिर्फ वॉरफेयर सीखना, हथियारों के बारे में जानना, युद्ध कौशल सीखना इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद नहीं, बल्कि मकसद ये भी है कि किसी भी आपदा की सिचुएशन में कैसे ये सभी देश मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर सीखने और जानने की कोशिश की जा रही है। मुख्य मकसद इस मिलिट्री एक्सरसाइज का यही है कि सभी देशों की सेनाओं में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, उनमें आपसी समन्वय बढ़ पाए।
0: प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। जैसा नाम वैसा ही इस युद्धाभ्यास का मिशन भी था।
2: द फोकस ऑफ द एक्सरसाइज वाज ऑन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस बेस्ड इन सेमी माउंटेनस एंड जंगल टेरेन। During this time, it was a great opportunity for all of us to share the best practices.
0: प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान 400 से ज्यादा जवानों ने रूम इंटरवेंशन, फायर एंड मूव ड्रिल्स, जंगल ऑपरेशंस, हेलीबोर्न ड्रिल्स और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसी ट्रेनिंग ड्रिल्स। इन ड्रिल्स के जरिए 13 देशों की सेनाओं ने अपनी रक्षा तैयारियों को हर कसौटी पर परखा।
3: आप सिर्फ नतीजे सुनते हैं, किससे कहानियां सुनते हैं सेना के पराक्रम के, उनके शौर्य के, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सेना बेहद सजग, बेहद सतर्क होकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। इस एक्सरसाइज में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सेना के कुछ जवान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में IED बिछाई गई है। वो कैसे उससे बच के निकलेंगे, या अगर वो उसमें फंसते भी हैं तो फिर कैसे आगे रेस्क्यू का काम होगा। अब देखिए किस तरह से जो सैनिक हैं वो लगातार एक रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। ये पतला रास्ता देखिए, अब एक आईडी पर पैर पड़ा, वो एक्टिवेट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ। अब ये पूरी एक्सरसाइज इस बात की है कि जब आईडी जहाँ पर रखी थी वहाँ पर उनका पैर पड़ा है, इसका मतलब है कि दुश्मन आस पास ही है, इसका मतलब है कि दुश्मन घात लगा कर बैठा है, उनका इंतजार पहले से कर रहा था। यहाँ से सेना किस तरह से आगे इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को टेक ओवर करती है, उससे निकलने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है और साथ साथ दुश्मन पर बराबर घात लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, ये इस पूरी एक्सरसाइज में आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये एक मिलिट्री ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है जिसमें 12 देशों के जो सैनिक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और 12 देशों के सैनिकों के साथ ये हिस्सा लेने का मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे सिचुएशन में हम उनसे सीखते हैं कि अगर उनके यहाँ ऐसा होता है तो वो क्या नई चीजें करते हैं, वो बचने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, और अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो हम उनको सिखाते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएं और दुश्मन को करारा जवाब दे पाएं।
0: इस युद्धाभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। दो हफ्तों के दौरान सैनिकों को आईईडी डिटेक्शन और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के अलावा रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और एनकाउंटर एम्बुश ड्रिल्स, स्लिदरिंग, जंगल रेंज शूटिंग जैसी विशेष सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। कई देशों के सैनिकों को मिलाकर बनाई गई टीमों ने संयुक्त ट्रेनिंग ली, जिससे आपसी तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी हुई।
3: नेचर के कई रूप होते हैं, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, कहीं ऊंचे पहाड़, लेकिन सैनिक किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है। इस वक्त हम आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें इंडियन आर्मी को महारत हासिल है। ग्रैपलिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से एक ऊंचे पहाड़ से लगातार सैनिक नीचे उतर रहे हैं। कई युद्ध की कंडीशंस में, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, वो वहां पर सैनिकों के लिए परिस्थिति हमेशा सामान्य नहीं रहती, आसान नहीं रहती, लेकिन हर एक पॉइंट पर पहुंचना है, हर एक जगह से निगरानी करनी है, अपनी सीमा की देखभाल करनी है, और यही वजह है कि सैनिक कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, चाहे उसे कितने ही ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े या फिर इस तरह से उतरने पड़े। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि जो तमाम दूसरे देशों के सैनिक हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय सैनिक इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं, तो जरूर जो दूसरे छोटे छोटे देश आए हैं, कंबोडिया है, सेशल्स है, उनके सैनिकों को यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा।
0: प्रगति एक्सरसाइज के दौरान काउंटर टेररिज्म पर फोकस करते हुए कई एक्सरसाइज की गई। इसके तहत एक डमी ऑपरेशन चलाया गया, जहाँ एक गांव में छुपे आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जवानों ने अभियान चलाया।
3: प्रगति 2026 में आपको हम मिलिट्री एक्सरसाइज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपने कई बार देखी होगी। इस वक्त आप देखिए, हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारा जा रहा है, स्लिथरिंग कहते हैं इसे, और लगातार इसकी प्रैक्टिस की गई थी अलग अलग देशों के जवानों के साथ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब ऐसी स्थिति होती है जहां पर सैनिकों को जल्दी पहुंचना होता है, और ऐसी जगह जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पर सैनिकों को इस तरह से स्लिथरिंग करके हेलीकॉप्टर से उतरना होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सैनिकों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस स्पॉट पर पहुंचाया गया जहां पर आतंकी गतिविधि की सूचना थी, और उस सूचना के बाद इस तरह से हेलीकॉप्टर से जवानों को लेकर पहुंचा गया है, और अब यहां से एक हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए जवान नीचे उतरते हैं। अमूमन इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई आपदा की स्थिति हो, जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं सकते, या फिर जहां पर कोई आतंकी गतिविधि हो और जवानों को तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचना हो। अभी भी यहां पर एक डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है जिसमें एक गांव के अंदर आतंकियों के होने की सूचना दी गई है। उस सूचना पर किस तरह से जल्द उस लोकेशन पर पहुंचेंगे, इसकी ये एक बानगी थी, और स्लिदरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है।
0: हेलीकॉप्टर से जवान सीधे टारगेट एरिया के पास उतरे और तुरंत गांव को खाली करवाने में जुट गए, ताकि आतंकियों की तरफ से काउंटर फायर की स्थिति में सिविलियंस को कोई नुकसान न हो। पूरा अभियान असल ऑपरेशन जैसे माहौल और परिस्थितियों के बीच किया गया।
3: मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरा एक विलेज बसाया गया है, और उस विलेज में ये सूचना मिली है कि वहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जब ये सूचना मिलती है, उसके बाद आर्मी कैसे रिएक्ट करती है, उसका पूरा एक डेमोंस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अभी इसमें ये चल रहा है कि कैसे गांव को पहले खाली करवाया जा रहा है। गांव का जो प्रधान है, उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके गांव पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। फिर गांव के जो प्रधान है, वो सभी गांव वालों को बाहर निकाल कर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। एक कम्युनिटी सेंटर बसाया गया है जहां पर सभी गांव वाले इस वक्त इकट्ठा हो रहे हैं।
0: इस अभ्यास के दौरान एक खास बात ये भी रही कि भारतीय सेना के केनाइन योद्धाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक्सरसाइज के दौरान एलन, विक्टर और डियो नाम के कुत्तों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं उनके साथ ही इस ऑपरेशन में बेहतर टेक सपोर्ट के लिए रोबोटिक डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया।
3: 2026 के इस फाइनल डेमोंस्ट्रेशन में आर्मी ये भी दिखाना चाह रही है कैसे जो पारंपरिक तरीके हैं कि सिचुएशन से निपटने के, उसके साथ साथ मॉडर्न तकनीक अपनाई जाती है। इस वक्त जिस गांव में आतंकियों के छुपे होने की सूचना है, वहां पर आप देखिए कि सैनिक तो भेजे ही गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो रोबो डॉग है उसको भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, और वो भी अलग अलग तरह की जो सूचनाएं हैं, जो विजुअल्स हैं, वो सेना तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में किस तरह से एक रोबो डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो किस तरह से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल रहा है और सेना को भेज रहा है। तो इस पूरी प्रैक्टिस में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि ना सिर्फ जो पारंपरिक तरीके हैं ऑपरेशन के उनको अंजाम दिया जाए, उन तरीकों को अपनाया जाए, बल्कि साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो AI का इस्तेमाल हो, वो रोबोट का इस्तेमाल हो, वो सब चीज़ें भी कैसे की जाती हैं उसकी भी एक बानगी यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहला देखिए कि ये टारगेट हाउस है जहाँ पर जो सैनिक हैं वो पहुँचे हैं और पूरे गांव के एक एक घर को खाली करवाने के बाद जो यहाँ पर सैनिक हैं वो अब इस जगह से लगातार फायर कर रहे हैं। जो आप टू स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें आतंकियों के छिपे होने की सूचना है और जो सैनिक हैं उसके ठीक बगल में एक जो घर है वहां पर बैठकर वो फायरिंग उन्होंने उस पर शुरू कर दी है। इस तरह से सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज में जब बहुत सारे देशों के लोग एक साथ आते हैं, बहुत सारे देशों की जो सेनाओं के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो एक साथ आते हैं तो वो समझते हैं कि अलग अलग टेरेन में, जब आप मान लीजिए कि कहीं पर कोई पहाड़ी है, कहीं कोई मैदानी इलाका है, ऐसे अलग अलग जगहों पर अगर ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो किस तरह से करना चाहिए। अमूमन सेना पहले ऐसे ऑपरेशंस में डॉग का इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ आप देखिए कि एक रोबो डॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। डॉग्स जो प्रॉपर डॉग्स होते हैं स्नाइपर्स, उनके साथ साथ जो रोबो डॉग्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और किसी भी, जैसे किसी भी घर में अगर सेना तलाशी लेने जा रही है तो सबसे पहले उसी रोबो डॉग्स को आगे भेजती है। देखिए यहाँ से अब किस तरह से सेना दिखा रही है कि जब हम किसी टारगेट हाउस में घुसते हैं, मतलब जो टारगेट लोकेशन से जहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं वहां पर किस तरह से चीजों को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले घर के बाहर एक सीढ़ी लगाई गई है और उसके जरिए जो जवान है वो उस घर में दाखिल हो रहे हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक टेररिस्ट को यहाँ पर पकड़ा गया है और उसको पकड़ने के साथ साथ जो घर है उस घर के पूरे हिस्से पर जवानों की नजर रहे, उस घर पर कहीं भी अगर कोई दिखाई पड़ता है तो उसे आसानी से टारगेट वो कर सके, ये पूरी एक्सरसाइज ये बता रही है।
0: दो हफ्तों तक 13 देशों के सैनिकों ने इसी तरह कई तरह के ग्राउंड ऑपरेशंस की जोरदार तैयारी की। प्रगति एक्सरसाइज अपनी तैयारियों और स्किल्स को साझा करने का एक बेहतरीन मंच साबित हुई। आखिरी दिन युद्धाभ्यास के समापन समारोह में 40 से ज्यादा सीनियर सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में न सिर्फ युद्धाभ्यास की समीक्षा हुई बल्कि भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी की गई। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने फिक्की और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के सहयोग से स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित डिफेंस टेक और अगली पीढ़ी के मिलिट्री गैजेट्स का प्रदर्शन भी किया गया। वास्तव में कोई देश नहीं चाहता कि जंग हो या जंग जैसे हालात पैदा हो, लेकिन जंग की तैयारी की अहमियत को सब समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। तभी तो भविष्य में दुश्मन की चुनौती और तमाम खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर की सेनाएं ऐसे युद्धाभ्यासों के जरिए खुद को तैयार करती है। ऑपरेशन प्रगति भी इसी की एक बानगी था। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: प्रगति 2026 का पहला संस्करण न केवल विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सामरिक तालमेल को नई ऊंचाई देने में सफल रहा, बल्कि इसने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के साझा लक्ष्य को भी मजबूती दी है। इसी लक्ष्य की मजबूती के लिए भारत की सेना ने प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान फिक्की के साथ मिलकर एक डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन भी किया। इस प्रदर्शनी में सेना के लिए नए हथियारों, एडवांस उपकरणों को डिस्प्ले किया गया। यहां एक ऐसा अनमैन्ड व्हीकल लाया गया जो 200 किलो का भार उठाकर किसी भी दुर्गम रास्ते पर दौड़ लगा सकता है।
3: हम जानते हैं हमारे जवानों की पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह पर होती है जहां पर किसी गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में कई बार उनके लिए खाना पहुंचाना, उनके लिए दवाइयां पहुंचाना और कई बार ऐसी जगहों पर हथियार पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे एक जवान अपने पीठ पे लाद कर चलता है, लेकिन अब इसका एक हल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हम जब आए हैं उमरोई में तो यहाँ पर आज इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले भी है और ये इस वक्त आप जिस व्हीकल को देख रहे हैं ये उसी प्रॉब्लम का सलूशन है। इसे आप देख रहे हैं, ये एक अनमैन्ड व्हीकल है, मतलब इसमें बिना किसी आदमी को ऑपरेट इसमें बैठ कर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये बिना किसी इंसान के रिमोट के जरिए इसको चलाया जा सकता है। लगभग 200 किलो का वजन इसमें रखकर कहीं भी आप रिमोट के जरिए पहुंचा सकते हैं। अभी जहां जहां भी जवान ऐसी जगह पर जाना होता है ऊंचाई पर या किसी और जगह पर, तो अपने पीठ पर लादकर सामान ले जाते हैं। इसकी क्षमता क्या है? लगभग 200 किलो तक का ये सामान रखकर चल सकता है, रिमोट कंट्रोल्ड है ये। और साथ ही साथ आप देखिए कि 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है, और एक बार अगर ये चार्ज हो पूरा, ये बैटरी से चलता है, एक बार चार्ज होने पर लगभग 4 घंटे तक ये लगातार चल सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, कम से कम हमारे जवानों के लिए, कई दुर्गम इलाकों में जहां पर गाड़ियां नहीं आ सकती, उसमें इस सामान को रखकर उन इलाकों तक अब उस सामान को पहुंचाना आसान होगा, चाहे वो दवाई हो या हथियार हो या फिर वो खाने पीने का सामान हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक बस एक रिमोट के जरिए, और 2 किलोमीटर बैठकर भी इसको उस रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अगर सेना में इसको एंट्री मिल जाती है तो हमारे बहुत सारे जवानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मनीष और असिया, उमरोई, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी तरह इस प्रदर्शनी में एक अनोखा ब्रिज भी डिस्प्ले किया गया जो बिना किसी टूल के सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। अब जरा सोचिए, दुर्गम इलाकों में सफर पेट्रोलिंग के वक्त ये पुल सेना के कितने काम आ सकता है।
3: एक ऐसा ब्रिज है जो महज 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। सेना के जवानों को अगर कभी कोई नाला पार करना हो, कोई नदी पार करनी हो, तो उसके लिए ये एक फटाफट ऐसा ब्रिज है जो झटपट तैयार हो जाएगा। इसे बनाया किसने? बहुत खास बात, रिटायर्ड कर्नल प्रेम जी है मेरे साथ, सुनील प्रेम जी, और उन्होंने इसको तैयार किया। जरूर इन्होंने अपनी सर्विसेज में वो दिक्कतें देखी होंगी जब जवान किसी नाले में उतर को से क्रॉस करते थे या दिक्कतें होती थी। आपने उस एक्सपीरियंस से समझा तभी इसका इनोवेशन हुआ?
5: बिल्कुल। सो होता कैसे है कि जब कोई जवान दुश्मन पे हमला करने जाता है तो हमले से पहले उसको ना सिर्फ ब्रिज को लॉन्च करना है, उसको उठा के भी लेके जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्रिज को उठाने की बजाय आप खींच के ले जाते हो, जैसे एयरपोर्ट पे आप एक ट्रॉली बैग ले जाते हो। उसके बाद तो ये एक हाथ से कोई भी जवान इसको आराम से खींच सकता है। उसके बाद ये टर्न हो जाता है और वो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पुल बन जाता है। दूसरी चीज, जब जवान लड़ाई कर रहा है तो उसके हाथ में हथियार होगा, पाना तो नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी टूल्स का किसी भी उसका जरूरत नहीं होती।
3: क्या बात है,
5: सब कुछ ऑटो लॉक होता जाता है और ये लेगो की तरह, लेगो जैसे बच्चों का टॉय नहीं होता, उसकी तरह फिट होता जाता है और 10 मिनट के अंदर बन जाता है।
3: बात है,
5: दुनिया में ये लार्जेस्ट 50 मीटर स्पैन का है और इंडियन आर्मी में अब ये सप्लाई हो रहा है और अब BSF भी इसको देख रही है।
3: 50 मीटर के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन अगर हमें जो डिस्टेंस है 50 मीटर से ज्यादा कवर करना हो तो ये आसानी से मूव होके फिर आगे फिक्स हो सकता है।
5: जी बिल्कुल। तो जैसे BSF अभी इसे देख रही है तो तकरीबन 70 मीटर के लिए, ये तो है लेगो टाइप ही हुआ, आप फिट करते जाइए। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कितना करंट, कितना बहाव, उसके हिसाब से फिर हम इसको कितनी लंबाई है उस तक ले जाते हैं।
3: कितना वेट सर ये झेल सकती है?
5: जी एक मॉड्यूल जो है 0.35 टन ले लेता है।
3: 0.35 टन?
5: हाँ, तो इसको तो एक जवान लेना है फुली लोडेड। तो बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर इसमें लेते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल एक जवान का जीवन है, उसकी जान की बात है।
3: किन किन बातों का आपने ख्याल रखा है इसमें खासकर? एक तो बात हुई कि भाई इजिली मूवेबल हो, आसानी से आप उसको मूव करो और फिक्स कर लो। इसके अलावा कि वजन हो अगर, या फिर आप किस तरह के जगह पे काम करेगा, मतलब कितनी गहरी नदी हो, कितना गहरा नाला हो।
5: बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हैं, एक एक चीज इसके बारे में सोचनी पड़ती है। पहली बात तो गाड़ी में कैसे लेके आएंगे, तो अगर आप
3: स्टेशन कैसे हैं,
5: हाँ, तो ये एक के ऊपर एक ऐसे फिट होता जाता है और उसके बाद नीचे उतार के, जैसे बताया, इसको आप खींच के ले जाते हैं, टर्न कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं।

0: इसके ऊपर जब जवान जाते हैं तो कई ब्रिज होते हैं, उस पे एक बंदा एक टाइम पे क्रॉस करता है बिकॉज ब्रिज उसको कैरी नहीं। इसके ऊपर पूरी पलटन जितने लोग फिट हो सकते हैं एक साथ 30-40 लोग क्रॉस करते हैं। तो जब 500 बंदों की पलटन आपको पार करनी होती है तो बहुत कम टाइम, सिर्फ लॉन्च का कम टाइम नहीं है, पार का भी बहुत कम टाइम है। उसमें क्या करते थे हम लोग, बोट डालते थे। अब जब बोट डालते हैं तो पंक्चर हो जाता है, पंक्चर हो गया तो पूरे के पूरे बंदे जो बोट में बैठे हुए डूब जाएंगे। दूसरी बात, पंक्चर नहीं भी हुआ तो 10 जवान एक साथ बैठे हुए बहुत अच्छा टारगेट दुश्मन को बन जाते हैं, जबकि इसके ऊपर ऐसा नहीं होता।
1: और इसमें कोई वो नहीं कितनी डेप्थ में ये डूब सकता है क्या,
0: तो ये कोई भी डेप्थ हो ये डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट ये अनसिंकेबल फ्लोट इसको हम कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें बुलेट से आर्मी ने इसको टेस्ट किया है, श्रैपनल से टेस्ट किया है, तो इसमें इतना बड़ा फाड़ के आप होल भी कर दें तब भी ये डूबता नहीं है,
1: ये डूबेगा नहीं।
0: इसके अंदर एक एंटी, हम जो क्या क्या हाइड्रोफोबिक मटेरियल डालते हैं जो पानी को अंदर नहीं आने देता।
1: क्या बात है। इसके अलावा सर बहुत सारी चीजें आपने बनाई हैं सेना के लिहाज से, उसके मूवमेंट के लिहाज से, और क्या कुछ है?
0: तो उसी तरह का एक बहुत इनोवेटिव आपको ब्रिज दिखाऊंगा। तो ये एक ब्लॉक सा लग रहा है आपको, लेकिन ये व्हीकल ब्रिज है। तो इसको आप देखिए, ये ऐसे खुल जाता है और ये ऐसे हो जाता है, और यहाँ पर एक दूसरा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं इधर भी कनेक्ट हो जाता है और इसके और भी आगे लग सकता है। तो इसका ऐसा है कि एक सिर्फ ये करना, दो गाड़ी में 50 मीटर आप ले जा सकते हैं, और उससे आप छोटे व्हीकल ले जाएंगे, चार लगाइए तो कार्स और छोटे टेम्पो निकल जाएंगे, और ऐसे तीन अगर आपने यहाँ पे लगाए तो आप ट्रक भी ले जाएंगे, टेंटर।
1: ये सर कहाँ काम आएगा, किन कंडीशन में?
0: तो ये सबसे ज्यादा एक सिर्फ सेना के लिए नहीं है, इसका सेना के लिए तो है ही है, डिजास्टर रिलीफ के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि जब बाढ़ आती है रेस्क्यू में तो कट जाता है, अब आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो हमारे पास ये पैदल का सॉल्यूशन तो था लेकिन गाड़ी का सॉल्यूशन नहीं था, तो ये उसका सॉल्यूशन है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके भी वही हैं, ये भी फट जाएगा तो डूबेगा नहीं वगैरह।
1: ये क्या है सर?
0: और ये जो है एक 100 टन के जो ब्रिज होते हैं, बहुत भारी ब्रिज, तो उन ब्रिजेस में क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी फिसलती है, क्योंकि ये लोहे का इसका सरफेस होता है। तो हमने इसके ऊपर एक एंटी स्किड कोटिंग दी है, जगह आप हाथ लगा के देखें, इसका फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, और सबसे बड़ी चीज इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, तो उस प्लेटों को आप बदलते रहते हैं, इसको आप लगाइए और भूल जाइए।
1: कितनी लाइफ होगी इसकी सर?
0: तो ये तकरीबन 40 साल में शायद एक बार अगर डैमेज होता है तो थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा।
2: और चलिए इसी के साथ जेएनजी स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% की गिरावट दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहे हिल स्टेशन, हिमाचल के खजियार में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटक, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों को सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवार के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। भारत ने पेश की मानवता की मिसाल, इबोला प्रभावित अफ्रीका के लिए भेजा 43 टन हेल्थ रिलीफ का दूसरा स्लॉट, विदेश मंत्री बोले अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है भारत। RCB को फिर IPL चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी रही साथ, हर बड़े अवसर पर वृंदावन पहुंचते हैं स्टार क्रिकेटर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: आईपीएल जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात। आश्रम से बाहर निकलते वक्त विराट ने माथे पर दिखा चंदन और त्रिपुंड, गले में नजर आई तुलसी की माला। भक्ति के रंग में रंगे किंग कोहली, महाराज से मुलाकात के बाद हाथ में दिखी आध्यात्मिक किताब। अनुष्का का भी सिर पर दुपट्टा ओढ़े आई नजर, मैदान पर अपने आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर विराट कोहली वृंदावन में दिखे पूरी तरह शांत और भक्ति से सराबोर। हर बड़े टूर्नामेंट जीतने पर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करते हैं विराट अनुष्का, अब तक 7 बार प्रेमानंद महाराज से मिल चुके हैं विराट अनुष्का। हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता, अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, सुहाना मौसम भी बढ़ा रहा भक्तों का उत्साह। अत्यधिक ऊंचाई के कारण बीच बीच में हो रही हल्की बर्फबारी, फिर भी 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर गुरुद्वारा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। देवघर श्रावणी मेला शुरू होने से पहले डाक कांवड़ यात्रा में आस्था का एक अनोखा नजारा, एक पूर्व सैनिक जंजीरों से जकड़कर बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करता नजर आया। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा देवघर के लिए रवाना हुए हैं रामोदय सिंह, विश्व शांति और जनकल्याण की कामना के साथ कर रहे अनोखी यात्रा। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त, 40 दिनों में करीब 8,00,000 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिल रही है वाहनों की लंबी कतारें, गेट सिस्टम के बावजूद कई जगह 7 से 8 किलोमीटर तक लग रहा है जाम। पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही है भक्तों की भीड़, जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक 10,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन पूजन। चंडीगढ़ के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और झुमके अर्पित किए। भक्तों को IRCTC की तरफ से शानदार तोहफा, 3 ज्योतिर्लिंगों के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए लॉन्च कर रहा हवाई टूर पैकेज। लखनऊ से संचालित होगा 5 रात और 6 दिन का ये टूर पैकेज, ₹57,000 है एक व्यक्ति के पैकेज की कीमत। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई के परिमाला रंगनाथर मंदिर में वसंत उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में भक्तों शामिल। वसंतोत्सव के दौरान देवता को सुगंधित द्रव्यों से कराया गया स्नान, विशेष पूजा अर्चना के साथ दिव्य आभूषणों और फूलों से किया गया श्रृंगार। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां, हज यात्रा पूरी कर लौट रहे यात्रियों का किया स्वागत। मुंबई में विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत पिंक ई रिक्शा सहायता पहल का शुभारंभ, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस हुई शामिल। सीएम फडणवीस की पत्नी का दिखा अनोखा अंदाज, जमीन पर चलाया ऑटो रिक्शा। अमृता फडणवीस ने ई रिक्शा महिला चालकों को किया सम्मानित, कहा सरकार महिलाओं के हित में कर रही काम। देश भर के पर्यटकों के लिए आई गुड न्यूज, लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन। ₹70 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक पुल, 2023 में आई आपदा में बह गया था पुल। हैदराबाद के मियापुर में एक अनोखी क्लासरूम में बदला, बेकार पड़ा ओवरहेड पानी का टैंक, इस अनोखी क्लास में गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने को हो रहा काम। कोथकुची श्रीनिवास ने की थी इस पहल की शुरुआत, अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित किया जीवन। वाराणसी में अब ट्रैफिक पुलिस को नहीं सताएगी गर्मी, पुलिस कर्मियों को बांटे गए 100 एसी हेलमेट। रिचार्जेबल बैटरी से लैस इस हेलमेट के अंदर इनबिल्ट है कूलिंग फैन जो सिर को रखता है ठंडा, हीट स्ट्रोक, चक्कर और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से लोगों को रखता है सुरक्षित। मुजफ्फरपुर में आयोजित सहयोग शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़, शौचालय और आवास योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का हो रहा ऑन द स्पॉट निपटारा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, मामलों का जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने गौशाला का किया निरीक्षण, गायों को खिलाया गुड़। तमिलनाडु के मांड्या में पूर्व सीएम एम के स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन ने नरसिंह मंदिर में की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। डोडा के भलिस्ता में नशीली दवाओं के खिलाफ पहल, नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक, कई टीमें ले रही हिस्सा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित 10% अतिरिक्त बिजली टैरिफ वसूली पर लगाई रोक, टैरिफ आदेश को नियमों के खिलाफ बताया। पुरी में 24वें राष्ट्रीय लोक मेले का शुभारंभ, डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंहदेव हुए शामिल। मेले में 17वें राष्ट्रीय कृषि मेले का भी हुआ उद्घाटन, कृषि से जुड़े सामानों की लगी प्रदर्शनी। मेले में डिप्टी सीएम ने कलाकारों को किया सम्मानित, मेले में लगे स्टॉल का किया निरीक्षण। अहमदाबाद में मानसून से पहले सावती नदी में चलाया गया विशेष सफाई अभियान, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हैदराबाद में तेलंगाना स्थापना दिवस पर सीएम रेवंत रेड्डी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों को किया नमन। हैदराबाद में तेलंगाना स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेवंत रेड्डी ने परेड की सलामी ली। हैदराबाद में तेलंगाना स्थापना दिवस पर तिरंगे के रंग में रंगा विधानसभा और सचिवालय। दिल्ली के बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंचे नेपाल आरएसपी पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछा ने भव्य हुआ स्वागत। आगरा पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कैलाश मंदिर में की पूजा। रामबन में सीआरपीएफ ने 84वीं बटालियन की स्थापना दिवस मनाया, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ ने स्थापना दिवस शहीद पर शहीदों को परिजनों को किया सम्मानित, अधिकारियों ने लगाए पौधे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर मेले का भी आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देहरादून में सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को मिली नौकरी। जलगांव में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस का किया उद्घाटन, कहा स्वास्थ्य पर सरकार विशेष ध्यान दे रही। हिमाचल के चंबा में लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का मजा उठाने आ रहे लोग। पारंपरिक हिमाचली पोशाकों में तस्वीर खिंचवा रहे सैलानी, टूरिस्ट के आने से स्थानीय कारोबारी भी खुश। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी तूफान के बीच भारी बारिश ने से लोगों ने ली राहत की सांस, तापमान में गिरावट दर्ज। गुजरात के पाटन जिले में आंधी और तेज हवाओं के साथ मानसून की धमाकेदार एंट्री, राधनपुर में 1 इंच बारिश। बनासकांठा में अचानक बदला मौसम, तेज तूफान और बारिश के बीच तेज हवा में उड़ी कई कोल्ड स्टोरेज की टीम।

शाहिद कृति और रश्मिका की मच अवेटेड फिल्म है कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी, करीब 14 साल बाद आ रहा है कॉकटेल का सीक्वल। रामचरण की आगामी फिल्म पेद्दी का नया गाना मास्सा मास्सा रिलीज, उसमें उनके पहलवान अवतार की दिख रही झलक। अजय देवगन की दृश्यम 3 की शूटिंग हुई पूरी, 3-2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। थ्री इडियट्स की कहानी से उठ गया पर्दा, सेकंड पार्ट में 3 नहीं बल्कि होने वाले हैं 4 इडियट्स। राजकुमार हिरानी जल्द फाइनल कर लेंगे स्क्रिप्ट। पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहे रणदीप हुड्डा बेटी को कहानी सुनाते नजर आए, शेयर की क्यूट फैमिली फोटो। सैयारा के बाद फिर लौटेगी आहन पांडे और नित पड्डा की जोड़ी, मोहित सूरी संग शुरू करेंगे नई लव स्टोरी, इसी साल अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी शूटिंग। हॉलीवुड की हॉरर ड्रामा फिल्म ऑब्सेशन का तहलका, 4 दिन में कमाया 28.57% प्रॉफिट, इंडिया नेट कलेक्शन 9.75 करोड़। सुपरस्टार यश का दिल छोड़ने वाला अंदाज आया सामने, यश ने कैंसर से जूझ रहे अपने एक फैन सुनील को किया वीडियो कॉल, उसकी ख्वाहिश पूरी की। देओल परिवार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं 2 नए स्टार, बॉबी देओल ने किया खुलासा, बॉबी देओल ने बताया एक्टर बनना चाहते हैं बेटे आर्यमन और धर्म। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सागो सील, निर्माण में नियम उल्लंघन के तहत हुई कार्रवाई। चीन में गर्मी के मौसम में फिर से खुला शिनजियांग उइगुर में दुकू हाईवे, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर। दुकू हाईवे पर बड़ी संख्या में अपनी गाड़ियों से गुजर रहे पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का ले रहे मजा। एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी रास्ता है दुकू हाईवे जो दुशांजी और कुचा के बीच 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग को जोड़ने वाले एक मुख्य सड़क होने इसके नाते ये अपने शानदार प्राकृतिक नजारे के लिए मशहूर है हाईवे, जिसमें ग्लेशियर जंगल और घास के मैदान शामिल। पहाड़ी मौसम की वजह से दुकू हाईवे पर हर सर्दियों में बर्फ जमने के कारण गाड़ियों को आने जाने पर लग जाती है मौसमी पाबंदियां, आमतौर पर जून के आसपास फिर से खुलता है हाईवे। हेल्दी ईटिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में बड़ी क्रांति, इस गर्मी में ऑटोमेटेड इंडोर ग्रोइंग यूनिट्स लॉन्च करने की योजना बना रही ब्रिटिश टेक्नोलॉजी कंपनी होम हार्वेस्ट। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी कंपनी की तकनीक आधुनिक खेती में एक क्रांतिकारी कदम होगा, अब घर पर ही माइक्रो ग्रीन सलाद और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकेंगे यूजर्स। हम दुनिया के खाने के तरीके को बदलने के मिशन पर हैं होम हार्वेस्ट, इस तकनीक के तहत लोगों को अपने घर में सिर्फ 8 दिनों में अपना खाना खुद उगाने की मिलेगी सुविधा। एक ऐप के जरिए अपनी फसल चुन सकते हैं यूजर्स, कंपनी के स्मार्ट फार्म्स कनेक्टेड ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइटिंग, पानी देने, तापमान और नमी को करते हैं ऑटोमेट। खेती के भविष्य को आधुनिक रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है होम हार्वेस्ट, ऐप के आने वाले वर्जन में AI का इस्तेमाल करके फसल के साइज, सेहत, बढ़ने की रफ्तार और कटाई के समय का अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। खेती और पैकेजिंग के क्षेत्र में चीन का शानदार कदम, रोबोट के जरिए एप्पल फार्मिंग में आधुनिकीकरण पर जोर। पैकेजिंग के तहत एक रोबोट के जरिए छोटे सेवों पर लगाए जा रहे सुरक्षात्मक बैग, पूर्वी चीन में स्थित बार्गो में हो रहा है फील्ड टेस्ट। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी और एक टेक्नोलॉजी कंपनी विकसित कर रही है खास रोबोट जो सीधा खेतों में करता है पैकेजिंग का काम। विजन और इंटेलिजेंट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को मिलाकर सेवों पर बैग लगाने की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाता है रोबोट जो मैन पावर को मिनटों में करता है 50% कम। रिसर्च टीम के अनुसार इस रोबोट को बागों में अपने आप काम करने के लिए किया गया डिजाइन, जिसका एक लक्ष्य रोबोटिक हाथ से प्रति घंटे 600 बैग लगाने की क्षमता हासिल करना है। प्योंगयांग में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर बच्चों ने गीत, नृत्य और खेलों के जरिए रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों और राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया। बच्चों ने पारंपरिक कोरियाई वेशभूषा पहनकर प्रस्तुति दी और वाद्य यंत्र बजाकर सांस्कृतिक विरासत दिखाई, दर्शकों ने तालियों के साथ बढ़ाया उनका उत्साह। रस्सी कूद, रस्साकशी और गुब्बारों और गेंदों के साथ कई मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, बच्चों ने खेलों में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, खूब आनंद उठाया। रस्सी कूद के खेल को बच्चों ने बताया बेहद दिलचस्प, दोस्तों के साथ खेलने की संजोई यादें।

0: प्रतियोगिता के बाद बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक नृत्य और उत्सव के माहौल के साथ हुआ। लंदन में दुनिया का सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन सेंटर खुला। 18वीं 19वीं सदी के पुराने पंप हाउस को बहाल करने को इसे तैयार किया गया। नए सेंटर में दुनिया भर के कलाकारों की कृतियों के साथ ब्लैक की रचनाओं के लिए अलग गैलरी बनाई गई, जबकि ब्लैक के बच्चों की किताबों और चित्रांकन की दुनिया का बड़ा नाम माने जाते हैं। ब्लैक ने बच्चों के प्रसिद्ध लेखक रोल्ड डेल की कई किताबों के लिए चित्र बनाए थे। उनकी पहली साझा किताब द इनोमस क्रोकोडाइल की मुख्य कलाकृतियां प्रदर्शनी में रखी गई। सेंटर की पहली प्रदर्शनी परफॉर्मर्स में सर्कस कलाकारों और मंच अभिनेताओं पर आधारित ब्लैक की चित्रकृतियां दिखाई जाएंगी। इसमें पंच मैगजीन के कवर और मैकबेथ से प्रेरित स्केच भी शामिल है। प्योर सेल्स कॉमिक्स प्रदर्शनी में 1940 के दशक से आज तक की क्वेयर पहचान पर आधारित कॉमिक कला प्रदर्शित की गई है। वहीं कलाकार मुर्गे की रंगीन कलाकृतियां भी दर्शकों को आकर्षित करेगी। हॉलीवुड के TCL चाइनीज थिएटर में फ्रेंड्स ने मैरिलिन मोनरो की 100वीं जयंती मनाई। गुलाब केक और हैप्पी बर्थडे गीत के साथ उन्हें किया गया याद। कार्यक्रम का केंद्र मोनरो के ऐतिहासिक हैंडप्रिंट और फुटप्रिंट रहे। फ्रेंड्स ने उनके निशानों के पास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Tune in Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए GNT आपसे कुछ ऐसे वीडियो शेयर करने की अपील कर रहा है, जिससे आप अपने यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस खासकर ऑफबीट जगहों को प्रमोट करने में अपना खास रोल निभा पाएं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं लेह, और सोचिए आप लद्दाख की सुकून भरी वादियों में घूम रहे हैं और अचानक सामने आ जाए धुरंधर फिल्म की वो मशहूर लोकेशन जहां एक्टर रणवीर सिंह और गौरव गैरा का नमक की चाय पीते शूट हुआ था। अब सोशल मीडिया पर इस खास चाय की दुकान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन यहां बैठकर चुस्की लेने से पहले एक शर्त आपको माननी होगी, वो ये कि हर शख्स को उस हॉट सीट पर बैठने के लिए कम से कम 2 कप चाय ऑर्डर देनी होगी।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। मैदानी इलाकों में गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहे हिल स्टेशन, हिमाचल के खजियार में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटक, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। हिमाचल में मंडी की लोहाड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देशभर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। आरसीबी को फिर आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी रही साथ, हर बड़े अवसर पर वृंदावन पहुंचते हैं स्टार क्रिकेटर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ने।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज बड़ा मंगल है और ये ज्येष्ठ महीना का 5वां बड़ा मंगल है। मान्यता ये है कि इस दिन बजरंग बली की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है बड़ा मंगल पर सबका मंगल। आपको बता दें ज्येष्ठ महीने में मंगल का दिन बेहद शुभ और अद्भुत माना जाता है और इस साल तो पुरुषोत्तम मास में है, ऐसे में बड़ा मंगल और ज्यादा फलदायी है। आज 5वां बड़ा मंगल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी की अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज बड़े मंगल पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन करने को पहुंचे, जबकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां गूंज रही है।
2: ज्येष्ठ माह का 5वां बड़ा मंगल है और 5वें बड़े मंगल पर संगम के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ है वो लगी हुई है। यहाँ बजरंग बली लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं। सुबह से ही भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं और अपने परिवार के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। यहाँ बजरंग बली लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं। सुबह से ही भक्त यहाँ पर आए हैं और अपने परिवार के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? आज 5वां बड़ा मंगल है
3: जी। हम बहुत बढ़िया दर्शन करने, अच्छा लगा हमें। जब हम आए सुराव तहसील से, बजरंग बली कृपा से बहुत बड़े शुभ।
2: बिल्कुल, आज 5वें बड़े मंगल पर यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, पूजन कर रहे हैं और अपने परिवार के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। यहाँ पर भक्त जो है भंडारे का भी आयोजन कराते हैं, शरबत भी यहाँ पर और पानी का भी वितरण यहाँ किया जाता है और श्रद्धालुओं को इस गर्मी में बचाने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कालीन बिछाई गई है, पंखे लगाए गए हैं और तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज बड़े मंगल पर जो आज 5वां बड़ा मंगल है तो श्रद्धालुओं की भीड़ वो देखने को मिल रही है।
1: और सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों पूरे उत्साह के साथ चल रही है। यहां लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम सुहाना होने के साथ ही हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच चुके हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब। आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा बेहद कठिन है, कभी कभी मौसम बदलने पर हल्की बर्फबारी भी हो रही है, फिर भी 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर गुरुद्वारा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहां ठंड लगातार बनी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। दरअसल जून के महीने में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हेमकुंड साहिब में ऑक्सीजन की भी कमी होती है। ऐसे में जो बीमार लोग हैं उन्हें 7 दिनों की दवाइयां अपने साथ लाने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई। इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा भी पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है। ऐसे में गुरुद्वारा प्रबंधन भी लोगों को सलाह दे रहा है ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे। जो इस समय नहीं यात्रा कर पा रहे हैं वो यात्रा आने वाले समय में कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भीड़ भी कम हो सकती है।
4: गुरु की कृपा है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और इसी के साथ श्री हेमकुंड साहब में कभी कभी बर्फबारी भी हो रही है। सभी गुरुद्वारों में प्रबंध सब मुकम्मल है और यात्री इस साल बड़ा ही खुश होकर जा रहा है, जो मुझे लग रहा है कि इस साल पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। मौसम ठीक है, यात्री को सुगम और अच्छे तरीके से यात्रा पुलिस द्वारा भी और गुरुद्वारा द्वारा भी सभी सहूलतों के साथ करवाई जा रही है। इन केस कभी बर्फबारी होती है तो पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है, SDRF अच्छा काम कर रही है, उसके अलावा गुरुद्वारा साहब का स्टाफ और मेडिकल के डॉक्टर, लंगर के सेवादार सभी अपना ड्यूटी जो है तनदेही से निभा रहे हैं। आशा करते हैं कि जून में इससे भी अधिक रूप से संगत चलेगी और मेरी सारी संगतों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि यात्रा बहुत बढ़िया है। जो भी यात्री श्री हेमकुंड साहब में आना चाह रहा है वो सबसे पहले तो अपनी जो भी कोई मेडिसिन ले रहा है रेगुलर, वो अपनी मेडिसिन कम से कम भी 7 दिन की साथ में रखें।
1: और बिहार के गया जिले के पटवा टोली के छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। इस बार यहां से 10 बच्चों ने परीक्षा पास की है और बच्चों की इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान है पटवा टोली में मौजूद वृक्ष संस्थान का। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है बुनकरों की बस्ती बनी आईआईटीएंस का हब। जी हाँ, कभी बिहार के मैनचेस्टर के रूप में विख्यात पटवा टोली आज आईआईटीएंस के हब के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ के कोचिंग सेंटर से हर साल बड़ी संख्या में छात्र आईआईटी संस्थानों में दाखिला लेकर इंजीनियर बन रहे हैं।

0: गया जिले के मानपुर प्रखंड का पटवा टोली गांव एक बार फिर से तरक्की की नई परिभाषा गढ़ रहा है। कभी बुनकरों के गांव के प्रसिद्ध पटवा टोली इंजीनियर्स के गांव के रूप में विख्यात हो रहा है। यहां के छात्र हर साल देश की प्रतिष्ठित IIT परीक्षा में सफल होकर गांव का नाम रोशन करते हैं। इस साल भी 10 बच्चों ने JEE एडवांस्ड की परीक्षा में सफलता हासिल की है। पटवा टोली का वृक्ष संस्थान यहाँ के छात्रों को दिशा देने में जुटा हुआ है। दरअसल पटवा टोली में बुनकर समाज के द्वारा वृक्ष कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, जहाँ पर पटवा समाज के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आज इस कोचिंग सेंटर की मदद से हर साल कई बच्चे IIT की परीक्षा पास करते हैं। इस साल JEE एडवांस्ड की परीक्षा में 86% अंकों के साथ सफल होने वाली छात्रा विद्या अपनी सफलता का श्रेय इसी कोचिंग सेंटर को देती हैं। विद्या का कहना है कि इंजीनियर बन जाने के बाद भी वो इस कोचिंग को अपना समय और पैसा जरूर देंगी, जिससे यहाँ बच्चों को शिक्षा देने का बदस्तूर जारी रहे।
1: मेहनत तो काफी, 3 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत लगी है। तो काफी मेहनत, रोज सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे, 6 से 7 बजे तक लगातार बैठ के पढ़ाई करना, बस बीच में 1 घंटे का ब्रेक रहता था और उसके अलावा तो पढ़ाई करती थी। मैं वृक्ष के लिए, जैसे वृक्ष ने मेरे लिए इतना कुछ करा, मैं इस यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। ये वृक्ष का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो वैसे ही मैं भी चाहूँगी कि आगे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ, पढ़ाई में उनकी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं उनका जरूर हेल्प करना चाहूँगी।
0: पटवा टोली में पावरलूम की खटखट का शोर वृक्ष के छात्रों के हौसले के जोर में ढक जाता है। इस संस्था से इस बार 31 छात्र IIT की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स परीक्षा में सफल हुए हैं। सफल होने वाले छात्रों में से पावरलूम में धागा जोड़ने वाले व्यक्ति का बेटा भी शामिल है। सफलता के इस मुकाम में पहुंचने के लिए उसे हर रोज 8 से 10 घंटे कड़ी मेहनत करनी पड़ी है।
2: शुरू में जब आप मेहनत करते रहते तो उस टाइम पे तो लगता है कि होगा या नहीं होगा, पर आज जब ये रिजल्ट आया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसका। IIT JEE में रैंक लाने के लिए लगभग रोज 7 से 8 घंटे तक की पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: छात्रों के जीवन को संवारने में वृक्ष संस्थान का बड़ा रोल रहा है। इस कोचिंग सेंटर में वही लोग आते हैं जिनके पास कोचिंग की भारी भरकम फीस जमा करने की क्षमता नहीं होती है। इस कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स से किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता, साथ में वो जिस तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं उनको उसी तरह से पढ़ने की छूट दी जाती है। यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं।
3: यहाँ पे मेनली जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो ये निःशुल्क सेवा है हम लोगों का कि बच्चे को निःशुल्क देते हैं, और बाकी 8 बजे बच्चे आते हैं यहाँ पे, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है और फिर लगभग 7-8 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। और बाकी हॉस्टल का ही फैसिलिटी है, दिन रात जिसको जिस तरह से पढ़ना है, जितना मेहनत करना है, हमारे सर लोग हैं, कुलदीप सर, सुनील सर, जितने भी लोग हैं सब एकजुट मिल करके प्रिपरेशन कराते हैं बच्चे।
0: 2013 से ये वृक्ष संस्थान चली आ रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संस्था को चलाने में मदद करते हैं। जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकल गए हैं और वो IIT के अलग अलग कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपनी कमाई के कुछ पैसे सहयोग राशि के रूप में संस्था को देते हैं और उसी पैसे से ये वृक्ष संस्था चलती है। और यही वजह है कि पटवा टोली गांव आज IITians के गांव के रूप में पूरे देश में विख्यात है। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे।
4: महज 15 साल की उम्र में IPL में शानदार बल्लेबाजी से विरोधियों को चौंकाने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी युवा क्रिकेटर्स की प्रेरणा बने हुए हैं। ऐसे में वैभव की असाधारण मेहनत, प्रतिभा और कौशल पर IIM इंदौर ने रिसर्च करने का फैसला किया। ऐसे में आज की हमारी अगली, यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है, वो इसी से जुड़ी है, वैभव सूर्यवंशी की सक्सेस स्टोरी पर IIM में रिसर्च। IIM इंदौर अपनी रिसर्च में वैभव से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर रिसर्च करेगा और पता लगाएगा कि कैसे वो सिक्सर किंग बने हैं।

0: कोई जादूगर कह रहा है, कोई मास्टर तो कोई क्रिकेट का अजूबा। वैभव सूर्यवंशी के नाम के इतने विश्लेषण हैं कि गिनना मुश्किल है। क्रिकेट के पंडित जब तक वैभव के खेलने की स्टाइल की स्टाइल शीट तैयार करते हैं, वैभव कुछ नया रच देते हैं। आईपीएल की आंधी से हाल ही में वैभव के नाम का जो तूफान गुजरा है, उस तूफान की वजह को अब पढ़ा जा रहा है। समझने की कोशिश हो रही है कि वैभव आखिर किस मिट्टी के बने हैं, क्यों उनमें बड़े से बड़े गेंदबाजों का खौफ नहीं है, कैसे उनकी आंखें अपनी ओर आती गेंदें बखूबी पढ़ लेती हैं, और कैसे मात्र 15 साल में वैभव का वैभव सातवें आसमान तक जा पहुंचा है। वैभव के खेल, उनकी तकनीक, उनका स्टाइल अब केवल क्रिकेट की किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब मैनेजमेंट की पढ़ाई का हिस्सा बनने जा रहा है। ये पहल IIM इंदौर ने की है, जहां वैभव को समझा जाएगा और उनकी खूबियों को मैनेजमेंट के मंत्र की तरह पढ़ा जाएगा।
1: वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि भी ऐसा ही एक उदाहरण है। ये केवल क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि मानव क्षमता, प्रतिभा विकास, अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और एक दीर्घकालिक उत्कृष्टता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है।
0: दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर वैभव सूर्यवंशी को अपनी स्टडी में शामिल करने जा रहा है, जिसके तहत वैभव मॉडल पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। वैभव की हैरतअंगेज बैटिंग की दुनिया कायल है, ऐसे में IIM इंदौर अब उनकी सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड करने पर काम शुरू कर रहा है। जाहिर है वैभव की ये क्रिकेट जर्नी अद्भुत है, जिसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, परिवार का समर्पण और मेंटोर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वैभव के कुछ पुराने वीडियोस और तस्वीरें दर्शा रहे हैं कि उनको कामयाबी एकाएक नहीं मिली, इसके पीछे एक बच्चे का अटूट जुनून भी छिपा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच रेल संपर्क एक बार फिर से बहाल हो गया है। ऐतिहासिक कांगड़ा वैली रेलवे रूट पर आज से नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। 4 साल बाद ट्रेन से जुड़ा हिमाचल पंजाब। ब्रिटिश काल में बनी इस नैरो गेज रेल लाइन पर ट्रेन सेवा बाढ़ की वजह से अगस्त 2022 से बंद थी। अब रेलवे से सभी सुरक्षा मंजूरियां मिलने के बाद इस खूबसूरत रेल मार्ग को फिर से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है।

0: पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरने वाली कांगड़ा वैली रेलवे पर एक बार फिर ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है। करीब 1385 दिनों के बाद पठानकोट से बैजनाथ पपरोला और जोगिंदर नगर नैरो गेज सेक्शन पर नियमित यात्री रेल सेवा बहाल कर दी गई है।
1: अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई ट्रेन नैरो गेज ट्रेन थी और जिसमें कोई भी टनल नहीं और पहाड़ों के दुर्गम इलाके में से इसको बनाते हुए यहाँ पहुँचा दिया गया था। अब लेकिन 2022 में इसी ट्रेन के मेजर पुल जो चक्की बैंक में था वो बारिश और सैलाब के कारण टूट गया और आज 1385 दिन के बाद इस पुल को बना दिया गया।
0: कांगड़ा रेलवे स्टेशन से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर और सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
2: आज बड़ा गौरव का दिन है कि जो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक बैजनाथ होके जो नैरो गेज जो ट्रेन चलती थी वो चक्की ब्रिज के पुनर्विकास के बाद में एक बार फिर से रिस्टोर हुई हैं और आज जो है माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी ने और साथ में जो है माननीय सांसद जो हैं राजीव भारद्वाज जी ने साथ में लोकल MLA के साथ में यहाँ पे झंडी दिखा के जो है पहली ट्रेन का वेलकम और उसका जो है बैजनाथ जाने का जो फ्लैगिंग ऑफ है वो किया गया है और यहाँ पे लोगों में जो है बहुत ही हर्ष और उत्साह है क्योंकि लगभग 4 साल के बाद में जो कनेक्टिविटी है वो फिर से बनी है अप टू पठानकोट।
0: रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक पठानकोट से 2 ट्रेनें सुबह 5 बजे और 7 बजे रवाना होंगी जबकि वापसी में बैजनाथ पपरोला से दोपहर 2:15 और 3:40 पर ट्रेनें चलेंगी। ये रेलवे सेवा डलहौजी रोड, नूरपुर रोड, ज्वालामुखी रोड, कांगड़ा, पालमपुर और पंचरुखी जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ती है। इतना ही नहीं, 164 किलोमीटर लंबी कांगड़ा वैली रेलवे देश की सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में गिनी जाती है। ये रेल लाइन घाटियों, चाय बागानों और ऐतिहासिक पुलों से होकर गुजरती है।
3: पुल टूटने की वजह से ये ट्रेन बंद हो चुकी थी, बाईपास से जाना पड़ता था, किराया महंगा लगता था और अब ये ट्रेन दोबारा चालू हो गई तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ, यात्रियों को कुल सुविधा मिलेगी और किराया भी सस्ता रहेगा।
4: किराए में तो काफ़ी फर्क है जी, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कम है, बस का जो किराया नहीं अफोर्ड कर पाते वो इसके लिए सबसे बेटर है।
5: ज्वाला जी जा रही हूँ और इन्होंने बताया कि 2 जून को ना चलेगी ट्रेन, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहली बार जा रही हूँ, मेरे को बहुत एक्साइटेड भी हो रहा है कि हाँ कि पहली बार जा रही हूँ और इस टॉय ट्रेन का मैं मजा लेने जा रही हूँ और देखते हैं सफर में कितनी कितनी वादियाँ देखने को मिलती हैं, कितना जॉयफुल होता है।
0: खास बात यह है कि पूरे मार्ग पर एक भी सुरंग नहीं है, यही वजह है कि रेलवे लाइन यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल है। दरअसल रेल सेवाएं अगस्त 2022 में चक्की नदी पर बने ब्रिटिश कालीन रेलवे पुल के बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के बाद बंद कर दी गई थी। इसके बाद नए पुल के निर्माण और सुरक्षा संबंधी कार्यों को पूरा किया गया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की मंजूरी मिलने के बाद अब ट्रेनों का संचालन फिर शुरू हो गया है।
6: मोदी सरकार ने 27 गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को इस साल के बजट में दिया और आज के समय 17,911 करोड़ रूपए की रेल परियोजनाएं चल रही है। बद्दी से लेकर चंडीगढ़ का हो, इस लिंक को भी चलाया जा रहा है और अगर आप ट्रेनें देखेंगे तो गुरुमुखी ट्रेन को हम 6 तारीख को चलाने वाले हैं अम्बिंदौरा से। इसके अलावा हमारे जो बाकी ट्रेन हैं कलकत्ता के लिए चल रही हैं, महाराष्ट्र के लिए चल रही हैं, मध्य प्रदेश के लिए चल रही हैं, गुजरात के लिए चल रही हैं, राजस्थान के लिए चल रही, दिल्ली के लिए चल रही हैं।
0: रेल सेवा की बहाली से कांगड़ा घाटी, धर्मशाला और पालमपुर में पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों, होम स्टे संचालकों, चाय बागान से जुड़े लोगों और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कांगड़ा से अशोक रैना और पठानकोट से पवन सिंह, गुड न्यूज टुडे।
7: कोटा में इंसानियत और उम्मीद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। यहां 15 साल से परिवार से बिछड़ी मां मोहिनी अपने परिवार से मिली तो सबकी आंखें नम हो गई। मोहिनी जब अपने बेटे और बेटी से 15 साल के बाद मिली तो सबकी आंखों में आंसू थे। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 6वीं गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो है कोटा में 15 साल बाद बेटे से मिली मां। कोटा में 15 साल के बाद एक मां का परिवार के साथ मिलन हुआ। जब 15 साल के बाद अपनी मां मोहिनी को बेटे गोवर्धन ने देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और मां के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। वहीं बेटी संगीता भी मां के गले लगकर बिलख उठी। ये मार्मिक मिलन संभव हुआ अपना घर आश्रम की लगातार देखभाल और प्रयासों से। दरअसल मोहिनी करीब 15 साल पहले परिवार से बिछड़ गई थी। करीब 10 साल पहले वो झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के बामन गांव में लावारिस हालत में घूमती मिली थी। उस समय मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वो अपने बारे में कुछ भी बता पाने में असमर्थ थी। बाद में उसे कोटा स्थित घर आश्रम में रहने के लिए भिजवाया गया। आश्रम में नियमित इलाज, देखभाल और सेवा के बाद मोहिनी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ। समय बीतने के साथ उसने अपने परिवार और गांव के बारे में बताया। इसी दौरान पता चला कि वो प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली है। इसके बाद अरनोद थाना पुलिस की मदद से उसके परिवार तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद मोहिनी का परिवार वालों से मिलन हो पाया।
8: आंखों में आंसू रहते थे और चुपचाप अकेली बैठी रहती थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, इनको मेडिसिन वगैरह दी, तब तक ये इसी तरह रहती रही। अभी करीबन एक डेढ़ महीना पहले ये मेरे पास आई और इन्होंने बोला कि मुझे घर जाना है। मैंने मुझसे कई बार कोशिश की पूछने की कहाँ के हो, लेकिन सबसे बड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही थी, बता ही नहीं पाती थी कुछ भी। फिर मैंने पूछती रही। फिर इसने अभी 8-10 दिन पहले इसने बताया मेरे पति का नाम बापूड़ा है और मैं वहाँ गांव की रहने वाली हूँ। मैंने वहाँ पुलिस प्रशासन की मदद ली। मैंने उनको गुजारिश की आपकी यहाँ की एक महिला हमारे पास है। उन लोगों ने फोटो सर्कुलेट किया। 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया, इस महिला का पता चल गया है, इसके परिवार वाले थाने में आए, आप बात करेंगे। वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, पूरा परिवार भावुक हो गया सब। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक पिछड़े परिवार को मिलाया।
9: वो भी का पता चला, मैंने से प्रभु जी ने बताया कि मैं वहाँ के रहने वाले थे। इन्होंने पता किया हमारे सेवा साथी ने आके कहाँ के रहने वाले आने की, तो पता चला पता को। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने परिवार से मिले। परिजन भी काफी भावुक हुए हैं, अच्छा लगता है यहाँ पे सेवा करना वगैरह अच्छा लगता है।
7: फलों के राजा आम का इंतजार हर साल लोगों को बेसब्री से रहता है और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात में बिहार के जरदालू आम का जिक्र कर दें तो इसकी चर्चा तय है। अब बिहार सरकार इस खास आम की मिठास राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने जा रही है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है। बिहार के जरदालू आम का स्वाद चखेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बिहार के भागलपुर का मशहूर जरदालू आम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान उसने बना ली है। बिहार सरकार ने इस आम को दिल्ली तक पहुंचाने का फैसला लिया। वैसे आम की बहार बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी आई हुई है। अब उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का मशहूर दशहरी आम बाजारों में पहुंचने लगा है।
0: आम वो फल जिसे फलों का राजा कहा जाता है। गर्मियों का मौसम आते ही इसकी मिठास हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। बच्चे हो या बुजुर्ग, शायद ही कोई ऐसा हो जो रसीले आम का स्वाद चखना ना चाहता हो। और इस आम की दीवानगी सिर्फ देश तक सीमित नहीं, विदेशों में भी इसकी जबरदस्त मांग है। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात में बिहार के मशहूर जरदालू आम का जिक्र किया तो बाजार में इसकी डिमांड बढ़ गई।
10: बिहार का जरदालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: पीएम ने आम की तारीफ की तो अब बिहार सरकार इस खास आम की मिठास को देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर करीब 8 टन जरदालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को भेजे जाएंगे।
11: बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का गिफ्ट है जो दिल्ली में बिहार भवन जाके वहाँ पे सारे डेलीगेट्स को जाता है। हम लोग उसको एक्सपोर्ट नाम से प्रोसेस की जरदालू आम है, धो के उसको अच्छे से पका के केमिकल फ्री उसको हम लोग पैक करके दिल्ली के लिए रवाना करते हैं।
0: दरअसल जरदालू आम मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर में पैदा होने वाली आम की एक बेहद खास और प्रीमियम किस्म है। अपनी अनूठी और मनमोहक सुगंध, लाजवाब मिठास और रेशे सहित गूदे के लिए पहचाने जाने वाला ये आम अपनी खासियतों के कारण विश्व प्रसिद्ध है और अब यह दिल्ली तोहफे में भेजा जा रहा है तो खुद उद्योग मंत्री गुणवत्ता परीक्षण का काम तेजी से कर रही हैं।
12: माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपने ओर से अपने जीआई टैग जो जरदालू आम है उनको प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और स्टेट के अनेकों ऐसे गेस्ट्स को गिफ्ट करने का काम भी इस फैसिलिटी के माध्यम से देखा जा रहा है। सिर्फ जरदालु आम ही नहीं, अब तो मखाना बोर्ड भी बन गया है। मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में भी बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पे पहुंचे, इसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं।
0: बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आम के कारोबार में रफ्तार आई है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का दशहरी आम अब बाजारों में पहुंचने लगा है और उसके साथ ही आम के कारोबार का नया सीजन शुरू हो गया है।
13: ये आम की डिमांड के बारे में तो ये है कि दशहरी एक नंबर में मानी जाती, मलिहाबाद की मशहूर है, लेकिन चौसा भी बहुत जाता है, लखनऊआ भी जाता है। और चौसे के बारे में ये है कि चौसा तो आमों का राजा कहा जाता है, जबकि आम फलों का राजा है, लेकिन चौसा जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और विदेशों में भी चौसा को पसंद करते हैं।
0: मलिहाबादी दशहरी आम अपनी खास खुशबू, मिठास और रसीले स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसकी पहली खेप अब मंडियों और बाजारों में दिखाई देने लगी है। आम प्रेमी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे और अब दुकानों पर इसकी आमद से रौनक लौट आई है।
14: मलिहाबाद की क्वालिटी सबसे सुपर होती है, यहाँ की क्वालिटी दशहरी जो है यहाँ की नामी ग्रामी होती है और जी यहाँ की दशहरी बहुत मशहूर है। नहीं, अपन तो यही दशहरी भरते हैं बस, और कोई वैरायटी नहीं, सिर्फ दशहरी। सबसे ज्यादा मांग, हर जगह मांग है दशहरी।
0: मलिहाबाद दशहरी आम के लिए जाना जाता है। यहाँ के बागों में तैयार होने वाला ये आम सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखता है। हर साल बड़ी मात्रा में इसका निर्यात खाड़ी देशों और यूरोप तक किया जाता है। बाग के संचालकों को उम्मीद है इस बार मौसम साथ रहा तो उत्पादन भी बेहतर होगा और उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं बाजार में दशहरे की एंट्री के साथ आम के शौकीनों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आखिर फलों के राजा का मौसम जो शुरू हो चुका है। मनेर से मनोज कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे।
7: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: कम किया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से राहु और केतु की बाधा को दूर कर सकते हैं? क्या है चंदन का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: एयरफोर्स के साथ DRDO ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर इसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती तो जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मानकर शेयर करते थे, और यही से शुरू होती है अफवाह। क्या थी ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन खचाखच भरी नजर आ रही है। यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते भी दिख रहे हैं और कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
11: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों के लिए सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेन खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर शुरू होने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी अब डर के मारे इस तरह से भाग रहे हैं। ऐसे ही दावों के साथ एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल इन पोस्ट में कहा जा रहा है कि ये नजारा उस वक्त का है जब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन बांग्लादेश के एक स्टेशन पर पहुंची थी। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशियों के अंदर डिटेंशन कैंप में जाने का खौफ देखिए। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन जब पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के पहले स्टेशन पर पहुंची, तब का नजारा देखिए। बांग्लादेश की मीडिया भी बड़ी तादाद में इसकी कवरेज करने पहुंची है। अब बांग्लादेश के एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे 1 करोड़ लोग भारत में अवैध रूप से रहते हैं, अगर इनमें से 20% लोग भी वापस आ गए तो हमारा पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
3: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के डिटेक्ट डिटेन और डिपोर्ट मॉडल और डिटेंशन सेंटर की शुरुआत के बाद से ही अवैध घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। इस कड़े एक्शन के डर से वर्षों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक स्वयं ही अपना सामान बांधकर घर खाली कर सीमा वापस लौट रहे हैं। अब इसी से जुड़ता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन खचाखच भरी हुई है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश वापस लौट रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, लिहाजा वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली सभी ट्रेन सेवाएं बंद हैं। अब तक दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवा दोबारा शुरू करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, तो यहां ये बात तो साफ हो गई कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली, ऐसे में हमें वायरल वीडियो पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, अब देखिए सच और झूठ क्या है।
11: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें ट्रेन का नाम और बाकी जानकारी दिखाई देती है। एक फ्रेम में ट्रेन की बोगी पर बांग्ला में चिलाहाटी एक्सप्रेस और उसके नीचे इंटरसिटी लिखा देखा जा सकता है। इंटरसिटी उन ट्रेनों को कहा जाता है जो एक ही देश के अलग अलग शहरों के बीच चलती हैं। सर्च करने पर हमें एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जून 2023 में ढाका से चिलाहाटी के बीच चलने वाली चिलाहाटी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। इससे साफ हो जाता है कि इस ट्रेन का भारत या पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ट्रेन अपडेट फॉर ढाका स्टेशन नाम के फेसबुक पेज पर 26 मई को अपलोड किया गया चिलाहाटी एक्सप्रेस का एक और वीडियो मिला। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक ये नजारा उस समय का है जब ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चिलाहाटी के लिए रवाना हो रही थी। एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर भी चिलाहाटी एक्सप्रेस के कई वीडियो मिले। 26 मई को अपलोड किए गए एक वीडियो में स्टेशन से रवाना होती खचाखच भरी इस ट्रेन के कई अलग अलग क्लिप्स देखे जा सकते हैं। इनमें से एक फ्रेम वायरल वीडियो से काफी मिलता जुलता है। वीडियो में रिपोर्टर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बकरीद के मौके पर ढाका के लोग भारी संख्या में अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से घर लौट रहे हैं।
12: राजधानी कमलापुर रेलवे स्टेशन घरमुख मानुषे ढल नेमे आसन्न पवित्र ईद उल अजहा के केंद्र करे अपन ठिकाना फिर अनेक मानुष।
11: कुल मिलाकर साफ है कि बकरीद के मौके पर ढाका से घर लौट रहे लोगों के वीडियो को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जोड़कर गलत दावे किए जा रहे हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
11: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गठन के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शिवेंदु सरकार ने सीमा चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। राज्य सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बीएसएफ चौकियों और बाड़ बंदी के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए ये पहल की है। इन सब के बीच बॉर्डर पर तार लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तार बंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि वोट सही जगह देने से देश सुरक्षित हो जाता है, अब भारत की जनता का हक कोई बाहर से आकर नहीं छीन पाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन वीडियो में एक जवान के हाथ में एक पेपर जैसा दिखने वाला कुछ सामान अचानक से आता है और फिर वो गायब हो जाता है। एक जगह पर तार लगा रहा शख्स तारों में घुस जाता है, फिर कुछ देर बाद वो बाहर निकल कर आ जाता है और उससे कुछ भी नहीं होता, जबकि वीडियो में नजर आ रहे तार नुकीले हैं। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
11: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो में दिख रही घटना से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। वीडियो के दौरान हमें कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें वायरल दावे पर शक हुआ। मसलन वीडियो में नजर आ रहे लोगों और जवानों के चेहरे और शरीर के अंग काफी अटपटे दिख रहे हैं। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाइव मॉडरेशन की एनालिसिस इस वीडियो को AI से बनाए जाने की अधिकतम संभावना करीब 80% की पुष्टि करती है। डीप फेक्स एनालिसिस यूनिट ने AI डिटेक्शन टूल इमेज विस्परर के माध्यम से वीडियो का परीक्षण किया, जिसने पुष्टि की कि वायरल वीडियो असली नहीं है। DAU ने AI डिटेक्शन टूल AI और NOT की मदद से भी वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने करीब 99% तक वीडियो के AI से बने होने की संभावना जताई। DAU ने अपने निष्कर्ष में बताया कि वायरल दृश्यों में शरीर के कई अंग लंबे होते हुए नजर आते हैं। वीडियो में कई जगह कांटेदार तार आपस में जुड़ते और अलग होते हुए भी नजर आते हैं। साफ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने वाले लोगों का वायरल वीडियो फेक है। ये वायरल वीडियो वास्तविक घटना का नहीं है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।

0: listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae.
5: Exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip-hop.
7: Exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: संभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
12: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
13: गुड न्यूज टुडे
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: चक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक बेहद प्यारा दृश्य देखने को मिलता है। एक परिवार नई साइकिल घर लेकर आया है। आमतौर पर लोग नई साइकिल खरीदने के बाद उसे चलाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन यहाँ परिवार ने पहले एक खास रस्म निभाई। वीडियो में एक छोटी बच्ची को गोद में उठाया गया और उसके पैर नई साइकिल के आगे वाले हिस्से पर लगवाए जा रहे हैं। देखने में एक छोटा सा दृश्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर जमकर प्यार बरसाया है। माँ के निधन के बाद कक्षा 9 की अस्मिता तमांग अपने 1.5 साल छोटे भाई को रोज स्कूल लेकर जाती है और उसकी देखभाल भी करती है। उसकी ये कहानी संघर्ष, जिम्मेदारी और हिम्मत की ऐसी मिसाल है जिसने लोगों को भावुक कर दिया है। लोग उसके इस वायरल वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्मिता तमांग अपनी कक्षा में सिर झुकाकर बैठी हुई है। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी है जो उसका छोटा भाई है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि छात्रा बेहद थकी हुई है और शायद उसे क्लास में बैठे बैठे ही झपकी आ गई हो। क्लास में मौजूद दूसरे छात्र और एक टीचर भी उसकी ओर देखते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य इतना भावुक है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी परिस्थितियों के बारे में जानने को मजबूर हो जाते हैं। अस्मिता ने मुश्किल परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ के निधन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। वो हर रोज अपने छोटे भाई को साथ लेकर स्कूल जाती हैं ताकि उसकी देखभाल भी कर सकें और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें।

0: ये वीडियो किसी बड़े इवेंट का नहीं बल्कि एक साधारण से पिता पुत्र के रिश्ते की खूबसूरत झलक दिखाता है।
1: मेरे बाबू को स्पेशल।
0: छोटी सी ये क्लिप लोगों को यह एहसास दिला रही है कि असली खुशी और प्यार अक्सर रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है।
1: पापा की तरफ से ट्रीट मेरे बाबू को।
0: वीडियो की शुरुआत में बेटे की सोच दिखाई देती है जिसमें वो अपने कैलोरी और फिटनेस को लेकर चिंतित नजर आता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। पिता अपने बेटे के कमरे में प्यार से भरा खाना लेकर आते हैं। ये कोई महंगा या खास खाना नहीं बल्कि घर का बना साधारण लेकिन प्यार से तैयार किया गया भोजन होता है।
1: मेरे बाबू को स्पेशल।
0: पिता बड़े ही उत्साह के साथ बेटे को यह खाना देते हैं जिसमें नूडल्स, सब्जियां, चटनी, सॉस और एक ड्रिंक शामिल होती है। बेटे के चेहरे की खुशी साफ बता देती है कि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि पिता का प्यार है। वो अपने डाइट प्लान को भूलकर इस पल को जीता है और पिता के इस छोटे से सरप्राइज को दिल से स्वीकार करता है।
1: मेरे बाबू को स्पेशल।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करता दिख रहा है जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। दरअसल ये घटना बेंगलुरु के ब्यात रायनपुरा इलाके की बताई जा रही है जहां तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई थीं। इसी दौरान एक दिव्यांग युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन पानी और तेज ट्रैफिक के कारण वो बीच में ही फंस गया। हालात ऐसे थे कि एक छोटा सा कदम भी उसके लिए खतरा बन सकता था। आसपास गुजर रही गाड़ियां और बढ़ता पानी उसकी परेशानी को और बढ़ा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल अनिल कुमार की नजर जब उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ट्रैफिक को धीमा कराया ताकि कोई हादसा न हो। इसके बाद उन्होंने खुद उस युवक को अपने कंधे पर उठाया और सावधानी से पानी से भरी सड़क पार करवाई। भारी बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने पूरे धैर्य के साथ युवक को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया। इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद भावुक और दिल को सुकून देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये वीडियो एक ऐसी बुजुर्ग दादी का है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 87 साल सिर्फ दूसरों की देखभाल में गुजार दिए लेकिन कभी समुद्र नहीं देखा था। जब उनके परिवार ने मिलकर दादी की इस आखिरी इच्छा को पूरा किया तो वहाँ जो नजारा दिखा उसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में जो नजारा दिखता है वो किसी फिल्म के सीन जैसा खूबसूरत है। समुद्र किनारे ठंडी हवाओं के बीच बुजुर्ग दादी बैठी हुई हैं और उनके साथ उनके दादाजी भी नजर आ रहे हैं। दोनों बुजुर्ग जीवन साथी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर समुद्र की उठती गिरती लहरों को निहार रहे हैं। 87 साल की उम्र में पहली बार विशाल समुद्र को अपने सामने देखना दादी के लिए एक जादुई और बेहद भावुक पल था। परिवार के सभी सदस्य उन्हें घेर कर खड़े हैं और इस पल को एंजॉय कर रहे हैं।
2: What are the steps to start PowerPoint?
3: What are the steps to
2: start PowerPoint?
3: Start PowerPoint.
2: बच्चे का आंसर क्लिक ऑन PowerPoint. PowerPoint will open.
0: हर स्कूल में और हर क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा मिल जाता है जो बातों का या फिर सवालों का अलग ही जवाब देता है और उसकी बातें सुनने के बाद कई बार टीचर को भी हंसी आ जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहा है और वो जैसे ही उसका जवाब पढ़ता है उसकी हंसी नहीं रुकती है। दरअसल सवाल यह था कि पावर पॉइंट को शुरू करने के स्टेप्स क्या हैं। अब ऐसे सवाल का जवाब दूसरे बच्चों ने स्टेप्स के मुताबिक बताए मगर एक बच्चे ने अनोखा जवाब दिया। उसने लिखा आप पावर पॉइंट पर क्लिक करो पावर पॉइंट खुल जाएगा।
2: What are the steps to start PowerPoint?
3: What are the steps to
2: start PowerPoint?
3: Start PowerPoint.
2: बच्चे का आंसर क्लिक ऑन PowerPoint. PowerPoint will open.
0: अब यही जवाब पढ़ने के बाद वो शख्स जोर से हंसने लगा।
2: PowerPoint will open.
0: शादियों का सीजन हो और डीजे फ्लोर खाली रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता लेकिन कभी कभी इसी डांस फ्लोर पर ऐसे ऐसे टैलेंट निकल आते हैं कि बड़े बड़े डांसर्स भी पीछे रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने शादी के फंक्शन में ऐसा डांस किया कि लोग उसे देसी माइकल जैक्सन कहने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स काले कपड़ों में पूरी तैयारी के साथ डांस फ्लोर पर उतरता है। खास बात यह है कि उसने अपने सिर पर बर्तन जैसा कुछ रखा हुआ है जो उसके स्टाइल को और भी मजेदार बना देता है। जैसे ही म्यूजिक बजता है उसका बॉडी कंट्रोल, स्टाइल और मूव्स देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बच्चे का टैलेंट लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चा बिना किसी महंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के सिर्फ एक प्लास्टिक की बाल्टी और लकड़ी के डंडे की मदद से शानदार धुन बजाता नजर आ रहा है। उसकी लय, ताल और कॉन्फिडेंस को देखकर लोग हैरान रह गए। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को फूट फूट कर रोते देखा गया। बताया गया कि दिल टूटने की वजह से वो रो रहा है। शख्स गाय के सामने बैठकर रो रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको इमोशनल कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि जानवरों में इमोशंस की समझ नहीं होती है, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिला। रोते रोते जब शख्स की हालत खराब हो गई, तब गौ माता ने अपनी ममता दिखाई। गाय ने अपना सिर उठाकर उस शख्स के कंधे पर रख दिया, मानो उसे चुप करा रही हो और सांत्वना दे रही हो। ये पल लोगों का दिल छू गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: क्या चंदन के प्रयोग से क्रोध को कम किया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से राहु और केतु की बाधा को दूर कर सकते हैं? क्या है चंदन का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
4: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। 21 दिनों के एकांतवास साधना के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किस दिव्य महात्मा के हुए दर्शन आपको आगे बताएंगे। 5वें बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब और दिल जीतने वाले बिहार के जर्दालू आम की कहानी आज आगे देखिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: टीआईटी भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू। किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारी पंचायत ने रचा इतिहास, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान। केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान। मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदल डाला। कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा। आरसीबी को फिर आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली। पत्नी अनुष्का भी रही साथ। हर बड़े अवसर पर वृंदावन पहुंचते हैं स्टार क्रिकेटर। अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनकी तरफ से किया गया एक दावा काफी चर्चा के केंद्र में है। अपने इस दावे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि जब वो बद्रीनाथ में 21 दिनों की साधना कर रहे थे तो उन्हें सफेद कपड़े पहने करीब 19 फीट ऊंचे एक दिव्य महात्मा के दर्शन हुए। इस चौंकाने वाले और दिव्य अनुभव का जिक्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दौरान किया है, जिसके बाद उनका ये दावा चर्चा में है।

0: भोज फकीरानी, वाह वाह रे भोज फकीरानी।
1: जाने माने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ भी बोले और कुछ भी करें, उनकी हर एक चीज सुर्खियां बन जाती है। हाल ही में उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में 21 दिनों की कठिन साधना की और फिर 5 दिनों की कथा की, तो उसकी भी खूब चर्चा हुई। मगर अब बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा दावा किया है जिसने सुनने वालों को चौंका दिया है। अपने इस दावे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि 21 दिनों की साधना के दौरान एक रात जब वो आराम करने जा रहे थे, तभी गुफा की खिड़की पर जोर से आवाज हुई, मानो किसी ने लात मारी हो। उन्होंने बाहर जाकर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी ऋषि गंगा की ऊपर पहाड़ी पर सफेद कपड़े पहने करीब 19 फीट ऊंची एक दिव्य महात्मा की आकृति दिखाई दी।
2: किसी ने 2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी हो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, एक आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी, तो हम सावधान होकर के, हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया, लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था।
1: धीरेन्द्र शास्त्री के इस दावे के बाद सवाल ये उठता है कि 19 फीट ऊंचे वो महात्मा कौन थे और किसने गुफा की खिड़की पर लात मारी थी। ये सवाल धीरेन्द्र शास्त्री के मन में भी रात भर कौंधता रहा। अगली सुबह उन्होंने जब इस हैरान करने वाली घटना के बारे में अपने गुरु से चर्चा की, तो गुरु ने बताया कि इस क्षेत्र में यक्ष घूमते रहते हैं जो अक्सर साधकों की तपस्या में खलल डालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उन्होंने दोबारा गुरु से पूछा तो फिर 19 फीट लंबे साधु वेशधारी कौन थे। इस पर गुरु ने उन्हें बताया कि बद्रीनाथ की पावन भूमि पर महाअवतार बाबा जैसे महान सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में विचरण करते हैं, जो हमेशा सच्चे संतों और साधकों की रक्षा करते हैं।
2: अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी। बोले यहाँ पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, अब वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे, ये कौन थे। बोले बेटा, ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ।
1: जिन महाअवतार बाबा का जिक्र धीरेन्द्र शास्त्री ने किया, उनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और वो सदियों से एक ही भौतिक शरीर में हिमालय में निवास कर रहे हैं। इस बारे में पहले भी कई मंचों पर कुछ साधु संत अपना अनुभव साझा कर चुके हैं और उनके बारे में परमहंस योगानंद ने अपनी प्रसिद्ध किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में भी विस्तार से बताया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। अब इस फहरिस्त में धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी जुड़ गया है।
2: एक बात बोले, साधु हमेशा दयालु होता है, दयालु होता है। साधु के अंदर हमेशा दया रहती, चाहे वो सन्यासी बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली वाले बाबा हो, अथवा वे कोई भी सत्य ऋषि हो, कोई भी हो, उनके अंदर सदा करुणा। साधु का नाम ही है जो करुणा से भरा है। साधु को अपना कोई निजी दुख नहीं होता, साधु को तो दूसरों का दुख ही अपना दुख लगता है। और वो साधु तो वही है, मेरे पागलो, तुम भी साधु हो सकते यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया है।
1: वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब देवभूमि से लौटे, तो उन्होंने दिल्ली से झांसी तक ट्रेन में आम यात्रियों के साथ सफर किया और वहां से सड़क मार्ग से बागेश्वर धाम पहुंचे। कहा जा रहा है कि उन्होंने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के तहत उठाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आगे बढ़ते और अगली खबर है बड़ा मंगल से जुड़ी। ज्येष्ठ महीने के पांचवें बड़ा मंगल के मौके पर सुबह से ही दर्शन और पूजन के लिए हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक आस्था का सैलाब उमड़ा। खास बात यह है कि इस साल बड़ा मंगल के साथ अधिक मास का संयोग बनने से इसका महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। भक्तिभाव से भरे हुए ये श्रद्धालु ज्येष्ठ महीने के पांचवें बड़ा मंगल के मौके पर हनुमान मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे हैं। कोई परिवार संग पहुंचा और कोई दोस्त और रिश्तेदार के साथ आया। इन आस्थावान श्रद्धालुओं में कोई अपने साथ फूलमाला और लड्डू लेकर आया और कोई सिंदूर और चोला लेकर आया चढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि बड़ा मंगल पर इन चीजों को अर्पित करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए कतार में खड़े ये श्रद्धालु भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से चढ़ाने के लिए प्रसाद लेकर आए।
4: बड़े मंगल का आज पांचवा मंगलवार है और ऐसे में दिल्ली के सीपी स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान भक्तों की जो आस्था है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है आपको वो यहाँ पर नजर आने वाली है, लेकिन गर्मी होने के बावजूद लोग आपको जो है यहाँ पर नजर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने आप को लोग जो है वो ढके हुए नजर आएंगे। किसी ने टोपी पहन रखी है, किसी ने छतरी ले रखी है, किसी ने चश्मा पहन रखा है, लेकिन आस्था सबसे ऊपर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी होने के बावजूद जो है लोग यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए। आप बच्चों को भी लेकर आए, हर कोई जो है अपने अपने पसंद से जो है प्रसाद लाया। आप क्या लेकर आए ये बताइए?
5: बूंदी लेकर आए हनुमान जी के लिए।
4: हनुमान जी के लिए बूंदी लेकर आए। अच्छा, हर मंगलवार आते हैं या फिर ज्येष्ठ महीने के मंगलवार?
5: नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। पहले
4: फर्स्ट टाइम आया हूँ।
6: मेरे को यहाँ पे आते हुए 15-20 साल से ज्यादा हो गए हैं और सब कुछ जो है वो इन्हीं की कृपा से है।
4: क्या लाए उनको भोग चढ़ाने के?
6: बूंदी का प्रसाद है, वही मैं हमेशा देता हूँ उनको।
7: कोई भी मनोकामना आप करिए और जितना जल्दी जल्दी हो भगवान तुरंत पूरी करते हैं।
3: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में आने वाले मंगलवार का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन श्रद्धा और विधि विधान से बजरंग बली की पूजा करने पर जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही मनोकामना लिए सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद इन श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई।
8: पांचवा मंगल है और आज के दिन जो है पूरी अयोध्या जो है श्रद्धालुओं से भरी नजर आई। इस वक्त हम खड़े हैं राम नगरी के हनुमानगढ़ी पर और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो ऊपर से लेके जो सीढ़ियों पे नजर आ रहे हैं सिर्फ आपको श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। काफी घंटों से यहाँ से सुबह 4 बजे से ही भोर से ही ऐसी लाइनें देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ पे कतारें हैं और जो कि आंकड़ा अगर हम आपको बता दें 20-25 हजार लोग अभी तक दर्शन कर चुके होंगे राम लला के हनुमानगढ़ी के। और लगातार जो पूरी अयोध्या है आज पूरी श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा होगा। पूरी जो की विकराल गर्मी है उसको देखते हुए भी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं है पंडाल के टेंट की व्यवस्था की गई है। जगह जगह नगर निगम द्वारा जो है पानी की भी व्यवस्था की। लोग जो है आज यहाँ पे बगल में ही आपको हम दिखाएंगे शुद्ध पेयजल का पूरा सिस्टम लगा रखा गया है।
9: प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमारे दिल में बसे प्रभु और मैं प्रति मंगलवार को अयोध्या धाम आता हूँ।
10: सारे लोग बहुत प्रसन्न है, सुखी हो सारा देश प्रदेश।
11: देखिए आज बड़ा मंगल है और बड़े मंगलवार को जो है भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर हो जाती है। हम लोग सुबह 3 बजे यहाँ पर दुकान खोल देते हैं और भीड़ सुबह से ही जो है जुटना शुरू हो जाती है।
3: श्रद्धालुओं में ऐसा ही उत्साह और उमंग प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर पर भी दिन भर देखने को मिला। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई दर्शन की आस लिए दौड़ा चला आया। किसी ने परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा, किसी ने रोजी रोजगार में तरक्की के लिए प्रार्थना की और किसी ने रोग और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा से शीश नवाया। इस खास मौके पर कई श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करते नजर आए।
12: ज्येष्ठ माह का पांचवा बड़ा मंगल है और पांचवें बड़े मंगल पर संगम के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। यहाँ बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं। सुबह से ही भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं और अपने परिवार के सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
13: रही बात पांचवा बड़ा मंगलवार है आज, और आज के दिन प्रभु जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत भाग्य से हुआ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था प्रभु जी का दर्शन करूं, और यहां श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ी है।
14: अपने आरोग्य ऐश्वर्य और पाप नाश के लिए और दुष्टों के महाविनाश के लिए भगवान बजरंगबली की आरती पूजा करने के लिए और आज विशेषकर पांचवा बड़ा मंगल के उपलक्ष्य में तो यहाँ की शोभा देखते ही बन रही है।
3: खास बात यह है कि इस साल बड़ा मंगल के साथ ही अधिक मास का संयोग बनने से इसका महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी आते ही लोगों को तरह तरह के किस्म के आम का इंतजार रहता है। इसमें बिहार के भागलपुर में होने वाला जरदालू आम भी है, जिसे मिठास की दुनिया का वीआईपी आम कहा जाता है। अनूठी महक और शहद जैसी मिठास ही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब बिहार सरकार खास गुणों वाले इस आम को राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सौगात के तौर पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। मक्खन की तरह मुलायम जरदालू आम को खाते समय उसका रेशा मुंह में नहीं फंसता, जिसकी वजह से उसका मजा दोगुना हो जाता है।

0: साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए।
1: मिठास की दुनिया का वीआईपी है जर्दालू आम, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है उसकी अनूठी महक और शहद जैसी मिठास। गर्मी आते ही लोगों का फोकस आम पर हो जाता है, जो न सिर्फ फलों का राजा है बल्कि भारतीयों के लिए इमोशन की तरह है। आम बचपन की यादों, परंपराओं और परिवारों को एक सूत्र में जोड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास भी है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसकी एक से बढ़कर एक किस्में पाई जाती हैं। हर प्रजाति का आम अपने स्वाद, रंग, आकार और सुगंध के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक आम है जर्दालू, जो बिहार के भागलपुर की पहचान है। हर साल जून के महीने के आगमन के साथ ही एक पुरानी परंपरा निभाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बिहार सरकार की तरफ से भागलपुर के कुछ खास बागों में जर्दालू आम को तोड़ा जाता है, जो देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की मेज तक सौगात के रूप में पहुंचता है। जर्दालू आम की शोहरत की वजह से ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और देश विदेश से आने वाले डेलीगेट्स को इसे खास उपहार के तौर पर भेजा जा रहा है। पैकेजिंग की पूरी प्रक्रिया को लेकर तसल्ली करने खुद उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह भी यूनिट पहुंची।
2: मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने GI टैग जर्दालू आम की चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपने ओर से अपने GI टैग जो जर्दालू आम है उनको प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और स्टेट के अनेकों ऐसे गेस्ट्स को गिफ्ट करने का काम भी इस फैसिलिटी के माध्यम से देखा जा रहा है।
1: हालांकि पेड़ों से तोड़ने के बाद जर्दालू आम को भी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आकार, वजन और रंग के आधार पर आमों की सॉर्टिंग यानी की छटाई होती है। कटे फटे, दाग धब्बे वाले या कीड़े लगे आमों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद आमों की धुलाई की जाती है ताकि उसकी सतह पर मौजूद धूल, गंदगी और दूधिया रस साफ हो सके। इस दौरान आमों को खास तापमान वाले गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबोया जाता है, जिससे फलों की सतह पर मौजूद फंगस और बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए।
2: किस तरह से इस 5 एकड़ की इरेडिएशन सेंटर में, विकिरण केंद्र में हम लोग पूरी तरीके से उसको कीटाणु का नाश करने का काम करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और उसके साथ साथ उसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, जो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाती है यानी कि शेल्फ लाइफ बढ़ाती है, उस पर काम कर रहे हैं।
1: GI टैग का दर्जा हासिल कर चुका जर्दालू आम बिहार के छोटे गाँव से निकलकर ग्लोबल मार्केट तक पहुँच चुका है, या कहें कि आमों की दुनिया में इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। और इसी वजह से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्दालू आम का जिक्र किया था।
3: ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, अब हमारा वजूद जो GI टैग जर्दालू आम एक्सपोर्ट फैसिलिटी में एक्सपोर्ट नॉर्म्स के हिसाब से दिल्ली जा रहा है। ये परचेसिंग बिहार सरकार, हम लोग इसके सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग उसको एक्सपोर्ट नॉर्म्स पे प्रोसेस करते हैं। ये बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का गिफ्ट है, जो दिल्ली में बिहार भवन जाके वहाँ पे सारे डेलीगेट्स को जाता है। हम लोग उसको एक्सपोर्ट नाम से प्रोसेस की जर्दालू आम धो के उसको अच्छे से पका के केमिकल फ्री उसको हम लोग पैक करके दिल्ली के लिए रवाना करते हैं।
1: जर्दालू आम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मक्खन की तरह मुलायम और पूरी तरह से रेशा फ्री यानी फाइबरलेस होता है। यानी जब जर्दालू आम को खाया जाता है तो मुँह में कोई रेशा नहीं फंसता, बस अनूठी महक के साथ शहद जैसी मिठास स्वाद मिलता है। पटना से मनोज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के जश्न के बीच विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक अलग ही अंदाज में नजर आए। मैदान पर जीत का जश्न मनाने के बाद ये स्टार कपल सीधे भक्ति के रंग में रंगा नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में विराट और अनुष्का वृंदावन में राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों संत प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचे। सादगी भरे अंदाज में आश्रम पहुंचे विराट और अनुष्का को देखकर वहां मौजूद लोग भी उत्साहित नजर आए। वायरल तस्वीरों में विराट और अनुष्का आश्रम में कुछ समय बिताने के बाद बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के लिए ये पल जहां खेल की बड़ी सफलता का जश्न था, वहीं उन्होंने इस खुशी के बीच आध्यात्मिक शांति का रास्ता भी चुना। फैंस सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरों को खूब शेयर कर रहे हैं। कई लोग इसे सफलता के बाद विनम्रता और आस्था का संदेश बता रहे हैं।
4: ये तस्वीर सिर्फ सफलता की नहीं, धर्म की ताकत भी है, जिसने खेल के मैदान पर कई रन बनाए। जिसकी एक झलक पाने को फैन बेताब रहते हैं, वो आज भी उस शक्ति के सामने सिर झुकाता है। इसी अध्यात्म की डोर में बंधे विराट कोहली और अनुष्का एक बार फिर वृंदावन में अपने गुरु प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन को पहुंचे। विराट अनुष्का साधारण कपड़ों में बिना किसी दिखावे के आश्रम गए। वहां दोनों ने प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में सिर नवाया। आश्रम में सत्संग और आध्यात्मिक चर्चा हुई। दोनों ने शांत वातावरण में कुछ पल बिताए। उनके इस आध्यात्मिक दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें विराट और अनुष्का की विनम्रता और भावुकता साफ नजर आ रही है। ये धर्म की ताकत है जो चैंपियन को साधक बनाती है। विराट कोहली ने मैदान पर हमेशा आक्रामक और जुझारू खेल दिखाया है, लेकिन उनके अंदर की शांति और संतुलन का राज इन आध्यात्मिक यात्राओं में छिपा है। ये पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे हों। साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक अनुष्का और विराट कई बार उनके दर्शन के लिए गए हैं। हाल ही में संत प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया। इससे पहले अप्रैल में अक्षय तृतीया के मौके पर दर्शन करने गए थे। फरवरी में भी अपने परिवार के साथ दर्शन को आए थे। दिसंबर 2025 में भी दर्शन करने गए थे। 2025 में ही मई महीने में दोनों ने प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया था, जबकि 2025 की शुरुआत भी प्रेमानंद जी के आशीर्वाद से ही की थी। बार बार दर्शन के लिए वृंदावन आना ये बताता है कि मैदान पर रनों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं। हर वो इंसान जो इस मार्ग पर चलता है, वो जान पाता है कि शांति और सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सलमान खान पर बेस्ड काला हिरण फिल्म का पोस्टर जारी होते ही नया विवाद शुरू हो गया है। सलमान की टीम ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कानूनी नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस में फिल्म की रिलीज रोकने और पोस्टर को सोशल मीडिया से हटाने की बात कही गई है। क्या है विवाद और क्यों ये सुर्खियों में छा गया, आइए जानते हैं।
5: रियल लाइफ जब रील पर उतरती है तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। बॉलीवुड के दबंग सलमान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की तनातनी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इसकी असल वजह 1998 का काला हिरण शिकार का मामला है, जिस पर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। अब इस हाई प्रोफाइल विवाद को बड़े पर्दे पर उतारने की पूरी तैयारी हो गई है। फिल्ममेकर्स ने फिल्म का नाम ही काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी रखा है। 29 मई को फिल्म के प्रोड्यूसर ने काला हिरण का पोस्टर जारी किया, लेकिन फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सलमान खान की लीगल टीम ने काला हिरण के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को फिल्म को लेकर एक कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के जरिए मेकर्स से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही इस पोस्टर को सोशल मीडिया से जल्द हटाने की बात नोटिस में शामिल है।
6: 1998 में काकानी गांव है जो जोधपुर का, उसमें हिरण शिकार की घटना हुई। सलमान खान, सैफ अली खान सब नामजद हुए, तब्बू से लेके और सोनाली बेंद्रे तक। उसमें सलमान खान को जेल जाना पड़ा। 3 बार जेल गए, 2 बार सजा हुई। 1 बार सजा हुई लोअर कोर्ट से, दोबारा हुई सेशन कोर्ट से। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि साहब मैं तो बरी हो गया हूं और आप मेरे विषय पे फिल्म नहीं बना सकते। यहाँ कितने कोर्टरूम ड्रामे बने हैं जिसमें हमने भट्टा पारसोल से लेके बाकी सब पे जीत की फिल्म के जरिए दिखाई है, या अजमल का साहब के 26/11 फिल्म बनी है, यहाँ पे भगत सिंह की फांसी फिल्म बनती है, जितने रियल इंसिडेंट है, अभी हमने धुरंधर में देखा कि नोटबंदी दिखाई गई है और अतीक अहमद का हमने पूरा काला चिट्ठा उसमें दिखाया है, तो तमाम चीजें जो है फिल्मों में दिखती हैं। तो सलमान खान कोई अछूत थोड़ी है कि हम उनकी जिस घटना में नामजदगी है उस घटना को पर्दे पे नहीं ला सकते हैं। तो ये कोर्टरूम ड्रामा भी है जो संघर्ष था बिश्नोईयों का, जो लड़े वो पूरे स्टारडम से, पूरे बॉलीवुड से, और वहां पे हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से वकील आते थे, उनके पास प्रिया स्कूटर वाले वकील थे, वो गरीब लोग थे, उनके घर में अभाव था और ये करोड़ों रुपए रिश्वत की पेशकश करते थे इनके लोग, उसके बावजूद भी ना कोई बिश्नोई बिका ना रुका ना झुका। तो जो उनकी लेगेसी है, जो उनकी विरासत है कि 363 लोगों ने, बिश्नोईयों ने खेजड़ली गांव में मां अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपनी गर्दन कटा ली लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया, जो उनका वन्य जीवों से और हिरणों से प्रेम है, उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको हमने पर्दे पे उतारने का काम किया है।
5: रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में कोर्टरूम ड्रामे से लेकर सलमान खान की गिरफ्तारी और बिश्नोई समाज की नाराजगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टकराव की पूरी कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा संभल, मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में शूट किया गया है। फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए अमित जानी ने ये भी बताया कि इसी महीने की 20 तारीख को फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब सलमान के कानूनी नोटिस का इस रिलीज पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
8: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tear your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंदन के बारे में। पूजा उपासना में चंदन कितना मूल्यवान है, चंदन लगाना कितना अच्छा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि चंदन की विशिष्टताएं क्या हैं, खूबियां क्या हैं, और ग्रहों के मामले में चंदन का प्रयोग कैसे करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं सैंडलवुड की, यानी चंदन की। चंदन को मूल्यवान क्यों समझा जाता है, इसका महत्व क्या है? देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। चंदन की सुगंध जितनी पवित्र है, उतनी ज्यादा पवित्र कोई सुगंध नहीं मानी जाती। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है, वैसे वैसे इसके तने में और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश बढ़ने लगता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मूर्ति कला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन दो प्रकार का होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन, और दोनों का खूब प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरीके से लाल और सफेद चंदन का प्रयोग पूजा उपासना में भी होता है। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, काम की रुकावट दूर होगी, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में अन्य सुगंधों का भी प्रयोग होता है, लेकिन जो बात चंदन की है वो बात किसी और सुगंध की नहीं है।
पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाकर चारों तरफ से उसमें चंदन लगाया जाता है। भगवान विष्णु और उनके अवतार विशेषकर भगवान कृष्ण के लिए सफेद चंदन का लेपन किया जाता है और इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। देवी की उपासना में, माता की उपासना में भी चंदन का प्रयोग होता है। हालांकि देवी की उपासना में लाल चंदन का ज्यादा प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में चंदन का प्रयोग करके ध्यान की परंपरा बताई गई है। अलग अलग चक्रों पर चंदन लगाकर ध्यान किया जाता है और ज्योतिष में अलग अलग ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध चंदन आपको मिले और आप नियमित रूप से अपने मस्तक पर और अपने शरीर पर लगाने लगें तो आपकी भावनाएं भी पवित्र हो जाएंगी। चंदन इतना शक्तिशाली माना जाता है। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, घर की समस्याएं आपकी हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, धन संबंधी काम बन जाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, चोट चपेट से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि चंदन के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं? देखिए, अगर आप नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं चंदन का लेप, चाहे लंबा तिलक लगाएं, इससे आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा। चंदन का नियमित तिलक लगाने से क्रोध कम होता है और तनाव की स्थिति में सुधार होता है। चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर
अगर गले में पहना जाए या भुजाओं में बांधा जाए तो राहु केतु की बाधा दूर हो जाती है। चंदन की सुगंध अगर आप नियमित रूप से लगाएं और लगाकर कहीं जाएं तो नजर नहीं लगेगी, नजर दोष से और डिप्रेशन की समस्या से आप बचेंगे। चंदन की माला से अगर आप मंत्र जप करें, खास तौर से श्री कृष्ण के मंत्र का जप अगर चंदन की माला से किया जाए तो आकर्षण में वृद्धि होती है। देखिए, जिनको बहुत तनाव होता है या जो बहुत चिंता करते हैं उन्हें रोज स्नान के बाद मस्तक पर और कंठ पर सफेद चंदन लगाना चाहिए। जिनको ये शिकायत है कि मुझे बार बार नजर लग जाती है, मैं बार बार शादी पार्टी में जाने के बाद बीमार पड़ जाता हूँ, ऐसे लोग चंदन की सुगंध लगा करके जाएं, अच्छा होगा। और जीवन में अगर बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, या तो चंदन की माला अपने गले में धारण करें, चंदन के दानों की बनी हुई माला, या चंदन की लकड़ी नीले धागे में डालकर अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें।

मकर राशि ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की चंदन के महत्व की और उसके विशेष प्रयोग की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, निरंतर नियमित रूप से करते जाएं, आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए,

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: फायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म आलिया भट्ट का सबसे खतरनाक अवतार बॉबी देओल जैसा विलन, और अब रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट। जी हाँ, जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस अल्फा को लेकर एक नहीं बल्कि कई खुलासे सामने आए हैं। फिल्म की रिलीज डेट बदल गई है। आलिया और बॉबी की कथित अनबन पर खुद बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ी है, और अब फिल्म की कहानी को लेकर भी ऐसी डिटेल सामने आई है जो स्पाई थ्रिलर को अब तक की सबसे डार्क फिल्म बना सकती है। देखिए रिपोर्ट।

जब मिशन खतरनाक हो तो खुद को हथियार बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तैयारी की है आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा के लिए। वो आलिया जिन्हें अब तक आपने रोमांस, ड्रामा और इमोशनल रोल्स में देखा, अब पहली बार बड़े पर्दे पर एक ऐसे अवतार में दिखेंगी जो खुखार भी होगा, घातक भी और बेहद रहस्यमय भी। लेकिन सबसे पहले बात फिल्म की रिलीज डेट की। अल्फा की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले मेकर्स इसे साल 2025 में रिलीज करना चाहते थे, इसके बाद फिल्म को अप्रैल 2026 और फिर 10 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन अब ताजा जानकारी बता रही है कि फिल्म 10 जुलाई नहीं बल्कि 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि यशराज फिल्म्स की तरफ से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की धमाल 4 के 17 जुलाई पर शिफ्ट होने के बाद मेकर्स को 3 जुलाई की विंडो ज्यादा बेहतर लगी। ऐसे में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को एक हफ्ता पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। लेकिन रिलीज डेट के साथ साथ जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कथित अनबन की खबरें, जो काफी समय से चर्चा में थी। चर्चा ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों सितारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब खुद बॉबी देओल ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बता दिया है। बॉबी के मुताबिक, मुझे भी किसी दोस्त ने

0: खबर का स्क्रीनशॉट भेजा था। मैं भी हैरान था, लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं। अब बात उस कहानी की जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्फा में आलिया किसी सामान्य रॉ एजेंट या स्पाई के रोल में नजर नहीं आएंगी, बल्कि एक ऐसी खतरनाक असेसिन के किरदार में दिखेंगी जिसका पूरा बचपन ट्रेनिंग, दर्द और हिंसा के बीच गुजरा है। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिर्फ मारना सिखाया गया, जो धीरे धीरे एक घातक हथियार में बदल गई और जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि आलिया ने अपने करियर की सबसे कठिन फिजिकल तैयारी शुरू की। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने करीब 4 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट सीखी, हथियारों को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना सीखा, वायरवर्क और एरियल स्टंट्स की ट्रेनिंग ली और स्पीड और साथ ही फुटवर्क पर हफ्तों तक मेहनत की। बॉबी देओल भी आलिया की तैयारी देख हैरान रह गए थे। बॉबी ने आलिया की कमिटमेंट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की तैयारी उन्होंने की उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया। बॉबी की इन सभी बातों से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में आलिया और बॉबी के बीच कई हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देती है तो क्या ये वाकई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल एक्शन ब्लॉकबस्टर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की तो जीएनटी भी तभी से आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर भी दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हामटा वैली का दीदार कराते हैं, जहां के सोनिक ब्यूटी, ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियां आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हामटा वैली के ही हमारे एक दर्शक ने भेजा है।

0: नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ हमटा का लोकल निवासी हूँ। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा हुआ यहाँ पे। तो ये जो हमटा वैली है, ये मात्र 40 मिनट का रास्ता है मनाली से, और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट प्लेसेस में ये आता है। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, बहुत सुंदर मीडोज हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है, और छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ये सेतन विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, होम स्टेज हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, रूम्स हैं, डबल शेयरिंग रूम्स, और बंक बेड्स भी हैं यहाँ पे। ये विलेज कम्युनिटी हॉल है, और एक छोटा सा मॉनेस्ट्री भी है इस गांव में यहाँ पे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। क्योंकि ये पूरा गांव एक बुद्धिस्ट जो पहले फार्मिंग करते थे, और अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो कुछ लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, और साथ में ये टूरिज्म वाला काम भी देख रहे हैं। ये विलेज सेतन है, एक छोटा सा गांव है जो हमटा वैली का लास्ट गांव है। इसके बाद आपका हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे, और यहाँ पे लोग अपना खेतों में देखिए यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई है। यहाँ पे गोभी, धनिया, ब्रोकली, बहुत सारे एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे जो सब्जी की क्वालिटी वो बहुत अच्छी होती है वो हमेशा। और ये हमटा वैली में जब आप लोग विंटर टाइम में आएंगे तो आप लोगों को पूरा एरिया ये बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे आपको इग्लू स्टे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इग्लूज है वो इसी वैली में ही बनते हैं, और फर्स्ट टाइम इग्लू स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हमटा वैली में लाया गया था। और ये वाला एरिया है जो इग्लू के लिए यूज होता है विंटर में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी, ग्रीन पैच, जो मीडो है, ओपन मीडो, ये टॉप का, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, और जो भृगु लेक है वो उसके टॉप पे है। और ये पूरा वैली जो ऐसे राइट साइड को गया, ये हमटा वैली है जो बहुत ही फेमस ट्रेकिंग रूट है। और हमटा पास क्रॉस करने के बाद आप दूसरी तरफ स्पीति की तरफ को जाते हैं। तो अभी मई जून से लेकर आपका सितंबर मिड अक्टूबर तक यहाँ पे जो हमटा पास ट्रैक है वो चलता है, और आप कैंपिंग भी कर सकते हो फॉरेस्ट में, बहुत अच्छे रिवर साइड में या मीडोज में कहीं भी आप टेंट लगा दो, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग हैं पांडुरोपा में, ये सेतन से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव लोग एग्जाइल में थे, वो लोग हिमालय में छुपे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पे, तो अपने उस एग्जाइल के टाइम में कुछ टाइम उन्होंने यहाँ भी बिताया है। तो इस जगह में ऐसा माना जाता है कि वो धान की रोपाई करते थे, जो सीड से पौधा तैयार करते हैं वो यहाँ पे तैयार करते थे, और उसकी जो बिजाई है खेत में वो भृगु लेक के पास में, वहाँ भी एक पांडुरोपा करके जगह है, वो वहाँ पे उसकी रोपाई करते थे। तो अभी हम लोग हैं हमटा के एक मशहूर ढाबा कालजंग ढाबा में, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अखरोट के सिड्डू बनते हैं। यस, तो ये है सिड्डू, और ये यहीं पे बना हुआ, और इसके अंदर अखरोट का पेस्ट डाला हुआ, और ये चटनी टमाटर, पुदीना, मिर्च, पूरी तरह से ये नेचुरली ब्लेस्ड एक एरिया है।
1: अगर आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, संकल्प के भागीदार बनना चाहते हैं, तो बस आपको करना सिर्फ इतना है, मोबाइल उठाइए, एक वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर 7303409922 पर। हम आपका भेजा वीडियो गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राजनीतिक की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहाड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा ज्येष्ठ माह के पांचवें और अंतिम बड़ा मंगल की भी है।
7: ज्येष्ठ माह के पांचवें और अंतिम बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। जय श्री राम और जय हनुमान की जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का हुजूम लगातार मंदिर पहुंचता रहा, और फिर लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी आने पर वो दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते दिखे। प्रयागराज में संगम तट पर स्थित बांधवा के लेते हुए हनुमान जी के मंदिर में भी सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। हनुमान मंदिर में श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव के साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। मंदिर प्रशासन की तरफ से पांचवें बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूरी आस्था और भक्ति के साथ पूजा करने का बड़ा महत्व है। मान्यता ये है कि इससे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ मौसम सुहावना बना हुआ है और इन सब के बीच श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। उत्तराखंड में स्थित इस पवित्र स्थल में 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यहाँ मौसम का मिजाज कुछ इस तरह का बना हुआ है कि कभी कभी हल्की बर्फबारी भी श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर गुरुद्वारा साहब तक पहुंचने के बाद भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। अत्यधिक ऊंचाई के चलते यहाँ श्रद्धालुओं को ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है, इसके बाद भी श्रद्धालु पूरे जोश में नजर आए। यहाँ उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाकाल के दरबार में एक भक्त ने चांदी का मुकुट और कुंडल अर्पित किए। चंडीगढ़ से अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे शिवम श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। अपनी मनोकामना पूरी होने पर वो चांदी का मुकुट और कुंडल साथ लेकर आए और बाबा महाकाल को समर्पित किया। पुजारियों ने इस विशेष चढ़ावे को पूरे विधि विधान के साथ स्वीकार कर बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भेंट चढ़ाने और पूजा पाठ करने के बाद महाकाल भक्त शिवम के चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखी। शिवम ने कहा कि मैंने मनोकामना की थी जो पूरी हुई, मैं बाबा महाकाल के दरबार में ये भेंट अर्पित करने पहुंचा हूं। ये तस्वीरें तमिलनाडु के कावेरी नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध अरुलमिगु परिमला रंगनाथ मंदिर की हैं, जहां वसंत उत्सव पूरी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। भगवान परिमला रंगनाथ यानी भगवान विष्णु को समर्पित इस उत्सव में वैशाख और ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले अग्नि नक्षत्रम को लेकर यहां विशेष पूजा के लिए एक कृत्रिम कमल का तालाब बनाया जाता है। दरअसल अग्नि नक्षत्रम को दक्षिण भारत में अत्यधिक गर्मी का समय माना जाता है, इसीलिए विशेष पूजा के लिए इस तालाब का निर्माण किया गया। विशेष पूजा में फलों, हल्दी, दूध और नारियल पानी से विशेष अभिषेक किया जाता है। इसके बाद महादीप आराधना की जाती है, जिसमें श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ शामिल होते हैं। बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने से पहले गीत के जरिए एक टीचर का बच्चों को गाने के जरिए दिया गया संदेश खूब वायरल हो रहा है। समस्तीपुर के हसनपुर स्थित मालदा प्राथमिक विद्यालय के टीचर वैद्यनाथ रजक ने गाने के जरिए बच्चों को गर्मी से बच के रहने की सलाह दी है। गाने में धूप में नहीं निकलने, नंगे पांव नहीं चलने, कहीं आने जाने में चेहरे को ढकने, पानी पीने जैसी सीख भी बच्चों को दी गई है।

आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अच्छा है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का चैलेंज समझने के लिए अब केस स्टडी की जाएगी। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी पर आईआईएम इंदौर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी करने जा रहा है। वैभव मॉडल स्टडी के जरिए खेल मनोविज्ञान मैनेजमेंट और उनके सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड किया जाएगा। इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कोई खिलाड़ी इतनी कम उम्र में विपरीत परिस्थितियों और दबाव के बीच खुद को कैसे मैनेज करता है।

0: राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव को कोई जादूगर कह रहा है तो कोई यूनिवर्सल बेबी बॉस। वहीं कुछ लोग क्रिकेट का अजूबा महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए इतने विश्लेषण हैं कि उन्हें गिन पाना मुश्किल है। वहीं क्रिकेट के पंडित जब तक वैभव के खेलने की स्टाइल शीट तैयार करते हैं तो इससे पहले वैभव कुछ नया रिकॉर्ड बना देते हैं। आईपीएल में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दुनिया के धुरंधर गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी को अब समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो किस मिट्टी के बने हैं, उनमें बड़े से बड़े गेंदबाजों का खौफ क्यों नहीं है, कैसे उनकी आंखें अपनी और आती गेंदों को बखूबी पढ़ लेती है। इसी को जानने समझने के लिए अब भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM इंदौर ने इस उभरते हुए क्रिकेटर को अपनी केस स्टडी में शामिल करने का निर्णय लिया है। वैभव मॉडल पर आधारित देश की पहली ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी जिसमें खेल, मनोविज्ञान और मैनेजमेंट के टॉप एक्सपर्ट्स मिलकर इतनी छोटी सी उम्र में हासिल की गई इस असाधारण सफलता की सीक्रेट फॉर्मूले को खोजने की कोशिश करेंगे। वैभव की हैरतअंगेज बैटिंग की दुनिया कायल है, ऐसे में IIM इंदौर अब उनके सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड करने पर काम शुरू कर रहा है।
1: IIM इंदौर में हम हमेशा ऐसे समकालीन उदाहरणों को अध्ययन और शिक्षण का हिस्सा बनाने का प्रयास करते हैं जो समाज, व्यवसाय, नेतृत्व और मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रबंधन पाठ प्रस्तुत करते हों। वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि भी ऐसा ही एक उदाहरण है। ये केवल क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन की कहानी नहीं है बल्कि मानव क्षमता, प्रतिभा विकास, अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और एक दीर्घकालिक उत्कृष्टता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। हम यदि देखें तो मात्र 15 वर्ष की आयु में जिस आत्मविश्वास और कौशल के साथ वैभव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है वह दर्शाता है कि असाधारण प्रतिभा को यदि वातावरण, मार्गदर्शन और अवसर प्राप्त हो तो वह असाधारण परिणाम दे सकती है।
0: इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य समझना है कि कोई खिलाड़ी इतनी कम उम्र में विपरीत परिस्थितियों और दबाव के बीच खुद को कैसे मैनेज करता है। इस केस स्टडी की पृष्ठभूमि वैभव की असाधारण खेल क्षमता से जुड़ी हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने एक ही सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के मारकर महान क्रिकेटर क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड 59 छक्के ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया उनकी हैरतअंगेज बल्लेबाजी की मुरीद हो चुकी है। वैभव ने 16 पारियों में 48.50 के औसत और 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, इसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने इस सीजन में 63 चौका और रिकॉर्ड 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे वो एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। वैभव इस सीजन के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे, जिससे उन्हें ऑरेंज कैप मिली और वो ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए।
1: उनकी यात्रा हमें यह भी बताती है कि बड़ी उपलब्धियों के पीछे केवल व्यक्तिगत क्षमता नहीं होती बल्कि परिवार, प्रशिक्षकों, संस्थागत सहयोग और निरंतर परिश्रम की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही हालांकि कम उम्र में प्राप्त होने वाली सफलता अपने साथ कई जटिल चुनौतियां भी लेकर के आती है। प्रसिद्धि, आर्थिक अवसर, सार्वजनिक अपेक्षाएं और सोशल मीडिया का निरंतर दबाव युवा प्रतिभाओं के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। विश्व स्तर पर ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां असाधारण क्षमता रखने वाले युवा अपेक्षाओं के अत्यधिक बोझ और मानसिक थकान के कारण अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाए या बहुत पहले ही बर्न आउट हो गए। इसलिए प्रतिभा के संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और दीर्घकालिक विकास को उतनी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए जितनी इनकी उपलब्धियों को।
0: इस सीजन में जोरदार प्रदर्शन करने वाले वैभव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। हालांकि वैभव आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड से महज एक गेंद दूर रह गए, लेकिन उनका मानना है कि अब अगले स्तर तक पहुंचने के लिए फिटनेस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। 5 फीट 7 इंच की हाइट और 55 किलो वजन वाले वैभव अपनी जबरदस्त बैट स्पीड और बेजोड़ टाइमिंग के दम पर बड़ी आसानी से गेंद को बाउंड्री पार भेजते हैं तो स्टेडियम में मौजूद फैंस की तालियों की गूंज से उत्साह और बढ़ जाता है। वैभव ने मात्र 15 साल की उम्र में जो कर दिखाया है उसे केवल क्रिकेट की दुनिया ही आश्चर्यचकित नहीं है बल्कि IIM इंदौर के प्रोफेसर भी हैरान हैं। ऐसे में IIM इंदौर इस बात पर भी रिसर्च करेगा कि वैभव जैसी प्रतिभा को कैसे संभाला और संवारा जाए।
1: IIM इंदौर इस संदर्भ में एक व्यापक एवं बहुविषयक अध्ययन करेगा। यह अध्ययन उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत कारकों का विश्लेषण करेगा जो कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं के विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खेल प्रबंधन, नेतृत्व, व्यवहार विज्ञान और मानव क्षमता विकास के विशेषज्ञ मिलकर के यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक सफलता युवा प्रतिभाओं की सोच, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा को किस प्रकार से प्रभावित करती है। हमारा उद्देश्य केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी की सफलता का अध्ययन करना नहीं है बल्कि ऐसे व्यवहारिक और नीतिगत निष्कर्ष विकसित करना है जो भविष्य में भी उभरती प्रतिभाओं के समग्र और सतत विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हों।
0: जाहिर है वैभव की क्रिकेट की शुरुआत बेहद शानदार है जिसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, परिवार का समर्पण और मेंटर का बड़ा योगदान है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वैभव के कुछ पुराने वीडियो और तस्वीरें ये दिखाते हैं कि उनको कामयाबी अचानक नहीं मिली। इसके पीछे एक बच्चे की क्रिकेट को लेकर उसकी जिद और जुनून भी छिपा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पंजाब और हिमाचल के बीच ऐतिहासिक नैरो गेज रेल सेवा फिर बहाल। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: चार धाम यात्रा में आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो इस पर उत्तराखंड सरकार की नजर बनी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें चार धाम यात्रा के सफल आयोजन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने को लेकर की जा रही तैयारियों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने बैठक में तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। ऐतिहासिक पठानकोट बैजनाथ पपरोला जोगिंदरनगर नैरो गेज सेक्शन पर यात्री ट्रेन सेवाओं को बहाल कर दिया है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली ये रेल सर्विस चक्की दरिया पर बने पुल के टूटने से अगस्त 2022 से बंद थी। अब 4 साल के लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर और पंजाब के पठानकोट को जोड़ने वाले इस रेल ट्रैक पर एक बार फिर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा बिहार का मशहूर जरदालू आम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में इस आम का जिक्र किया था जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों को करीब 8 टन जरदालू आम भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह बिहटा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित रेडिएशन सेंटर पहुंची जहां उन्होंने जरदालू आम की पैकेजिंग के साथ ही गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। जरदालू आम अपने मीठे और असीले स्वाद को लेकर मशहूर है।
2: और अब बात पलायन की मार झेल रहे गांव में रिवर्स पलायन से लौटी रौनक। जी हां, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का मांदरा गांव जो कि कभी पलायन की मार से सूना पड़ चुका था आज फिर से आबाद होने की राह पर है। पहले जिन घरों में ताले लटकते थे वहां मरम्मत हो रही है। जिन आंगनों में सन्नाटा था वहां ग्रामोत्सव और अपनी मिट्टी से जुड़ाव ने उजड़ते गांव में फिर से जान फूंक दी है क्योंकि देश विदेश में बसे प्रवासी ग्रामीण अब अपने गांव लौट रहे हैं जिससे कि पहाड़ की संस्कृति फिर से जीवंत होती दिखाई दे रही है।

0: बरसों से पलायन की मार झेल रहे देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के कई गांवों में अब रिवर्स पलायन यानी कि गांव की ओर वापसी के कारण रौनक लौट आई है। जून के महीने में आयोजित होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से इलाके में हर्षोल्लास का माहौल है। टिहरी में भिलंगना के मांद्रा गांव में भी इन दिनों विशेष उत्साह का माहौल है। सोमवार से गांव की विवाहित बेटियों यानी कि ध्यानियों के सहयोग से दानिया धाम स्थित घंटा कर्ण हुनेश्वर और भैरव देवता मंदिर में 7 दिन चलने वाले श्रीमद् भगवत कथा पुराण का शुभारंभ हुआ। इस कथा में बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रवासी परिवार और श्रद्धालु भाग ले रहे हैं।
1: सभी हमारे गांव के जितने भी ध्यानियां हैं, बहने हैं, बेटियां हैं, वह सब मिलकर अपने माती देवता के यहाँ भागवत का आयोजन करवा रही हैं। हमारे यहाँ गांव में सब प्लान कर गए थे, बहुत कम लोग रहते थे यहाँ, लेकिन अब इस कार्य के माध्यम से हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ। हम सब आपस में मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे ज्यादा, अब यहाँ एक दूसरे से जान पहचान हो रही है इस कार्य के थ्रू, और यह बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं।
0: लगभग 85% पलायन झेल चुके इस गांव के कई मकान खंडहर बनने की कगार पर हैं और खेत खलियान बंजर पड़े हैं। कुछ लोग नौकरी के चलते विदेश चले गए तो कुछ दूसरे राज्यों में काम धंधा करने लगे, लिहाजा गांव के कई मकान खंडहरों में तब्दील हो गए। लेकिन धार्मिक आयोजनों के चलते गांव में फिर से रौनक लौट आई है, क्योंकि वर्षों पहले रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में गांव छोड़ चुके लोग अपने पैतृक गांव की ओर लौट रहे हैं, जिससे लंबे समय बाद बिछड़े परिजनों और ग्रामीणों का मिलन हो रहा है।
2: सभी आ रखे हैं यहाँ पे, हर साल 2, 10, 11, 12 को प्रोग्राम होते हैं। इस बार हमने सोचा कि हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन कराया जाए और यहाँ पे सभी को आमंत्रित किया जाए। इसका एक विशेष उद्देश्य ये है कि जो हमारी पुरानी यानी हमारी बुआ जी लोग हैं, उनसे हमारा कभी मिलना नहीं हो पाता है, ना हमारा फोन पे उनसे कोई वो वार्तालाप हो पाती है, तो हम चाहते हैं कि वो आए और हमारी नई पुरानी सब ध्यानियों से मिलें और हमारा उत्साहवर्धन करें, और हम चाहते हैं सब जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब बढ़ चढ़कर इस आयोजन में अपना सहयोग दें।
0: मई और जून के महीनों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम गांव के लिए एक संजीवनी बनकर सामने आए हैं। रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर चुके लोग अब अपने पैतृक गांव लौट रहे हैं। इससे लंबे समय बाद परिवारों और रिश्तों में फिर से जुड़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं रिवर्स पलायन के चलते गांव लौटे लोग अपने खंडहर मकानों को ठीक करवा रहे हैं और अपनी खेती किसानी पर भी काम कर रहे हैं।
3: हमें बहुत खुशी मिल रही है कि आज हम सभी ध्यानियां एकत्रित हुई है और हम का विगत वर्षों की भांति यहां आयोजन होते रहते हैं, पर इस बार हमने भागवत कथा का आयोजन का प्लान बनाया और इसमें सभी ध्यानियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमारी सभी ध्यानियां आई है और सबसे मिलना जुलना और गाँव में जितने भी प्लान हो गए थे काफी उस माध्यम से कि लोग घर आ रहे हैं, और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमें ये मौका मिला।
0: ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि पलायन के टूटते सामाजिक रिश्तों को जोड़ने का भी माध्यम बन रहे हैं। वर्षों से सूने पड़े आंगन, बंद घरों और वीरान खलिहानों में एक बार फिर चहल पहल दिखाई दे रही है। धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सव के बहाने गांव अपने पुराने स्वरूप और सामाजिक एकता को फिर से जीवंत होते देख रहा है।
4: इस बार यहां पर जो है श्रीमद् भागवत का आयोजन घंटाकर्ण देव और त्रिदेवों के सानिध्य में इन ध्यानियों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा तो जो होता है जो पलायन कर रहे हैं लोग वो अपने घरों को आते हैं और ये मिलन समारोह के रूप में हम देखते हैं। अभी फिर 10 तारीख से फिर हमारा यहाँ पर जो है दानिया धाम में त्रिदेवों के उत्सव, ग्रामोत्सव भी इसको आप कह सकते हैं, त्रिदेवों का यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो पहाड़ है पूरा पलायन की मार पूरा पहाड़ झेल रहा है। यदि इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे तो निश्चित ही पहाड़ की ओर रुख करेंगे। जैसे आपने देखा होगा 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी तो लोग सारे जो पलायन करे थे सबने अपनी मातृभूमि को पुकारा था। इसलिए हमें अपनी संस्कृति की संरक्षण करना होगा, संस्कृति को बचाना होगा, और इस प्रकार की यदि कार्यक्रम हर वर्ष या हर वर्ष निरंतर अंतराल में होते रहेंगे तो हमारा गांव भी बचा रहेगा, हमारी संस्कृति भी बची रहेगी, हमारे क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि भी आएगी।
0: टिहरी जिले के मांदरा गांव के लोगों ने रिवर्स पलायन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। ऐसे में जरूरत है तो इस ओर ठोस प्लानिंग के तहत काम करने की, जिससे उत्तराखंड में पलायन की मार झेल रहे दूसरे गांवों में भी रिवर्स पलायन करवाया जा सके। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 382 अंक चढ़कर 74,649 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 100 अंकों की बढ़त के साथ 23,483 पर बंद हुआ। मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,050 रुपए बढ़कर 161,450 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,300 रुपए बढ़कर 271,000 रुपए पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.29 के स्तर पर बंद हुआ।
5: रिलीज से महज 3 दिन दूर वरुण धवन की फिल्म, इसके साथ ही फिल्मी जगत से जुड़ी कुछ और ऐसी खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
7: धर्मा प्रोडक्शन अब गुजराती सिनेमा में भी अपनी नई पारी शुरू करने जा रहा है। फादर्स डे के खास मौके पर 19 जून को रिलीज होने वाली फिल्म जिंदगी वंस मोर का दिल छू लेने वाला ट्रेलर सामने आ चुका है। पिता पुत्र के अनकहे रिश्ते और भावनाओं को खूबसूरती से बयां करती इस फिल्म में सिद्धार्थ रांदेरिया, आरती पटेल, दीप ढोलकिया और जानवी ढाकन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वासु ढोलकिया निर्मित और जयमिन निर्देशित ये फिल्म दर्शकों को भावनाओं से भर देने का वादा करती है। रामचरण और जानवी कपूर की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म पेड्डी को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। फिल्म के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकट खिड़की पर जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली है। बूची बाबू सना के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना में बुकिंग्स फिलहाल रुकी हुई है, फिर भी फिल्म देश भर में एडवांस सेल से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है अब रिलीज से महज 3 दिन दूर है। डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की तिकड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएगी। प्यार, कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनमेंट का तड़का लेकर आ रही ये फिल्म दर्शकों के बीच अच्छी खासी उत्सुकता पैदा कर रही है। रमेश तौरानी निर्मित और मैक्सी मिलियन फिल्म्स सह निर्मित ये मनोरंजन से भरपूर फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
5: न्यूज़ पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: एयरफोर्स के साथ DRDO ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल के में मंडी की लोहाड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कमाए वाले परिवारों के बच्चों को दे रहा है मुफ्त शिक्षा। चलिए न्यूज पत्र खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
9: कला सिर्फ मंचों और दीवारों पर ही नहीं दिखती, कभी कभी रोजमर्रा के काम में भी अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। अब इस शख्स को ही देखिए, जिस तरह से ये मछली पकड़ने का जाल हवा में उछालता है वो किसी कलाकार के प्रदर्शन से कम नहीं लगता। जाल घूमते हुए ऐसा लगता है मानो नदी में कोई विशाल फूल खिल गया हो। सालों की मेहनत और अभ्यास इस एक पल में साफ दिखाई दे रहा है। इसकी शानदार तकनीक देख कर लोग दंग रह जाते हैं। इंसानियत और दया की छोटी छोटी मिसालें दिल जीत लेती हैं। इस महिला ने भी कुछ ऐसा ही किया। बड़े प्यार और धैर्य के साथ वो फलों को काटकर बंदरों को खिला रही है। आज तो बंदर भाइयों की मानो लॉटरी लग गई है। केले, तरबूज और खीरे का भरपूर आनंद जो मिल रहा है। महिला के चेहरे की मुस्कान और जानवरों के प्रति उसका स्नेह देखने लायक है। ये नज़ारा बताता है कि प्रेम की भाषा हर जीव समझता है और दया हमेशा खुशी बांटती है। हरियाणा की मिट्टी से पहलवान निकलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन नन्हे उस्तादों का जोश देखते ही बनता है। अभी ठीक से कदम जमाना सीखा ही था कि अखाड़े में कुश्ती की तैयारी शुरू हो गई। छोटे छोटे हाथ, बड़े बड़े हौसले और जीतने का जुनून हर दांव में दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात है मुकाबले के बाद उनके चेहरों पर खिली मासूम मुस्कान। इन्हें देखकर लगता है कि भविष्य के चैंपियन यहीं तैयार हो रहे हैं। इनकी मेहनत और उत्साह मन को खुशी से भर देती है। मुंबई के दादर स्थित मुथू डोसा कॉर्नर में डोसा बनाना और परोसना भी किसी कला से कम नहीं है। खासकर मुथू के सहायक की फुर्ती देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जिस सटीक अंदाज में वो दूर तक डोसा प्लेट पहुंचाते हैं, उसे देखकर क्रिकेट प्रेमी मजाक में उन्हें भारतीय टीम का स्लिप फील्डर बनाने की सलाह देते हैं। तेजी, संतुलन और बेहतरीन तालमेल उनकी पहचान है। ग्राहकों के लिए ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक मनोरंजक अनुभव भी बन जाता है। पेंट करना तो सभी ने देखा होगा, लेकिन ऐसा अनोखा तरीका शायद ही कभी देखा हो। ये कलाकार एक गोल घेरे में लगातार घूमते हुए पेंट करता है और कमाल की बात यह है कि उसका संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ता। हर चक्कर के साथ रंग सतह पर बेहद खूबसूरती से फैलते जाते हैं। देखने वालों को यह काम आसान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जबरदस्त अभ्यास और समझ छिपी है। कलाकार की अनूठी शैली लोगों को चौंका रही है और उसकी प्रतिभा की खूब सराहना हो रही है।
5: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी तलाक से जुड़े एक अनोखे मामले की। ये मामला तमिलनाडु के दंपत्ति से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भारतीय सेना में रहे पति ने पत्नी की क्रूरता को साबित कर अदालत से तलाक की गुहार लगाई थी। जब ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और तलाक के आदेश को सही माना। हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने कहा कि पति के जीवित रहते हिंदू पत्नी का वैवाहिक आभूषण थाली यानी कि मंगलसूत्र हटाना पति के प्रति मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने पति को दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए पत्नी की दूसरी अपील खारिज कर दी। ये मामला 1977 में विवाह करने वाले एक दंपत्ति से जुड़ा था, जिसमें निचली अदालत ने 2017 में तलाक को मंजूरी दी थी। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी लगातार उस पर अन्य महिलाओं से अवैध संबंध रखने के आरोप लगाती रहती है। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी सेना में उसके वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें भेजती रही और बाद में ईसाई धर्म भी अपना लिया। पत्नी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए पति पर प्रताड़ना और अन्य महिलाओं से संबंध रखने के आरोप लगाए, लेकिन अदालत ने पाया कि पत्नी ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि उसने मंगलसूत्र हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू परंपरा में मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन का पवित्र प्रतीक है और इसे हटाना पति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए पत्नी के ईसाई धर्म अपनाने के आरोप को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी की तरफ से पति के वरिष्ठ अधिकारियों को उसके खिलाफ शिकायतें भेजना मानसिक क्रूरता का आधार है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने कहा कि पति क्रूरता साबित करने में सफल रहा और निचली अदालत से दिया गया तलाक का आदेश सही। पति पत्नी का रिश्ता भी विश्वास पर टिका होता है और जब किसी रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तलाक से जुड़े इस मामले को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
10: हाई कोर्ट के इस ऐसे फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं क्योंकि पुरुषों पर लगातार पहले की प्रथा थी कि महिलाओं पर अत्याचार होता था, पर अब प्रथा बदल चुकी है, पुरुषों पर भी अत्याचार देखने को मिलता है। महिलाएं पहले जिस रिश्ते में रह के जो शादी के बंधन में बसती हैं, उस बंधन में अगर कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, आपसी मनमुटाव रहता है, तो सबसे पहले आरोप लगाए जाते हैं कि उसने कहीं और उसका अफेयर चल रहा है या उसने मारपीट करी है या उसके परिवार ने मारपीट करी, दहेज मांगा है। तमाम ऐसे आरोप लगने के बाद उसको कानूनी सजा मार तो मिलती है, सामाजिक जो लोग हैं उनकी तरफ से भी बहिष्कृत कराया जाता है, उसे गलत निगाहों से देखा जाता है। 49 साल तक एक रिश्ता चला जिसमें उसे कितनी लंबी प्रताड़ना से जूझना पड़ा होगा। इस व्यवस्था को सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है कि अगर कोई पति पत्नी आपसी संबंध नहीं सही रह पा रहे, उन्हें अलग होना है, तो इस अलग रहने वाली व्यवस्था को जल्दी होना जरूरी है कि जो सालों तक जिसके लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, उस सालों की जगह वो कुछ चंद महीनों में एक उपयोग करा जाए कि उसको जल्दी से जल्दी उसको खत्म करा जा सके, लोग अलग अपने अपने रस्तों पर जा सके और फिर से एक नए बंधन में बन सके।
11: अब सोचिए कि 49 साल में उस आदमी की क्या स्थिति बदली होगी। और ये पहला केस नहीं है हमारे भारत में, ऐसे ना जाने अनगिनत ऐसे केस हैं जिसमें कोर्ट ने बाकायदा सबूत और गवाहों को मतलब कमी मानते हुए उसमें कई ऐसे फैसले बार बार आते रहते हैं। अब रही बात सही और गलत की, बिल्कुल सही किया है क्योंकि कोर्ट में अगर आप जाएंगे ना तो हर रोज ना जाने कितने ऐसे केस हैं जहां पुरुष को महिलाएं बिना वजह के, दुश्मनी कुछ और होती है, बात कुछ और होती है धरातल पे, लेकिन आरोप कुछ और लगाए जाते हैं और फंसा दिए जाते हैं जिसकी वजह से उस पुरुष की, उस आदमी की ना तो समाज में कोई इज्जत रहती है और ना ही आप देख रहे होंगे कि जो आदमी होता है, जो पुरुष जो झेलता है वही जानता है कि कितनी लंबी लड़ाई लड़ता है और मानसिक कितना प्रताड़ना झेलता है।
12: मुझे लगता है ये फैसला कहीं ना कहीं सही है क्योंकि बिना किसी आधार, बिना किसी सबूत के लगातार किसी पर इतने वर्षों तक अवैध संबंधों या किसी भी प्रकार के अनुचित आरोप लगाना, मुझे लगता है ये गलत था। और इसमें उस पुरुष की क्या स्थिति हुई होगी, क्या मानसिक स्थिति हुई होगी, क्या सामाजिक स्थिति हुई होगी, क्योंकि कोर्ट के बाहर भी एक दुनिया होती है जिसे हम सामाजिक परिवेश कहते हैं। समाज में तमाम प्रकार के, कभी कभी होता है कि लोग बेगुनाह होते हैं, निर्दोष होते हैं, लेकिन समाज उन्हें गुनहगार मानकर उनके साथ आरोपी जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत था और अगर उन्हें इससे राहत मिली है तो ये फैसला ठीक है, सही है। इससे और लोगों को भी सीखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर गलत आरोप ना लगाएं जब तक कि आपके पास उसके पर्याप्त सबूत ना हो।
13: आजकल लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा है ना अनफेयर हो रहा है, मतलब अगर अपन लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं तो लड़कों के हित में है ना इतने ज़्यादा लॉज नहीं है जितने लड़कियों के सपोर्ट में आ जाते हैं, तो उन मेरे हिसाब से उन लॉज का है ना गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है लड़की द्वारा। एंड मतलब लड़का एट दी एंड डिप्रेशन में ही आ जाता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का केस हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का केस हो या रैंडमली कोई केस हो।
5: और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। एक नेक पहल और फिर बदल गई एक गांव की पहचान। बिहार के गया जी का एक ऐसा गांव जिसे बुनकरों का गांव कहा जाता था, लेकिन यही गांव अब इंजीनियरों के गांव के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक संस्था का बड़ा योगदान है। इस संस्था की मदद से तैयारी कर जेई एडवांस 2026 में भी 10 स्टूडेंट्स ने सफलता पाई है। देखिए,
14: बच्चे में काबिलियत होती है और जब सही समय पर सही मार्गदर्शक मिल जाए तो बच्चा कामयाब होकर दिखाता है। कुछ ऐसा ही इन बच्चों को हासिल हुआ है, सही रास्ता दिखाने वाला मिल गया तो बच्चों ने कामयाबी हासिल करके दिखा दी। इस कंप्यूटर के आगे मौजूद इस लोगो को देखिए जो इन बच्चों की सफलता का राज है। इस लोगो में वृक्ष भी है और यही उस संस्था का नाम है जहां तैयारी करने वाले बच्चे कामयाबी की ओर कदम बढ़ाते हैं। बिहार के गया जिले के मानपुर प्रखंड स्थित इस पटवा टोली गांव की पहचान बुनकरों के गांव के रूप में रही है, लेकिन अब इसे इंजीनियरों के गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव से हर साल दर्जनों स्टूडेंट्स जेईई परीक्षा में सफलता हासिल करते हैं और इंजीनियर बनकर अपने गांव के साथ ही जिले और राज्य का नाम भी रोशन कर रहे हैं, जिसमें वृक्ष संस्थान का अहम योगदान है।
15: मैं वृक्ष विद चेंज में पढ़ाई की हूँ। यहाँ पे फ्री एजुकेशन, फ्री एंड फेयर एजुकेशन रहता था। यहाँ पे लाइब्रेरी मॉडल है, मतलब यहाँ पे आके हम पढ़ सकते हैं, रात में भी रुक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिन में आया करती थी। 3-4 महीने मैं यहाँ पे हॉस्टल में भी रुकी और फिर मैंने पढ़ाई करा। मेरी मम्मी हाउस मेकर है और पापा प्राइवेट टीचर हैं। मैं इस यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। ये वृक्ष का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो वैसे ही मैं भी चाहूँगी कि आगे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ। पढ़ाई में उनकी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं उनका ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी।
14: इस साल भी इस संस्थान से पढ़ाई कर 10 स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस रिजल्ट में सफलता हासिल की है। इस पटवा टोली में बुनकर समाज की ओर से ही वृक्ष कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, जहां IIT और जेईई की तैयारी मुफ्त कराई जाती है। यहां बच्चों को लाइब्रेरी के साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा भी मिलती है। यही नहीं, बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी है। यहाँ से पढ़कर निकले स्टूडेंट आज बड़ी कंपनियों में बड़े पद पर भी हैं। यहाँ टीचर्स के अलावा वो भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। यही नहीं, मुकाम हासिल करने वाले वो लोग अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इस वृक्ष कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए भी देते हैं। खास बात ये है कि यहाँ सिर्फ पटवा ही नहीं बल्कि किसी भी समाज के बच्चे पढ़ सकते हैं।
16: हमारे सीनियर्स होते हैं, सभी लोग काफ़ी मददगार होते हैं। उन्होंने हमें आगे जो कोर्सेज होते हैं, आगे जो करियर ऑप्शन होते हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। और जो एकेडमिक्स जो भी पढ़ते रहते हैं, उनमें जो बीच बीच में जो भी डॉट्स आते हैं, वो सभी डॉट सॉल्व करते हैं। और हमें भी अपने जो जूनियर्स होते हैं, उनका भी डॉट सॉल्व करना होता है। इससे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड होता है वृक्ष में, जो कि और मैंने यहाँ 2 साल रह के पढ़ाई की, IIT JEE में क्वालिफाई भी कर लिया।
14: इस वृक्ष संस्था की शुरुआत 2013 में हुई थी। यहाँ पढ़ने वालों में ज्यादातर बच्चों के माता पिता इस पटवा टोली में बुनकर का काम करते हैं, वहीं कुछ के माता पिता बाहर रहकर मजदूरी का काम करते हैं। यहाँ वही लोग आते हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उन्हें तमाम जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त।
17: लगभग 10 बच्चे मतलब ये क्वालिफाई किए हैं और 31 बच्चे ये जेई मेन के लिए अटेंड किए थे एग्ज़ाम के लिए, जेई एडवांस के लिए। यहाँ पे मेनली जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो ये निशुल्क सेवा है हम लोगों का कि बच्चे को निशुल्क देते हैं। और बाकी 8 बजे बच्चे आते हैं यहाँ पे, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है और फिर लगभग 7-8 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। और बाकी हॉस्टल का ही फैसिलिटी है, दिन रात जिसको जिस तरह से पढ़ना है, जितना मेहनत करना है, हमारे सर लोग हैं, कुलदीप सर, सुनील सर, जितने भी लोग हैं सब एकजुट मिल करके प्रिपरेशन कराते हैं बच्चे। कुछ का माता पिता तो यहीं बुनकर हैं और बुनकर का ही काम करते हैं, कुछ का माता पिता बाहर रहते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं होते वही लोग मेनली यहाँ पे आते हैं।
14: कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वृक्ष संस्था जो पाया उसके बदले में दिया की तर्ज पर चल रही है, यानी सही राह पर आगे बढ़िए और सही राह दिखाने में मददगार बनिए, यही इस संस्था की कामयाबी का राज भी है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेब के बागानों में हुई रोबोट की एंट्री, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार।
18: चीन के शिनजियांग में दुकू हाईवे, जो सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद रहता है, अब फिर से खुल गया है। ये करीब 500 किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता है जो बहुत खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ ग्लेशियर, जंगल और हरे मैदान दिखते हैं। रास्ता खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुँच गए हैं। हर साल जून के आसपास ये सड़क फिर से खुलती है और लोग रोड ट्रिप का मजा लेते हैं। चीन के शेडोंग प्रांत के यानताई में सेब के बागानों में एक नया रोबोट टेस्ट किया जा रहा है। जो छोटे से मुंह पर थैले चढ़ाने का काम करता है। ये रोबोट कैमरे और स्मार्ट मशीन आर्म की मदद से काम करता है। इसका मकसद मेहनत वाला काम आसान और ऑटोमेटिक बनाना है। इससे सेब कीटों और बीमारियों से भी बचते हैं और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। एक घंटे में ये करीब 600 सेब पैक करता है। अभी इसकी सही काम करने की क्षमता को और बेहतर किया जा रहा है। ब्रिटेन की कंपनी होम हार्वेस्ट एक ऐसा छोटा इंडोर फार्म लाने वाली है जिसे लोग घर पर ही सलाद, हरी सब्जियां और जड़ी बूटियां उगा सकेंगे। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। पानी, रोशनी, तापमान और नमी सब ऐप से कंट्रोल होगा। यूजर को बस बीज वाले मैट डालने होंगे। सिर्फ 8 दिन में फसल तैयार हो सकती है। इसका मकसद खाने की बर्बादी कम करना और ताज़ा खाना घर पर ही देना है। आगे चलकर इसमें AI से भी पौधों की निगरानी होगी।
5: और अब बात मासूम बच्चों की। बच्चों के साथ ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब वे देर रात तक जागते हैं तो मम्मी पापा उन्हें डांट देते हैं, जिस पर वे मजबूरी में सो भी जाते हैं। लेकिन अमेरिका में न्यूयॉर्क के बच्चों की किस्मत शायद इन दिनों को ज्यादा ही अच्छी चल रही है। दरअसल वहां के मेयर जोरान ममदानी ने खुद एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें बच्चों को देर रात तक जाकर NBA फाइनल्स देखने की इजाजत दी गई है। वजह है, 27 साल के बाद न्यूयॉर्क की टीम फाइनल में पहुंची है और पूरा शहर जश्न के मूड में है।
19: Who's ready to watch the Knicks? Executive order is signed. Okay, quick. That's amazing. Let's go, Knicks. Let's go, Knicks. 2, 3.
20: Hey, guys.
21: How are you doing? जुनून में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन न्यूयॉर्क में तो मेयर ही बच्चों के साथ फैन बन गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी ने एक मजेदार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें बच्चों को देर रात तक जागकर NBA फाइनल्स देखने की अनुमति दी गई। हालांकि ये कोई असली सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि बास्केटबॉल के प्रति दीवानगी दिखाने का एक अनोखा तरीका था।
19: For the next finals run. Are we ready? Who here was alive in 1999? No, you were not. You were? Okay, we're going to talk about that later.
22: I don't know when I was born.
19: All right, here we go. We're signing it.
22: I don't know.
19: Okay, my friends. Executive order is signed.
22: I don't know when I was.
19: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals.
21: कार्यक्रम के दौरान बच्चों को भी खास मेहमान बनाया गया। मेयर ने बच्चों को उस दस्तावेज पर अपने हाथों के निशान लगाने के लिए आमंत्रित किया और फिर सब ने मिलकर न्यूयॉर्क निक्स के समर्थन में जोरदार नारे भी लगाए।
19: So good.
21: पूरा माहौल किसी राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जैसा नजर आया।
19: Okay, quick.
23: Yes, girl.
19: Decisive.
21: इस उत्साह की वजह भी खास है। न्यूयॉर्क निक्स 1999 के बाद पहली बार NBA फाइनल्स में पहुंची है, यानी लगभग 3 दशक बाद टीम के पास चैंपियन बनने का मौका है।
19: Let's go Knicks! Let's go Knicks! Let's go Knicks!
21: फाइनल में उसका मुकाबला सैन एंटोनियो स्पर्स से होगा और पहला मैच बुधवार रात खेला जाएगा। टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे शहर को उत्साह से भर दिया है।
19: Okay.
21: अब तो फैंस की लिस्ट में खुद मेयर भी खुलकर सामने आ गए हैं। वैसे आदेश कानूनी रूप से भले लागू ना हो, लेकिन न्यूयॉर्क के बच्चों के लिए इससे बेहतर बहाना शायद ही कोई हो सकता है। अगर मम्मी पापा सोने के लिए कहें तो जवाब तैयार है, वो ये कि मेयर ने खुद इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,
1: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ.
2: Summer hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
23: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है.

0: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: ये तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
5: आईपीएल का खिताब जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट। खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
6: आईपीएल में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चैंपियन बनाने के बाद भक्तिभाव में नजर आए क्रिकेटर विराट कोहली। आईपीएल के फाइनल में अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी को खिताब दिलाने वाले कोहली संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे। अपनी पत्नी अनुष्का के साथ विराट चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों यमुना किनारे बनी कुटिया में पहुंचे, जहां प्रेमानंद महाराज एकांतवास में रह रहे हैं। कुटिया में पहुंचकर विराट और अनुष्का ने उनका आशीर्वाद लिया। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट से पहले बीसीसीआई ने 6 गेंदबाजों को बतौर नेट बॉलर न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर स्थित कैंप से जोड़ा है। आकिब नबी, गुरजपनीत सिंह, प्रिंस यादव, सारांश जैन, जिशान अंसारी और शिवांग कुमार भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं। ये गेंदबाज अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अलग अलग तरह की गेंदबाजी का सामना कराने में मदद करेंगे, यानी बल्लेबाजों की तैयारी को धार देने का काम करेंगे। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इस सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के मैच में थाईलैंड की बुसानन को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। सिंधु ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया, हालांकि उन्हें पहले गेम में चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन करीब 51 मिनट तक चले मुकाबले में उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी लय बरकरार रखी और सीधे गेम में 25-23, 21-16 से जीत दर्ज की।
5: देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जीएनटी आपसे कुछ ऐसे वीडियोस को शेयर करने की अपील कर रहा है, जिससे आप अपने यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस, खास करके ऑफबीट जगहों को प्रमोट करने में अपना खास रोल निभा पाए। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं लेह। सोचिए आप लद्दाख की सुकून भरी वादियों में घूम रहे हैं और अचानक सामने आ जाए धुरंधर फिल्म की वो मशहूर लोकेशन जहां एक्टर रणवीर सिंह और गौरव गेरा का नमक की चाय पीते शूट हुआ। सोशल मीडिया पर इस खास चाय की दुकान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन यहां बैठकर चुस्की लेने से पहले एक शर्त आपको माननी होगी और वो ये कि हर शख्स को उस हॉट सीट पर बैठने के लिए कम से कम 2 कप चाय ऑर्डर देनी होगी।

0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: To right field, and it will
1: from the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम सब बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान। मियांपुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला। कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं टॉपर्स की, यानी ऐसे छात्रों की जिन्होंने जेईई एडवांस के परिणाम में कमाल किया है। आज आपको ऑल इंडिया रैंक वन के साथ सभी टॉपर्स से मिलवाएंगे, उनकी सफलता का सूत्र समझाएंगे। कोटा में तैयारी करने वाले इन छात्रों ने कैसे इस कठिन परीक्षा को पास किया, आज उनकी जुबानी ही समझेंगे। इसके साथ ही बात होगी पटवा टोली की। गया का ये इलाका IITians का गांव कहलाता है। इस बार भी यहां के एक संस्थान में पढ़ने वाले 10 बच्चों ने JEE एडवांस के परिणामों में कमाल किया है। पटवा टोली के बाद बात होगी जयपुर की, जो तेजी से एजुकेशनल हब के तौर पर उभर रहा है। JEE एडवांस में यहां के कई छात्रों ने परचम लहराया है। सभी के बारे में विस्तार से आज आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं JEE एडवांस में अव्वल आने वाले छात्रों से। कहते हैं सपनों की उड़ान तब और ऊंची हो जाती है जब मेहनत को मंजिल मिल जाती है। JEE एडवांस 2026 के परिणाम ने देश भर में हजारों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। किसी ने सीमित संसाधनों के बीच सफलता हासिल की तो किसी ने अनुशासन और समर्पण से नया इतिहास रच दिया। इन होनहारों ने साबित कर दिया कि लगन, धैर्य और सही दिशा में किया गया प्रयास हर मुश्किल को आसान बना सकता है। उनकी उपलब्धि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही टॉपर्स से।

0: वैसे तो हर कामयाबी जश्न की हकदार है, लेकिन ये जो रौनक है, खुशी है, बेमिसाल है, क्योंकि सफलता भी दमदार है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेई एडवांस के नतीजे आए और एक बार फिर से कोटा में तैयारी करने वाले छात्रों ने परचम लहरा दिया। कोचिंग संस्थानों के बाहर धूमधाम, ढोल नगाड़े और सेलिब्रेशन। जिन छात्रों ने इस बार जेई एडवांस की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, उनको टीचर्स ने कंधे पर बिठा लिया, डीजे बजा और दोस्तों के साथ घर वाले भी खुशी से झूम उठे। देश की कठिन परीक्षा में कामयाबी ही बड़ी बात होती है, लेकिन इसमें भी जो छात्र टॉप पर हैं, उनकी तो बात ही क्या। इस साल जेई एडवांस में बिहार के शुभम कुमार टॉप पर रहे हैं, दूसरे नंबर पर दिल्ली के कबीर छिल्लर, तीसरे नंबर पर झुंझुनू के जतिन चाहर, और शुभम और कबीर ने कोटा में परीक्षा की तैयारी की थी, इसलिए कोटा में इनकी कामयाबी का जश्न मनाया गया। इन छात्रों ने जो मुकाम हासिल किया है, वो हजारों लाखों छात्रों का सपना है। खासकर टॉपर रहे गया के शुभम की कहानी प्रेरणा देने वाली है। पिता हार्डवेयर का व्यवसाय चलाते हैं, पर सीमित संसाधनों के बावजूद शुभम ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। रोज करीब 10 घंटे की नियमित पढ़ाई की और तनाव को दूर करने के लिए क्रिकेट या बैडमिंटन खेला। हाँ, इस दौरान सोशल मीडिया से जरूर दूरी बनाए रखी।
1: कोटा कोचिंग के छात्र ने इतिहास रच दिया है। जेई एडवांस में टॉप रैंक कोटा से निकली है, सेकंड रैंक भी कोटा से निकली है। ऐसे में हमारे साथ शुभम कुमार हैं, जो टॉपर है ऑल इंडिया, जो बिहार के गया के रहने वाले हैं, पर कोटा कोचिंग से वो तैयारी कर रहे थे और देर रात जेई एडवांस की रिजल्ट की जारी हो गया। हमारे साथ शुभम है, बातचीत कर लेते हैं। शुभम, कोटा आने का फैसला कब और क्यों लिया आपने?
2: जब मैं अपने 11th में था, तब मैंने कोटा आने का फैसला लिया, बिकॉज मेरे को पता था कि मैं अपना जो भी बेस्ट है, अगर मेरे को अपने लिमिट्स को पुश करना है और अपना बेस्ट देते रहना है उसमें भी, उसके लिए कोटा मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैंने कोटा आना चूज़ किया।
1: क्या आपको पहले से टॉप रैंक की उम्मीद थी?
2: मतलब कोटा आने वक्त तो मुझे टॉप रैंक की उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बस इतना पता था कि मैं जो भी करूँगा अपना बेस्ट ही परफॉर्म करूँगा। बट धीरे धीरे जब टेस्ट वगैरह होने लगे और हमें अपना बैच में रैंक्स पता चलने लग गया, तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि हाँ।
1: तैयारी के दौरान आपका रोज का रूटीन क्या रहता था?
2: रोज का रूटीन बस ये रहता था कि सुबह 6:30 बजे उठा, नहा धोकर तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट किया, पढ़ने लग गया, और फिर दिन भर में 4-5 ब्रेक्स, लंच ब्रेक, आई टी का ब्रेक लेकर पढ़ाई अपना कंटिन्यू किया। शाम को एक बार आधा घंटे का कुछ खेल कूद कर लिया और फिर मैं 10:30 बजे तक सो जाता था।
1: औसतन नींद कितनी लेते थे आप, पढ़ाई कितनी करते थे?
2: ऑन एवरेज नींद तो 7 से 7.5 घंटे की हो ही जाती थी और पढ़ाई भी क्लासेस कंक्लूड करके 8 से 10 घंटे की हो जाती थी।
0: शुभम से सिर्फ एक नंबर कम आए कबीर छिल्लर को, और कबीर ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। जेई मेन में 300 में से 300 अंक हासिल करके कबीर ने रैंक 1 हासिल किया।
1: कोटा के छात्रों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जेई एडवांस के परिणाम आ गए हैं और कोटा से टॉप 10 में 4 छात्र निकले हैं। हमारे साथ जो AR2 है, वो हमारे साथ है कबीर छिल्लर। कबीर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको पहले से उम्मीद थी कि सेकंड रैंक आएगी आपकी?
3: कोटा आने से पहले तो बिल्कुल भी उम्मीद तो थी कि होप्स तो रखता ही हूँ, बट स्टिल आके काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ एंड एंड तक तो मेरे को लग गया था कि अच्छी खासी रैंक आ जाएगी।
1: क्योंकि जो टॉपर है शुभम कुमार, वो आपके दोस्त हैं और एक नंबर से आप रहे हैं।
3: हाँ, चलता रहता है, अब ज़्यादा सोचता नहीं उसके बारे में। थोड़ा पेपर के बाद अगले 4-5 दिन में थोड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा था, अब तो एक्सेप्ट हो गया, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और दोस्ती है मेरा तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है।
1: तो कोटा आने का कब सोचा था आपने, क्या सोचा था?
3: मैं 11th में दिसंबर में आया था कोटा, एंड वही उस साल मैंने देखा था कि AR1 कोटा से आई है वेद भैया की, तो वही देख के मैं फॉलो किया।
0: कबीर का मानना है कि लंबे समय तक पढ़ने के बजाय छात्रों के लिए कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना ज्यादा जरूरी है। कबीर का सपना IIT मुंबई के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बीटेक करने का है। इसके बाद वो दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में गिने जाने वाले मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करना चाहते हैं। कबीर की तरह जतिन की सफलता भी एक मिसाल है। ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल करने वाले जतिन झुंझुनू के हैं। वो एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और सीकर में रहकर परीक्षा की तैयारी की। रोजाना करीब 7 से 8 घंटे पढ़ाई की, अनुशासन और सोशल मीडिया से दूरी जतिन की कामयाबी का यही मूल मंत्र है।
4: मेरे इस रिजल्ट का क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को और अपने फैकल्टीज को देना चाहूँगा। उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है और आगे मैं अभी IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का। रोजाना जब क्लासेस चलती थी तब 6 से 7 घंटे मैं पढ़ाई करता था और जब क्लासेस ऑफ हो गई थी तब 11 से 12 घंटे मैं पढ़ाई करता था। एजुकेशन का माहौल तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी कॉम्पिटिशन भी है और टीचर्स ही हैं जिन्होंने सब कुछ सिखाया। वही चीज़ मैं पेपर में करके आया, वहीं से मैंने सीखा, वहीं से मैंने अप्लाई करना सीखा, तो टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं की वजह से मैं ये कर पाया हूँ।
0: JEE टॉपर्स के नाम आज लोगों की जुबान पर है, लेकिन ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा पास की। आज उनके घर परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। JEE एडवांस में इस साल करीब 180,000 छात्र शामिल हुए, जिनमें से करीब 57,000 छात्रों ने बाजी मारी। कोटा से चेतन गुर्जर, सीकर से सुशील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: जहां संसाधन कम हो वहां सपने अक्सर मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो हालात भी रास्ता नहीं रोक पाते। बिहार के गया की पटवा टोली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। सीमित संसाधनों के बीच पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों ने JEE एडवांस जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर नई मिसाल कायम कर दी है। ये कहानी केवल परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और शिक्षा की ताकत से जिंदगी बदलने की कहानी है।

0: पढ़ाई के लिहाज से शायद ये माहौल सीरियस न लगे, मगर यहाँ जीनियस की कमी नहीं है। 1, 2, 3, 4 बस गिनते जाते। जेईई एडवांस के नतीजों में यहाँ के छात्रों की लिस्ट इस साल 10 पर जाकर ठहरी है, यानी संस्थान के 10 छात्रों ने एक साथ जेईई एडवांस में बाजी मारी। संस्थान का नाम है वृक्ष, गया की पटवा टोली का कोचिंग संस्थान वृक्ष। इस संस्था की कामयाबी की एक किताब में एक और नया पन्ना जुड़ गया। एक बार फिर से मेहनतकश परिवार और गरीब तबके के बच्चों ने यहाँ से देश के कठिन परीक्षाओं में शुमार जेईई एडवांस में अपना दम दिखाया है। विद्या रानी के पिता एक प्राइवेट टीचर हैं और बेटी ने 86% अंकों के साथ कामयाब छात्रों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार पढ़ाई और कुछ हासिल करने का जज्बा। विद्या की सफलता देश के हर छात्र के लिए एक मिसाल बन गई है।
1: मेरी OBC रैंक 10,517 है। जेईई मेंस में मेरी परसेंटाइल 93.3 थी। एडवांस में रैंक इतनी है और मार्क्स 86 है। मेहनत तो काफ़ी, 3 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत लगी है। तो काफ़ी मेहनत, रोज सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे, 6 से 7 बजे तक लगातार बैठ के पढ़ाई करना, बस बीच में 1 घंटे का ब्रेक रहता था और उसके अलावा तो पढ़ाई करती थी। मैं वृक्ष बी द चेंज में पढ़ाई की हूँ। यहाँ पे फ्री एजुकेशन, फ्री एंड फेयर एजुकेशन रहता था। यहाँ पे लाइब्रेरी मॉडल है, मतलब यहाँ पे आके हम पढ़ सकते हैं, रात में भी रुक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिन में आया करती थी। 3-4 महीने मैं यहाँ पे हॉस्टल में भी रुकी और फिर मैंने पढ़ाई करा। मेरी मम्मी हाउस मेकर है और पापा प्राइवेट टीचर है। जी बिल्कुल, मैं वृक्ष के लिए, जैसे वृक्ष ने मेरे लिए इतना कुछ करा, मैं इस यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। ये वृक्ष का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो वैसे ही मैं भी चाहूँगी कि आगे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ। पढ़ाई में उनकी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं उनका ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी।
0: ज्ञान की धरती है गया और गया में ही मौजूद है पटवा टोली। कोई बुनकरों की नगरी कहता है, कोई मैनचेस्टर ऑफ बिहार, लेकिन बरसों से मानपुर का ये इलाका जिस तरह से कपड़ों के साथ थोक में इंजीनियर बना रहा है, अब इसकी पहचान विलेज ऑफ IITians के तौर पर है। यहाँ के गरीब तबके के छात्रों ने अपनी प्रतिभा की अद्भुत कहानी आसमान पर लिख दी है और ये सिलसिला इस साल के जेईई एडवांस में भी जारी है। नतीजे आए तो यहाँ के बच्चों ने एक बार फिर से सफलता का इतिहास रच दिया। और खूबी ये है कि ये छात्र उस तबके से हैं जिनके पास पढ़ाई पर खर्च करने के लिए जरूरी पैसे भी नहीं है। हाँ, लेकिन गणित के सवालों को हल करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। ओम कुमार के पिता पावरलूम में धागा जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अब ओम को देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान में दाखिला मिलने वाला है।
2: बच्चा हो, चाहे वो पटवा हो, नॉन पटवा, उससे मतलब नहीं होता। यहाँ कोई भी बच्चा आके लाभ उठा सकता है इस फ्री एंड फेयर एजुकेशन का। इसमें जो भैया लोग होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, सभी लोग काफ़ी मददगार होते हैं। उन्होंने हमें आगे जो कोर्सेज होते हैं, आगे जो करियर ऑप्शन होते हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। और जो एकेडमिक्स जो भी पढ़ते रहते हैं, उनमें जो बीच बीच में जो भी डॉट्स आते हैं, वो सभी डॉट्स सॉल्व करते हैं। और हमें भी अपने जो जूनियर्स होते हैं, उनका भी डॉट सॉल्व करना होता है। इससे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड होता है ब्रिज में, जो कि, और मैंने यहाँ 2 साल रह के पढ़ाई की। IIT JEE में क्वालिफाई भी कर लिया। मेरा IIT JEE में रैंक है 10,668 OBC। और मैं वृक्ष को इस काम के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही नेक काम है। जो भी बच्चे आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। मेरे पिताजी जो इधर पावर लूम में धागा जोड़ने का काम करते हैं, और मेरी माता जी हाउस वाइफ है। IIT JEE में रैंक लाने के लिए लगभग रोज 7 से 8 घंटे तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, और मैंने वो पढ़ा है। शुरू में जब आप मेहनत करते रहते तो उस टाइम पे तो लगता है कि होगा या नहीं होगा, पर आज जब ये रिजल्ट आया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: पटवा टोली में पावरलूम की खटखट आवाज के साथ एक बदलाव की शुरुआत साल 1992 से हुई। तब जितेंद्र कुमार नाम के एक छात्र ने IIT परीक्षा में सफलता हासिल की थी। जितेंद्र मिसाल बने और नए रास्ते पर मशाल लेकर आगे बढ़ा ये कोचिंग संस्थान। साल 2013 में वृक्ष नामक संस्था की शुरुआत हुई, जिसने छात्र छात्राओं को निःशुल्क तैयारी का मंच दिया। मुकाबला कड़ा है, मंजिल आसान नहीं, इसीलिए कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के साथ बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ भूलकर गणित के सवालों में उलझे रहते हैं। दिल्ली में रहने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के जाने माने शिक्षक भी मुफ्त में ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जिस तबके से ये बच्चे आए हैं, वहाँ सुख सुविधा का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन आंखों में सपने हैं, मन में उसे पूरा करने का जुनून है। यूं ही नहीं कोई आईटीएन बन जाता।
3: इस बार लगभग 10 बच्चे मतलब ये क्वालिफाई किए हैं और 31 बच्चे ये जेई मेन के लिए अटेंड किए थे एग्जाम के लिए, जेई एडवांस के लिए। यहाँ पे मेनली जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो ये निशुल्क सेवा है हम लोगों का कि बच्चे को निशुल्क देते हैं, और बाकी 8 बजे बच्चे आते हैं यहाँ पे, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है और फिर लगभग 7-8 बजे तक यहाँ पे रहते हैं, और बाकी हॉस्टल का भी फैसिलिटी है। दिन रात जिसको जिस तरह से पढ़ना है, जितना मेहनत करना है, हमारे सर लोग हैं, कुलदीप सर, सुनील सर, जितने भी लोग हैं सब एकजुट मिल करके प्रिपरेशन कराते हैं बच्चे। कुछ का माता पिता तो यहीं बुनकर हैं और बुनकर का ही काम करते हैं, कुछ का माता पिता बाहर रहते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं होते वही लोग मेनली यहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब वृक्ष हम लोग 2013 से चला रहे हैं और बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर ऐसे ही टाइम दे करके सपोर्ट करते हैं। तो मेनली तो जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं वो अपना कुछ कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं हमारे पास और उसी से चलता है। हाँ, यहाँ पे तो हर घर में पावर लूम है और खटखट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जो बच्चे यहाँ के हैं उनका तो आदत लगा हुआ है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे बिहार से बाहर से हो गया या गया से बाहर से हो गया, तो उनको 1 महीना थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर वो आदत हो जाती है।
0: पटवा टोली में रहने वाले बुनकर समाज के लोगों के पास पैसा नहीं है, पर प्रतिबद्धता है। गरीबी में आंख खोलने वाले ये बच्चे भी मेहनत से नसीब बदलने में जुटे हैं। मेधावी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर इंजीनियर बनाने का मिशन कई लोगों के साझे प्रयास से है। इसमें कोचिंग संस्थान के अलावा वो बच्चे भी शामिल हैं जो यहाँ से इंजीनियर बनकर अब नौकरी कर रहे हैं। उनसे न सिर्फ आर्थिक मदद मिलती है बल्कि वो ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। बच्चों ने कामयाबी की राह पकड़ी तो परिवार और समाज की सोच बदली। चंद्रकांत पाटेश्वरी की मेहनत और समर्पण को हर तबके का साथ मिला। बुद्धिजीवियों ने भी इस मुहिम को दिशा दी, खासकर समाज सेवी कृष्ण प्रसाद पटवा ने बुनकर समुदाय के बीच जागरूकता फैलाई और उनकी दिखाई राह पर बुनकर समाज आगे चल पड़ा। आज पटवा टोली में करघों की आवाज गूंजती है तो उसके साथ ही कुछ बड़ी ख्वाहिशें भी पलती हैं। समाज ने समझ लिया है कि पढ़ाई से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि मेडिकल, रेलवे और प्रशासनिक सेवाओं में भी बच्चे अपनी जगह बना रहे हैं और साथ ही दूसरे बच्चों के लिए अलग भी जगा रहे हैं। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: सफलता कभी संयोग से नहीं मिलती, उसके पीछे सालों की तैयारी, त्याग और निरंतर प्रयास छिपे होते हैं। JEE एडवांस के नतीजों में जयपुर के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया कि सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। किसी ने टॉप 100 में जगह बनाई तो किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। इन युवाओं की उपलब्धि केवल व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए गर्व का विषय है। उनकी ये कामयाबी आने वाले विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देती है।

0: कड़ी मेहनत, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य जब साथ चलते हैं तो परिणाम इतिहास बनाता है। जेईई एडवांस 2026 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर के छात्रों ने पूरे देश में अपनी मेहनत का परचम लहरा दिया है। कई छात्रों ने बेहतरीन रैंक हासिल कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया है।
1: एडवांस के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं और राजस्थान के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है, क्योंकि टॉप 10 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं राजस्थान से जिन्होंने जगह बनाई है और खास करके रैंक AIR 1 और 2 भी राजस्थान से है। जयपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप 100, टॉप 200 और टॉप 300 में अपनी जगह बनाई है।
0: जयपुर के प्रखर ने ऑल इंडिया रैंक 69 हासिल करके शहर में पहला स्थान पाया है। उनकी मेहनत और लगातार अभ्यास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। रुचित अग्रवाल ने 99वीं रैंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया और टॉप 100 में जगह बनाई और ईशान गुप्ता ने 100वीं रैंक हासिल कर टॉप 100 में जगह बनाई। भाग्येश जैन ने 166वीं रैंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा चैनिका मंडल ने 279वीं रैंक हासिल कर लड़कियों में जयपुर की टॉपर बनने का गौरव पाया। गौरव शर्मा ने 292वीं रैंक और दिव्यांश सोनी ने 589वीं रैंक हासिल कर अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं गर्वेश शर्मा ने 1000वीं रैंक हासिल कर टॉप 1000 में अपनी जगह पक्की की।
2: मेरा नाम प्रकाश शर्मा है और अभी मेरी जे एडवांस में रैंक 69 आई है। मैम, तैयारी करने के लिए मैंने 6 क्लास में एलिंग को ज्वाइन किया था। मैं 6 क्लास एलिंग के साथ में हूँ। टीचर्स की गाइडेंस हमेशा से लिए, डाउट्स को हमेशा सॉल्व करा है और जैसे धीरे धीरे करते करते मिस्टेक्स को सॉल्व करते करते इस रैंक पे पहुँचे।
1: अच्छा, चैलेंजेस हम आपसे हर बार पूछते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। आपने मेंस भी दिया है, एडवांस भी दिया है, उससे पहले भी आपने एक राउंड और दिया था, तो कलेक्टिवली जब आप इतने सारे अटेम्प्ट्स देते हैं तो मन में बार बार क्या एक प्रॉब्लम है जो दोहराती रहती है?
2: इतने सारे अटेम्प्ट देते हो तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो बर्नआउट की प्रॉब्लम होने लग जाती है कि जब आप पेपर पे पेपर दे जा रहे हैं तो फिर कभी कभार आपके माइंड में फीलिंग आती है कि ये जो पेपर से वो भी खत्म नहीं होंगे। मतलब ये लॉजिकली सही नहीं है पर आपके माइंड में लग जाता है। इसलिए आपको अपने आप को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप अपने फैमिली से बात करते रहें, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर से बात करते रहें, ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो हमेशा हाई रहे और आपका जो गोल है वो हमेशा आपके दिमाग में रहे।
0: इस साल के परिणामों में खास बात ये रही कि जयपुर से 3 छात्र टॉप 100 में आए और कुल 23 छात्रों ने टॉप 1000 में जगह बनाई। इससे साफ पता चलता है कि जयपुर अब देश के बड़े एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है। जेईई एडवांस की तैयारी आसान नहीं होती है, इसके लिए लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है और एक तय रूटीन बनाकर चलना पड़ता है। जयपुर के तकरीबन सभी कामयाब छात्रों ने माना है कि पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया, रील्स और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाना भी जरूरी है।
3: मेरी 99 है।
1: और आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है आपने, क्या करना है?
3: मैं भी सेम दिल्ली CS जाऊंगा, उसके बाद कॉलेज में और भी अपॉर्चुनिटीज आती है उनमें देखेंगे।
1: उनमें देखना है। आपको सबसे ज्यादा क्या चैलेंजिंग लगा आपकी पूरी जर्नी में, जब तक आप अलग अलग अटेम्प्ट्स दे रहे थे उस टाइम पे?
3: मैम सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करता था, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मतलब मेरे पास कंटेंट होते हुए मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी थी और मैं क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया, पर मैं वही छोटी मोटी गलती 5 लैम्डा नहीं पढ़ा, लैम्डा पढ़ लिया, उसको ऑप्शन गलत पढ़ लिया, वो चीजें कर देता था, उस वजह से मार्क्स में बहुत ज्यादा उड़ा देता था। तो वो चीज मेरे पे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो मेंस 1 के बाद मैंने वो चीज कंट्रोल करी थी 3-4 महीने में और वो सही हो गया।
1: किस तरीके से कंट्रोल की थी, कैसे आपने इस चीज को मतलब इस चीज पे काम किया और खुद को इस चीज से इसके लिए बेटर बनाया?
3: मैम टाइम देना पड़ा था, मतलब हर टेस्ट के बाद तो 1 घंटा डेडिकेट करना जरूरी था कि मैं अपना टेस्ट वापस से एनालाइज करूं, उसमें मेरी क्या गलतियां हो रही है, गलतियां क्यों हो रही हैं और उस गलती को आगे मैं कैसे सही करूंगा, वो चीज़ मेंशन करना जरूरी था। मैंने ऐसे लिस्ट बनाई थी और एक चीज़ भी थी FSV थी, फॉर्मूला सॉल्व और वेरीफाई। मतलब पहले क्वेश्चन देखती दिमाग में पहले फॉर्मूला आना चाहिए, फिर उसकी पूरी सॉल्विंग और फिर लास्ट में 1-10 सेकंड का वेरिफिकेशन अगर आप कर लें तो गलती होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, तो वो चीज बहुत अच्छी थी।
0: ईशान गुप्ता ने मेंस के बाद अपनी तैयारी की रणनीति बदल दी थी। उन्होंने कठिन सवालों पर ज्यादा ध्यान दिया और पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास बढ़ा दिया और हाँ, तनाव से बचने के लिए खेलकूद और परिवार के साथ समय बिताया।
1: ईशान, जब आप टॉप 100 में आते हैं तो जैसे ही आपको पता चलता क्या फीलिंग होती है जैसे रिजल्ट्स?
4: मैं बहुत खुश हुआ था, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि 100 के अराउंड आएगा, पर एग्जैक्ट 100 देख के तो बहुत खुशी हुई थी कि टॉप 100 के अंदर आने का मौका मिला था। पापा मम्मी को बताया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब उनके लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि उनने 2 साल मेरे को मेहनत करते हुए देखा था. अब 2 साल बाद जब मेरा रिजल्ट आया और मेरी एक्सपेक्टेशन के आसपास था तो फिर दे वर वेरी हैप्पी.
0: चयनिका की कामयाबी भी एक मिसाल है, जिनका मानना है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी विषय कठिन नहीं रहता.
1: जाते टाइम तो ठीक था, मतलब इतने सारे एलन के मॉक टेस्ट दिए तो इतनी ज़्यादा नर्वसनेस फील नहीं हो रही थी, तो नॉर्मल सा था. पर जब सेकंड पेपर के बाद में आई तो मुझे लगा कि सेकंड पेपर मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया है, फिर तो ठीक था.
5: तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी अंदर जाने से पहले एग्जाम हॉल के अंदर, कि कितनी रैंक का आपका टारगेट था?
1: मेरा टारगेट तो टॉप 200 था.
5: स्टिल इट्स गुड. आगे आपने क्या सोचा है और आगे भी जो चैलेंजेस आएंगे इस जर्नी में उससे कैसे ओवरकम आप करेंगे?
1: मैंने आगे IIT दिल्ली से CS करने का सोचा है और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूं अपनी हर पढ़ाई में.
0: जयपुर के स्टूडेंट ने अपना परचम तो लहरा दिया है, लेकिन चर्चा सूरत की रहने वाली उन्नति जैन की भी है, जिन्होंने ऑल इंडिया 43वीं रैंक हासिल की है. उन्नति ने लगभग 2 साल लगातार मेहनत की. मेहनत और लगन से छात्रों को ये मुकाम हासिल हुआ है. इनकी कामयाबी देश के लाखों छात्रों के लिए मिसाल है. जयपुर से रिधम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
6: हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही. बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता. नमस्कार.

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: एयरफोर्स के साथ DRDO ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी के लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों को बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: भारत ने किया अपनी सुपर किलर मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण, कमाल किया इसकी हाइपरसोनिक स्पीड, हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है रुद्र M2। रुद्र M2 को Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट से किया गया लॉन्च, 6,791 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा इसकी स्पीड। रुद्र M2 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई रडार सिस्टम या डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम पकड़ नहीं सकता। 300 किलोमीटर है रुद्र M2 की रेंज, अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है मिसाइल। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है यह मिसाइल, रुद्र M2 को हैदराबाद रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया विकसित। ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी भारतीय हथियारों की ग्लोबल मांग, ब्रह्मोस, आकाश, लोइटरिंग म्यूनिशंस और नेत्रा जैसे भारतीय हथियार प्रणालियों की ग्लोबल मांग में खास तौर से तेज बढ़ोतरी। 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंचा, रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले 62% की बढ़ोतरी। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने ऑपरेशन शेरुवाली की समीक्षा की, जमीनी स्तर पर ऑपरेशनल स्थिति का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का दिया गया है ऑपरेशन शेरुवाली का नाम, गंभीर मुगला से डोरीमल तक के घने जंगलों में जारी है ऑपरेशन। विपुल होंगे सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत, फिलहाल कतर में है भारत के एम्बेसडर। सीबीएसई को मिला नया बॉस, प्रशांत सीताराम बने चेयरमैन, सीनियर ब्यूरोक्रेट वरुण भारद्वाज की नए सचिव के तौर पर नियुक्ति। सीबीएसई मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, चेयरमैन और सचिव का तबादला। पीएफ के दखल के बाद ओएसएम केस में लिया गया एक्शन, कमेटी करेगी मामले की जांच। सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच हेतु एक सदस्य समिति का गठन, समिति की अध्यक्षता करेंगी एस राधा चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकसित चिलुआ ताल पर्यटन विकास और सुंदरीकरण परियोजना का किया लोकार्पण। ताल के किनारे होंगे आकर्षक घाट, पैदल चलने के लिए पाथवे, बर्डी की सुविधा और बच्चों के खेलने के लिए पार्क, टूरिज्म को बढ़ावा देना लक्ष्य। सीएम ने तालाबों के संरक्षण, इको टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट, सोलर प्लांट और स्वच्छता पर दिया जोर, चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा। कुशीनगर भी पहुंचे सीएम योगी, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। लगभग 450 करोड़ की अनुमानित लागत से बन रहा विश्वविद्यालय पूर्वी यूपी के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और उनकी आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। हैदराबाद के मियापुर में एक अनोखे क्लासरूम में बदला, बेकार पड़ा ओवरहेड पानी का टैंक, किसानों की क्लास में गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने में हो रहा काम। उधर कुछ श्रीनिवास की थी इस पहल की शुरुआत, अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित किया जीवन। वाराणसी में अब ट्रैफिक पुलिस को नहीं सताएगी गर्मी, पुलिस कर्मियों को बांटे गए 100 एसी हेलमेट। रिचार्जेबल बैटरी से लैस इस हेलमेट के अंदर इनबिल्ट है कूलिंग फैन जो सिर को रखता है ठंडा, हीट स्ट्रोक, चक्कर और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से लोगों को रखता है सुरक्षित। मुजफ्फरपुर में आयोजित महासहयोग शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़, शौचालय और आवास योजना से जुड़ी शिकायतों का हो रहा ऑन द स्पॉट निपटारा। ग्रीन एंड ग्रीन पंचायत में देश भर के आदर्श बनी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की ग्राम पंचायत लोहारड़ी, देश भर में मिला है तीसरा स्थान। पंचायत को 3 जून को दिल्ली में दिया जाएगा ये पुरस्कार, सम्मान के रूप में मिलने वाली 25 लाख की धनराशि को विकास कार्यों पर किया जाएगा खर्च। मुंबई में विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत पिंक ई रिक्शा सहायता पहल का शुभारंभ, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस हुई शामिल। फडणवीस की पत्नी का देखा अनोखा अंदाज, अमृता ने चलाया ऑटो रिक्शा। अमृता फडणवीस ने ई रिक्शा महिला चालकों को किया सम्मानित, कहा सरकार महिलाओं के हित में कर रही काम। भक्तों को IRCTC की तरफ से शानदार तोहफा, 3 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए लॉन्च कर रहा हवाई टूर पैकेज। लखनऊ से संचालित होगा 5 रात और 6 दिन का टूर पैकेज, 57,000 रुपए है एक व्यक्ति के पैकेज की कीमत। तमिलनाडु के मयिला दुथुराई के परिमाला रंगनाथर मंदिर में वसंतोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। उत्सव के दौरान देवता को सुगंधित द्रव्यों से कराया गया स्नान, विशेष पूजा अर्चना के साथ दिव्य आभूषणों और फूलों से सजाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौशल, जहां हज यात्रा पूरी कर लौट रहे यात्रियों का किया स्वागत। IPL जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात। आश्रम से बाहर निकलते वक्त विराट ने माथे पर दिखा चंदन और त्रिपुंड, गले में नजर आई तुलसी की माला। भक्ति के रंग बिरंगे किंग कोहली, महाराज से मुलाकात के बाद हाथ में दिखी आध्यात्मिक किताब। अनुष्का भी सिर पर दुपट्टा ओढ़े नई नजर, मैदान पर अपने आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर विराट कोहली, वृंदावन में दिखे पूरी तरह शांत और भक्ति में सराबोर। हर बड़े टूर्नामेंट जीतने पर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करते हैं विराट अनुष्का, अब तक 7 बार मिल चुके हैं विराट अनुष्का। हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता, अब तक 40,000 से अधिक भक्तों ने टेका मत्था। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, सुहाना मौसम भी बढ़ा रहा भक्तों का उत्साह। अत्यधिक ऊंचाई के कारण बीच बीच में हो रही हल्की बर्फबारी, फिर भी 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर गुरुद्वारा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। देवघर में श्रावणी मेला शुरू होने से पहले डाक कावड़ यात्रा में आस्था का एक अनोखा नजारा, एक पूर्व सैनिक जंजीरों से जकड़कर बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा करता नजर आया। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा देवघर के लिए रवाना हुए राम उदय सिंह, विश्व शांति और जनकल्याण की कामना के साथ कर रहे अनोखी यात्रा। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त, 40 दिनों में करीब 8,00,000 भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिल रही है वाहनों की लंबी कतारें, गेट सिस्टम के बावजूद कई जगह 7 से 8 किलोमीटर तक लग रहा है जाम। पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ धाम में लगातार बढ़ रही है भक्तों की भीड़, जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक 10,00,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। चंडीगढ़ के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और झुमके अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, किश्तवाड़ डोडा हाईवे हुआ प्रभावित, कई जगहों पर रास्ता बंद। बादल फटने के बाद लोगों का रेस्क्यू, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के भले हिस्सों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर बढ़ी फिसलन, जनजीवन प्रभावित। तेज हवाओं के बीच हुए भारी बारिश से बढ़ा भूस्खलन का खतरा, बिगड़े मौसम के कारण प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी। बांदीपोरा गुरेज मार्ग पर स्थित राजदान दर्रे पर हुई बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे, कैमरों में कैद किया नजारा। हिमाचल के चंबा में लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का मजा उठाने आ रहे लोग। पारंपरिक हिमाचली पोशाकों में तस्वीरें खिंचवा रहे सैलानी, टूरिस्ट के आने से स्थानीय कारोबारी भी खुश। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी तूफान के बीच भारी बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस, तापमान में गिरावट दर्ज। गुजरात के पाटन जिले में आंधी और तेज हवाओं के साथ मानसून की धमाकेदार एंट्री, राधनपुर में 1 इंच बारिश। बनासकांठा में अचानक बदला मौसम, तेज तूफान और बारिश के बीच तेज हवा ने में उड़ी कई कोल्ड स्टोरेज की टीम की छतें। दिल्ली में आज 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम, इस हफ्ते हीटवेव से मिलेगी निजात। देहरादून में भारी बारिश और आंधी के बाद तबाही, कई जगहों पर घिरे पेड़। महाराष्ट्र के बीड़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, जामुन और केले की फसलें बर्बाद। मदुरै में मूसलाधार बारिश, जनजीवन प्रभावित, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज। कोयम्बटूर में भी मूसलाधार बारिश, इलाके में दर्ज किया गया घना कोहरा। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का दमदार ट्रेलर आउट, 12 जून 2026 को सिनेमाघर में होगी रिलीज। शाहिद, कृति और रश्मिका की मच अवेटेड फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी, करीब 14 साल बाद आ रहा है कॉकटेल का सीक्वल।
3: रोजरात सुकून से सोते प्यार दोस्ती बन जाता है।
2: रामचरण की आगामी फिल्म पेद्दी का नया गाना मासा मासा रिलीज, जिसमें उनके पहलवान अवतार की दिख रही झलक। देवगन की दृश्यम 3 की शूटिंग हुई पूरी, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। थ्री इडियट्स की कहानी से उठ गया पर्दा, सेकंड पार्ट में 3 नहीं बल्कि होने वाले हैं 4 इडियट्स, राजकुमार हिरानी जल्द फाइनल करेंगे स्क्रिप्ट। पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं रणदीप हुड्डा, बेटी को कहानी सुनाते नजर आए, शेयर की क्यूट फैमिली फोटो। सैयारा के बाद फिर लौटेंगी आन पांडे और अनित पड्डा की जोड़ी, मोहित सूरी संग शुरू करेंगे नई लव स्टोरी, इसी साल अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी शूटिंग। हॉलीवुड और हॉरर ड्रामा फिल्म ऑब्सेशन का तहलका, 4 दिन में कमाया 8.57% का प्रॉफिट, इंडिया नेट कलेक्शन 9,75,00,000। सुपरस्टार यश का दिल छूने वाला अंदाज आया सामने, यश ने कैंसर जूझ रहे अपने एक फैन सुनील को किया वीडियो कॉल, उसकी ख्वाहिश पूरी की। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सागो सील, निर्माण में नियम उल्लंघन के तहत हुई कार्रवाई। बीसीसीआई ने साईराज बहुतोले को भारत का स्पिन बॉलिंग कोच किया नियुक्त, अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से ऐलान। अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट से पहले टीम इंडिया कैंप से जुड़े जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी आधिकारिक स्क्वाड में नाम नहीं होने के बावजूद बतौर बैकअप खिलाड़ी तलब। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या को साबित करनी होगी अपनी फिटनेस, बीसीसीआई का निर्देश, 14 जून से खेले जाने वाले हैं 3 वनडे मैचों की सीरीज। आईसीसी ने पहले आईसीसी विमेन चैंपियंस ट्रॉफी 27 के शेड्यूल में किया बड़ा बदलाव, अब 1 जून जुलाई के बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 तक होगा टूर्नामेंट। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंची स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, थाईलैंड की खिलाड़ी को 25-23 और 21-16 से हराया। लाखों ड्रोन्स के साथ जगमगा उठा दक्षिण चीन के गुइलिन का आसमान, एक बेहद खूबसूरत और खास थीम पर आधारित ड्रोन शो का हुआ आयोजन।

0: श्रीनगर में के मौसम में फिर से खुला शिनजियांग उइघुर में दुकू हाईवे, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। दुकू हाईवे पर बड़ी संख्या में अपनी गाड़ियों से गुजर रहे हैं पर्यटक, प्राकृतिक सौंदर्य का ले रहे मजा। एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी रास्ता है दुकू हाईवे, जो दुशांजी और कुचा के बीच 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क होने के नाते अपने शानदार प्राकृतिक नजारों के लिए मशहूर है हाईवे, जिसमें ग्लेशियर, जंगल और घास के मैदान शामिल। पहाड़ी मौसम की वजह से दुकू हाईवे पर हर सर्दियों में बर्फ जमने के कारण गाड़ियों के आने जाने पर लग जाती है मौसमी पाबंदियां। आमतौर पर जून के आसपास फिर से खुलता है हाईवे। हेल्दी ईटिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में बड़ी क्रांति, इस गर्मी में ऑटोमेटेड इंडोर ग्रोइंग यूनिट्स लॉन्च करने की योजना बना रही ब्रिटिश टेक्नोलॉजी कंपनी होम हार्वेस्ट। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी कंपनी की तकनीक आधुनिक खेती में क्रांतिकारी कदम, अब घर पर ही माइक्रोग्रीन सलाद और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकेंगे यूजर्स। हम दुनिया के खाने के तरीके को बदलने के मिशन पर हैं होम हार्वेस्ट, इस तकनीक के तहत लोगों को अपने घर में सिर्फ 8 दिन में अपना खाना खुद उगाने की सुविधा मिलेगी। ऐप के जरिए अपनी फसल चुन सकते हैं यूजर्स। कंपनी के स्मार्ट फॉर्म्स कनेक्टेड ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइटिंग, पानी देने, तापमान और नमी को करते हैं ऑटोमेट। खेती के भविष्य को आधुनिक रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है होम हार्वेस्ट। ऐप के आने वाले वर्जन में AI का इस्तेमाल करके फसल के साइज, सेहत, बढ़ने की रफ्तार और कटाई के समय का अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। खेती और पैकेजिंग के क्षेत्र में चीन का शानदार कदम, रोबोट के जरिए एप्पल फार्मिंग में आधुनिकीकरण पर जोर। पैकेजिंग के तहत एक रोबोट के जरिए छोटे सेवों पर लगाए जा रहे हैं सुरक्षात्मक बैग, पूर्वी चीन में स्थित दागों में हो रहा फील्ड टेस्ट। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी और एक टेक्नोलॉजी कंपनी विकसित कर रही है खास रोबोट, जो सीधा खेतों में ही करता है पैकेजिंग का काम। कंप्यूटर विजन और इंटेलिजेंट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को मिलाकर सेवों पर बैग लगाने की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाता है रोबोट, जो मैन पावर को मिनटों में करता है 50% कम। रिसर्च टीम के अनुसार इस रोबोट को बागों में अपने आप काम करने के लिए किया गया डिजाइन, जिसका लक्ष्य एक रोबोटिक हाथ से प्रति घंटे 600 बैग लगाने की क्षमता हासिल करना है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: हवाई के किलाऊआ ज्वालामुखी पर एक हैरान कर देने वाला नजारा कैमरे में कैद हुआ। अमेरिकी एजेंसी USGS के कैमरों ने ज्वालामुखी के ऊपर हवा में एक छोटे से घूमते हुए बवंडर को रिकॉर्ड किया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई खतरनाक तूफान या बड़ा बवंडर नहीं था, बल्कि ज्वालामुखी की गर्मी और मौसम

0: खास हालातों से बना एक अस्थायी हवा का चक्र था। वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 दिसंबर 2024 से यहां रुक रुक कर विस्फोट हो रहे हैं। वैसे तो इस ज्वालामुखी पर साइंटिस्ट की नजर रहती है, लेकिन इस बार इसके ऊपर बना बवंडर लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। तो इस बवंडर ने हैरान कर दिया, ज्वालामुखी के ऊपर ये बवंडर बना हुआ नजर आया है। अमेरिकी एजेंसी यूएसजीएस के कैमरों ने इसे रिकॉर्ड किया है। खिला हुआ ज्वालामुखी के ऊपर बवंडर की तस्वीरें सामने आई जो हैरान कर देने वाली है। इसको लेकर अब लोग हैरान हो गए हैं। हालांकि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज्वालामुखी के ऊपर यह छोटा सा बवंडर है। यूएसजीएस ने इसे अपने कैमरों में कैद किया है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
6: एयर फोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारेड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम बच्चों को सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो का चर्चा का विषय क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीठी वाणी के बारे में। ज्योतिष के हिसाब से किस प्रकार से मीठी वाणी का वरदान आपको मिलेगा। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई बार ऐसे हालात होते हैं जीवन में कि आप किसी को कड़वा बोल देते हैं, लेकिन उस कड़वाहट में ये भी होता है कि आप सामने वाले की भावनाओं को आहत कर देते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि मीठी वाणी कैसे बोले और इसका वरदान आपको ज्योतिष के हिसाब से कैसे मिलेगा। तमाम उपायों के बारे में पंडित जी आपको जानकारी देंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ।
1: अगर आप नृत्य या कला के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो जहां पर आप अभ्यास करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर नटराज की मूर्ति स्थापित करिए और अपना अभ्यास शुरू करने के पहले इनकी पूजा करिए, आपके लिए बेहतर होगा।
0: और चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। चर्चा का विषय हमने आपको बता दिया, उसी पर आते हैं। पहला सवाल पंडित जी से ये कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों के साथ संबंध होता है, वाणी को सुधारते कैसे हैं पंडित जी?
1: जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि आप अपनी वाणी को प्रभावशाली और मधुर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। देखिए, किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी आपकी वाणी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा तीसरा भाव और आठवां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। जिन भाव से आप व्यक्ति की वाणी देखते हैं, उन्हीं भावों से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। इस प्रकार वाणी, आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वृषभ राशि और बुध, इन दोनों का सीधा संबंध आपकी वाणी से होता है। इन दोनों का सीधा कनेक्शन आपके बोलने से होता है। ये व्यक्ति को अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करते हैं। बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी हैं और ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति भी व्यक्ति को बेहतरीन वाणी की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कुंडली का दूसरा भाव, वृषभ राशि और बुध, ये सब मिलकर के आपकी वाणी को कंट्रोल करते हैं, आपकी वाणी पर असर डालते हैं।
0: और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली तीन राशियों का वक्त जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। मेष, वृष और मिथुन, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, प्रश्न ये है कि कब व्यक्ति को कड़वा बोलने की आदत होती है, ये आदत पड़ती कैसे है, व्यक्ति की जबान अच्छी नहीं होती, तो उसको सुधारने के लिए ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं?
1: कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो कब व्यक्ति को कड़वा बोलने की आदत होती है? व्यक्ति खराब बोलता है, जिसकी वाणी सुनकर कष्ट होता है, कब ऐसा होता है? अगर किसी कुंडली में सूर्य या मंगल का प्रभाव ज्यादा हो तो ऐसे लोग खराब बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। राहु का संबंध अगर बुध या बृहस्पति से बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति कड़वा बोलता है, व्यक्ति सामान्यतः खराब बोलता है। कुंडली के दूसरे भाव पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, शनि का, राहु का, केतु का, अगर कुंडली के दूसरे भाव पर प्रभाव हो तो आदमी खराब बोलता है, आदमी कड़वा बोलता है। अगर किसी व्यक्ति की अग्नि तत्व की राशि है, मेष है, सिंह है या धनु है, तो उसके खराब बोलने की संभावना होती है। और अगर जल तत्व की राशि है, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो ऐसे लोग जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, तो बहुत कड़वा या बहुत खराब बोलने लगते हैं। जिनका खान पान ठीक नहीं होता, जिनकी जीवनचर्या ठीक नहीं होती, ऐसे लोग भी कड़वा बोलते हैं, खराब बोलते हैं। ऐसे लोगों के वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति गलत या अशुद्ध मंत्र का जप करता है तो उसकी वाणी दूषित हो जाती है, और ऐसे लोग सामान्यतः खराब या कड़वा बोलने लगते हैं। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगर वाणी के भाव से या वाणी के स्वामी से पाप ग्रहों का संबंध जीवन में बन जाए तो आदमी खराब बोलने लगता है, आदमी कड़वा बोलने लगता है, उसकी वाणी, उसकी बोली खराब हो जाती है।
0: देखिए, और भी सवाल पंडित जी से पूछेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब बारी आती है फिर से राशिफल पर आने की, और कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है वो आपको जानकारी दे देते हैं।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने

0: सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, घर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, धन संबंधी काम बन जाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए उस सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं जिसका आप सबको इंतजार रहता है, आपके भेजे हुए सवाल और पंडित जी के जवाब। उससे पहले पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, आपको जानकारी दे देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपकी परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो आप अपने तमाम सवाल ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, कौन से दर्शक का है आपके पास पहला सवाल?
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें भावना जी ने लिखा है और भावना जी हमें ऋषिकेश उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 16 सितंबर 1995, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है ऋषिकेश। ये कह रही हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह कब तक होगा और मैं विवाह के बाद भी अपना स्थान परिवर्तन करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह ऋषिकेश या इसके आसपास हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? भावना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय साल 2027 के आरंभ में बन रहा है। साल 2027 के आरंभ में आपके विवाह की संभावना बनती है और विवाह का मामला आपकी कुंडली में अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह के बाद आपके चेंज ऑफ प्लेस के योग नहीं बनते हैं। ज्यादातर संभावना है कि ऋषिकेश या उसके आसपास ही आपका विवाह हो जाएगा। आने वाला समय आपका बेहतर है, करियर और वैवाहिक जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी दिक्कत पंडित जी आपके पास आई है।
0: जी अगला प्रश्न हमें अनिरुद्ध जी ने लिखा है और अनिरुद्ध जी हमें मेल लिखते हैं अहमदाबाद गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 14 अक्टूबर 1973। जन्म का समय रात में 8:30। जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूँ और नौकरी के साथ स्थान भी बदलना चाहता हूँ, कब तक नौकरी मेरी बदल पाएगी? अनिरुद्ध जी, आपकी कुंडली में नौकरी बदलने की संभावना अभी नहीं है। अप्रैल 2027 तक आपको इंतजार करना चाहिए। अप्रैल 2027 के बाद आप नौकरी भी बदल सकेंगे और आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकेगा। तो अप्रैल 27 के बाद नौकरी और स्थान बदलने का प्रयास करें। आप गुजरात से निकलकर उत्तर दिशा में दिल्ली की तरफ या चंडीगढ़ पंजाब की तरफ जा सकते हैं। ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपका करियर अच्छा रहे, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी ये बताइए कि वो कौन से हालात होते हैं या कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी वाणी बोलता है, कब व्यक्ति की वाणी मधुर होती है?
0: बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, बड़ी अच्छी होती है। कब होता है ऐसा? अगर किसी कुंडली में बुध प्रबल हो जाए, बुध मजबूत हो जाए, तो व्यक्ति की वाणी अच्छी हो जाती है, व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है। अगर कुंडली में बुध भी मजबूत हो और बृहस्पति भी मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत अद्भुत बोलता है। उसके बोलने का, उसके प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया होता है। शनि अगर वाणी भाव में हो तो भी अच्छी वाणी सामान्यता मिलती है, लेकिन शनि पर और पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी शनि का प्रभाव वाणी पर होने से व्यक्ति टॉन्ट करता है, व्यंग बोलता है, व्यंगात्मक बोलता है, तीखा बोलता है, ऐसा भी देखा गया है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह कुंडली में बैठे हों, लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम, अगर इनमें केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति की वाणी बेहतर होती है। सामान्यतः जो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, वृषभ, कन्या और मकर, और वायु तत्व के लोग होते हैं मिथुन, तुला और कुंभ, इनकी वाणी सामान्यतः अच्छी होती है। वाणी के स्थान पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति बेहतर हो, वाणी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, आदमी का आचरण बेहतर हो, तो ऐसे लोग जीवन में सामान्यतः अच्छा बोलते हैं, ऐसे लोगों की वाणी सामान्यतः अच्छी होती है।
1: चलिए, सवाल बहुत सारे हैं पंडित जी से पूछने के लिए, लेकिन राशिफल के बारे में फिर से आपको बता देते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु वालों के भाग्य फल में क्या लिखा है वो जानकारी आपको देते हैं।
0: तुला राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, चोट चपेट से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक और सवाल है आपसे, वो ये कि वाणी या जो भी हम बोलते हैं, वाणी को मधुर बनने और बनाने के लिए और किस्मत को चमकाने के लिए क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं?
0: अब अगर आप अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करिए, कम से कम 27 बार सुबह, 27 बार शाम को, या 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र जप करने से वाणी, दिल, दिमाग, बुद्धि बेहतर होगी। खान पान को अपने शुद्ध रखें। अगर आपका खान पान पवित्र होगा, खान पान अगर शुद्ध होगा तो वाणी को शक्ति मिलेगी, तो अपने शुद्ध रखें। अगर आपका खान पान पवित्र होगा, खान पान अगर शुद्ध होगा तो वाणी को शक्ति मिलेगी। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास रखें, इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा। सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करिएगा, इससे भी वाणी को शक्ति मिलेगी। आपके मुंह से अपशब्द निकल गया, आप चिल्ला करके बोल दिए, गलत वाणी का प्रयोग हो गया, तुरंत कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, राम राम कुछ कहिए, भगवान का नाम लीजिए, ताकि गलत वाणी का प्रभाव आपके जीवन और आपके भाग्य पर ना पड़े। जो लोग निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, जो लोग निरंतर भगवान का नाम जपते हैं, ऐसे लोगों की वाणी पवित्र हो जाती है, वाणी शुद्ध हो जाती है। ऐसे लोगों की वाणी से अपराध नहीं होता, अपशब्द नहीं निकलते और धीरे धीरे उनकी वाणी मधुर हो जाती है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और एक बार फिर से आपको सूचित कर दूं कि कोई भी प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं इस शो में ईमेल के माध्यम से। अपने तमाम सवाल इस शो में आप भेज सकते हैं। पंडित जी, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न शैल बाला जी ने हमें लिखा है और शैल बाला जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 15 मई 1989, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र अभी विदेश में नौकरी कर रहा है और वो विवाह नहीं करना चाहता। जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र अभी विदेश में नौकरी कर रहा है और वो विवाह नहीं करना चाहता है, तो क्या मेरे पुत्र का विवाह होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? शैलबाला जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से साल 2027 में इनके विवाह के योग बनते हैं अप्रैल से दिसंबर 2027 का समय एक बेहतर समय है। इसमें आपके पुत्र का विवाह होगा उनकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। आपके पुत्र का विवाह किसी विदेशी बालिका से भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र का शीघ्र विवाह हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने पुत्र के नाम से हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आप दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में ले लेते हैं। पंडित जी, अंतिम सवाल कौन से दर्शक का आप तक आया है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न कृष्ण कुमार जी ने हमें लिखा है और कृष्ण कुमार जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1961, रात में 10:25, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। कृष्ण कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कर्ज से मुक्ति 2026 और 27 में मिलेगी। उसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है, लेकिन इन 2 सालों में आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपका आने वाला समय बेहतर दिखाई दे रहा है। भविष्य में पैसे रुपए को लेकर या जीवन को लेकर कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, आज के ही विषय से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे करती हूँ, वो ये कि घर के हालात बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं कि बच्चे की वाणी कैसी होगी। घर में बच्चे होते हैं हर किसी के, तो घर में ऐसा क्या किया जाए और अपने लिए ऐसा क्या कुछ किया जाए कि बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़े कि उसकी वाणी अच्छी हो।
0: जी देखिए, घर का जो माहौल है, बच्चे का जो खान पान है, बच्चे की जो आदतें हैं, वो बच्चे की वाणी पर असर डालती हैं, उसका प्रभाव बच्चे की वाणी पर पड़ता है। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो 3 बातों पर ध्यान दीजिए ताकि बच्चे की वाणी बिगड़ने ना पाए, वाणी खराब ना होने पाए। पहला, घर में अपशब्दों का, चीख चिल्लाहट का माहौल मत बनाइए। दूसरे नंबर पर बच्चे को बचपन से ही शुरुआत में 1 बार 3 बार, उसके बाद 9 बार 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ने की आदत डलवाइए। या तो बच्चा गायत्री मंत्र पढ़े या सुने बचपन से ही, और हनुमान चालीसा या तो पढ़े या तो सुने। अगर छोटी उम्र से ही बच्चा गायत्री मंत्र सुनेगा या पढ़ेगा या हनुमान चालीसा सुनेगा या पढ़ेगा तो बच्चे की वाणी में पवित्रता आ जाएगी और ग्रह खराब होने के बावजूद बच्चे की वाणी अच्छी रहेगी। बच्चा अपशब्द नहीं बोलेगा, खराब वाणी का प्रयोग नहीं करेगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है उनका बर्थडे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: के करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, हालांकि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस वर्ष में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा में एक साथ कई सारी आरती की जा सकती है? बहुत सारे लोग पूजा के बाद कई सारी आरती करते हैं, क्या ऐसा उचित है? देखिए, आरती पूजा का समापन है, इसलिए एक साथ ढेर सारी आरती नहीं करनी चाहिए। पूजा के अंत में एक मुख्य आरती करिएगा, वही आरती करना उचित होगा। और जैसे ही आप पूजा के अंत में आरती करेंगे, आरती के बाद पूजा का समापन हो जाएगा।
1: पंडित जी, अब ये बताइए कि शुभ पहर क्या है?
0: दिनांक 23 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी।
1: चलिए, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो आज की गुडलक राशि आपकी राशि कौन सी है वो भी आपको जानकारी देते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह का कौन सा दिन शुभ है। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। इनके लिए सोमवार, बृहस्पतिवार और रविवार का दिन अच्छा रहता है। इनको बुधवार को और शुक्रवार को महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए।
1: चले, तमाम उपायों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है विस्तार से। अब बारी आती है खास उपाय यानी महा उपाय, जिसको हम कहते हैं। तो पंडित जी, आज का विशेष उपाय महा उपाय क्या है?
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर त्वचा की समस्या से आपको परेशानी है तो क्या करें। एक हरे रंग की बोतल ले लें, उसमें नारियल का तेल भरें, ऊपर तक मत भरिएगा, थोड़ी सी जगह खाली छोड़िएगा। इस तेल को लगातार 2-3 दिन धूप में रहने दीजिएगा। 3 दिन में ये तेल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद जहां जहां त्वचा की समस्या है वहां वहां इसको लगाइएगा, त्वचा की समस्या में आपके सुधार होगा।
1: तो पंडित जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए, उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

ऑफिसर आशु गुप्ता साहिल देव आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात प्रगति की। मेघालय के चुनौतीपूर्ण टेरेन में भारतीय सेना ने हाल ही में प्रगति युद्धाभ्यास किया। प्रगति यानी पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत समेत 13 देशों की सेनाएं 20 से 31 मई तक हुए इस युद्धाभ्यास का हिस्सा भी बनी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सेनाओं के बीच में सहयोग, विश्वास और सामूहिक तैयारी को मजबूत करना था। प्रगति 2026 के तहत 12 देशों की सेनाएं भारत पहुंची और भारतीय सेना के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में उन्होंने हिस्सा भी लिया। इस अभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान गुड न्यूज टुडे भी मेघालय पहुंचा। इस दौरान हमारे संवाददाता ने करीब से भारतीय सेना के पराक्रम की इन तस्वीरों को देखा। ऑपरेशन प्रगति से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सीधे मेघालय के उमरोई मिलिट्री बेस से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

कि मुश्किलों को कर देते हैं चूर। ऊंचाइयों से इन्हें जरा भी खौफ नहीं,

न फिक्र है इन्हें दरिया की गहराइयों की। हौसलों को हथियार बना ये लड़ते हैं आफत से जंग। और मौत के जबड़े से छीन लाते हैं जिंदगी। ये हर पल करते हैं तैयारी जीत की।

0: क्योंकि ये है इंडियन आर्मी। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जांबाज भारत के पूरब में हुंकार भर रहे हैं। मेघालय के पहाड़ों पर ये भारतीय सेना के पराक्रम का प्रदर्शन है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन प्रगति 2026, जिसे भारत के सैनिकों ने 13 मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर अंजाम दिया। इकतीस मई तक मेघालय के उमरोई में चली इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपीन, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम की सेनाएं शामिल हुई। 2 हफ्ते चले अभ्यास में 20 महिला सैनिकों समेत 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया, अपने रणकौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया और खतरों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को धार दी।
1: मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में भारत की लीडरशिप में 12 देशों की सेनाएं एक साथ इकट्ठा हुई हैं। इस सभी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। सिर्फ वॉरफेयर सीखना, हथियारों के बारे में जानना, युद्ध कौशल सीखना इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद नहीं, बल्कि मकसद ये भी है कि किसी भी आपदा की सिचुएशन में कैसे ये सभी देश मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर सीखने और जानने की कोशिश की जा रही है। मुख्य मकसद इस मिलिट्री एक्सरसाइज का यही है कि सभी देशों की सेनाओं में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, उनमें आपसी समन्वय बढ़ पाए।
0: प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। जैसा नाम वैसा ही इस युद्धाभ्यास का मिशन भी था।
2: The focus of the exercise was on counter-insurgency operations based in semi-mountainous and jungle terrain. During this time, it was a great opportunity for all of us to share the best practices.
0: प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान 400 से ज्यादा जवानों ने रूम इंटरवेंशन, फायर एंड मूव ड्रिल्स, जंगल ऑपरेशंस, हेलीबोर्न ड्रिल्स और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसी ट्रेनिंग ड्रिल्स की। इन ड्रिल्स के जरिए 13 देशों की सेनाओं ने अपनी रक्षा तैयारियों को हर कसौटी पर परखा।
1: आप सिर्फ नतीजे सुनते हैं, किससे कहानियां सुनते हैं सेना के पराक्रम के, उनके शौर्य के, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सेना बेहद सजग, बेहद सतर्क होकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। इस एक्सरसाइज में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सेना के कुछ जवान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में IED बिछाई गई है। वो कैसे उससे बच के निकलेंगे, या अगर वो उसमें फंसते भी हैं तो फिर कैसे आगे रेस्क्यू का काम होगा। अब देखिए किस तरह से जो सैनिक हैं वो लगातार एक रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। ये पतला रास्ता देखिए, अब एक आईडी पर पैर पड़ा, वो एक्टिवेट हुआ, वहां ब्लास्ट हुआ। अब ये पूरी एक्सरसाइज इस बात की है कि जब आईडी जहां पर रखी थी वहां पर उनका पैर पड़ा है, इसका मतलब है कि दुश्मन आस पास ही है, इसका मतलब है कि दुश्मन घात लगाकर बैठा है, उनका इंतजार पहले से कर रहा था। यहां से सेना किस तरह से आगे इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को टेक ओवर करती है, उससे निकलने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है और साथ साथ दुश्मन पर बराबर घात लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, ये इस पूरी एक्सरसाइज में आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये एक मिलिट्री ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है जिसमें 12 देशों के जो सैनिक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और 12 देशों के सैनिकों के साथ ये हिस्सा लेने का मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे सिचुएशन में हम उनसे सीखते हैं कि अगर उनके यहाँ ऐसा होता है तो वो क्या नई चीजें करते हैं, वो बचने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, और अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो हम उनको सिखाते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएं और दुश्मन को करारा जवाब दे पाएं।
0: इस युद्धाभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। दो हफ्तों के दौरान सैनिकों को IED डिटेक्शन और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के अलावा रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और एनकाउंटर एम्बुश ड्रिल्स, स्लिदरिंग, जंगल रेंज शूटिंग जैसी विशेष सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। कई देशों के सैनिकों को मिलाकर बनाई गई टीमों ने संयुक्त ट्रेनिंग ली, जिससे आपसी तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी हुई।
1: नेचर के कई रूप होते हैं, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन सैनिक किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है। इस वक्त हम आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें इंडियन आर्मी को महारत हासिल है। ग्रैपलिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से एक ऊंचे पहाड़ से लगातार सैनिक नीचे उतर रहे हैं। कई युद्ध की कंडीशंस में, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, वो वहां पर सैनिकों के लिए परिस्थिति हमेशा सामान्य नहीं रहती, आसान नहीं रहती, लेकिन हर एक पॉइंट पर पहुंचना है, हर एक जगह से निगरानी करनी है, अपनी सीमा की देखभाल करनी है, और यही वजह है कि सैनिक कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, चाहे उसे कितने ही ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े या फिर इस तरह से उतरने पड़े। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि जो तमाम दूसरे देशों के सैनिक हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय सैनिक इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं, तो जरूर जो दूसरे छोटे छोटे देश आए हैं, कंबोडिया है, सिसिल्स है, उनके सैनिकों को यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा।
0: प्रगति एक्सरसाइज के दौरान काउंटर टेररिज्म पर फोकस करते हुए कई एक्सरसाइज की गई। इसके तहत एक डमी ऑपरेशन चलाया गया, जहाँ एक गांव में छुपे आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जवानों ने अभियान चलाया।
1: प्रगति 2026 में आपको हम मिलिट्री एक्सरसाइज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपने कई बार देखी होगी। इस वक्त आप देखिए हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारा जा रहा है, स्लिथरिंग कहते हैं इसे, और लगातार इसकी प्रैक्टिस की गई थी अलग अलग देशों के जवानों के साथ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब ऐसी स्थिति होती है जहां पर सैनिकों को जल्दी पहुंचना होता है, और ऐसी जगह जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पर सैनिकों को इस तरह से स्लिथरिंग करके हेलीकॉप्टर से उतरना होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सैनिकों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस स्पॉट पर पहुंचाया गया जहां पर आतंकी गतिविधि की सूचना थी, और उस सूचना के बाद इस तरह से हेलीकॉप्टर से जवानों को लेकर पहुंचा गया है, और अब यहां से एक हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए जवान नीचे उतरते हैं। अमूमन इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई आपदा की स्थिति हो, या जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकते, या फिर जहां पर कोई आतंकी गतिविधि हो और जवानों को तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचना हो। अभी भी यहां पर एक डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है जिसमें एक गांव के अंदर आतंकियों के होने की सूचना दी गई है। उस सूचना पर किस तरह से जवान जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंचेंगे, इसकी ये एक बानगी थी। और स्लिदरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है।
0: हेलीकॉप्टर से जवान सीधे टारगेट एरिया के पास उतरे और तुरंत गांव को खाली करवाने में जुट गए, ताकि आतंकियों की तरफ से काउंटर फायर की स्थिति में सिविलियंस को कोई नुकसान न हो। पूरा अभियान असल ऑपरेशन जैसे माहौल और परिस्थितियों के बीच किया गया।
1: मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरा एक विलेज बसाया गया है, और उस विलेज में ये सूचना मिली है कि वहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जब ये सूचना मिलती है उसके बाद आर्मी कैसे रिएक्ट करती है, उसका पूरा एक डेमोंस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अभी इसमें ये चल रहा है कि कैसे गांव को पहले खाली करवाया जा रहा है। गांव का जो प्रधान है उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके गांव पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। फिर गांव के जो प्रधान है वो सभी गांव वालों को बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। एक कम्युनिटी सेंटर बसाया गया है जहां पर सभी गांव वाले इस वक्त इकट्ठा हो रहे हैं।
0: इस अभ्यास के दौरान एक खास बात ये भी रही कि भारतीय सेना के K9 योद्धाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक्सरसाइज के दौरान एलन, विक्टर और डियो नाम के कुत्तों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं उनके साथ ही इस ऑपरेशन में बेहतर टेक सपोर्ट के लिए रोबोटिक डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया।
1: 2026 के इस फाइनल डेमोंस्ट्रेशन में आर्मी ये भी दिखाना चाह रही है कैसे जो पारंपरिक तरीके हैं किसी सिचुएशन से निपटने के, उसके साथ साथ मॉडर्न तकनीक अपनाई जाती है। इस वक्त जिस गांव में आतंकियों के छुपे होने की सूचना है, वहां पर आप देखिए कि सैनिक तो भेजे ही गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो रोबो डॉग है उसको भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, और वो भी अलग अलग तरह की जो सूचनाएं हैं, जो विजुअल्स हैं, वो सेना तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में किस तरह से एक रोबो डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो किस तरह से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल रहा है और सेना को भेज रहा है। तो इस पूरी प्रैक्टिस में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि ना सिर्फ जो पारंपरिक तरीके हैं ऑपरेशन के उनको अंजाम दिया जाए, उन तरीकों को अपनाया जाए, बल्कि साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो AI का इस्तेमाल हो, वो रोबोट का इस्तेमाल हो, वो सब चीज़ें भी कैसे की जाती हैं उसकी भी एक बानगी यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहला देखिए कि ये टारगेट हाउस है जहाँ पर जो सैनिक हैं वो पहुँचे हैं और पूरे गांव के एक एक घर को खाली करवाने के बाद जो यहाँ पर सैनिक हैं वो अब इस जगह से लगातार फायर कर रहे हैं। जो आप ये टू स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें आतंकियों के छिपे होने की सूचना है और जो सैनिक हैं उसके ठीक बगल में एक जो घर है वहाँ पर बैठ कर वो फायरिंग उन्होंने उस पर शुरू कर दी है। इस तरह से सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज में जब बहुत सारे देशों के लोग एक साथ आते हैं, बहुत सारे देशों की जो सेनाओं के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो एक साथ आते हैं तो वो समझते हैं कि अलग अलग टेरेन में, जब आप मान लीजिए कि कहीं पर कोई पहाड़ी है, कहीं कोई मैदानी इलाका है, ऐसे अलग अलग जगहों पर अगर ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो किस तरह से करना चाहिए। अमूमन सेना पहले ऐसे ऑपरेशंस में डॉग का इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ आप देखिए कि एक रोबो डॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। डॉग्स जो प्रॉपर डॉग्स होते हैं स्नाइपर्स, उनके साथ साथ जो रोबो डॉग्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी भी, जैसे किसी भी घर में अगर सेना तलाशी लेने जा रही है तो सबसे पहले उसी रोबो डॉग्स को आगे भेजती है। देखिए यहाँ से अब किस तरह से सेना दिखा रही है कि जब हम किसी टारगेट हाउस में घुसते हैं, मतलब जो टारगेट लोकेशन से जहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं वहां पर किस तरह से चीजों को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले घर के बाहर एक सीढ़ी लगाई गई है और उसके जरिए जो जवान है वो उस घर में दाखिल हो रहे हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक टेररिस्ट को यहाँ पर पकड़ा गया है और
0: टॉप फ्लोर
1: उसको पकड़ने के साथ साथ जो घर है घर के पूरे हिस्से पर जवानों की नजर रहे, उस घर पर कहीं भी अगर कोई दिखाई पड़ता है तो उसे आसानी से टारगेट वो कर सके, ये पूरी एक्सरसाइज ये बता रही है।
0: दो हफ्तों तक 13 देशों के सैनिकों ने इसी तरह कई तरह के ग्राउंड ऑपरेशंस की जोरदार तैयारी की। प्रगति एक्सरसाइज अपनी तैयारियों और स्किल्स को साझा करने का एक बेहतरीन मंच साबित हुई। आखिरी दिन युद्धाभ्यास के समापन समारोह में 40 से ज्यादा सीनियर सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में न सिर्फ युद्धाभ्यास की समीक्षा हुई बल्कि भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी की गई। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने फिक्की और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के सहयोग से स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित डिफेंस टेक और अगली पीढ़ी के मिलिट्री गैजेट्स का प्रदर्शन भी किया गया। वास्तव में कोई देश नहीं चाहता कि जंग हो या जंग जैसे हालात पैदा हो, लेकिन जंग की तैयारी की अहमियत को सब समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। तभी तो भविष्य में दुश्मन की चुनौती और तमाम खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर की सेनाएं ऐसे युद्धाभ्यासों के जरिए खुद को तैयार करती है। ऑपरेशन प्रगति भी इसी की एक बानगी था। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रगति 2026 का पहला संस्करण न केवल विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सामरिक तालमेल को नई ऊंचाई देने में सफल रहा, बल्कि इसने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के साझा लक्ष्य को भी मजबूती दी है। इसी लक्ष्य की मजबूती के लिए भारत की सेना ने प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान फिक्की के साथ मिलकर एक डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन भी किया। इस प्रदर्शनी में सेना के लिए नए हथियारों, एडवांस उपकरणों को डिस्प्ले किया गया। यहां एक ऐसा अनमैन्ड व्हीकल लाया गया जो 200 किलो का भार उठाकर किसी भी दुर्गम रास्ते पर दौड़ लगा सकता है।
1: हम जानते हैं हमारे जवानों की पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह पर होती है जहां पर किसी गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में कई बार उनके लिए खाना पहुंचाना, उनके लिए दवाइयां पहुंचाना और कई बार ऐसी जगहों पर हथियार पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे एक जवान अपने पीठ पे लाद कर चलता है, लेकिन अब इसका एक हल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हम जब आए हैं उमरोई में तो यहाँ पर आज इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले भी है और ये इस वक्त आप जिस व्हीकल को देख रहे हैं ये उसी प्रॉब्लम का सलूशन है। इसे आप देख रहे हैं, ये एक अनमैन व्हीकल है, मतलब इसमें बिना किसी आदमी को ऑपरेट इसमें बैठकर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये बिना किसी इंसान के रिमोट के जरिए इसको चलाया जा सकता है। लगभग 200 किलो का वजन इसमें रखकर कहीं भी आप रिमोट के जरिए पहुंचा सकते हैं। अभी जहां जहां भी जवान ऐसी जगह पर जाना होता है, ऊंचाई पर या किसी और जगह पर, तो अपने पीठ पर लादकर सामान ले जाते हैं। इसकी क्षमता क्या है? लगभग 200 किलो तक का ये सामान रखकर चल सकता है। रिमोट कंट्रोल्ड है ये, और साथ ही साथ आप देखिए कि 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है, और एक बार अगर ये चार्ज हो पूरा, ये बैटरी से चलता है, एक बार चार्ज होने पर लगभग 4 घंटे तक ये लगातार चल सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, कम से कम हमारे जवानों के लिए। कई दुर्गम इलाकों में जहां पर गाड़ियां नहीं आ सकती, उसमें इस सामान को रखकर उन इलाकों तक अब उस सामान को पहुंचाना आसान होगा, चाहे वो दवाई हो या हथियार हो या फिर वो खाने पीने का सामान हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक बस एक रिमोट के जरिए, और 2 किलोमीटर बैठकर भी इसको उस रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अगर सेना में इसको एंट्री मिल जाती है तो हमारे बहुत सारे जवानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मनीष अरसिया, उमरोई, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी तरह इस प्रदर्शनी में एक अनोखा ब्रिज भी डिस्प्ले किया गया जो बिना किसी टूल के सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। अब जरा सोचिए, दुर्गम इलाकों में सफर पेट्रोलिंग के वक्त ये पुल सेना के कितने काम आ सकता है।
1: एक ऐसा ब्रिज है जो महज 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। सेना के जवानों को अगर कभी कोई नाला पार करना हो, कोई नदी पार करनी हो, तो उसके लिए ये एक फटाफट ऐसा ब्रिज है जो झटपट तैयार हो जाएगा। इसे बनाया किसने? बहुत खास बात, रिटायर्ड कर्नल प्रेम जी है मेरे साथ, सुनील प्रेम जी, और उन्होंने इसको तैयार किया। जरूर इन्होंने अपनी सर्विसेज में वो दिक्कतें देखी होंगी जब जवान किसी नाले में उतर को से क्रॉस करते थे या दिक्कतें होती थी। आपने उस एक्सपीरियंस से समझा तभी इसका इनोवेशन हुआ?
4: बिल्कुल। सो होता कैसे है कि जब कोई जवान दुश्मन पे हमला करने जाता है तो हमले से पहले उसको ना सिर्फ ब्रिज को लॉन्च करना है, उसको उठा के भी लेके जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्रिज को उठाने की बजाय आप खींच के ले जाते हो, जैसे एयरपोर्ट पे आप एक ट्रॉली बैग ले जाते हो। उसके बाद तो ये एक हाथ से कोई भी जवान इसको आराम से खींच सकता है। उसके बाद ये टर्न हो जाता है और वो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पुल बन जाता है। दूसरी चीज, जब जवान लड़ाई कर रहा है तो उसके हाथ में हथियार होगा, पाना तो नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी टूल्स का किसी भी उसका जरूरत नहीं होती।
1: क्या बात है,
4: सब कुछ ऑटो लॉक होता जाता है और ये लेगो की तरह, लेगो जैसे बच्चों का टॉय नहीं होता, उसकी तरह फिट होता जाता है और 10 मिनट के अंदर बन जाता है।
1: क्या बात है,
4: दुनिया में ये लार्जेस्ट 50 मीटर स्पैन का है और इंडियन आर्मी में अब ये सप्लाई हो रहा है और अब BSF भी इसको देख रही है।
1: 50 मीटर के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन अगर हमें जो डिस्टेंस है 50 मीटर से ज्यादा कवर करना हो तो ये आसानी से मूव होके फिर आगे फिक्स हो सकता है।
4: जी बिल्कुल। तो जैसे BSF अभी इसे देख रही है तो तकरीबन 70 मीटर के लिए, ये तो है लेगो टाइप ही हुआ, आप फिट करते जाइए। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कितना करंट, कितना बहाव, उसके हिसाब से फिर हम इसको कितनी लंबाई है उस तक ले जाते हैं।
1: कितना वेट सर ये झेल सकती है?
4: जी एक मॉड्यूल जो है 0.35 टन ले लेता है।
1: 0.35 टन?
4: हाँ, तो इसको तो एक जवान लेना है फुली लोडेड। तो बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर इसमें लेते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल एक जवान का जीवन है, उसकी जान की बात है।
1: किन किन बातों का आपने ख्याल रखा है इसमें खासकर? एक तो बात हुई कि भाई इजिली मूवेबल हो, आसानी से आप उसको मूव करो और फिक्स कर लो। इसके अलावा कि वजन हो अगर, या फिर आप किस तरह के जगह पे काम करेगा, मतलब कितनी गहरी नदी हो, कितना गहरा नाला हो।
4: बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हैं, एक एक चीज इसके बारे में सोचनी पड़ती है। पहली बात तो गाड़ी में कैसे लेके आएंगे, तो अगर आप स्टेशन कैसे हैं, हाँ, तो ये एक के ऊपर एक ऐसे फिट होता जाता है और उसके बाद नीचे उतार के, जैसे बताया, इसको आप खींच के ले जाते हैं, टर्न कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं।

0: इसके ऊपर जब जवान जाते हैं तो कई ब्रिज होते हैं, उस पर एक बंदा एक टाइम पे क्रॉस करता है बिकॉज ब्रिज उसको कैरी नहीं। इसके ऊपर पूरी पलटन जितने लोग फिट हो सकते हैं एक साथ 30-40 लोग क्रॉस करते हैं। तो जब 500 बंदों की पलटन आपको पार करनी होती है तो बहुत कम टाइम, सिर्फ लॉन्च का कम टाइम नहीं है, पार का भी बहुत कम टाइम है। उसमें क्या करते थे, हम लोग बोट डालते थे। अब जब बोट डालते हैं तो पंक्चर हो जाता है, पंक्चर हो गया तो पूरे के पूरे बंदे जो बोट में बैठे हैं वो डूब जाएंगे। दूसरी बात, पंक्चर नहीं भी हुआ तो 10 जवान एक साथ बैठे हुए बहुत अच्छा टारगेट दुश्मन को बन जाते हैं, जबकि इसके ऊपर ऐसा नहीं होता कुछ।
1: और इसमें कोई वो नहीं कितनी डेप्थ में ये डूब सकता है क्या,
0: तो ये कोई भी डेप्थ हो ये डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट ये अनसिंकेबल फ्लोट इसको हम कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें बुलेट से आर्मी ने इसको टेस्ट किया है, श्रैपनल से टेस्ट किया है, तो इसमें इतना बड़ा फाड़ के आप होल भी कर दें तब भी ये डूबता नहीं है,
1: ये डूबेगा नहीं।
0: इसके अंदर एक एंटी, हम जो क्या क्या हाइड्रोफोबिक मटेरियल डालते हैं जो पानी को अंदर नहीं आने देता।
1: क्या बात है। इसके अलावा सर बहुत सारी चीजें आपने बनाई हैं सेना के लिहाज से, उसके मूवमेंट के लिहाज से, और क्या कुछ है?
0: तो उसी तरह का एक बहुत इनोवेटिव आपको ब्रिज दिखाऊंगा। तो ये एक ब्लॉक सा लग रहा है आपको, लेकिन ये व्हीकल ब्रिज है। तो इसको आप देखिए, ये ऐसे खुल जाता है और ये ऐसे हो जाता है, और यहाँ पर एक दूसरा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं इधर भी कनेक्ट हो जाता है और इसके और भी आगे लग सकता है। तो इसका ऐसा है कि एक सिर्फ ये करना, दो गाड़ी में 50 मीटर आप ले जा सकते हैं, और उससे आप छोटे व्हीकल ले जाएंगे, चार लगाइए तो कार्स और छोटे टेम्पो निकल जाएंगे, और ऐसे तीन अगर आपने यहाँ पे लगाए तो आप ट्रक भी ले जाएंगे, टेंटर।
1: ये सर कहाँ काम आएगा, किन कंडीशंस में?
0: तो ये सबसे ज्यादा एक सिर्फ सेना के लिए नहीं है, इसका सेना के लिए तो है ही है, डिजास्टर रिलीफ के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि जब बाढ़ आती है रेस्क्यू में तो कट जाता है, अब आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो हमारे पास ये पैदल का सॉल्यूशन तो था लेकिन गाड़ी का सॉल्यूशन नहीं था, तो ये उसका सॉल्यूशन है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके भी वही हैं, ये भी फट जाएगा तो डूबेगा नहीं वगैरह।
1: ये क्या है सर?
0: और ये जो है एक 100 टन के जो ब्रिज होते हैं, बहुत भारी ब्रिज, तो उन ब्रिजेस में क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी फिसलती है, क्योंकि ये लोहे का इसका सरफेस होता है। तो हमने इसके ऊपर एक एंटी स्किड कोटिंग दी है, जगह आप हाथ लगा के देखें, इसका फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, और सबसे बड़ी चीज इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, तो उस प्लेटों को आप बदलते रहते हैं, इसको आप लगाइए और भूल जाइए।
1: कितनी लाइफ होगी इसकी सर?
0: तो ये तकरीबन 40 साल में शायद एक बार अगर डैमेज होता है तो थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनजी स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए।

0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
2: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
4: Raat 8 baje, Good News Today par.
5: Good News Today isliye acha lagta hai, iske andar na वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम सब बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर इसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती तो जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मानकर शेयर करते थे और यही से शुरू होती है अफवाह क्या थी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन खचाखच भरी नजर आ रही, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते भी दिख रहे हैं। और कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
8: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों के लिए सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेन खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर शुरू होने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी अब डर के मारे इस तरह से भाग रहे हैं। ऐसे ही दावों के साथ एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल इन पोस्ट में कहा जा रहा है कि ये नजारा उस वक्त का है जब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन बांग्लादेश के एक स्टेशन पर पहुंची थी। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशियों के अंदर डिटेंशन कैंप में जाने का खौफ देखिए। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन जब पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के पहले स्टेशन पर पहुंची, तब का नजारा देखिए। बांग्लादेश की मीडिया भी बड़ी तादाद में इसकी कवरेज करने पहुंची है। अब बांग्लादेश के एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे 1 करोड़ लोग भारत में अवैध रूप से रहते हैं, अगर इनमें से 20% लोग भी वापस आ गए तो हमारा पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
7: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के डिटेक्ट डिटेन और डिपोर्ट मॉडल और डिटेंशन सेंटर की शुरुआत के बाद से ही अवैध घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। इस कड़े एक्शन के डर से वर्षों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक स्वयं ही अपना सामान बांधकर घर खाली कर सीमा वापस लौट रहे हैं। अब इसी से जुड़ता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन खचाखच भरी हुई है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश वापस लौट रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, लिहाजा वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली सभी ट्रेन सेवाएं बंद हैं। अब तक दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवा दोबारा शुरू करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, तो यहां ये बात तो साफ हो गई कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली, ऐसे में हमें वायरल वीडियो पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यह कि वायरल वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, अब देखिए सच में छूट गया।
8: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें ट्रेन का नाम और बाकी जानकारी दिखाई देती है। एक फ्रेम में ट्रेन की बोगी पर बांग्ला में चिलाहाटी एक्सप्रेस और उसके नीचे इंटरसिटी लिखा देखा जा सकता है। इंटरसिटी उन ट्रेनों को कहा जाता है जो एक ही देश के अलग अलग शहरों के बीच चलती हैं। सर्च करने पर हमें एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जून 2023 में ढाका से चिलाहाटी के बीच चलने वाली चिलाहाटी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। इससे साफ हो जाता है कि इस ट्रेन का भारत या पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ट्रेन अपडेट फॉर ढाका स्टेशन नाम के फेसबुक पेज पर 26 मई को अपलोड किया गया चिलाहाटी एक्सप्रेस का एक और वीडियो मिला। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक ये नज़ारा उस समय का है जब ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चिलाहाटी के लिए रवाना हो रही थी। एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर भी चिलाहाटी एक्सप्रेस के कई वीडियो मिले। 26 मई को अपलोड किए गए एक वीडियो में स्टेशन से रवाना होती खचाखच भरी इस ट्रेन के कई अलग अलग क्लिप्स देखे जा सकते हैं। इनमें से एक फ्रेम वायरल वीडियो से काफी मिलता जुलता है। वीडियो में रिपोर्टर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बकरीद के मौके पर ढाका के लोग भारी संख्या में अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से घर लौट रहे हैं।
9: राजधानी कमलापुर रेलवे स्टेशन घरमुख मानुष ढल नेमे आसन्न पवित्र ईद उल अजहा के केंद्र करे अपन ठिकाना फिर अनेक मानुष।
8: कुल मिलाकर साफ है कि बकरीद के मौके पर ढाका से घर लौट रहे लोगों के वीडियो को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जोड़कर गलत दावे किए जा रहे हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
8: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गठन के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शिवेंदु सरकार ने सीमा चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। राज्य सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बीएसएफ चौकियों और बाड़ बंदी के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए ये पहल की है। इन सब के बीच बॉर्डर पर तार लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तार बंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि वोट सही जगह देने से देश सुरक्षित हो जाता है, अब भारत की जनता का हक कोई बाहर से आकर नहीं छीन पाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन वीडियो में एक जवान के हाथ में एक पेपर जैसा दिखने वाला कुछ सामान अचानक से आता है और फिर वो गायब हो जाता है। एक जगह पर तार लगा रहा शख्स तारों में घुस जाता है, फिर कुछ देर बाद वो बाहर निकल कर आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता, जबकि वीडियो में नजर आ रहे तार नुकीले हैं। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
8: चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो में दिख रही घटना से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। वीडियो के दौरान हमें कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें वायरल दावे पर शक हुआ। मसलन वीडियो में नजर आ रहे लोगों और जवानों के चेहरे और शरीर के अंग काफी अटपटे दिख रहे हैं। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाइव मॉडरेशन की एनालिसिस इस वीडियो को AI से बनाए जाने की अधिकतम संभावना करीब 80% की पुष्टि करती है। डीप फेक्स एनालिसिस यूनिट ने AI डिटेक्शन टूल इमेज विस्परर के माध्यम से वीडियो का परीक्षण किया, जिसने पुष्टि की कि वायरल वीडियो असली नहीं है। DAU ने AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट की मदद से भी वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने करीब 99% तक वीडियो के AI से बने होने की संभावना जताई। DAU ने अपने निष्कर्ष में बताया कि वायरल दृश्यों में शरीर के कई अंग लंबे होते हुए नजर आते हैं। वीडियो में कई जगह कांटेदार तार आपस में जुड़ते और अलग होते हुए भी नजर आते हैं। साफ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने वाले लोगों का वायरल वीडियो फेक है। ये वायरल वीडियो वास्तविक घटना का नहीं है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
7: के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक बेहद प्यारा दृश्य देखने को मिलता है। एक परिवार नई साइकिल घर लेकर आया है। आमतौर पर लोग नई साइकिल खरीदने के बाद उसे चलाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन यहाँ परिवार ने पहले एक खास रस्म निभाई। वीडियो में एक छोटी बच्ची को गोद में उठाया गया और उसके पैर नई साइकिल के आगे वाले हिस्से पर लगवाए जा रहे हैं। देखने में ये एक छोटा सा दृश्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर जमकर प्यार बरसाया है। माँ के निधन के बाद कक्षा 9 की अस्मिता तमांग अपने 1.5 साल छोटे भाई को रोज स्कूल लेकर जाती है और उसकी देखभाल भी करती है। उसकी ये कहानी संघर्ष, जिम्मेदारी और हिम्मत की ऐसी मिसाल है जिसने लोगों को भावुक कर दिया है। लोग उसके इस वायरल वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्मिता तमांग अपनी कक्षा में सिर झुकाकर बैठी हुई है। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी है जो उसका छोटा भाई है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि छात्रा बेहद थकी हुई है और शायद उसे क्लास में बैठे बैठे ही झपकी आ गई हो। क्लास में मौजूद दूसरे छात्र और एक टीचर भी उसकी ओर देखते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य इतना भावुक है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी परिस्थितियों के बारे में जानने को मजबूर हो जाते हैं। अस्मिता ने मुश्किल परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ के निधन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। वो हर रोज अपने छोटे भाई को साथ लेकर स्कूल जाती हैं, ताकि उसकी देखभाल भी कर सकें और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें। ये वीडियो किसी बड़े इवेंट का नहीं, बल्कि एक साधारण से पिता पुत्र के रिश्ते की खूबसूरत झलक दिखाता है।
11: मेरे बाबू को स्पेशल।
10: छोटी सी ये क्लिप लोगों को यह एहसास दिला रही है कि असली खुशी और प्यार अक्सर रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है।
11: पापा की तरफ से ट्रीट मेरे बाबू को।
10: वीडियो की शुरुआत में बेटे की सोच दिखाई देती है, जिसमें वो अपने कैलोरी और फिटनेस को लेकर चिंतित नजर आता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। पिता अपने बेटे के कमरे में प्यार से भरा खाना लेकर आते हैं। ये कोई महंगा या खास खाना नहीं, बल्कि घर का बना साधारण लेकिन प्यार से तैयार किया गया भोजन होता है।
11: मेरे बाबू को स्पेशल।
10: पिता बड़े ही उत्साह के साथ बेटे को यह खाना देते हैं, जिसमें नूडल्स, सब्जियां, चटनी, सॉस और एक ड्रिंक शामिल होती है। बेटे के चेहरे की खुशी साफ बता देती है कि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि पिता का प्यार है। वो अपने डाइट प्लान को भूलकर इस पल को जीता है और पिता के इस छोटे से सरप्राइज को दिल से स्वीकार करता है।
11: मेरे बाबू को स्पेशल।
10: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करता दिख रहा है, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। दरअसल ये घटना बेंगलुरु के ब्यात रायनपुरा इलाके की बताई जा रही है, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई थीं। इसी दौरान एक दिव्यांग युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी और तेज ट्रैफिक के कारण वो बीच में ही फंस गया। हालात ऐसे थे कि एक छोटा सा कदम भी उसके लिए खतरा बन सकता था। आसपास गुजर रही गाड़ियां और बढ़ता पानी उसकी परेशानी को और बढ़ा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल अनिल कुमार की नजर जब उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ट्रैफिक को धीमा कराया ताकि कोई हादसा न हो। इसके बाद उन्होंने खुद उस युवक को अपने कंधे पर उठाया और सावधानी से पानी से भरी सड़क पार करवाई। भारी बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने पूरे धैर्य के साथ युवक को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया। इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद भावुक और दिल को सुकून देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये वीडियो एक ऐसी बुजुर्ग दादी का है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 87 साल सिर्फ दूसरों की देखभाल में गुजार दिए, लेकिन कभी समुद्र नहीं देखा था। जब उनके परिवार ने मिलकर दादी की इस आखिरी इच्छा को पूरा किया तो वहाँ जो नजारा दिखा उसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में जो नजारा दिखता है वो किसी फिल्म के सीन जैसा खूबसूरत है। समुद्र किनारे ठंडी हवाओं के बीच बुजुर्ग दादी बैठी हुई हैं और उनके साथ उनके दादाजी भी नजर आ

0: समुद्र की उठती गिरती लहरों को निहार रहे हैं। 87 साल की उम्र में पहली बार विशाल समुद्र को अपने सामने देखना दादी के लिए एक जादुई और बेहद भावुक पल था। परिवार के सभी सदस्य उन्हें घेर कर खड़े हैं और इस पल को एंजॉय कर रहे हैं।
1: What are the steps to start PowerPoint?
2: What are the steps to
1: start PowerPoint?
2: Start PowerPoint.
1: बच्चे का आंसर, क्लिक ऑन PowerPoint. PowerPoint will open.
0: हर स्कूल में और हर क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा मिल जाता है जो बातों का या फिर सवालों का अलग ही जवाब देता है, और उसकी बातें सुनने के बाद कई बार टीचर को भी हंसी आ जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहा है और वो जैसे ही उसका जवाब पढ़ता है उसकी हंसी नहीं रुकती है। दरअसल सवाल यह था कि पावर पॉइंट को शुरू करने के स्टेप्स क्या हैं। अब ऐसे सवाल का जवाब दूसरे बच्चों ने स्टेप्स के मुताबिक बताए, मगर एक बच्चे ने अनोखा जवाब दिया। उसने लिखा, आप पावर पॉइंट पर क्लिक करो, पावर पॉइंट खुल जाएगा।
1: What are the steps to start PowerPoint?
2: What are the steps to
1: start PowerPoint?
2: Start PowerPoint.
1: बच्चे का आंसर, क्लिक ऑन PowerPoint. PowerPoint will open.
0: अब यही जवाब पढ़ने के बाद वो शख्स जोर से हंसने लगा।
1: PowerPoint will open.
0: शादियों का सीजन हो और डीजे फ्लोर खाली रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी इसी डांस फ्लोर पर ऐसे ऐसे टैलेंट निकल आते हैं कि बड़े बड़े डांसर्स भी पीछे रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने शादी के फंक्शन में ऐसा डांस किया कि लोग उसे देसी माइकल जैक्सन कहने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स काले कपड़ों में पूरी तैयारी के साथ डांस फ्लोर पर उतरता है। खास बात यह है कि उसने अपने सिर पर बर्तन जैसा कुछ रखा हुआ है जो उसके स्टाइल को और भी मजेदार बना देता है। जैसे ही म्यूजिक बजता है उसका बॉडी कंट्रोल, स्टाइल और मूव्स देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बच्चे का टैलेंट लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चा बिना किसी महंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के सिर्फ एक प्लास्टिक की बाल्टी और लकड़ी के डंडे की मदद से शानदार धुन बजाता नजर आ रहा है। उसकी लय, ताल और कॉन्फिडेंस को देखकर लोग हैरान रह गए। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को फूट फूट कर रोते देखा गया। बताया गया कि दिल टूटने की वजह से वो रो रहा है। शख्स गाय के सामने बैठकर रो रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको इमोशनल कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि जानवरों में इमोशंस की समझ नहीं होती है, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिला। रोते रोते जब शख्स की हालत खराब हो गई, तब गौ माता ने अपनी ममता दिखाई। गाय ने अपना सिर उठाकर उस शख्स के कंधे पर रख दिया, मानो उसे चुप करा रही हो और सांत्वना दे रही हो। ये पल लोगों का दिल छू गया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य, और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।

0: कम से कम लोगों को।
1: YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म आलिया भट्ट का सबसे खतरनाक अवतार बॉबी देओल जैसा विलेन, और अब रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट। जी हाँ, जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस अल्फा को लेकर एक नहीं बल्कि कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है। आलिया और बॉबी के कथित अनबन पर खुद बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ी है, और अब फिल्म की कहानी को लेकर ऐसी डील सामने आई है जो इस स्पाई थ्रिलर को अब तक की सबसे डार्क फिल्म बना सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: जब मिशन खतरनाक हो तो खुद को हथियार बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तैयारी की है आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा के लिए। वो आलिया जिन्हें अब तक आपने रोमांस, ड्रामा और इमोशनल रोल्स में देखा, अब पहली बार बड़े पर्दे पर एक ऐसे अवतार में दिखेंगी जो खुखार भी होगा, घातक भी और बेहद रहस्यमय भी। लेकिन सबसे पहले बात फिल्म की रिलीज डेट की। अल्फा की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले मेकर्स इसे साल 2025 में रिलीज करना चाहते थे, इसके बाद फिल्म को अप्रैल 2026 और फिर 10 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन अब ताजा जानकारी बता रही है कि फिल्म 10 जुलाई नहीं बल्कि 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि यशराज फिल्म्स की तरफ से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की धमाल 4 के 17 जुलाई पर शिफ्ट होने के बाद मेकर्स को 3 जुलाई की विंडो ज्यादा बेहतर लगी। ऐसे में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को एक हफ्ता पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। लेकिन रिलीज डेट के साथ साथ जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कथित अनबन की खबरें, जो काफी समय से चर्चा में थी। चर्चा ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों सितारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब खुद बॉबी देओल ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बता दिया है। बॉबी के मुताबिक, मुझे भी किसी दोस्त ने उस खबर का स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं भी हैरान था, लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं। अब बात उस कहानी की जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्फा में आलिया किसी सामान्य रॉ एजेंट या स्पाई के रोल में नजर नहीं आएंगी बल्कि एक ऐसी खतरनाक असेसिन के किरदार में दिखेंगी जिसका पूरा बचपन ट्रेनिंग, दर्द और हिंसा के बीच गुजरा है। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिर्फ मारना सिखाया गया, जो धीरे धीरे एक घातक हथियार में बदल गई और जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि आलिया ने अपने करियर की सबसे कठिन फिजिकल तैयारी शुरू की। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने करीब 4 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट सीखी, हथियारों को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना सीखा, वायरवर्क और एरियल स्टंट्स की ट्रेनिंग ली और स्पीड और साथ ही फुटवर्क पर हफ्तों तक मेहनत की। बॉबी देओल भी आलिया की तैयारी देख हैरान रह गए थे। बॉबी ने आलिया की कमिटमेंट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की तैयारी उन्होंने की उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया। बॉबी की इन सभी बातों से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में आलिया और बॉबी के बीच कई हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देती है तो क्या ये वाकई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल एक्शन ब्लॉकबस्टर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम सब बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियांपुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात प्रगति की। मेघालय के चुनौतीपूर्ण टेरेन में भारतीय सेना ने हाल ही में प्रगति युद्धाभ्यास किया। प्रगति यानी पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत समेत 13 देशों की सेनाएं 20 से 31 मई तक हुए इस युद्धाभ्यास का हिस्सा भी बनी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सेनाओं के बीच में सहयोग, विश्वास और सामूहिक तैयारी को मजबूत करना था। प्रगति 2026 के तहत 12 देशों की सेनाएं भारत पहुंची और भारतीय सेना के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में उन्होंने हिस्सा भी लिया। इस अभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान गुड न्यूज टुडे भी मेघालय पहुंचा। इस दौरान हमारे संवाददाता ने करीब से भारतीय सेना के पराक्रम की इन तस्वीरों को देखा। ऑपरेशन प्रगति से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सीधे मेघालय के उमरोई मिलिट्री बेस से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

ये मुश्किलों को कर देते हैं चूर। ऊंचाइयों से इन्हें जरा भी खौफ नहीं। न फिक्र है इन्हें दरिया की गहराइयों की। हौसलों को हथियार बना ये लड़ते हैं आफत से जंग। और मौत के जबड़े से छीन लाते हैं जिंदगी। ये हर पल करते हैं तैयारी जीत की।

0: कि ये है इंडियन आर्मी। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जांबाज भारत के पूरब में हुंकार भर रहे हैं। मेघालय के पहाड़ों पर ये भारतीय सेना के पराक्रम का प्रदर्शन है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन प्रगति 2026, जिसे भारत के सैनिकों ने 13 मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर अंजाम दिया। इकतीस मई तक मेघालय के उमरोई में चली इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपीन, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम की सेनाएं शामिल हुई। दो हफ्ते चले अभ्यास में 20 महिला सैनिकों समेत 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया, अपने रणकौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया और खतरों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को धार दी।
1: मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में भारत की लीडरशिप में 12 देशों की सेनाएं एक साथ इकट्ठा हुई हैं। ये सभी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। सिर्फ वॉरफेयर सीखना, हथियारों के बारे में जानना, युद्ध कौशल सीखना इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद नहीं, बल्कि मकसद ये भी है कि किसी भी आपदा की सिचुएशन में कैसे ये सभी देश मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर सीखने और जानने की कोशिश की जा रही है। मुख्य मकसद इस मिलिट्री एक्सरसाइज का यही है कि सभी देशों की सेनाओं में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, उनमें आपसी समन्वय बढ़ पाए।
0: प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। जैसा नाम वैसा ही इस युद्धाभ्यास का मिशन भी था।
2: The focus of the exercise was on counter-insurgency operations based in semi-mountainous and jungle terrain. During this time, it was a great opportunity for all of us to share the best practices.
0: प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान 400 से ज्यादा जवानों ने रूम इंटरवेंशन, फायर एंड मूव ड्रिल्स, जंगल ऑपरेशंस, हेलीबोर्न ड्रिल्स और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसी ट्रेनिंग ड्रिल्स की। इन ड्रिल्स के जरिए 13 देशों की सेनाओं ने अपनी रक्षा तैयारियों को हर कसौटी पर परखा।
3: आप सिर्फ नतीजे सुनते हैं, किससे कहानियां सुनते हैं सेना के पराक्रम के, उनके शौर्य के, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सेना बेहद सजग, बेहद सतर्क होकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। इस एक्सरसाइज में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सेना के कुछ जवान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में IED बिछाई गई है। वो कैसे उससे बच के निकलेंगे, या अगर वो उसमें फंसते भी हैं तो फिर कैसे आगे रेस्क्यू का काम होगा। अब देखिए किस तरह से जो सैनिक हैं वो लगातार एक रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। ये पतला रास्ता देखिए, अब एक आईडी पर पैर पड़ा, वो एक्टिवेट हुआ, वहां ब्लास्ट हुआ। अब ये पूरी एक्सरसाइज इस बात की है कि जब आईडी जहां पर रखी थी वहां पर उनका पैर पड़ा है, इसका मतलब है कि दुश्मन आस पास ही है, इसका मतलब है कि दुश्मन घात लगाकर बैठा है, उनका इंतजार पहले से कर रहा था। यहां से सेना किस तरह से आगे इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को टेक ओवर करती है, उससे निकलने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है और साथ साथ दुश्मन पर बराबर घात लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, ये इस पूरी एक्सरसाइज में आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये एक मिलिट्री ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है जिसमें 12 देशों के जो सैनिक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और 12 देशों के सैनिकों के साथ ये हिस्सा लेने का मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे सिचुएशन में हम उनसे सीखते हैं कि अगर उनके यहाँ ऐसा होता है तो वो क्या नई चीजें करते हैं, वो बचने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, और अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो हम उनको सिखाते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएं और दुश्मन को करारा जवाब दे पाएं।
0: इस युद्धाभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। दो हफ्तों के दौरान सैनिकों को IED डिटेक्शन और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के अलावा रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और एनकाउंटर एम्बुश ड्रिल्स, स्लिदरिंग, जंगल रेंज शूटिंग जैसी विशेष सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। कई देशों के सैनिकों को मिलाकर बनाई गई टीमों ने संयुक्त ट्रेनिंग ली, जिससे आपसी तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी हुई।
3: नेचर के कई रूप होते हैं, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन सैनिक किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है। इस वक्त हम आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें इंडियन आर्मी को महारत हासिल है। ग्रैपलिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से एक ऊंचे पहाड़ से लगातार सैनिक नीचे उतर रहे हैं। कई युद्ध की कंडीशंस में, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, वो वहां पर सैनिकों के लिए परिस्थिति हमेशा सामान्य नहीं रहती, आसान नहीं रहती, लेकिन हर एक पॉइंट पर पहुंचना है, हर एक जगह से निगरानी करनी है, अपनी सीमा की देखभाल करनी है, और यही वजह है कि सैनिक कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, चाहे उसे कितने ही ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े या फिर इस तरह से उतरने पड़े। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि जो तमाम दूसरे देशों के सैनिक हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय सैनिक इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं, तो जरूर जो दूसरे छोटे छोटे देश आए हैं, कंबोडिया है, सेशल्स है, उनके सैनिकों को यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा।
0: प्रगति एक्सरसाइज के दौरान काउंटर टेररिज्म पर फोकस करते हुए कई एक्सरसाइज की गई। इसके तहत एक डमी ऑपरेशन चलाया गया, जहाँ एक गांव में छुपे आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जवानों ने अभियान चलाया।
3: प्रगति 2026 में आपको हम मिलिट्री एक्सरसाइज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपने कई बार देखी होगी। इस वक्त आप देखिए हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारा जा रहा है, स्लिथरिंग कहते हैं इसे, और लगातार इसकी प्रैक्टिस की गई थी अलग अलग देशों के जवानों के साथ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब ऐसी स्थिति होती है जहां पर सैनिकों को जल्दी पहुंचना होता है, और ऐसी जगह जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पर सैनिकों को इस तरह से स्लिथरिंग करके हेलीकॉप्टर से उतरना होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैनिकों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस स्पॉट पर पहुंचाया गया जहां पर आतंकी गतिविधि की सूचना थी, और उस सूचना के बाद इस तरह से हेलीकॉप्टर से जवानों को लेकर पहुंचा गया है, और अब यहां से एक हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए जवान नीचे उतरते हैं। अमूमन इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई आपदा की स्थिति हो, या जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं सकते, या फिर जहां पर कोई आतंकी गतिविधि हो और जवानों को तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचना हो। अभी भी यहां पर एक डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है जिसमें एक गांव के अंदर आतंकियों के होने की सूचना दी गई है। उस सूचना पर किस तरह से जवान जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंचेंगे, इसकी ये एक बानगी थी। और स्लिदरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है।
0: हेलीकॉप्टर से जवान सीधे टारगेट एरिया के पास उतरे और तुरंत गांव को खाली करवाने में जुट गए, ताकि आतंकियों की तरफ से काउंटर फायर की स्थिति में सिविलियंस को कोई नुकसान न हो। पूरा अभियान असल ऑपरेशन जैसे माहौल और परिस्थितियों के बीच किया गया।
3: मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरा एक विलेज बसाया गया है, और उस विलेज में ये सूचना मिली है कि वहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जब ये सूचना मिलती है उसके बाद आर्मी कैसे रिएक्ट करती है, उसका पूरा एक डेमोंस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अभी इसमें ये चल रहा है कि कैसे गांव को पहले खाली करवाया जा रहा है। गांव का जो प्रधान है उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके गांव पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। फिर गांव के जो प्रधान है वो सभी गांव वालों को बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। एक कम्युनिटी सेंटर बसाया गया है जहां पर सभी गांव वाले इस वक्त इकट्ठा हो रहे हैं।
0: इस अभ्यास के दौरान एक खास बात ये भी रही कि भारतीय सेना के K9 योद्धाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक्सरसाइज के दौरान एलन, विक्टर और डियो नाम के कुत्तों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं उनके साथ ही इस ऑपरेशन में बेहतर टेक सपोर्ट के लिए रोबोटिक डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया।
3: 2026 के इस फाइनल डेमोंस्ट्रेशन में आर्मी ये भी दिखाना चाह रही है कैसे जो पारंपरिक तरीके हैं किसी सिचुएशन से निपटने के, उसके साथ साथ मॉडर्न तकनीक अपनाई जाती है। इस वक्त जिस गांव में आतंकियों के छुपे होने की सूचना है, वहां पर आप देखिए कि सैनिक तो भेजे ही गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो रोबो डॉग है उसको भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, और वो भी अलग अलग तरह की जो सूचनाएं हैं, जो विजुअल्स हैं, वो सेना तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में किस तरह से एक रोबो डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो किस तरह से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल रहा है और सेना को भेज रहा है। तो इस पूरी प्रैक्टिस में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि ना सिर्फ जो पारंपरिक तरीके हैं ऑपरेशन के उनको अंजाम दिया जाए, उन तरीकों को अपनाया जाए, बल्कि साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो AI का इस्तेमाल हो, वो रोबोट का इस्तेमाल हो, वो सब चीज़ें भी कैसे की जाती हैं उसकी भी एक बानगी यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहला देखिए कि ये टारगेट हाउस है जहाँ पर जो सैनिक हैं वो पहुँचे हैं और पूरे गाँव के एक एक घर को खाली करवाने के बाद जो यहाँ पर सैनिक हैं वो अब इस जगह से लगातार फायर कर रहे हैं। जो आप ये टू स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें आतंकियों के छिपे होने की सूचना है और जो सैनिक हैं वो सिर्फ ठीक बगल में एक जो घर है वहां पर बैठकर वो फायरिंग उन्होंने उस पर शुरू कर दी है। इस तरह से सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज में जब बहुत सारे देशों के लोग एक साथ आते हैं, बहुत सारे देशों की जो सेनाओं के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो एक साथ आते हैं तो वो समझते हैं कि अलग अलग टेरेन में, जब आप मान लीजिए कि कहीं पर कोई पहाड़ी है, कहीं कोई मैदानी इलाका है, ऐसे अलग अलग जगहों पर अगर ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो किस तरह से करना चाहिए। अमूमन सेना पहले ऐसे ऑपरेशंस में डॉग का इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ आप देखिए कि एक रोबो डॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। डॉग्स जो प्रॉपर डॉग्स होते हैं स्नाइपर्स, उनके साथ साथ जो रोबो डॉग्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी भी, जैसे किसी भी घर में अगर सेना तलाशी लेने जा रही है तो सबसे पहले उसी रोबो डॉग्स को आगे भेजती है। देखिए यहाँ से अब किस तरह से सेना दिखा रही है कि जब हम किसी टारगेट हाउस में घुसते हैं, मतलब जो टारगेट लोकेशन से जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं वहां पर किस तरह से चीजों को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले घर के बाहर एक सीढ़ी लगाई गई है और उसके जरिए जो जवान हैं वो उस घर में दाखिल हो रहे हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक टेररिस्ट को यहाँ पर पकड़ा गया है और उसको पकड़ने के साथ साथ जो घर है, घर के पूरे हिस्से पर जवानों की नजर रहे, उस घर पर कहीं भी अगर कोई दिखाई पड़ता है तो उसे आसानी से टारगेट वो कर सके, ये पूरी एक्सरसाइज ये बता रही है।
0: दो हफ्तों तक 13 देशों के सैनिकों ने इसी तरह कई तरह के ग्राउंड ऑपरेशंस की जोरदार तैयारी की। प्रगति एक्सरसाइज अपनी तैयारियों और स्किल्स को साझा करने का एक बेहतरीन मंच साबित हुई। आखिरी दिन युद्धाभ्यास के समापन समारोह में 40 से ज्यादा सीनियर सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में न सिर्फ युद्धाभ्यास की समीक्षा हुई बल्कि भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी की गई। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने फिक्की और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के सहयोग से स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित डिफेंस टेक और अगली पीढ़ी के मिलिट्री गैजेट्स का प्रदर्शन भी किया गया। वास्तव में कोई देश नहीं चाहता कि जंग हो या जंग जैसे हालात पैदा हो, लेकिन जंग की तैयारी की अहमियत को सब समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। तभी तो भविष्य में दुश्मन की चुनौती और तमाम खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर की सेनाएं ऐसे युद्धाभ्यासों के जरिए खुद को तैयार करती है। ऑपरेशन प्रगति भी इसी की एक बानगी था। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: प्रगति 2026 का पहला संस्करण न केवल विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सामरिक तालमेल को नई ऊंचाई देने में सफल रहा, बल्कि इसने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के साझा लक्ष्य को भी मजबूती दी है। इसी लक्ष्य की मजबूती के लिए भारत की सेना ने प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान फिक्की के साथ मिलकर एक डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन भी किया। इस प्रदर्शनी में सेना के लिए नए हथियारों, एडवांस उपकरणों को डिस्प्ले किया गया। यहां एक ऐसा अनमैन्ड व्हीकल लाया गया जो 200 किलो का भार उठाकर किसी भी दुर्गम रास्ते पर दौड़ लगा सकता है।
3: हम जानते हैं हमारे जवानों की पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह पर होती है जहां पर किसी गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में कई बार उनके लिए खाना पहुंचाना, उनके लिए दवाइयां पहुंचाना और कई बार ऐसी जगहों पर हथियार पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे एक जवान अपने पीठ पे लाद कर चलता है, लेकिन अब इसका एक हल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हम जब आए हैं उमरोई में, तो यहाँ पर आज इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले भी है और ये इस वक्त आप जिस व्हीकल को देख रहे हैं ये उसी प्रॉब्लम का सलूशन है। इसे आप देख रहे हैं, ये एक अनमैन व्हीकल है, मतलब इसमें बिना किसी आदमी को ऑपरेट इसमें बैठ कर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये बिना किसी इंसान के रिमोट के जरिए इसको चलाया जा सकता है। लगभग 200 किलो का वजन इसमें रख कर कहीं भी आप रिमोट के जरिए पहुंचा सकते हैं। अभी जहां जहां भी जवान ऐसी जगह पर जाना होता है, ऊंचाई पर या किसी और जगह पर, तो अपने पीठ पर लादकर सामान ले जाते हैं। इसकी क्षमता क्या है? लगभग 200 किलो तक का ये सामान रखकर चल सकता है। रिमोट कंट्रोल्ड है ये, और साथ ही साथ आप देखिए कि 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है, और एक बार अगर ये चार्ज हो पूरा, ये बैटरी से चलता है, एक बार चार्ज होने पर लगभग 4 घंटे तक ये लगातार चल सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, कम से कम हमारे जवानों के लिए। कई दुर्गम इलाकों में जहां पर गाड़ियां नहीं आ सकती, उसमें इस सामान को रखकर उन इलाकों तक अब उस सामान को पहुंचाना आसान होगा, चाहे वो दवाई हो या हथियार हो या फिर वो खाने पीने का सामान हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक बस एक रिमोट के जरिए, और 2 किलोमीटर बैठकर भी इसको उस रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अगर सेना में इसको एंट्री मिल जाती है तो हमारे बहुत सारे जवानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मनीष अरसिया, उमरोई, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी तरह इस प्रदर्शनी में एक अनोखा ब्रिज भी डिस्प्ले किया गया जो बिना किसी टूल के सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। अब जरा सोचिए, दुर्गम इलाकों में सफर पेट्रोलिंग के वक्त ये पुल सेना के कितने काम आ सकता है।
3: एक ऐसा ब्रिज है जो महज 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। सेना के जवानों को अगर कभी कोई नाला पार करना हो, कोई नदी पार करनी हो, तो उसके लिए ये एक फटाफट ऐसा ब्रिज है जो झटपट तैयार हो जाएगा। और इसे बनाया किसने? बहुत खास बात, रिटायर्ड कर्नल प्रेम जी है मेरे साथ, सुनील प्रेम जी, और उन्होंने इसको तैयार किया। जरूर इन्होंने अपनी सर्विसेज में वो दिक्कतें देखी होंगी जब जवान किसी नाले में उतर को से क्रॉस करते थे या दिक्कतें होती थी। आपने उस एक्सपीरियंस से समझा तभी इसका इनोवेशन हुआ।
5: बिल्कुल। होता कैसे है कि जब कोई जवान दुश्मन पे हमला करने जाता है तो हमले से पहले उसको ना सिर्फ ब्रिज को लॉन्च करना है, उसको उठा के भी लेके जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्रिज को उठाने की बजाय आप खींच के ले जाते हो, जैसे एयरपोर्ट पे आप एक ट्रॉली बैग ले जाते हो। उसके बाद तो ये एक हाथ से कोई भी जवान इसको आराम से खींच सकता है। उसके बाद ये टर्न हो जाता है और वो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पुल बन जाता है। दूसरी चीज, जब जवान लड़ाई कर रहा है तो उसके हाथ में हथियार होगा, पाना तो नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी टूल्स का किसी भी उसका जरूरत नहीं होती।
3: क्या बात है,
5: सब कुछ ऑटो लॉक होता जाता है और ये लेगो की तरह, लेगो जैसे बच्चों का टॉय नहीं होता, उसकी तरह फिट होता जाता है और 10 मिनट के अंदर बन जाता है।
3: क्या बात है,
5: दुनिया में ये लार्जेस्ट 50 मीटर स्पैन का है और इंडियन आर्मी में अब ये सप्लाई हो रहा है और अब BSF भी इसको देख रही है।
3: 50 मीटर के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन अगर हमें जो डिस्टेंस है 50 मीटर से ज्यादा कवर करना हो तो ये आसानी से मूव होके फिर आगे फिक्स हो सकता है।
5: जी बिल्कुल। तो जैसे BSF अभी इसे देख रही है तो तकरीबन 70 मीटर के लिए, ये तो है लेगो टाइप ही हुआ, आप फिट करते जाइए। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कितना करंट, कितना बहाव, उसके हिसाब से फिर हम इसको कितनी लंबाई है उस तक ले जाते हैं।
3: कितना वेट सर ये झेल सकती है?
5: जी, एक मॉड्यूल जो है 0.35 टन ले लेता है।
3: 0.35 टन?
5: हाँ, तो इसको तो एक जवान लेना है फुली लोडेड। तो बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर इसमें लेते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल एक जवान का जीवन है, उसकी जान की बात है।
3: किन किन बातों का आपने ख्याल रखा है इसमें खासकर? एक तो बात हुई कि भाई इजिली मूवेबल हो, आसानी से आप उसको मूव करो और फिक्स कर लो। इसके अलावा कि वजन हो अगर, या फिर आप किस तरह के जगह पे काम करेगा, मतलब कितनी गहरी नदी हो, कितना गहरा नाला हो।
5: बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हैं, एक एक चीज इसके बारे में सोचनी पड़ती है। पहली बात तो गाड़ी में कैसे लेके आएंगे, तो अगर आप
3: स्टेशन कैसे हैं,
5: हाँ, तो ये एक के ऊपर एक ऐसे फिट होता जाता है और उसके बाद नीचे उतार के, जैसे बताया, इसको आप खींच के ले जाते हैं, टर्न कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं,

0: इसके ऊपर जब जवान जाते हैं तो कई ब्रिज होते हैं, उस पे एक बंदा एक टाइम पे क्रॉस करता है बिकॉज ब्रिज उसको कैरी नहीं। इसके ऊपर पूरी पलटन जितने लोग फिट हो सकते हैं एक साथ 30-40 लोग क्रॉस करते हैं। तो जब 500 बंदों की पलटन आपको पार करनी होती है तो बहुत कम टाइम, सिर्फ लॉन्च का कम टाइम नहीं है, पार का भी बहुत कम टाइम है। उसमें क्या करते थे, हम लोग बोट डालते थे। अब जब बोट डालते हैं तो पंक्चर हो जाता है, पंक्चर हो गया तो पूरे के पूरे बंदे जो बोट में बैठे हैं वो डूब जाएंगे। दूसरी बात, पंक्चर नहीं भी हुआ तो 10 जवान एक साथ बैठे हुए बहुत अच्छा टारगेट दुश्मन को बन जाते हैं, जबकि इसके ऊपर ऐसा नहीं होता कुछ।
1: और इसमें कोई वो नहीं कितनी डेप्थ में ये डूब सकता है क्या,
0: तो ये कोई भी डेप्थ हो ये डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट ये अनसिंकेबल फ्लोट इसको हम कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें बुलेट से आर्मी ने इसको टेस्ट किया है, श्रैपनल से टेस्ट किया है, तो इसमें इतना बड़ा फाड़ के आप होल भी कर दें तब भी ये डूबता नहीं है,
1: ये डूबेगा नहीं।
0: इसके अंदर एक एंटी, हम जो क्या क्या हाइड्रोफोबिक मटेरियल डालते हैं जो पानी को अंदर नहीं आने देता।
1: क्या बात है। इसके अलावा सर बहुत सारी चीजें आपने बनाई हैं सेना के लिहाज से, उसके मूवमेंट के लिहाज से, और क्या कुछ है?
0: तो उसी तरह का एक बहुत इनोवेटिव आपको ब्रिज दिखाऊंगा। तो ये एक ब्लॉक सा लग रहा है आपको, लेकिन ये व्हीकल ब्रिज है। तो इसको आप देखिए, ये ऐसे खुल जाता है और ये ऐसे हो जाता है, और यहाँ पर एक दूसरा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं इधर भी कनेक्ट हो जाता है और इसके और भी आगे लग सकता है। तो इसका ऐसा है कि एक सिर्फ ये करना, दो गाड़ी में 50 मीटर आप ले जा सकते हैं, और उससे आप छोटे व्हीकल ले जाएंगे, चार लगाइए तो कार्स और छोटे टेम्पो निकल जाएंगे, और ऐसे तीन अगर आपने यहाँ पे लगाए तो आप ट्रक भी ले जाएंगे, टेंटर।
1: ये सर कहाँ काम आएगा, किन कंडीशंस में?
0: तो ये सबसे ज्यादा एक सिर्फ सेना के लिए नहीं है, इसका सेना के लिए तो है ही है, डिजास्टर रिलीफ के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि जब बाढ़ आती है रेस्क्यू में तो कट जाता है, अब आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो हमारे पास ये पैदल का सॉल्यूशन तो था लेकिन गाड़ी का सॉल्यूशन नहीं था, तो ये उसका सॉल्यूशन है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके भी वही हैं, ये भी फट जाएगा तो डूबेगा नहीं वगैरह।
1: ये क्या है सर?
0: और ये जो है एक 100 टन के जो ब्रिज होते हैं, बहुत भारी ब्रिज, तो उन ब्रिजेस में क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी फिसलती है, क्योंकि ये लोहे का इसका सरफेस होता है। तो हमने इसके ऊपर एक एंटी स्किड कोटिंग दी है, अगर आप हाथ लगा के देखें इसका फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, और सबसे बड़ी चीज इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, तो उस प्लेटों को आप बदलते रहते हैं, इसको आप लगाइए और भूल जाइए।
1: कितनी लाइफ होगी इसकी सर?
0: तो ये तकरीबन 40 साल में शायद एक बार अगर डैमेज होता है तो थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा।
2: और चलिए इसी के साथ जे एन जी स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए।

0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: जी खबर।
0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम सब बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर इसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर इसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर इसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती तो जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मानकर शेयर करते थे और यही से शुरू होती है अफवाह क्या थी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन खचाखच भरी नजर आ रही, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते भी दिख रहे हैं। और कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों के लिए सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेन खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर शुरू होने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी अब डर के मारे इस तरह से भाग रहे हैं। ऐसे ही दावों के साथ एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल इन पोस्ट में कहा जा रहा है कि ये नजारा उस वक्त का है जब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन बांग्लादेश के एक स्टेशन पर पहुंची थी। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशियों के अंदर डिटेंशन कैंप में जाने का खौफ देखिए। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन जब पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के पहले स्टेशन पर पहुंची, तब का नजारा देखिए। बांग्लादेश की मीडिया भी बड़ी तादाद में इसकी कवरेज करने पहुंची है। अब बांग्लादेश के एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे 1 करोड़ लोग भारत में अवैध रूप से रहते हैं, अगर इनमें से 20% लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कि हमारे 1 करोड़ लोग भारत में अवैध रूप से रहते हैं, अगर इनमें से 20% लोग भी वापस आ गए तो हमारा पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
6: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के डिटेक्ट डिटेन और डिपोर्ट मॉडल और डिटेंशन सेंटर की शुरुआत के बाद से ही अवैध घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। इस कड़े एक्शन के डर से वर्षों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक स्वयं ही अपना सामान बांधकर घर खाली कर सीमा वापस लौट रहे हैं। अब इसी से जुड़ता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन खचाखच भरी हुई है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश वापस लौट रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, लिहाजा वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली सभी ट्रेन सेवाएं बंद हैं। अब तक दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवा दोबारा शुरू करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, तो यहां ये बात तो साफ हो गई कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली। ऐसे में हमें वायरल वीडियो पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच में झूठ क्या है।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें ट्रेन का नाम और बाकी जानकारी दिखाई देती है। एक फ्रेम में ट्रेन की बोगी पर बांग्ला में चिलाहाटी एक्सप्रेस और उसके नीचे इंटरसिटी लिखा देखा जा सकता है। इंटरसिटी उन ट्रेनों को कहा जाता है जो एक ही देश के अलग अलग शहरों के बीच चलती हैं। सर्च करने पर हमें एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जून 2023 में ढाका से चिलाहाटी के बीच चलने वाली चिलाहाटी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। इससे साफ हो जाता है कि इस ट्रेन का भारत या पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ट्रेन अपडेट फॉर ढाका स्टेशन नाम के फेसबुक पेज पर 26 मई को अपलोड किया गया चिलाहाटी एक्सप्रेस का एक और वीडियो मिला। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक ये नजारा उस समय का है जब ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चिलाहाटी के लिए रवाना हो रही थी। एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर भी चिलाहाटी एक्सप्रेस के कई वीडियो मिले। 26 मई को अपलोड किए गए एक वीडियो में स्टेशन से रवाना होती खचाखच भरी इस ट्रेन के कई अलग अलग क्लिप्स देखे जा सकते हैं। इनमें से एक फ्रेम वायरल वीडियो से काफी मिलता जुलता है। वीडियो में रिपोर्टर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बकरीद के मौके पर ढाका के लोग भारी संख्या में अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से घर लौट रहे हैं।
7: राजधानी कमलापुर रेलवे स्टेशन घर मुखो मानुष ढल नेमे आसन्न पवित्र ईद उल अजहा के केंद्र कर अपन ठिकाना फिर अनेक मानुष।
3: कुल मिलाकर साफ है कि बकरीद के मौके पर ढाका से घर लौट रहे लोगों के वीडियो को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जोड़कर गलत दावे किए जा रहे हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गठन के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शिवेंदु सरकार ने सीमा चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। राज्य सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बीएसएफ चौकियों और बाड़ बंदी के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए ये पहल की है। इन सब के बीच बॉर्डर पर तार लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तार बंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि वोट सही जगह देने से देश सुरक्षित हो जाता है, अब भारत की जनता का हक कोई बाहर से आकर नहीं छीन पाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन वीडियो में एक जवान के हाथ में एक पेपर जैसा दिखने वाला कुछ सामान अचानक से आता है और फिर वो गायब हो जाता है। एक जगह पर तार लगा रहा शख्स तारों में घुस जाता है, फिर कुछ देर बाद वो बाहर निकल कर आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता, जबकि वीडियो में नजर आ रहे तार नुकीले हैं। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
3: चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो में दिख रही घटना से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। वीडियो के दौरान हमें कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें वायरल दावे पर शक हुआ। मसलन वीडियो में नजर आ रहे लोगों और जवानों के चेहरे और शरीर के अंग काफी अटपटे दिख रहे हैं। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाइव मॉडरेशन की एनालिसिस इस वीडियो को AI से बनाए जाने की अधिकतम संभावना करीब 80% की पुष्टि करती है। डीप फेक्स एनालिसिस यूनिट ने AI डिटेक्शन टूल इमेज विस्परर के माध्यम से वीडियो का परीक्षण किया, जिसने पुष्टि की कि वायरल वीडियो असली नहीं है। DAU ने AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट की मदद से भी वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने करीब 99% तक वीडियो के AI से बने होने की संभावना जताई। DAU ने अपने निष्कर्ष में बताया कि वायरल दृश्यों में शरीर के कई अंग लंबे होते हुए नजर आते हैं। वीडियो में कई जगह कांटेदार तार आपस में जुड़ते और अलग होते हुए भी नजर आते हैं। साफ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने वाले लोगों का वायरल वीडियो फेक है। ये वायरल वीडियो वास्तविक घटना का नहीं है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
8: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक बेहद प्यारा दृश्य देखने को मिलता है। एक परिवार नई साइकिल घर लेकर आया है। आमतौर पर लोग नई साइकिल खरीदने के बाद उसे चलाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन यहाँ परिवार ने पहले एक खास रस्म निभाई। वीडियो में एक छोटी बच्ची को गोद में उठाया गया और उसके पैर नई साइकिल के आगे वाले हिस्से पर लगवाए जा रहे हैं। देखने में एक छोटा सा दृश्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर जमकर प्यार बरसाया है। माँ के निधन के बाद कक्षा 9 की अस्मिता तमांग अपने 1.5 साल छोटे भाई को रोज स्कूल लेकर जाती है और उसकी देखभाल भी करती है। उसकी ये कहानी संघर्ष, जिम्मेदारी और हिम्मत की ऐसी मिसाल है जिसने लोगों को भावुक कर दिया है। लोग उसके इस वायरल वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्मिता तमांग अपनी कक्षा में सिर झुकाकर बैठी हुई है। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी है जो उसका छोटा भाई है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि छात्रा बेहद थकी हुई है और शायद उसे क्लास में बैठे बैठे ही झपकी आ गई हो। क्लास में मौजूद दूसरे छात्र और एक टीचर भी उसकी ओर देखते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य इतना भावुक है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी परिस्थितियों के बारे में जानने को मजबूर हो जाते हैं। अस्मिता ने मुश्किल परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ के निधन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। वो हर रोज अपने छोटे भाई को साथ लेकर स्कूल जाती हैं, ताकि उसकी देखभाल भी कर सकें और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें। ये वीडियो किसी बड़े इवेंट का नहीं, बल्कि एक साधारण से पिता पुत्र के रिश्ते की खूबसूरत झलक दिखाता है। छोटी सी ये क्लिप लोगों को यह एहसास दिला रही है कि असली खुशी और प्यार अक्सर रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। वीडियो की शुरुआत में बेटे की सोच दिखाई देती है, जिसमें वो अपने कैलोरी और फिटनेस को लेकर चिंतित नजर आता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। पिता अपने बेटे के कमरे में प्यार से भरा खाना लेकर आते हैं। ये कोई महंगा या खास खाना नहीं, बल्कि घर का बना साधारण लेकिन प्यार से तैयार किया गया भोजन होता है। पिता बड़े ही उत्साह के साथ बेटे को यह खाना देते हैं, जिसमें नूडल्स, सब्जियां, चटनी, सॉस और एक ड्रिंक शामिल होती है। बेटे के चेहरे की खुशी साफ बता देती है कि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि पिता का प्यार है। वो अपने डाइट प्लान को भूलकर इस पल को जीता है और पिता के इस छोटे से सरप्राइज को दिल से स्वीकार करता है।
9: मेरे बाबू को स्पेशल।
8: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करता दिख रहा है, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। दरअसल ये घटना बेंगलुरु के ब्यात रायनपुरा इलाके की बताई जा रही है, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई थीं। इसी दौरान एक दिव्यांग युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी और तेज ट्रैफिक के कारण वो बीच में ही फंस गया। हालात ऐसे थे कि एक छोटा सा कदम भी उसके लिए खतरा बन सकता था। आसपास गुजर रही गाड़ियां और बढ़ता पानी उसकी परेशानी को और बढ़ा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल अनिल कुमार की नजर जब उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ट्रैफिक को धीमा कराया ताकि कोई हादसा न हो। इसके बाद उन्होंने खुद उस युवक को अपने कंधे पर उठाया और सावधानी से पानी से भरी सड़क पार करवाई। भारी बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने पूरे धैर्य के साथ युवक को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया। इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद भावुक और दिल को सुकून देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये वीडियो एक ऐसी बुजुर्ग दादी का है, जिन्होंने

0: हर स्कूल में और हर क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा मिल जाता है जो बातों का या फिर सवालों का अलग ही जवाब देता है, और उसकी बातें सुनने के बाद कई बार टीचर को भी हंसी आ जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहा है और वो जैसे ही उसका जवाब पढ़ता है उसकी हंसी नहीं रुकती है। दरअसल सवाल यह था कि पावर पॉइंट को शुरू करने के स्टेप्स क्या हैं। अब ऐसे सवाल का जवाब दूसरे बच्चों ने स्टेप्स के मुताबिक बताए, मगर एक बच्चे ने अनोखा जवाब दिया। उसने लिखा, आप पावर पॉइंट पर क्लिक करो, पावर पॉइंट खुल जाएगा।
1: What are the steps to start PowerPoint?
2: What are the steps to
1: start PowerPoint?
2: Start PowerPoint.
1: बच्चे का आंसर, क्लिक ऑन PowerPoint. PowerPoint विलो.
0: अब यही जवाब पढ़ने के बाद वो शख्स जोर से हंसने लगा।
1: PowerPoint विलो.
0: शादियों का सीजन हो और डीजे फ्लोर खाली रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभी इसी डांस फ्लोर पर ऐसे ऐसे टैलेंट निकल आते हैं कि बड़े बड़े डांसर्स भी पीछे रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने शादी के फंक्शन में ऐसा डांस किया कि लोग उसे देसी माइकल जैक्सन कहने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स काले कपड़ों में पूरी तैयारी के साथ डांस फ्लोर पर उतरता है। खास बात यह है कि उसने अपने सिर पर बर्तन जैसा कुछ रखा हुआ है जो उसके स्टाइल को और भी मजेदार बना देता है। जैसे ही म्यूजिक बजता है उसका बॉडी कंट्रोल, स्टाइल और मूव्स देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बच्चे का टैलेंट लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चा बिना किसी महंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के सिर्फ एक प्लास्टिक की बाल्टी और लकड़ी के डंडे की मदद से शानदार धुन बजाता नजर आ रहा है। उसकी लय, ताल और कॉन्फिडेंस को देखकर लोग हैरान रह गए। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को फूट फूट कर रोते देखा गया। बताया गया कि दिल टूटने की वजह से वो रो रहा है। शख्स गाय के सामने बैठकर रो रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको इमोशनल कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि जानवरों में इमोशंस की समझ नहीं होती है, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिला। रोते रोते जब शख्स की हालत खराब हो गई, तब गौ माता ने अपनी ममता दिखाई। गाय ने अपना सिर उठाकर उस शख्स के कंधे पर रख दिया, मानो उसे चुप करा रही हो और सांत्वना दे रही हो। ये पल लोगों का दिल छू गया।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म आलिया भट्ट का सबसे खतरनाक अवतार बॉबी देओल जैसा विलेन, और अब रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट। जी हाँ, जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस अल्फा को लेकर एक नहीं बल्कि कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है। आलिया और बॉबी की कथित अनबन पर खुद बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ी है, और अब फिल्म की कहानी को लेकर ऐसी डील सामने आई है जो इस स्पाई थ्रिलर को अब तक की सबसे डार्क फिल्म बना सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: जब मिशन खतरनाक हो तो खुद को हथियार बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तैयारी की है आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा के लिए। वो आलिया जिन्हें अब तक आपने रोमांस, ड्रामा और इमोशनल रोल्स में देखा, अब पहली बार बड़े पर्दे पर एक ऐसे अवतार में दिखेंगी जो खुखार भी होगा, घातक भी और बेहद रहस्यमय भी। लेकिन सबसे पहले बात फिल्म की रिलीज डेट की। अल्फा की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले मेकर्स इसे साल 2025 में रिलीज करना चाहते थे, इसके बाद फिल्म को अप्रैल 2026 और फिर 10 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन अब ताजा जानकारी बता रही है कि फिल्म 10 जुलाई नहीं बल्कि 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि यशराज फिल्म्स की तरफ से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की धमाल 4 के 17 जुलाई पर शिफ्ट होने के बाद मेकर्स को 3 जुलाई की विंडो ज्यादा बेहतर लगी। ऐसे में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को एक हफ्ता पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। लेकिन रिलीज डेट के साथ साथ जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कथित अनबन की खबरें जो काफी समय से चर्चा में थी। चर्चा ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों सितारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब खुद बॉबी देओल ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बता दिया है। बॉबी के मुताबिक, मुझे भी किसी दोस्त ने उस खबर का स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं भी हैरान था, लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं। अब बात उस कहानी की जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्फा में आलिया किसी सामान्य रॉ एजेंट या स्पाई के रोल में नजर नहीं आएंगी बल्कि एक ऐसी खतरनाक असेसिन के किरदार में दिखेंगी जिसका पूरा बचपन ट्रेनिंग, दर्द और हिंसा के बीच गुजरा है। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिर्फ मारना सिखाया गया, जो धीरे धीरे एक घातक हथियार में बदल गई और जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि आलिया ने अपने करियर की सबसे कठिन फिजिकल तैयारी शुरू की। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने करीब 4 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट सीखी, हथियारों को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना सीखा, वायरवर्क और एरियल स्टंट्स की ट्रेनिंग ली और स्पीड और साथ ही फुटवर्क पर हफ्तों तक मेहनत की। बॉबी देओल भी आलिया की तैयारी देख हैरान रह गए थे। बॉबी ने आलिया की कमिटमेंट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की तैयारी उन्होंने की उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया। बॉबी की इन सभी बातों से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में आलिया और बॉबी के बीच फाइट सीक्वेंस को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि जब ये फिल्म है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम सब बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात प्रगति की। मेघालय के चुनौतीपूर्ण टेरेन में भारतीय सेना ने हाल ही में प्रगति युद्धाभ्यास किया। प्रगति यानी पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत समेत 13 देशों की सेनाएं 20 से 31 मई तक हुए इस युद्धाभ्यास का हिस्सा भी बने। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सेनाओं के बीच में सहयोग, विश्वास और सामूहिक तैयारी को मजबूत करना था। प्रगति 2026 के तहत 12 देशों की सेनाएं भारत पहुंची और भारतीय सेना के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में उन्होंने हिस्सा भी लिया। इस अभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान गुड न्यूज टुडे भी मेघालय पहुंचा। इस दौरान हमारे संवाददाता ने करीब से भारतीय सेना के पराक्रम की इन तस्वीरों को देखा। ऑपरेशन प्रगति से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सीधे मेघालय के उमरोई मिलिट्री बेस से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

ये मुश्किलों को कर देते हैं चूर। ऊंचाइयों से इन्हें जरा भी खौफ नहीं। न फिक्र है इन्हें दरिया की गहराइयों की। हौसलों को हथियार बना ये लड़ते हैं आफत से जंग। और मौत के जबड़े से छीन लाते हैं जिंदगी। ये हर पल करते हैं तैयारी जीत की।

0: कि ये है इंडियन आर्मी। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जांबाज भारत के पूरब में हुंकार भर रहे हैं। मेघालय के पहाड़ों पर यह भारतीय सेना के पराक्रम का प्रदर्शन है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन प्रगति 2026, जिसे भारत के सैनिकों ने 13 मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर अंजाम दिया। से 31 मई तक मेघालय के उमरोई में चली इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपीन, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम की सेनाएं शामिल हुई। 2 हफ्ते चले अभ्यास में 20 महिला सैनिकों समेत 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया, अपने रणकौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया और खतरों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को धार दी।
1: मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में भारत की लीडरशिप में 12 देशों की सेनाएं एक साथ इकट्ठा हुई हैं। ये सभी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। सिर्फ वॉरफेयर सीखना, हथियारों के बारे में जानना, युद्ध कौशल सीखना इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद नहीं, बल्कि मकसद ये भी है कि किसी भी आपदा की सिचुएशन में कैसे ये सभी देश मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर सीखने और जानने की कोशिश की जा रही है। मुख्य मकसद इस मिलिट्री एक्सरसाइज का यही है कि सभी देशों की सेनाओं में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, उनमें आपसी समन्वय बढ़ पाए।
0: प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। जैसा नाम वैसा ही इस युद्धाभ्यास का मिशन भी था।
2: The focus of the exercise was on counter-insurgency operations based in semi-mountainous and jungle terrain. During this time, it was a great opportunity for all of us to share the best practices.
0: प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान 400 से ज्यादा जवानों ने रूम इंटरवेंशन, फायर एंड मूव ड्रिल्स, जंगल ऑपरेशंस, हेलीबोर्न ड्रिल्स और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसी ट्रेनिंग ड्रिल्स की। इन ड्रिल्स के जरिए 13 देशों की सेनाओं ने अपनी रक्षा तैयारियों को हर कसौटी पर परखा।
3: आप सिर्फ नतीजे सुनते हैं, किससे कहानियां सुनते हैं सेना के पराक्रम के, उनके शौर्य के, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सेना बेहद सजग, बेहद सतर्क होकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। इस एक्सरसाइज में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सेना के कुछ जवान आगे बढ़ रहे हैं लेकिन रास्ते में IED बिछाई गई है, वो कैसे उससे बच के निकलेंगे या अगर वो उसमें फंसते भी हैं तो फिर कैसे आगे रेस्क्यू का काम होगा। अब देखिए किस तरह से जो सैनिक हैं वो लगातार एक रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। ये पतला रास्ता देखिए, अब एक आईडी पर पैर पड़ा, वो एक्टिवेट हुआ, वहां ब्लास्ट हुआ। अब ये पूरी एक्सरसाइज इस बात की है कि जब आईडी जहां पर रखी थी वहां पर उनका पैर पड़ा है, इसका मतलब है कि दुश्मन आस पास ही है, इसका मतलब है कि दुश्मन घात लगाकर बैठा है, उनका इंतजार पहले से कर रहा था। यहां से सेना किस तरह से आगे इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को टेक ओवर करती है, उससे निकलने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है और साथ साथ दुश्मन पर बराबर घात लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, ये इस पूरी एक्सरसाइज में आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये एक मिलिट्री ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है जिसमें 12 देशों के जो सैनिक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और 12 देशों के सैनिकों के साथ ये हिस्सा लेने का मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे सिचुएशन में हम उनसे सीखते हैं कि अगर उनके यहाँ ऐसा होता है तो वो क्या नई चीजें करते हैं, वो बचने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं और अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो हम उनको सिखाते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएं और दुश्मन को करारा जवाब दे पाएं।
0: इस युद्धाभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। दो हफ्तों के दौरान सैनिकों को आईईडी डिटेक्शन और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के अलावा रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और एनकाउंटर एम्बुश ड्रिल्स, स्लिदरिंग, जंगल रेंज शूटिंग जैसी विशेष सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। कई देशों के सैनिकों को मिलाकर बनाई गई टीमों ने संयुक्त ट्रेनिंग ली, जिससे आपसी तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी हुई।
3: नेचर के कई रूप होते हैं, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन सैनिक किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है। इस वक्त हम आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें इंडियन आर्मी को महारत हासिल है। ग्रैपलिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से एक ऊंचे पहाड़ से लगातार सैनिक नीचे उतर रहे हैं। कई युद्ध की कंडीशंस में, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, वो वहां पर सैनिकों के लिए परिस्थिति हमेशा सामान्य नहीं रहती, आसान नहीं रहती, लेकिन हर एक पॉइंट पर पहुंचना है, हर एक जगह से निगरानी करनी है, अपनी सीमा की देखभाल करनी है, और यही वजह है कि सैनिक कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, चाहे उसे कितने ही ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े या फिर इस तरह से उतरने पड़े। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि जो तमाम दूसरे देशों के सैनिक हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय सैनिक इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं, तो जरूर जो दूसरे छोटे छोटे देश आए हैं, कंबोडिया है, सिसिल्स है, उनके सैनिकों को यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा।
0: प्रगति एक्सरसाइज के दौरान काउंटर टेररिज्म पर फोकस करते हुए कई एक्सरसाइज की गई। इसके तहत एक डमी ऑपरेशन चलाया गया, जहाँ एक गांव में छुपे आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जवानों ने अभियान चलाया।
3: प्रगति 2026 में आपको हम मिलिट्री एक्सरसाइज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपने कई बार देखी होगी। इस वक्त अब देखिए हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारा जा रहा है, स्लिथरिंग कहते हैं इसे, और लगातार इसकी प्रैक्टिस की गई थी अलग अलग देशों के जवानों के साथ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब ऐसी स्थिति होती है जहां पर सैनिकों को जल्दी पहुंचना होता है और ऐसी जगह जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पर सैनिकों को इस तरह से स्लिथरिंग करके हेलीकॉप्टर से उतरना होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सैनिकों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस स्पॉट पर पहुंचाया गया जहां पर आतंकी गतिविधि की सूचना थी, और उस सूचना के बाद इस तरह से हेलीकॉप्टर से जवानों को लेकर पहुंचा गया है, और अब यहां से एक हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए जवान नीचे उतरते हैं। अमूमन इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई आपदा की स्थिति हो, या जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं सकते, या फिर जहां पर कोई आतंकी गतिविधि हो और जवानों को तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचना हो। अभी भी यहां पर एक डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है जिसमें एक गांव के अंदर आतंकियों के होने की सूचना दी गई है, उस सूचना पर किस तरह से जवान जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंचेंगे, इसकी ये एक बानगी थी। और स्लिदरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है।
0: हेलीकॉप्टर से जवान सीधे टारगेट एरिया के पास उतरे और तुरंत गांव को खाली करवाने में जुट गए, ताकि आतंकियों की तरफ से काउंटर फायर की स्थिति में सिविलियंस को कोई नुकसान न हो। पूरा अभियान असल ऑपरेशन जैसे माहौल और परिस्थितियों के बीच किया गया।
3: मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरा एक विलेज बसाया गया है, और उस विलेज में ये सूचना मिली है कि वहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जब ये सूचना मिलती है उसके बाद आर्मी कैसे रिएक्ट करती है, उसका पूरा एक डेमोंस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अभी इसमें ये चल रहा है कि कैसे गांव को पहले खाली करवाया जा रहा है। गांव का जो प्रधान है उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके गांव पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। फिर गांव के जो प्रधान है वो सभी गाँव वालों को बाहर निकाल कर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। एक कम्युनिटी सेंटर बसाया गया है जहां पर सभी गांव वाले इस वक्त इकट्ठा हो रहे हैं।
0: इस अभ्यास के दौरान एक खास बात ये भी रही कि भारतीय सेना के केनाइन योद्धाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक्सरसाइज के दौरान एलन, विक्टर और डियो नाम के कुत्तों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं उनके साथ ही इस ऑपरेशन में बेहतर टेक सपोर्ट के लिए रोबोटिक डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया।
3: 2026 के इस फाइनल डेमोंस्ट्रेशन में आर्मी ये भी दिखाना चाह रही है कि कैसे जो पारंपरिक तरीके हैं किसी सिचुएशन से निपटने के, उसके साथ साथ मॉडर्न तकनीक अपनाई जाती है। इस वक्त जिस गांव में आतंकियों के छुपे होने की सूचना है, वहां पर आप देखिए कि सैनिक तो भेजे ही गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो रोबो डॉग है उसको भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, और वो भी अलग अलग तरह की जो सूचनाएं हैं, जो विजुअल्स हैं, वो सेना तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में किस तरह से एक रोबो डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो किस तरह से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल रहा है और सेना को भेज रहा है। तो इस पूरी प्रैक्टिस में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि ना सिर्फ जो पारंपरिक तरीके हैं ऑपरेशन के उनको अंजाम दिया जाए, उन तरीकों को अपनाया जाए, बल्कि साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो AI का इस्तेमाल हो, वो रोबोट का इस्तेमाल हो, वो सब चीज़ें भी कैसे की जाती हैं उसकी भी एक बानगी यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहला देखिए कि ये टारगेट हाउस है जहाँ पर जो सैनिक हैं वो पहुँचे हैं और पूरे गांव के एक एक घर को खाली करवाने के बाद जो यहाँ पर सैनिक हैं वो अब इस जगह से लगातार फायर कर रहे हैं। जो आप ये टू स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें आतंकियों के छिपे होने की सूचना है और जो सैनिक हैं उसके ठीक बगल में एक जो घर है वहाँ पर बैठकर वो फायरिंग उन्होंने उस पर शुरू कर दी है। इस तरह से सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज में जब आप जब बहुत सारे देशों के लोग एक साथ आते हैं, बहुत सारे देशों की जो सेनाओं के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो एक साथ आते हैं तो वो समझते हैं कि अलग अलग टेरेन में जब आप मान लीजिए कि कहीं पर कोई पहाड़ी है, कहीं कोई मैदानी इलाका है, ऐसे अलग अलग जगहों पर अगर ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो किस तरह करना चाहिए। अमूमन सेना पहले ऐसे ऑपरेशंस में डॉग का इस्तेमाल करती थी लेकिन यहाँ आप देखिए कि एक रोबो डॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। डॉग्स जो प्रॉपर डॉग्स होते हैं स्नाइपर्स, उनके साथ साथ जो रोबो डॉग्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी भी जैसे किसी भी घर में अगर सेना तलाशी लेने जा रही है तो सबसे पहले उसी रोबो डॉग्स को आगे भेजती है। देखिए यहाँ से अब किस तरह से सेना दिखा रही है कि जब हम किसी टारगेट हाउस में घुसते हैं, मतलब जो टारगेट लोकेशन से जहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं वहां पर किस तरह से चीजों को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले घर के बाहर एक सीढ़ी लगाई गई है और उसके जरिए जो जवान है वो उस घर में दाखिल हो रहे हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक टेररिस्ट को यहाँ पर पकड़ा गया है और उसको पकड़ने के साथ साथ जो घर है उस घर के पूरे हिस्से पर जवानों की नजर रहे, उस घर पर कहीं भी अगर कोई दिखाई पड़ता है तो उसे आसानी से टारगेट वो कर सके, ये पूरी एक्सरसाइज ये बता रही है।
0: दो हफ्तों तक 13 देशों के सैनिकों ने इसी तरह कई तरह के ग्राउंड ऑपरेशंस की जोरदार तैयारी की। प्रगति एक्सरसाइज अपनी तैयारियों और स्किल्स को साझा करने का एक बेहतरीन मंच साबित हुई। आखिरी दिन युद्धाभ्यास के समापन समारोह में 40 से ज्यादा सीनियर सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए जिनकी मौजूदगी में न सिर्फ युद्धाभ्यास की समीक्षा हुई बल्कि भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी की गई। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने फिक्की और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के सहयोग से स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित डिफेंस टेक और अगली पीढ़ी के मिलिट्री गैजेट्स का प्रदर्शन भी किया गया। वास्तव में कोई देश नहीं चाहता कि जंग हो या जंग जैसे हालात पैदा हो, लेकिन जंग की तैयारी की अहमियत को सब समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। तभी तो भविष्य में दुश्मन की चुनौती और तमाम खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर की सेनाएं ऐसे युद्धाभ्यासों के जरिए खुद को तैयार करती हैं। ऑपरेशन प्रगति भी इसी की एक वानगी था। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: प्रगति 2026 का पहला संस्करण न केवल विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सामरिक तालमेल को नई ऊंचाई देने में सफल रहा बल्कि इसने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के साझा लक्ष्य को भी मजबूती दी है। इसी लक्ष्य की मजबूती के लिए भारत की सेना ने प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान फिक्की के साथ मिलकर एक डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन भी किया। इस प्रदर्शनी में सेना के लिए नए हथियारों, एडवांस उपकरणों को डिस्प्ले किया गया। यहां एक ऐसा अनमैन्ड व्हीकल लाया गया जो 200 किलो का भार उठाकर किसी भी दुर्गम रास्ते पर दौड़ लगा सकता है।
3: हम जानते हैं हमारे जवानों की पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह पर होती है जहां पर किसी गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में कई बार उनके लिए खाना पहुंचाना, उनके लिए दवाइयां पहुंचाना और कई बार ऐसी जगहों पर हथियार पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे एक जवान अपने पीठ पे लाद कर चलता है लेकिन अब इसका एक हल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हम जब आए हैं उमरोई में तो यहाँ पर आज इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले भी है और ये इस वक्त आप जिस व्हीकल को देख रहे हैं ये उसी प्रॉब्लम का सलूशन है। इसे आप देख रहे हैं ये एक अनमैन व्हीकल है, मतलब इसमें बिना किसी आदमी को ऑपरेट इसमें बैठ कर नहीं करना पड़ेगा बल्कि ये बिना किसी इंसान के रिमोट के जरिए इसको चलाया जा सकता है। लगभग 200 किलो का वजन इसमें रख कर कहीं भी आप रिमोट के जरिए पहुंचा सकते हैं। अभी जहां जहां भी जवान ऐसी जगह पर जाना होता है ऊंचाई पर या किसी और जगह पर, तो अपने पीठ पर लादकर सामान ले जाते हैं। इसकी क्षमता क्या है? लगभग 200 किलो तक का ये सामान रखकर चल सकता है, रिमोट कंट्रोल्ड है ये। और साथ ही साथ आप देखिए कि 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है, और एक बार अगर ये चार्ज हो पूरा, ये बैटरी से चलता है, एक बार चार्ज होने पर लगभग 4 घंटे तक ये लगातार चल सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, कम से कम हमारे जवानों के लिए, कई दुर्गम इलाकों में जहां पर गाड़ियां नहीं आ सकती, उसमें इस सामान को रखकर उन इलाकों तक अब उस सामान को पहुंचाना आसान होगा, चाहे वो दवाई हो या हथियार हो या फिर वो खाने पीने का सामान हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक बस एक रिमोट के जरिए, और 2 किलोमीटर बैठकर भी इसको उस रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अगर सेना में इसको एंट्री मिल जाती है तो हमारे बहुत सारे जवानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मनीष अरसिया, उमरोई, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी तरह इस प्रदर्शनी में एक अनोखा ब्रिज भी डिस्प्ले किया गया जो बिना किसी टूल के सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। अब जरा सोचिए, दुर्गम इलाकों में सफर पेट्रोलिंग के वक्त ये पुल सेना के कितने काम आ सकता है।
3: एक ऐसा ब्रिज है जो महज 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। सेना के जवानों को अगर कभी कोई नाला पार करना हो, कोई नदी पार करनी हो, तो उसके लिए ये एक फटाफट ऐसा ब्रिज है जो झटपट तैयार हो जाएगा। वैसे बनाया किसने? बहुत खास बात, रिटायर्ड कर्नल प्रेम जी है मेरे साथ, सुनील प्रेम जी, और उन्होंने इसको तैयार किया। जरूर इन्होंने अपनी सर्विसेज में वो दिक्कतें देखी होंगी जब जवान किसी नाले में उतर को से क्रॉस करते थे या दिक्कतें होती थी। आपने उस एक्सपीरियंस से समझा तभी इसका इनोवेशन हुआ?
5: बिल्कुल। सो होता कैसे है कि जब कोई जवान दुश्मन पे हमला करने जाता है तो हमले से पहले उसको ना सिर्फ ब्रिज को लॉन्च करना है, उसको उठा के भी लेके जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्रिज को उठाने की बजाय आप खींच के ले जाते हो, जैसे एयरपोर्ट पे आप एक ट्रॉली बैग ले जाते हो। उसके बाद तो ये एक हाथ से कोई भी जवान इसको आराम से खींच सकता है। उसके बाद ये टर्न हो जाता है और वो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पुल बन जाता है। दूसरी चीज, जब जवान लड़ाई कर रहा है तो उसके हाथ में हथियार होगा, पाना तो नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी टूल्स का किसी भी उसका जरूरत नहीं होती।
3: क्या बात है,
5: सब कुछ ऑटो लॉक होता जाता है और ये लेगो की तरह, लेगो जैसे बच्चों का टॉय नहीं होता, उसकी तरह फिट होता जाता है और 10 मिनट के अंदर बन जाता है।
3: बात है,
5: दुनिया में ये लार्जेस्ट 50 मीटर स्पैन का है और इंडियन आर्मी में अब ये सप्लाई हो रहा है और अब BSF भी इसको देख रही है।
3: 50 मीटर के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन अगर हमें जो डिस्टेंस है 50 मीटर से ज्यादा कवर करना हो तो ये आसानी से मूव होके फिर आगे फिक्स हो सकता है।
5: जी बिल्कुल। तो जैसे BSF अभी इसे देख रही है तो तकरीबन 70 मीटर के लिए, ये तो है लेगो टाइप ही हुआ, तो आप फिट करते जाइए। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कितना करंट, कितना बहाव, उसके हिसाब से फिर हम इसको कितनी लंबाई है उस तक ले जाते हैं।
3: कितना वेट सर ये झेल सकती है?
5: जी एक मॉड्यूल जो है 0.35 टन ले लेता है।
3: 0.35 टन?
5: हाँ, तो इसको तो एक जवान लेना है फुली लोडेड। तो बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर इसमें लेते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल एक जवान का जीवन है, उसकी जान की बात है।
3: किन किन बातों का आपने ख्याल रखा है इसमें खासकर? एक तो बात हुई कि भाई इजिली मूवेबल हो, आसानी से आप उसको मूव करो और फिक्स कर लो। इसके अलावा कि वजन हो अगर, या फिर आप किस तरह के जगह पे काम करेगा, मतलब कितनी गहरी नदी हो, कितना गहरा नाला हो।
5: बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हैं, एक एक चीज इसके बारे में सोचनी पड़ती है। पहली बात तो गाड़ी में कैसे लेके आएंगे, तो अगर आप
3: स्टेशन कैसे हैं,
5: हाँ, तो ये एक के ऊपर एक ऐसे फिट होता जाता है और उसके बाद नीचे उतार के, जैसे बताया, इसको आप खींच के ले जाते हैं, टर्न कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं।

0: इसके ऊपर जब जवान जाते हैं तो कई ब्रिज होते हैं, उस पे एक बंदा एक टाइम पे क्रॉस करता है बिकॉज ब्रिज उसको कैरी नहीं। इसके ऊपर पूरी पलटन जितने लोग फिट हो सकते हैं एक साथ 30-40 लोग क्रॉस करते हैं। तो जब 500 बंदों की पलटन आपको पार करनी होती है तो बहुत कम टाइम, सिर्फ लॉन्च का कम टाइम नहीं है, पार का भी बहुत कम टाइम है। उसमें क्या करते थे, हम लोग बोट डालते थे। अब जब बोट डालते हैं तो पंक्चर हो जाता है, पंक्चर हो गया तो पूरे के पूरे बंदे जो बोट में बैठे हुए डूब जाएंगे। दूसरी बात, पंक्चर नहीं भी हुआ तो 10 जवान एक साथ बैठे हुए बहुत अच्छा टारगेट दुश्मन को बन जाते हैं, जबकि इसके ऊपर ऐसा नहीं होता कुछ।
1: और इसमें कोई वो नहीं कितनी डेप्थ में ये डूब सकता है क्या,
0: तो ये कोई भी डेप्थ हो ये डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट ये अनसिंकेबल फ्लोट इसको हम कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें बुलेट से आर्मी ने इसको टेस्ट किया है, श्रैपनल से टेस्ट किया है, तो इसमें इतना बड़ा फाड़ के आप होल भी कर दें तब भी ये डूबता नहीं है,
1: ये डूबेगा
0: ना। इसके अंदर एक एंटी, हम जो क्या क्या हाइड्रोफोबिक मटेरियल डालते हैं जो पानी को अंदर नहीं आने देता।
1: इसके अलावा सर बहुत सारी चीजें आपने बनाई हैं सेना के लिहाज से, उसके मूवमेंट के लिहाज से, और क्या कुछ है?
0: तो उसी तरह का एक बहुत इनोवेटिव आपको ब्रिज दिखाऊंगा। तो ये एक ब्लॉक सा लग रहा है आपको, लेकिन ये व्हीकल ब्रिज है। तो इसको आप देखिए, ये ऐसे खुल जाता है और ये ऐसे हो जाता है, और यहाँ पर एक दूसरा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं इधर भी कनेक्ट हो जाता है और इसके और भी आगे लग सकता है। तो इसका ऐसा है कि एक सिर्फ ये करना, दो गाड़ी में 50 मीटर आप ले जा सकते हैं, और उससे आप छोटे व्हीकल ले जाएंगे, चार लगाइए तो कार्स और छोटे टेम्पो निकल जाएंगे, और ऐसे तीन अगर आपने यहाँ पे लगाए तो आप ट्रक भी ले जाएंगे, टेंटर।
1: ये सर कहाँ काम आएगा, किन कंडीशंस में?
0: तो ये सबसे ज्यादा एक सिर्फ सेना के लिए नहीं है, इसका सेना के लिए तो है ही है, डिजास्टर रिलीफ के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि जब बाढ़ आती है रेस्क्यू में तो कट जाता है, अब आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो हमारे पास ये पैदल का सॉल्यूशन तो था लेकिन गाड़ी का सॉल्यूशन नहीं था, तो ये उसका सॉल्यूशन है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके भी वही हैं, ये भी फट जाएगा तो डूबेगा नहीं वगैरह।
1: ये क्या है सर?
0: और ये जो है एक 100 टन के जो ब्रिज होते हैं, बहुत भारी ब्रिज, तो उन ब्रिजेस में क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी फिसलती है, क्योंकि ये लोहे का इसका सरफेस होता है। तो हमने इसके ऊपर एक एंटी स्किड कोटिंग दी है, अगर आप हाथ लगा के देखें इसका फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, और सबसे बड़ी चीज इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, तो उस प्लेटों को आप बदलते रहते हैं, इसको आप लगाइए और भूल जाइए।
1: कितनी लाइफ होगी इसकी सर?
0: तो ये तकरीबन 40 साल में शायद एक बार अगर डैमेज होता है तो थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनजी स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम सब बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज,
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर इसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती तो जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाह ज्ञान थी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्य की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन खचाखच भरी नजर आ रही, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते भी दिख रहे हैं। और कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
8: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों के लिए सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेन खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर शुरू होने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी अब डर के मारे इस तरह से भाग रहे हैं। ऐसे ही दावों के साथ एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल इन पोस्ट में कहा जा रहा है कि ये नजारा उस वक्त का है जब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन बांग्लादेश के एक स्टेशन पर पहुंची थी। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशियों के अंदर डिटेंशन कैंप में जाने का खौफ देखिए। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन जब पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के पहले स्टेशन पर पहुंची, तब का नजारा देखिए। बांग्लादेश की मीडिया भी बड़ी तादाद में इसकी कवरेज करने पहुंची है। अब बांग्लादेश के एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे 1 करोड़ लोग भारत में अवैध रूप से रहते हैं, अगर इनमें से 20% लोग भी वापस आ गए तो हमारा पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के डिटेक्ट डिटेन और डिपोर्ट मॉडल और डिटेंशन सेंटर की शुरुआत के बाद से ही अवैध घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। इस कड़े एक्शन के डर से वर्षों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक स्वयं ही अपना सामान बांधकर घर खाली कर सीमा वापस लौट रहे हैं। अब इसी से जुड़ता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन खचाखच भरी हुई है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश वापस लौट रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, लिहाजा वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली सभी ट्रेन सेवाएं बंद हैं। अब तक दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवा दोबारा शुरू करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, तो यहां ये बात तो साफ हो गई कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली। ऐसे में हमें वायरल वीडियो पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
8: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें ट्रेन का नाम और बाकी जानकारी दिखाई देती है। एक फ्रेम में ट्रेन की बोगी पर बांग्ला में चिलाहाटी एक्सप्रेस और उसके नीचे इंटरसिटी लिखा देखा जा सकता है। इंटरसिटी उन ट्रेनों को कहा जाता है जो एक ही देश के अलग अलग शहरों के बीच चलती हैं। सर्च करने पर हमें एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जून 2023 में ढाका से चिलाहाटी के बीच चलने वाली चिलाहाटी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। इससे साफ हो जाता है कि इस ट्रेन का भारत या पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ट्रेन अपडेट फॉर ढाका स्टेशन नाम के फेसबुक पेज पर 26 मई को अपलोड किया गया चिलाहाटी एक्सप्रेस का एक और वीडियो मिला। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक ये नजारा उस समय का है जब ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चिलाहाटी के लिए रवाना हो रही थी। एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर भी चिलाहाटी एक्सप्रेस के कई वीडियो मिले। 26 मई को अपलोड किए गए एक वीडियो में स्टेशन से रवाना होती खचाखच भरी इस ट्रेन के कई अलग अलग क्लिप्स देखे जा सकते हैं। इनमें से एक फ्रेम वायरल वीडियो से काफी मिलता जुलता है। वीडियो में रिपोर्टर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बकरीद के मौके पर ढाका के लोग भारी संख्या में अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से घर लौट रहे हैं।
9: राजधानी कमलापुर रेलवे स्टेशन घर मुखो मानुष आसन्न पवित्र ईद उल अजहा के केंद्र करे अपन ठिकाना फिर अनेक मानुष।
8: कुल मिलाकर साफ है कि बकरीद के मौके पर ढाका से घर लौट रहे लोगों के वीडियो को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जोड़कर गलत दावे किए जा रहे हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
8: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गठन के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शिवेंदु सरकार ने सीमा चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 142.79 एकड़ जमीन सौंपती है। राज्य सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बीएसएफ चौकियों और बाड़ बंदी के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए ये पहल की है। इन सब के बीच बॉर्डर पर तार लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तार बंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि वोट सही जगह देने से देश सुरक्षित हो जाता है, अब भारत की जनता का हक कोई बाहर से आकर नहीं छीन पाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन वीडियो में एक जवान के हाथ में एक पेपर जैसा दिखने वाला कुछ सामान अचानक से आता है और फिर वो गायब हो जाता है। एक जगह पर तार लगा रहा शख्स तारों में घुस जाता है, फिर कुछ देर बाद वो बाहर निकल कर आ जाता है और उससे कुछ भी नहीं होता, जबकि वीडियो में नजर आ रहे तार नुकीले हैं। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
8: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो में दिख रही घटना से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। वीडियो के दौरान हमें कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें वायरल दावे पर शक हुआ। मसलन वीडियो में नजर आ रहे लोगों और जवानों के चेहरे और शरीर के अंग काफी अटपटे दिख रहे हैं। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाइव मॉडरेशन की एनालिसिस इस वीडियो को AI से बनाए जाने की अधिकतम संभावना करीब 80% की पुष्टि करती है। डीप फेक्स एनालिसिस यूनिट ने AI डिटेक्शन टूल इमेज विस्परर के माध्यम से वीडियो का परीक्षण किया, जिसने पुष्टि की कि वायरल वीडियो असली नहीं है। DAU ने AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट की मदद से भी वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने करीब 99% तक वीडियो के AI से बने होने की संभावना जताई। DAU ने अपने निष्कर्ष में बताया कि वायरल दृश्यों में शरीर के कई अंग लंबे होते हुए नजर आते हैं। वीडियो में कई जगह कांटेदार तार आपस में जुड़ते और अलग होते हुए भी नजर आते हैं। साफ है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने वाले लोगों का वायरल वीडियो फेक है। ये वायरल वीडियो वास्तविक घटना का नहीं है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़
4: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक बेहद प्यारा दृश्य देखने को मिलता है। एक परिवार नई साइकिल घर लेकर आया है। आमतौर पर लोग नई साइकिल खरीदने के बाद उसे चलाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन यहाँ परिवार ने पहले एक खास रस्म निभाई। वीडियो में एक छोटी बच्ची को गोद में उठाया गया और उसके पैर नई साइकिल के आगे वाले हिस्से पर लगवाए जा रहे हैं। देखने में ये एक छोटा सा दृश्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर जमकर प्यार बरसाया है। माँ के निधन के बाद कक्षा 9 की अस्मिता तमांग अपने 1.5 साल छोटे भाई को रोज स्कूल लेकर जाती है और उसकी देखभाल भी करती है। उसकी ये कहानी संघर्ष, जिम्मेदारी और हिम्मत की ऐसी मिसाल है जिसने लोगों को भावुक कर दिया है। लोग उसके इस वायरल वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्मिता तमांग अपनी कक्षा में सिर झुकाकर बैठी हुई है। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी है जो उसका छोटा भाई है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि छात्रा बेहद थकी हुई है और शायद उसे क्लास में बैठे बैठे ही झपकी आ गई हो। क्लास में मौजूद दूसरे छात्र और एक टीचर भी उसकी ओर देखते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य इतना भावुक है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी परिस्थितियों के बारे में जानने को मजबूर हो जाते हैं। अस्मिता ने मुश्किल परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ के निधन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। वो हर रोज अपने छोटे भाई को साथ लेकर स्कूल जाती हैं, ताकि उसकी देखभाल भी कर सकें और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें। ये वीडियो किसी बड़े इवेंट का नहीं, बल्कि एक साधारण से पिता पुत्र के रिश्ते की खूबसूरत झलक दिखाता है।
11: मेरे बाबू को स्पेशल।
10: छोटी सी ये क्लिप लोगों को यह एहसास दिला रही है कि असली खुशी और प्यार अक्सर रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है।
11: पापा की तरफ से ट्रीट मेरे बाबू को।
10: वीडियो की शुरुआत में बेटे की सोच दिखाई देती है, जिसमें वो अपने कैलोरी और फिटनेस को लेकर चिंतित नजर आता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। पिता अपने बेटे के कमरे में प्यार से भरा खाना लेकर आते हैं। ये कोई महंगा या खास खाना नहीं, बल्कि घर का बना साधारण लेकिन प्यार से तैयार किया गया भोजन होता है।
11: मेरे बाबू को स्पेशल।
10: पिता बड़े ही उत्साह के साथ बेटे को यह खाना देते हैं, जिसमें नूडल्स, सब्जियां, चटनी, सॉस और एक ड्रिंक शामिल होती है। बेटे के चेहरे की खुशी साफ बता देती है कि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि पिता का प्यार है। वो अपने डाइट प्लान को भूलकर इस पल को जीता है और पिता के इस छोटे से सरप्राइज को दिल से स्वीकार करता है।
11: मेरे बाबू को स्पेशल।
10: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करता दिख रहा है जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। दरअसल ये घटना बेंगलुरु के ब्यात रायनपुरा इलाके की बताई जा रही है जहां तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई थीं। इसी दौरान एक दिव्यांग युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन पानी और तेज ट्रैफिक के कारण वो बीच में ही फंस गया। हालात ऐसे थे कि एक छोटा सा कदम भी उसके लिए खतरा बन सकता था। आसपास गुजर रही गाड़ियां और बढ़ता पानी उसकी परेशानी को और बढ़ा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल अनिल कुमार की नजर जब उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ट्रैफिक को धीमा कराया ताकि कोई हादसा न हो। इसके बाद उन्होंने खुद उस युवक को अपने कंधे पर उठाया और सावधानी से पानी से भरी सड़क पार करवाई। भारी बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने पूरे धैर्य के साथ युवक को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया। इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद भावुक और दिल को सुकून देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये वीडियो एक ऐसी बुजुर्ग दादी का है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 87 साल सिर्फ दूसरों की देखभाल में गुजार दिए लेकिन कभी समुद्र नहीं देखा था। जब उनके परिवार ने मिलकर दादी की इस आखिरी इच्छा को पूरा किया तो वहाँ जो नजारा दिखा उसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में जो नजारा दिखता है वो किसी फिल्म के सीन जैसा खूबसूरत है। समुद्र किनारे ठंडी हवाओं के बीच बुजुर्ग दादी बैठी हुई हैं और उनके साथ उनके दादाजी भी नजर आ रहे हैं। दोनों बुजुर्ग जीवन साथी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर समुद्र की उठती गिरती लहरों को निहार रहे हैं। 87 साल की उम्र में पहली बार विशाल समुद्र को अपने सामने देखना दादी के लिए एक जादुई और बेहद भावुक पल था। परिवार के सभी सदस्य उन्हें घेर कर खड़े हैं और इस पल को एंजॉय कर रहे हैं।
12: What are the steps to start PowerPoint?
13: What are the steps to
12: start PowerPoint?
13: Start PowerPoint.
12: बच्चे का आंसर क्लिक ऑन PowerPoint. PowerPoint will open.
10: हर स्कूल में और हर क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा मिल जाता है जो बातों का या फिर सवालों का अलग ही जवाब देता है और उसकी बातें सुनने के बाद कई बार टीचर को भी हंसी आ जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहा है और वो जैसे ही उसका जवाब पढ़ता है उसकी हंसी नहीं रुकती है। दरअसल सवाल यह था कि पावर पॉइंट को शुरू करने के स्टेप्स क्या हैं। अब ऐसे सवाल का जवाब
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली

0: कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म आलिया भट्ट का सबसे खतरनाक अवतार बॉबी देओल जैसा विलेन, और अब रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट। जी हाँ, जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस अल्फा को लेकर एक नहीं बल्कि कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है। आलिया और बॉबी की कथित अनबन पर खुद बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ी है, और अब फिल्म की कहानी को लेकर ऐसी डील सामने आई है जो इस स्पाई थ्रिलर को अब तक की सबसे डार्क फिल्म बना सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

जब मिशन खतरनाक हो तो खुद को हथियार बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तैयारी की है आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा के लिए। वो आलिया जिन्हें अब तक आपने रोमांस, ड्रामा और इमोशनल रोल्स में देखा, अब पहली बार बड़े पर्दे पर एक ऐसे अवतार में दिखेंगी जो खुखार भी होगा, घातक भी और बेहद रहस्यमय भी। लेकिन सबसे पहले बात फिल्म की रिलीज डेट की। अल्फा की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले मेकर्स इसे साल 2025 में रिलीज करना चाहते थे, इसके बाद फिल्म को अप्रैल 2026 और फिर 10 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन अब ताजा जानकारी बता रही है कि फिल्म 10 जुलाई नहीं बल्कि 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि यशराज फिल्म्स की तरफ से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की धमाल 4 के 17 जुलाई पर शिफ्ट होने के बाद मेकर्स को 3 जुलाई की विंडो ज्यादा बेहतर लगी। ऐसे में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को एक हफ्ता पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। लेकिन रिलीज डेट के साथ साथ जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कथित अनबन की खबरें, जो काफी समय से चर्चा में थी। चर्चा ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों सितारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब खुद बॉबी देओल ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बता दिया है। बॉबी के मुताबिक, मुझे भी किसी दोस्त ने उस खबर का स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं भी हैरान था, लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं। अब बात उस कहानी की जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्फा में आलिया किसी सामान्य रॉ एजेंट या स्पाई के रोल में नजर नहीं आएंगी बल्कि एक ऐसी खतरनाक असेसिन के किरदार में दिखेंगी जिसका पूरा बचपन ट्रेनिंग, दर्द और हिंसा के बीच गुजरा है। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिर्फ मारना सिखाया गया, जो धीरे धीरे एक घातक हथियार में बदल गई और जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि आलिया ने अपने करियर की सबसे कठिन फिजिकल तैयारी शुरू की। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने करीब 4 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट सीखी, हथियारों को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना सीखा, वायर वर्क और एरियल स्टंट्स की ट्रेनिंग ली और स्पीड और साथ ही फुटवर्क पर हफ्तों तक मेहनत की। बॉबी देओल भी आलिया की तैयारी देख हैरान रह गए थे। बॉबी ने आलिया की कमिटमेंट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की तैयारी उन्होंने की उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया। बॉबी की इन सभी बातों से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में आलिया और बॉबी के बीच कई हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा

0: कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देती है तो क्या ये वाकई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल एक्शन ब्लॉकबस्टर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: कि भाग्य कहीं
3: जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है, क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं, क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है, मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम सब बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात प्रगति की। मेघालय के चुनौतीपूर्ण टेरेन में भारतीय सेना ने हाल ही में प्रगति युद्धाभ्यास किया। प्रगति यानी पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत समेत 13 देशों की सेनाएं 20 से 31 मई तक हुए इस युद्धाभ्यास का हिस्सा भी बनी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सेनाओं के बीच में सहयोग, विश्वास और सामूहिक तैयारी को मजबूत करना था। प्रगति 2026 के तहत 12 देशों की सेनाएं भारत पहुंची और भारतीय सेना के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में उन्होंने हिस्सा भी लिया। इस अभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान गुड न्यूज टुडे भी मेघालय पहुंचा। इस दौरान हमारे संवाददाता ने करीब से भारतीय सेना के पराक्रम की इन तस्वीरों को देखा। ऑपरेशन प्रगति से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सीधे मेघालय के उमरोई मिलिट्री बेस से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

ये मुश्किलों को कर देते हैं चूर। ऊंचाइयों से इन्हें जरा भी खौफ नहीं,

न फिक्र है इन्हें दरिया की गहराइयों की। हौसलों को हथियार बना ये लड़ते हैं आफत से जंग। और मौत के जबड़े से छीन लाते हैं जिंदगी। ये हर पल करते हैं तैयारी जीत की।

0: कि ये है इंडियन आर्मी। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जांबाज भारत के पूरब में हुंकार भर रहे हैं। मेघालय के पहाड़ों पर ये भारतीय सेना के पराक्रम का प्रदर्शन है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन प्रगति 2026, जिसे भारत के सैनिकों ने 13 मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर अंजाम दिया। से 31 मई तक मेघालय के उमरोई में चली इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपीन, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम की सेनाएं शामिल हुई। दो हफ्ते चले अभ्यास में 20 महिला सैनिकों समेत 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया, अपने रणकौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया और खतरों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को धार दी।
1: मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में भारत की लीडरशिप में 12 देशों की सेनाएं एक साथ इकट्ठा हुई हैं। ये सभी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। सिर्फ वॉरफेयर सीखना, हथियारों के बारे में जानना, युद्ध कौशल सीखना इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद नहीं, बल्कि मकसद ये भी है कि किसी भी आपदा की सिचुएशन में कैसे ये सभी देश मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर सीखने और जानने की कोशिश की जा रही है। मुख्य मकसद इस मिलिट्री एक्सरसाइज का यही है कि सभी देशों की सेनाओं में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, उनमें आपसी समन्वय बढ़ पाए।
0: प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। जैसा नाम वैसा ही इस युद्धाभ्यास का मिशन भी था।
2: The focus of the exercise was on counter-insurgency operations based in semi-mountainous and jungle terrain. During this time, it was a great opportunity for all of us to share the best practices.
0: प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान 400 से ज्यादा जवानों ने रूम इंटरवेंशन, फायर एंड मूव ड्रिल्स, जंगल ऑपरेशंस, हेलीबोर्न ड्रिल्स और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसी ट्रेनिंग ड्रिल्स की। इन ड्रिल्स के जरिए 13 देशों की सेनाओं ने अपनी रक्षा तैयारियों को हर कसौटी पर परखा।
3: आप सिर्फ नतीजे सुनते हैं, किससे कहानियां सुनते हैं सेना के पराक्रम के, उनके शौर्य के, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सेना बेहद सजग, बेहद सतर्क होकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। इस एक्सरसाइज में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सेना के कुछ जवान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में IED बिछाई गई है। वो कैसे उससे बच के निकलेंगे, या अगर वो उसमें फंसते भी हैं तो फिर कैसे आगे रेस्क्यू का काम होगा। अब देखिए किस तरह से जो सैनिक हैं वो लगातार एक रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। ये पतला रास्ता देखिए, अब एक आईडी पर पैर पड़ा, वो एक्टिवेट हुआ, वहां ब्लास्ट हुआ। अब ये पूरी एक्सरसाइज इस बात की है कि जब आईडी जहां पर रखी थी वहां पर उनका पैर पड़ा है, इसका मतलब है कि दुश्मन आस पास ही है, इसका मतलब है कि दुश्मन घात लगा कर बैठा है, उनका इंतजार पहले से कर रहा था। यहां से सेना किस तरह से आगे इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को टेक ओवर करती है, उससे निकलने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है और साथ साथ दुश्मन पर बराबर घात लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, ये इस पूरी एक्सरसाइज में आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये एक मिलिट्री ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है जिसमें 12 देशों के जो सैनिक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और 12 देशों के सैनिकों के साथ ये हिस्सा लेने का मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे सिचुएशन में हम उनसे सीखते हैं कि अगर उनके यहाँ ऐसा होता है तो वो क्या नई चीजें करते हैं, वो बचने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, और अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो हम उनको सिखाते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएं और दुश्मन को करारा जवाब दे पाएं।
0: इस युद्धाभ्यास का मुख्य फोकस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा। दो हफ्तों के दौरान सैनिकों को आईईडी डिटेक्शन और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के अलावा रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और एनकाउंटर एम्बुश ड्रिल्स, स्लिदरिंग, जंगल रेंज शूटिंग जैसी विशेष सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। कई देशों के सैनिकों को मिलाकर बनाई गई टीमों ने संयुक्त ट्रेनिंग ली, जिससे आपसी तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी हुई।
3: नेचर के कई रूप होते हैं, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन सैनिक किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है। इस वक्त हम आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें इंडियन आर्मी को महारत हासिल है। ग्रैपलिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से एक ऊंचे पहाड़ से लगातार सैनिक नीचे उतर रहे हैं। कई युद्ध की कंडीशंस में, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, वो वहां पर सैनिकों के लिए परिस्थिति हमेशा सामान्य नहीं रहती, आसान नहीं रहती, लेकिन हर एक पॉइंट पर पहुंचना है, हर एक जगह से निगरानी करनी है, अपनी सीमा की देखभाल करनी है, और यही वजह है कि सैनिक कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, चाहे उसे कितने ही ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े या फिर इस तरह से उतरने पड़े। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि जो तमाम दूसरे देशों के सैनिक हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय सैनिक इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं, तो जरूर जो दूसरे छोटे छोटे देश आए हैं, कंबोडिया है, सिसिल्स है, उनके सैनिकों को यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा।
0: प्रगति एक्सरसाइज के दौरान काउंटर टेररिज्म पर फोकस करते हुए कई एक्सरसाइज की गई। इसके तहत एक डमी ऑपरेशन चलाया गया, जहाँ एक गांव में छुपे आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जवानों ने अभियान चलाया।
3: प्रगति 2026 में आपको हम मिलिट्री एक्सरसाइज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपने कई बार देखी होगी। इस वक्त आप देखिए हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारा जा रहा है, स्लिथरिंग कहते हैं इसे, और लगातार इसकी प्रैक्टिस की गई थी अलग अलग देशों के जवानों के साथ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब ऐसी स्थिति होती है जहां पर सैनिकों को जल्दी पहुंचना होता है, और ऐसी जगह जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पर सैनिकों को इस तरह से स्लिथरिंग करके हेलीकॉप्टर से उतरना होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सैनिकों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस स्पॉट पर पहुंचाया गया जहां पर आतंकी गतिविधि की सूचना थी, और उस सूचना के बाद इस तरह से हेलीकॉप्टर से जवानों को लेकर पहुंचा गया है, और अब यहां से एक हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए जवान नीचे उतरते हैं। अमूमन इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई आपदा की स्थिति हो, या जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकते, या फिर जहां पर कोई आतंकी गतिविधि हो और जवानों को तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचना हो। अभी भी यहां पर एक डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है जिसमें एक गांव के अंदर आतंकियों के होने की सूचना दी गई है। उस सूचना पर किस तरह से जवान जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंचेंगे, इसकी ये एक बानगी थी, और स्लिदरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है।
0: हेलीकॉप्टर से जवान सीधे टारगेट एरिया के पास उतरे और तुरंत गांव को खाली करवाने में जुट गए, ताकि आतंकियों की तरफ से काउंटर फायर की स्थिति में सिविलियंस को कोई नुकसान न हो। पूरा अभियान असल ऑपरेशन जैसे माहौल और परिस्थितियों के बीच किया गया।
3: मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरा एक विलेज बसाया गया है, और उस विलेज में ये सूचना मिली है कि वहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जब ये सूचना मिलती है उसके बाद आर्मी कैसे रिएक्ट करती है, उसका पूरा एक डेमोंस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अभी इसमें ये चल रहा है कि कैसे गांव को पहले खाली करवाया जा रहा है। गांव का जो प्रधान है उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके गांव पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। फिर गांव के जो प्रधान है वो सभी गांव वालों को बाहर निकाल कर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। एक कम्युनिटी सेंटर बसाया गया है जहां पर सभी गांव वाले इस वक्त इकट्ठा हो रहे हैं।
0: इस अभ्यास के दौरान एक खास बात ये भी रही कि भारतीय सेना के केनाइन योद्धाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक्सरसाइज के दौरान एलन, विक्टर और डियो नाम के कुत्तों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं उनके साथ ही इस ऑपरेशन में बेहतर टेक सपोर्ट के लिए रोबोटिक डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया।
3: 2026 के इस फाइनल डेमोंस्ट्रेशन में आर्मी ये भी दिखाना चाह रही है कैसे जो पारंपरिक तरीके हैं किसी सिचुएशन से निपटने के, उसके साथ साथ मॉडर्न तकनीक अपनाई जाती है। इस वक्त जिस गांव में आतंकियों के छुपे होने की सूचना है, वहां पर आप देखिए कि सैनिक तो भेजे ही गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो रोबो डॉग है उसको भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, और वो भी अलग अलग तरह की जो सूचनाएं हैं, जो विजुअल्स हैं, वो सेना तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में किस तरह से एक रोबो डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो किस तरह से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल रहा है और सेना को भेज रहा है। तो इस पूरी प्रैक्टिस में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि ना सिर्फ जो पारंपरिक तरीके हैं ऑपरेशन के उनको अंजाम दिया जाए, उन तरीकों को अपनाया जाए, बल्कि साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो AI का इस्तेमाल हो, वो रोबोट का इस्तेमाल हो, वो सब चीज़ें भी कैसे की जाती हैं उसकी भी एक वानगी यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहला देखिए कि ये टारगेट हाउस है जहाँ पर जो सैनिक हैं वो पहुँचे हैं और पूरे गांव के एक एक घर को खाली करवाने के बाद जो यहाँ पर सैनिक हैं वो अब इस जगह से लगातार फायर कर रहे हैं। जो आप ये टू स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें आतंकियों के छिपे होने की सूचना है और जो सैनिक हैं उसके ठीक बगल में एक जो घर है वहां पर बैठकर वो फायरिंग उन्होंने उस पर शुरू कर दी है। इस तरह से सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज में जब आप जब बहुत सारे देशों के लोग एक साथ आते हैं, बहुत सारे देशों की जो सेनाओं के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो एक साथ आते हैं तो वो समझते हैं कि अलग अलग टेरेन में जब आप मान लीजिए कि कहीं पर कोई पहाड़ी है, कहीं कोई मैदानी इलाका है, ऐसे अलग अलग जगहों पर अगर ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो किस तरह करना चाहिए। अमूमन सेना पहले ऐसे ऑपरेशंस में डॉग का इस्तेमाल करती थी लेकिन यहाँ आप देखिए कि एक रोबो डॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। डॉग्स जो प्रॉपर डॉग्स होते हैं स्नाइपर्स, उनके साथ साथ जो रोबो डॉग्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी भी घर में अगर सेना तलाशी लेने जा रही है तो सबसे पहले उसी रोबो डॉग्स को आगे भेजती है। देखिए यहाँ से अब किस तरह से सेना दिखा रही है कि जब हम किसी टारगेट हाउस में घुसते हैं, मतलब जो टारगेट लोकेशन से जहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं वहां पर किस तरह से चीजों को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले घर के बाहर एक सीढ़ी लगाई गई है और उसके जरिए जो जवान है वो उस घर में दाखिल हो रहे हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक टेररिस्ट को यहाँ पर पकड़ा गया है और उसको पकड़ने के साथ साथ जो घर है घर के पूरे हिस्से पर जवानों की नजर रहे, उस घर पर कहीं भी अगर कोई दिखाई पड़ता है तो उसे आसानी से टारगेट वो कर सके, ये पूरी एक्सरसाइज ये बता रही है।
0: दो हफ्तों तक 13 देशों के सैनिकों ने इसी तरह कई तरह के ग्राउंड ऑपरेशंस की जोरदार तैयारी की। प्रगति एक्सरसाइज अपनी तैयारियों और स्किल्स को साझा करने का एक बेहतरीन मंच साबित हुई। आखिरी दिन युद्धाभ्यास के समापन समारोह में 40 से ज्यादा सीनियर सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए जिनकी मौजूदगी में न सिर्फ युद्धाभ्यास की समीक्षा हुई बल्कि भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी की गई। प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने फिक्की और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के सहयोग से स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित डिफेंस टेक और अगली पीढ़ी के मिलिट्री गैजेट्स का प्रदर्शन भी किया गया। वास्तव में कोई देश नहीं चाहता कि जंग हो या जंग जैसे हालात पैदा हो, लेकिन जंग की तैयारी की अहमियत को सब समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। तभी तो भविष्य में दुश्मन की चुनौती और तमाम खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर की सेनाएं ऐसे युद्धाभ्यासों के जरिए खुद को तैयार करती है। ऑपरेशन प्रगति भी इसी की एक वानगी था। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: प्रगति 2026 का पहला संस्करण न केवल विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सामरिक तालमेल को नई ऊंचाई देने में सफल रहा बल्कि इसने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के साझा लक्ष्य को भी मजबूती दी है। इसी लक्ष्य की मजबूती के लिए भारत की सेना ने प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान फिक्की के साथ मिलकर एक डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन भी किया। इस प्रदर्शनी में सेना के लिए नए हथियारों, एडवांस उपकरणों को डिस्प्ले किया गया। यहां एक ऐसा अनमैन्ड व्हीकल लाया गया जो 200 किलो का भार उठाकर किसी भी दुर्गम रास्ते पर दौड़ लगा सकता है।
3: हम जानते हैं हमारे जवानों की पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह पर होती है जहां पर किसी गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में कई बार उनके लिए खाना पहुंचाना, उनके लिए दवाइयां पहुंचाना और कई बार ऐसी जगहों पर हथियार पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे एक जवान अपने पीठ पे लाद कर चलता है लेकिन अब इसका एक हल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हम जब आए हैं उमरोई में तो यहाँ पर आज इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले भी है और ये इस वक्त आप जिस व्हीकल को देख रहे हैं ये उसी प्रॉब्लम का सलूशन है। इसे आप देख रहे हैं ये एक अनमैन व्हीकल है, मतलब इसमें बिना किसी आदमी को ऑपरेट इसमें बैठ कर नहीं करना पड़ेगा बल्कि ये बिना किसी इंसान के रिमोट के जरिए इसको चलाया जा सकता है। लगभग 200 किलो का वजन इसमें रख कर कहीं भी आप रिमोट के जरिए पहुंचा सकते हैं। अभी जहां जहां भी जवान ऐसी जगह पर जाना होता है ऊंचाई पर या किसी और जगह पर, तो अपने पीठ पर लादकर सामान ले जाते हैं। इसकी क्षमता क्या है? लगभग 200 किलो तक का ये सामान रखकर चल सकता है, रिमोट कंट्रोल्ड है ये। और साथ ही साथ आप देखिए कि 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है, और एक बार अगर ये चार्ज हो पूरा, ये बैटरी से चलता है, एक बार चार्ज होने पर लगभग 4 घंटे तक ये लगातार चल सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, कम से कम हमारे जवानों के लिए, कई दुर्गम इलाकों में जहां पर गाड़ियां नहीं आ सकती, उसमें इस सामान को रखकर उन इलाकों तक अब उस सामान को पहुंचाना आसान होगा, चाहे वो दवाई हो या हथियार हो या फिर वो खाने पीने का सामान हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक बस एक रिमोट के जरिए, और 2 किलोमीटर बैठकर भी इसको उस रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अगर सेना में इसको एंट्री मिल जाती है तो हमारे बहुत सारे जवानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मनीष और अस्या, उमरोई, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी तरह इस प्रदर्शनी में एक अनोखा ब्रिज भी डिस्प्ले किया गया जो बिना किसी टूल के सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। अब जरा सोचिए, दुर्गम इलाकों में सफर पेट्रोलिंग के वक्त ये पुल सेना के कितने काम आ सकता है।
3: एक ऐसा ब्रिज है जो महज 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। सेना के जवानों को अगर कभी कोई नाला पार करना हो, कोई नदी पार करनी हो, तो उसके लिए ये एक फटाफट ऐसा ब्रिज है जो झटपट तैयार हो जाएगा। वैसे बनाया किसने? बहुत खास बात, रिटायर्ड कर्नल प्रेम जी है मेरे साथ, सुनील प्रेम जी, और उन्होंने इसको तैयार किया। जरूर इन्होंने अपनी सर्विसेज में वो दिक्कतें देखी होंगी जब जवान किसी नाले में उतर को से क्रॉस करते थे या दिक्कतें होती थी। आपने उस एक्सपीरियंस से समझा तभी इसका इनोवेशन हुआ?
5: बिल्कुल। सो होता कैसे है कि जब कोई जवान दुश्मन पे हमला करने जाता है तो हमले से पहले उसको ना सिर्फ ब्रिज को लॉन्च करना है, उसको उठा के भी लेके जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्रिज को उठाने की बजाय आप खींच के ले जाते हो, जैसे एयरपोर्ट पे आप एक ट्रॉली बैग ले जाते हो। उसके बाद तो ये एक हाथ से कोई भी जवान इसको आराम से खींच सकता है। उसके बाद ये टर्न हो जाता है और वो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पुल बन जाता है। दूसरी चीज, जब जवान लड़ाई कर रहा है तो उसके हाथ में हथियार होगा, पाना तो नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी टूल्स का किसी भी उसका जरूरत नहीं होती।
3: क्या बात है,
5: सब कुछ ऑटो लॉक होता जाता है और ये लेगो की तरह, लेगो जैसे बच्चों का टॉय नहीं होता, उसकी तरह फिट होता जाता है और 10 मिनट के अंदर बन जाता है। दुनिया में ये लार्जेस्ट 50 मीटर स्पैन का है और इंडियन आर्मी में अब ये सप्लाई हो रहा है और अब BSF भी इसको देख रही है।
3: 50 मीटर के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन अगर हमें जो डिस्टेंस है 50 मीटर से ज्यादा कवर करना हो तो ये आसानी से मूव होके फिर आगे फिक्स हो सकता है।
5: जी बिल्कुल। तो जैसे BSF अभी इसे देख रही है तो तकरीबन 70 मीटर के लिए, ये तो है लेगो टाइप ही हुआ, आप फिट करते जाइए। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कितना करंट, कितना बहाव, उसके हिसाब से फिर हम इसको कितनी लंबाई है उस तक ले जाते हैं।
3: कितना वेट सर ये झेल सकती है?
5: जी एक मॉड्यूल जो है 0.35 टन ले लेता है।
3: 0.35 टन?
5: हाँ, तो इसको तो एक जवान लेना है फुली लोडेड। तो बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर इसमें लेते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल एक जवान का जीवन है, उसकी जान की बात है।
3: किन किन बातों का आपने ख्याल रखा है इसमें खासकर? एक तो बात हुई कि भाई इजिली मूवेबल हो, आसानी से आप उसको मूव करो और फिक्स कर लो। इसके अलावा कि वजन हो अगर, या फिर आप किस तरह के जगह पे काम करेगा, मतलब कितनी गहरी नदी हो, कितना गहरा नाला हो।
5: बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हैं, एक एक चीज इसके बारे में सोचनी पड़ती है। पहली बात तो गाड़ी में कैसे लेके आएंगे, तो अगर आप
3: स्टेशन कैसे हैं,
5: हाँ, तो ये एक के ऊपर एक ऐसे फिट होता जाता है और उसके बाद नीचे उतार के, जैसे बताया, इसको आप खींच के ले जाते हैं, टर्न कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं।

0: इसके ऊपर जब जवान जाते हैं तो कई ब्रिज होते हैं, उस पर एक बंदा एक टाइम पे क्रॉस करता है बिकॉज ब्रिज उसको कैरी नहीं। इसके ऊपर पूरी पलटन जितने लोग फिट हो सकते हैं एक साथ 30-40 लोग क्रॉस करते हैं, तो जब 500 बंदों की पलटन आपको पार करनी होती है तो बहुत कम टाइम, सिर्फ लॉन्च का कम टाइम नहीं है, पार का भी बहुत कम टाइम है। उसमें क्या करते थे, हम लोग बोट डालते थे। अब जब बोट डालते हैं तो पंक्चर हो जाता है, पंक्चर हो गया तो पूरे के पूरे बंदे जो बोट में बैठे हैं वो डूब जाएंगे। दूसरी बात, पंक्चर नहीं भी हुआ तो 10 जवान एक साथ बैठे हुए बहुत अच्छा टारगेट दुश्मन को बन जाते हैं, जबकि इसके ऊपर ऐसा नहीं होता।
1: और इसमें कोई वो नहीं कितनी डेप्थ में ये डूब सकता है क्या,
0: तो ये कोई भी डेप्थ हो ये डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट ये अनसिंकेबल फ्लोट इसको हम कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें बुलेट से आर्मी ने इसको टेस्ट किया है, श्रैपनल से टेस्ट किया है, तो इसमें इतना बड़ा फाड़ के आप होल भी कर दें तब भी ये डूबता नहीं है,
1: ये डूबेगा
0: ना। इसके अंदर एक एंटी हम जो क्या क्या हाइड्रोफोबिक मटेरियल डालते हैं जो पानी को अंदर नहीं आने देता।
1: क्या बात है। इसके अलावा सर बहुत सारी चीजें आपने बनाई हैं सेना के लिहाज से, उसके मूवमेंट के लिहाज से, और क्या कुछ है?
0: तो उसी तरह का एक बहुत इनोवेटिव आपको ब्रिज दिखाऊंगा। तो ये एक ब्लॉक सा लग रहा है आपको, लेकिन ये व्हीकल ब्रिज है। तो इसको आप देखिए, ये ऐसे खुल जाता है और ये ऐसे हो जाता है, और यहाँ पर एक दूसरा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं इधर भी कनेक्ट हो जाता है और इसके और भी आगे लग सकता है। तो इसका ऐसा है कि एक सिर्फ ये करना, दो गाड़ी में 50 मीटर आप ले जा सकते हैं, और उससे आप छोटे व्हीकल ले जाएंगे, चार लगाइए तो कार्स और छोटे टेम्पो निकल जाएंगे, और ऐसे तीन अगर आपने यहाँ पे लगाए तो आप ट्रक भी ले जाएंगे, टेंटर।
1: ये सर कहाँ काम आएगा, किन कंडीशंस में?
0: तो ये सबसे ज्यादा एक सिर्फ सेना के लिए नहीं है, इसका सेना के लिए तो है ही है, डिजास्टर रिलीफ के लिए, क्योंकि आप सोचिए कि जब बाढ़ आती है रेस्क्यू में तो कट जाता है। अब आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो हमारे पास ये पैदल का सॉल्यूशन तो था लेकिन गाड़ी का सॉल्यूशन नहीं था, तो ये उसका सॉल्यूशन है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके भी वही हैं, ये भी फट जाएगा तो डूबेगा नहीं वगैरह।
1: ये क्या है सर?
0: और ये जो है एक 100 टन के जो ब्रिज होते हैं, बहुत भारी ब्रिज, तो उन ब्रिजेस में क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी फिसलती है, क्योंकि ये लोहे का इसका सरफेस होता है। तो हमने इसके ऊपर एक एंटी स्किड कोटिंग दी है, जगह आप हाथ लगा के देखें, इसका फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, और सबसे बड़ी चीज इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, तो उस प्लेटों को आप बदलते रहते हैं, इसको आप लगाइए और भूल जाइए।
1: कितनी लाइफ होगी इसकी सर?
0: तो ये तकरीबन 40 साल में शायद एक बार अगर डैमेज होता है तो थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा।
2: और चलिए इसी के साथ जी एन जी स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: एयरफोर्स के साथ डीआरडीओ ने रुद्र M2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन। आंधी तूफान के बाद राजस्थान के अलवर में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, तापमान में 5% तक दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़, प्रभावित इलाके से लोगों का रेस्क्यू, किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने रचा कीर्तिमान, देश भर में क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की लिस्ट में हासिल किया तीसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिलेगा 25 लाख का इनाम। हैदराबाद का वाटर टैंक स्कूल मासूम सब बच्चों के सपनों को दे रहा उड़ान, मियापुर के श्रीनिवास ने बेकार पड़े पानी के टैंक को स्कूल में बदला, कम आय वाले परिवारों के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर इसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती तो जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मानकर शेयर करते थे और यही से शुरू होती है अफवाह क्या थी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं, क्या है दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन खचाखच भरी नजर आ रही, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते भी दिख रहे हैं। और कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश लौट रहे हैं। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों के लिए सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेन खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर शुरू होने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी अब डर के मारे इस तरह से भाग रहे हैं। ऐसे ही दावों के साथ एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल इन पोस्ट में कहा जा रहा है कि ये नजारा उस वक्त का है जब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन बांग्लादेश के एक स्टेशन पर पहुंची थी। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशियों के अंदर डिटेंशन कैंप में जाने का खौफ देखिए। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन जब पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के पहले स्टेशन पर पहुंची, तब का नजारा देखिए। बांग्लादेश की मीडिया भी बड़ी तादाद में इसकी कवरेज करने पहुंची है। अब बांग्लादेश के एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे 1 करोड़ लोग भारत में अवैध रूप से रहते हैं, अगर इनमें से 20% लोग भी वापस आ गए तो हमारा पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
5: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के डिटेक्ट डिटेन और डिपोर्ट मॉडल और डिटेंशन सेंटर की शुरुआत के बाद से ही अवैध घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। इस कड़े एक्शन के डर से वर्षों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक स्वयं ही अपना सामान बांधकर घर खाली कर सीमा वापस लौट रहे हैं। अब इसी से जुड़ता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन खचाखच भरी हुई है, यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर शुरू होने के डर से अवैध बांग्लादेशी इस ट्रेन से अपने देश वापस लौट रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, लिहाजा वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली सभी ट्रेन सेवाएं बंद हैं। अब तक दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवा दोबारा शुरू करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, तो यहां ये बात तो साफ हो गई कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली, ऐसे में हमें वायरल वीडियो पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, अब देखिए सच में छूट गया है।
6: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें ट्रेन का नाम और बाकी जानकारी दिखाई देती है। एक फ्रेम में ट्रेन की बोगी पर बांग्ला में चिलाहाटी एक्सप्रेस और उसके नीचे इंटरसिटी लिखा देखा जा सकता है। इंटरसिटी उन ट्रेनों को कहा जाता है जो एक ही देश के अलग अलग शहरों के बीच चलती हैं। सर्च करने पर हमें एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जून 2023 में ढाका से चिलाहाटी के बीच चलने वाली चिलाहाटी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। इससे साफ हो जाता है कि इस ट्रेन का भारत या पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ट्रेन अपडेट फॉर ढाका स्टेशन नाम के फेसबुक पेज पर 26 मई को अपलोड किया गया चिलाहाटी एक्सप्रेस का एक और वीडियो मिला। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक ये नजारा उस समय का है जब ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चिलाहाटी के लिए रवाना हो रही थी। एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर भी चिलाहाटी एक्सप्रेस के कई वीडियो मिले। 26 मई को अपलोड किए गए एक वीडियो में स्टेशन से रवाना होती खचाखच भरी इस ट्रेन के कई अलग अलग क्लिप्स देखे जा सकते हैं। इनमें से एक फ्रेम वायरल वीडियो से काफी मिलता जुलता है। वीडियो में रिपोर्टर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बकरीद के मौके पर ढाका के लोग भारी संख्या में अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से घर लौट रहे हैं।
7: राजधानी कमलापुर रेलवे स्टेशन घरमुख मानुषे ढल नेमेछे। आसन्न पवित्र ईद उल अजहा के केंद्र करे अपन ठिकाना फिरछेन अनेक मानुष।
6: कुल मिलाकर साफ है कि बकरीद के मौके पर ढाका से घर लौट रहे लोगों के वीडियो को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जोड़कर गलत दावे किए जा रहे हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गठन के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शिवेंदु सरकार ने सीमा चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। राज्य सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बीएसएफ चौकियों और बाड़ बंदी के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए ये पहल की है। इन सब के बीच बॉर्डर पर तार लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तार बंदी कर बॉर्डर बंद किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि वोट सही जगह देने से देश सुरक्षित हो जाता है, अब भारत की जनता का हक कोई बाहर से आकर नहीं छीन पाएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवानों के साथ कुछ लोग बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारबंदी कर बॉर्डर बंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन वीडियो में एक जवान के हाथ में एक पेपर जैसा दिखने वाला कुछ सामान अचानक से आता है और फिर वो गायब हो जाता है। एक जगह पर तार लगा रहा शख्स तारों में घुस जाता है, फिर कुछ देर बाद वो बाहर निकल कर आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता, जबकि वीडियो में नजर आ रहे तार नुकीले हैं। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
6: चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो में दिख रही घटना से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। वीडियो के दौरान हमें कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें वायरल दावे पर शक हुआ। मसलन वीडियो में नजर आ रहे लोगों और जवानों के चेहरे और शरीर के अंग काफी अटपटे दिख रहे हैं। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाइव मॉडरेशन की एनालिसिस इस वीडियो को AI से बनाए जाने की अधिकतम संभावना करीब 80% की पुष्टि करती है। डीप फेक एनालिसिस यूनिट ने एआई डिटेक्शन टूल इमेज विस्परर के माध्यम से वीडियो का परीक्षण किया, जिसने पुष्टि की कि वायरल वीडियो असली नहीं है। डीएयू ने एआई डिटेक्शन टूल एआई और नॉट की मदद से भी वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने करीब 99% तक वीडियो के एआई से बने होने की संभावना जताई। डीएयू ने अपने निष्कर्ष में बताया कि वायरल दृश्यों में शरीर के कई अंग लंबे होते हुए नजर आते हैं। वीडियो में कई जगह कांटेदार तार आपस में जुड़ते और अलग होते हुए भी नजर आते हैं। साफ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने वाले लोगों का वायरल वीडियो फेक है। ये वायरल वीडियो वास्तविक घटना का नहीं है, इसे एआई की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
8: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
5: Good news today.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
9: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक बेहद प्यारा दृश्य देखने को मिलता है। एक परिवार नई साइकिल घर लेकर आया है। आमतौर पर लोग नई साइकिल खरीदने के बाद उसे चलाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन यहाँ परिवार ने पहले एक खास रस्म निभाई। वीडियो में एक छोटी बच्ची को गोद में उठाया गया और उसके पैर नई साइकिल के आगे वाले हिस्से पर लगवाए जा रहे हैं। देखने में एक छोटा सा दृश्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर जमकर प्यार बरसाया है। माँ के निधन के बाद कक्षा 9 की अस्मिता तमांग अपने 1.5 साल छोटे भाई को रोज स्कूल लेकर जाती है और उसकी देखभाल भी करती है। उसकी ये कहानी संघर्ष, जिम्मेदारी और हिम्मत की ऐसी मिसाल है जिसने लोगों को भावुक कर दिया है। लोग उसके इस वायरल वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्मिता तमांग अपनी कक्षा में सिर झुकाकर बैठी हुई है। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी है जो उसका छोटा भाई है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि छात्रा बेहद थकी हुई है और शायद उसे क्लास में बैठे बैठे ही झपकी आ गई हो। क्लास में मौजूद दूसरे छात्र और एक टीचर भी उसकी ओर देखते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य इतना भावुक है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी परिस्थितियों के बारे में जानने को मजबूर हो जाते हैं। अस्मिता ने मुश्किल परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ के निधन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। वो हर रोज अपने छोटे भाई को साथ लेकर स्कूल जाती हैं, ताकि उसकी देखभाल भी कर सकें और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें। ये वीडियो किसी बड़े इवेंट का नहीं, बल्कि एक साधारण से पिता पुत्र के रिश्ते की खूबसूरत झलक दिखाता है। छोटी सी ये क्लिप लोगों को यह एहसास दिला रही है कि असली खुशी और प्यार अक्सर रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है।
10: पापा की तरफ से ट्रीट मेरे बाबू को।
9: वीडियो की शुरुआत में बेटे की सोच दिखाई देती है, जिसमें वो अपने कैलोरी और फिटनेस को लेकर चिंतित नजर आता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। पिता अपने बेटे के कमरे में प्यार से भरा खाना लेकर आते हैं। ये कोई महंगा या खास खाना नहीं, बल्कि घर का बना साधारण लेकिन प्यार से तैयार किया गया भोजन होता है।
10: मेरे बाबू को स्पेशल।
9: पिता बड़े ही उत्साह के साथ बेटे को यह खाना देते हैं। जिसमें नूडल्स, सब्जियां, चटनी, सॉस और एक ड्रिंक शामिल होती है। बेटे के चेहरे की खुशी साफ बता देती है कि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि पिता का प्यार है। वो अपने डाइट प्लान को भूलकर इस पल को जीता है और पिता के इस छोटे से सरप्राइज को दिल से स्वीकार करता है।
10: मेरे बाबू को स्पेशल।
9: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करता दिख रहा है जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। दरअसल ये घटना बेंगलुरु के ब्यात रायनपुरा इलाके की बताई जा रही है, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई थीं। इसी दौरान एक दिव्यांग युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी और तेज ट्रैफिक के कारण वो बीच में ही फंस गया। हालात ऐसे थे कि एक छोटा सा कदम भी उसके लिए खतरा बन सकता था। आसपास गुजर रही गाड़ियां और बढ़ता पानी उसकी परेशानी को और बढ़ा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल अनिल कुमार की नजर जब उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ट्रैफिक को धीमा कराया ताकि कोई हादसा न हो। इसके बाद उन्होंने खुद उस युवक को अपने कंधे पर उठाया और सावधानी से पानी से भरी सड़क पार करवाई। भारी बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने पूरे धैर्य के साथ युवक को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया। इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद भावुक और दिल को सुकून देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये वीडियो एक ऐसी बुजुर्ग दादी का है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 87 साल सिर्फ दूसरों की देखभाल में गुजार दिए, लेकिन कभी समुद्र नहीं देखा था। जब उनके परिवार ने मिलकर दादी की इस आखिरी इच्छा को पूरा किया तो वहाँ जो नजारा दिखा उसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में जो नजारा दिखता है वो किसी फिल्म के सीन जैसा खूबसूरत है। समुद्र किनारे ठंडी हवाओं के बीच बुजुर्ग दादी बैठी हुई हैं और उनके साथ उनके दादाजी भी नजर आ रहे हैं। दोनों बुजुर्ग जीवन साथी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर समुद्र की उठती गिरती लहरों को निहार रहे हैं। 87 साल की उम्र में पहली बार विशाल समुद्र को अपने सामने देखना दादी के लिए एक जादुई और बेहद भावुक पल था। परिवार के सभी सदस्य उन्हें घेर कर खड़े हैं और इस पल को एंजॉय कर रहे हैं।
11: What are the steps to start PowerPoint?
12: What are the steps to
11: start PowerPoint?
12: Start PowerPoint.
11: बच्चे का आंसर, क्लिक ऑन PowerPoint. PowerPoint will open.
9: हर स्कूल में और हर क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा मिल जाता है जो बातों का या फिर सवालों का अलग ही जवाब देता है और उसकी बातें सुनने के बाद कई बार टीचर को भी हंसी आ जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहा है और वो जैसे ही उसका जवाब पढ़ता है उसकी हंसी नहीं रुकती है। दरअसल सवाल यह था कि पावर पॉइंट को शुरू करने के स्टेप्स क्या हैं। अब ऐसे सवाल का जवाब दूसरे बच्चों ने स्टेप्स के मुताबिक बताए, मगर एक बच्चे ने अनोखा जवाब दिया। उसने लिखा, आप पावर पॉइंट पर क्लिक करो, पावर पॉइंट खुल जाएगा।
11: What are the steps to start PowerPoint?
12: What are the steps to
11: start PowerPoint?
12: Start PowerPoint.
11: बच्चे का आंसर, क्लिक ऑन PowerPoint. PowerPoint will open.
9: अब यही जवाब पढ़ने के बाद वो शख्स जोर से हंसने लगा।
11: PowerPoint will open.
9: शादियों का सीजन हो और डीजे फ्लोर खाली रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी इसी डांस फ्लोर पर ऐसे ऐसे टैलेंट निकल आते हैं कि बड़े बड़े डांसर्स भी पीछे रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने शादी के फंक्शन में ऐसा डांस किया कि लोग उसे देसी माइकल जैक्सन कहने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स काले कपड़ों में पूरी तैयारी के साथ डांस फ्लोर पर उतरता है। खास बात यह है कि उसने अपने सिर पर बर्तन जैसा कुछ रखा हुआ है जो उसके स्टाइल को और भी मजेदार बना देता है। जैसे ही म्यूजिक बजता है उसका बॉडी कंट्रोल, स्टाइल और मूव्स देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बच्चे का टैलेंट लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चा बिना किसी महंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के सिर्फ एक प्लास्टिक की बाल्टी और लकड़ी के डंडे की मदद से शानदार धुन बजाता नजर आ रहा है। उसकी लय, ताल और कॉन्फिडेंस को देखकर लोग हैरान रह गए। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को फूट फूट कर रोते देखा गया। बताया गया कि दिल टूटने की वजह से वो रो रहा है। शख्स गाय के सामने बैठकर रो रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको इमोशनल कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि जानवरों में इमोशंस की समझ नहीं होती है, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिला। रोते रोते जब शख्स की हालत खराब हो गई, तब गौ माता ने अपनी ममता दिखाई। गाय ने अपना सिर उठाकर उस शख्स के कंधे पर रख दिया, मानो उसे चुप करा रही हूँ और सांत्वना दे रही हूँ। ये पल लोगों का दिल छू गया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य, और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म आलिया भट्ट का सबसे खतरनाक अवतार बॉबी देओल जैसा विलेन, और अब रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट। जी हाँ, जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस अल्फा को लेकर एक नहीं बल्कि कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है। आलिया और बॉबी की कथित अनबन पर खुद बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ी है, और अब फिल्म की कहानी को लेकर ऐसी डेट सामने आई है जो इस स्पाई थ्रिलर को अब तक की सबसे डार्क फिल्म बना सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: जब मिशन खतरनाक हो तो खुद को हथियार बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तैयारी की है आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा के लिए। वो आलिया जिन्हें अब तक आपने रोमांस, ड्रामा और इमोशनल रोल्स में देखा, अब पहली बार बड़े पर्दे पर एक ऐसे अवतार में दिखेंगी जो खुखार भी होगा, घातक भी और बेहद रहस्यमय भी। लेकिन सबसे पहले बात फिल्म की रिलीज डेट की। अल्फा की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले मेकर्स इसे साल 2025 में रिलीज करना चाहते थे, इसके बाद फिल्म को अप्रैल 2026 और फिर 10 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन अब ताजा जानकारी बता रही है कि फिल्म 10 जुलाई नहीं बल्कि 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि यशराज फिल्म्स की तरफ से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की धमाल 4 के 17 जुलाई पर शिफ्ट होने के बाद मेकर्स को 3 जुलाई की विंडो ज्यादा बेहतर लगी। ऐसे में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को एक हफ्ता पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। लेकिन रिलीज डेट के साथ साथ जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कथित अनबन की खबरें, जो काफी समय से चर्चा में थी। चर्चा ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों सितारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब खुद बॉबी देओल ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बता दिया है। बॉबी के मुताबिक, मुझे भी किसी दोस्त ने उस खबर का स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं भी हैरान था, लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं। अब बात उस कहानी की जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्फा में आलिया किसी सामान्य रॉ एजेंट या स्पाई के रोल में नजर नहीं आएंगी बल्कि एक ऐसी खतरनाक असेसिन के किरदार में दिखेंगी जिसका पूरा बचपन ट्रेनिंग, दर्द और हिंसा के बीच गुजरा है। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिर्फ मारना सिखाया गया, जो धीरे धीरे एक घातक हथियार में बदल गई और जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि आलिया ने अपने करियर की सबसे कठिन फिजिकल तैयारी शुरू की। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने करीब 4 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट सीखी, हथियारों को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना सीखा, वायरवर्क और एरियल स्टंट्स की ट्रेनिंग ली और स्पीड और साथ ही फुटवर्क पर हफ्तों तक मेहनत की। बॉबी देओल भी आलिया की तैयारी देख हैरान रह गए थे। बॉबी ने आलिया की कमिटमेंट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की तैयारी उन्होंने की उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया। बॉबी की इन सभी बातों से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में आलिया और बॉबी के बीच कई हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देती है तो क्या ये वाकई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल एक्शन ब्लॉकबस्टर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: कि भाग्य कहीं
5: जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है।